0: मार गोरी।
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
3: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
2: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
4: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी प्रसन्नता की ओर कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, यानी कि शिव पुराण की श्रवण के लिए, जिसके श्रवण मात्र से, पठन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो फिर क्यों ना फिर ऐसे ग्रंथ की हम पठन श्रवण किया जाए। दोस्तों, आपको शिव पुराण सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित किया हुआ है और वो हमारे स्टूडियो में ही उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को आपने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया था कि किस प्रकार से भगवान शिव ने पार्वती के साथ और अपने सभी गणों और देवताओं के साथ में त्रिपुरासुर को मारने के लिए वो चले गए थे, क्योंकि भगवान तो पशुपतिनाथ हैं, तो वो पशु के दैत्य तो पशु के समान ही है। अब आगे फिर यह कथा कैसे बढ़ती है, उसका विनाश भगवान ने कैसे किया भगवान शिव ने, वह सब हम सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें सुनाइए।
1: हाँ मंजू जी, बड़ा ही लोमहर्षक वर्णन है कि कैसे शिव जी जो है इतनी इतनी सेना लेकर के गए, रथ पर आरूढ़ हुए और उसके बाद रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 10वां अध्याय जो शुरू होता है, देखते हैं इसमें क्या वर्णन है। सनत कुमार उवाच, अथ शंभुर महादेवो रथस्थ सर्व संयुत त्रिपुरम सकलम दग्धुम उद्यतो अभूत सुरदुष्याम शीर्ष स्थान कमा शीर्ष स्थानक मास्थाय संधाय च सरोत्तमम सज्जम तत्कार मुकम कृत्वा प्रत्यालीढ़म महाद्भुतम। कहते हैं शिव जी की लीला तो सारी अद्भुत ही है, अद्भुत है, अलौकिक है और पता नहीं क्या क्या है। वो कहते हैं कि सनत कुमार जी की उसके बाद सभी उपकरणों के साथ रथ में विराजमान महादेव शिव जी देवताओं के लिए तैयार हो गए। शत्रुओं के तीनों नगरों को जलाने शीर्ष स्थान में चढ़कर बाण को चढ़ाकर धनुष को ठीक करके आश्चर्यजनक प्रत्यालीढ़ मतलब बाण चलाने का आसन, जिसमें बायां पैर आगे बढ़ाते हैं तथा दायां पैर खींच लेते हैं, तो प्रत्यालीढ़ नामक आसन उन्होंने साधा। दृढ़ मुष्टि से उस धनुष को पकड़कर दृष्टि में दृष्टि को डालकर शिव जी निश्चल होकर 100,000 वर्ष वहां स्थित रहे। बताओ, ये कह रहा है कि 100,000 वर्ष शिव जी वहां स्थित रहे धनुष चलाने की मुद्रा में। उनके अंगूठे पर गणेश जी स्थित होकर प्रतिक्षण विघ्न कर रहे थे, जिससे शिव जी का लक्ष्य नगरों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिव जी ने सुखदायक आकाशवाणी सुनी। क्या सुनी? वो कहते हैं कि भो भो न यावद भगवन अर्चितो असौ विनायक पुराणी जगदीशे सांप्रतम न हनिष्यति एतत् श्रुत्वा तु वचनं गजवक्त्रम अपूजयत भद्रकालीं समायु हुई ततो अंधकनी निषूदनम ततो अंधक निषूदनम। कहते हैं कि भगवान गणेश जो है उनके अंगूठे पर बैठ करके विघ्न कर रहे थे, तो अब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिवजी ने सुखदायक आकाशवाणी सुनी। संसार के स्वामी शिवजी, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक आप इन नगरों का विनाश नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर अंधकासुर के नाशक शिव जी ने भी भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। यथा विधि पूजा करने के बाद गणेश जी के प्रसन्न होने पर भगवान शिव जी ने आकाश में देखा कि तारक दैत्य के पुत्रों ने तीनों नगर आपस में सटे हुए हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं। पर ब्रह्म देवेश सबके उपासना योग्य शिव जी की भी कार्य सिद्धि दूसरे की कृपा से हो, यह बात समझ में नहीं आती है। अब देखिए, शिव ने ही तो वरदान दिया था प्रथम पूज्य का भगवान गणेश को। अब भगवान गणेश जब प्रथम पूज्य हैं और शिव जी चल रहे हैं किसी काम के लिए, तो पहले तो गणेश जी की आराधना तो करनी पड़ेगी, वंदना तो करनी पड़ेगी। अब साधारण मन सोचता है कि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, तो पुत्र की आराधना क्यों, पिता पुत्र की आराधना क्यों करेगा। लेकिन ये साधारण मन की बात है, और गणेश जी के पूजन की बात जो यहाँ बताई गई है, यह चेतना की बात, आत्मा और परमात्मा की बात है। क्योंकि जब भी कोई शिव तक पहुंच जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं, तो परब्रह्म परमेश्वर के अंश ही होते हैं, अंश और अंशी का संबंध होता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, बने हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया है उनके पुत्र के रूप में, पर गणेश जी तो परब्रह्म परमेश्वर हैं ही, सभी हैं परब्रह्म परमेश्वर के। अगर देखा जाए तो भगवान शिव को परमेश्वर हम कहते हैं, विष्णु भगवान का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु भगवान है परमेश्वर, और उसके बाद हम गणेश जी का पढ़ें तो गणेश जी हैं परमेश्वर, आदि शक्ति का पढ़ें तो वो हैं परमेश्वरी। तो मन थोड़ा सा विचलित होता है कि आखिर सभी पर ब्रह्म परमेश्वर परमेश्वरी कहे जाते हैं, ये क्या रहस्य क्या है? रहस्य बस इतना है कि जिसने भी आत्म तत्व को, गूढ़ तत्व को जान लिया, वो परब्रह्म परमेश्वर ही हो गया, परमेश्वर में मिल गया। जैसे मान लीजिए बूंद है या गंगा है, गंगा सागर में जब मिल जाती है तो क्या बनती है? गंगा सागर। तब वहाँ गंगा को आप सागर में ढूंढ पाएंगे कि कौन है गंगा का जल और कौन है सागर का जल? हम नहीं ढूंढ पा सकते, वो दोनों एकाकार हो जाते हैं। तो उसी तरह जो भी परब्रह्म परमेश्वर की आराधना कर रहा है वो एकाकार हो गया परब्रह्म से। तो सभी परब्रह्म परमेश्वर ही है, बस थोड़ा थोड़ा भिन्नता, नाम रूप की भिन्नता हो जाती है। जैसे सोना है, सोने का अगर हम जेवर बनाते हैं तो कोई कर्ण फूल बनता है, कोई हाथ का बनता है, कंगन बनता है, और कोई जो है नेकलेस बनता है। तो है तो सोना ही, सुनार के पास जब आप जाएंगी तो सुनार क्या करेगा? सबको गला देगा एक साथ, उसके लिए तो केवल सोना है, और सोने का ही वो मूल्य देगा। वो नहीं कि नेकलेस है तो नेकलेस का अलग मूल्य दे रहे हैं, कर्णफूल का अलग मूल्य दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो धातु तो एक ही है, उसी तरह परब्रह्म परमेश्वर धाता सबको धारण करने वाले हैं। तो इसलिए हमें इस भेद बुद्धि को समझना होगा कि वास्तव में भेद में अभेद है। अब आगे चलते हैं कि भगवान शिव ने तब क्या किया कि कार्य सिद्धि के लिए जब आकाशवाणी हुई कि गणेश की पूजा की पूजा करो, तब देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि वे तो स्वतंत्र पर ब्रह्म सगुण निर्गुण किसी के दृष्टिगोचर न होने वाले स्वामी परमात्मा तथा निरंजन हैं। वे स्वयं पंचदेव स्वरूप हैं, पांचों देवताओं के उपासना योग्य हैं, परम प्रभु हैं, उन्हें किसी की उपासना करने की क्या आवश्यकता नहीं है, वे ही सबकी उपासना के योग्य हैं। तो अब ये मन में भेद बुद्धि आई तो अथवा लीलिया तस्य सर्वम संघटते मुने चरितम देव देवस्य वरदातुम अहेसितु तस्मिन् स्थिते महादेवे पूजयित्वा गणाधिपम पुराणे तत्र कालेन जगमु रेक एकत्वम आसु वै। कहते हैं कि अथवा हे मुनि, देवदेव वरद शिव जी की लीला से सब कुछ होना संभव है। महादेव जी जब गणेश की पूजा कर चुके थे तब उसी समय तीनों नगर एक साथ मिल गए। हे मुनि, तीनों नगरों के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। पहले तो तीनों नगर अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन जब गणेश जी की पूजा किया भगवान शिव ने तो तीनों नगर एक हो गए। तब सभी देवता सिद्धगण महर्षि जय जयकार करते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे, क्योंकि शिव ने उस समय ये नहीं देखा ये मेरा बेटा है। उन्होंने ही प्रथम पूज्य कहा था भगवान गणेश को, तो महाकाली के साथ उन्होंने पूजा की भगवान गणेश की। तो अहंकार रहित है परमेश्वर, क्या है अहंकार रहित है, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, वो हमेशा शुभ कार्य के लिए ही अपना काम करते हैं। कहते हैं कि अथाह हेति तदा ब्रह्मा विष्णुश्च जगदाम्पति समयो अपि समायातो दैत्यानां वध कर्मणा तेषां तारक पुत्राणां त्रिपुराणां महेश्वर देव कार्यं कुरु विभोद एकत्वमपि चागतम् यावन्न यान्ति देवेश विप्रयोगं पुराणि वै तावद् वानं विमुञ्चश्च त्रिपुरं भस्मसात कुरु। अब देवता गण जो है वो उत्सुक हो रहे हैं और धैर्य भी उनको नहीं हो रहा है कि कब त्रिपुरासुर का अंत होगा। संसार के स्वामी ब्रह्मा विष्णु ने भी कहा, दैत्यों के वध करने का समय आ गया है। हे महेश्वर, हे प्रभु, इस समय तारकासुर के तीनों पुत्रों के नगर एक साथ हो गए हैं, अब आप देवताओं के कार्य को कीजिए। जब तक ये नगर फिर अलग अलग नहीं हो जाते, तब तक आप बाण छोड़कर त्रिपुर को भस्म कर डालिए, क्योंकि वरदान था उसको कि तीनों को एक साथ ही मार रहा। आ तीनों थे अलग अलग, तो एक साथ तो एक बाण चलाते भी तो नहीं होता, लेकिन अभी एक साथ हो गए तो एक साथ जो है बाण से मारा जा सकता था। तो कहते हैं कि आप बाण छोड़कर त्रिपुर को भस्म कर डालिए। उसके बाद शिव जी ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और बाण रखा। पूज्य पाशुपतास्त्र का त्रिपुर धा के दाह के लिए ध्यान किया। उत्तम लीला निपुण महादेव ने उसे किसी कारण से निरादर की दृष्टि से देखा। विरूपाक्ष परम ईशान तीनों पुरों को क्षण भर में भस्म करने में समर्थ है और सज्जनों के रक्षक हैं, ऐसा जानना चाहिए। देवेश शिव अपने देखने मात्र से तीनों लोक को भस्म कर देने में समर्थ हैं। केवल आप हमारे यश की रक्षा करने के लिए बाण का प्रहार करें। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। तब उन्होंने बाण द्वारा त्रिपुर दाह की इच्छा की, क्योंकि इच्छा करना जरूरी था। जिस समय यह वह चिर अभिलषित मुहूर्त आया, अद्भुत धनुष की डोरी को खींचकर उसकी असह्य टंकार की, क्योंकि भगवान तो टंकारते हैं दसों दिशाओं में। जब तक टंकार न गूंजे, तब तक पता कहाँ चलता है कि भगवान जग गए हैं। आपने राम का भी देखा होगा कि राम ने भी रावण को मारने से पहले टंकार की थी, तो उसी तरह भगवान शिव ने अपने धनुष से क्या किया, टंकार किया सबसे पहले। और कहते हैं महान असुरों को बुलाकर और अपना नाम सुनकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त कठोर बाण को उन्होंने छोड़ा। अब भगवान शिव ने क्या किया, उस बाण को छोड़ दिया। कहते हैं ददाह त्रिपुरस्थाम तान दैत्यान स्त्रीन विमलापह स आशुगो विष्णुमयो वहनी शल्यो महाज्वलम ततः पुरानी दग्धानी चतुर जल जलधि मेखलाम गतानी युग पद भूमिम त्रीणी दग्धानी भस्म सात। कहते हैं कि आग के समान जलते हुए पाप नाशक विष्णुमय उस बाण ने त्रिपुर में स्थित उन दैत्यों को जला दिया। चारों समुद्रों तक फैले हुए वे तीनों नगर जलकर भूमि पर राख के रूप में आ गए। शिव जी की उपासना को छोड़ देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण की अग्नि से हाहाकार करते हुए जल गए। भाइयों के साथ मरते हुए उस तारकाक्ष ने मरते समय अपने प्रभु भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण किया। परम भक्ति से युक्त होकर अनेक बातें कहता हुआ महादेव जी को देखकर मन ही मन उसने कहा। तारकाक्ष भी उन त्रिपुरों में त्रिपुर में से एक था। तारकाक्ष विरूपाक्ष ये सब थे। तो तारकाक्ष क्या कहता है, तारकाक्ष ने कहा भव ज्ञातो असी तुष्टो अति यद असमान सह बंधुवी तेन सत्येन भूयो अपि तदा त्वं प्रदहिष्यसि दुर्लभम लब्धम अस्माभिः यद प्राप्यम सुरासुरैः त्वद भाव भाविता बुद्धिर जाते जाते भवत्वेति। वो कहता है कि हे शिव जी, मैंने जान लिया है कि आप हम सभी बंधुओं पर प्रसन्न हैं, फिर इसी प्रकार आप हमें कब जलाएंगे। आप आज हमने आपका यह दर्शन पाया है जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्लभ है, अतः प्रत्येक जन्म में हमारी बुद्धि आपकी ओर ही लगी रहे। हे मुनि, ऐसा कहते हुए वे दानव शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि द्वारा जल गए। शिव भक्त थे तो शिव के अंदर उनके प्रति प्रेम तो था ही, और जब मारने लगे तो शिव जी के स्वरूप का उन्होंने दर्शन भी किया। और कहते हैं कि भगवान का साक्षात्कार ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, दुर्लभ से भी दुर्लभतम घटना है कि हम भगवान का साक्षात्कार करें। करोड़ों मनुष्य अभी अरबों मनुष्य हैं, और कितने मनुष्य आए गए, लेकिन भगवान का साक्षात्कार करने वाले भक्त ही हो, ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन बहुत तपस्या के बाद ये सब संभव हो पाता है, और भगवान प्रसन्न हो जाए तभी कुछ संभव होता है। भगवान प्रसन्न हुए अर्जुन पर, तो उन्होंने अपना विश्व रूप दिखा दिया। लेकिन हम आप ऐसे ही सोचते रहें कि भगवान का विश्व रूप देख लें तो क्या संभव है? नहीं संभव है। तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम भगवान की आराधना ना करें, उपासना ना करें, साधना ना करें। लेकिन हमारी उपासना, साधना, आराधना से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, यह भी संभव नहीं है। भगवान के अंदर इच्छा हो जाएगी कि हाँ इस भक्त को दर्शन दें, तभी वो देंगे। बिना अपनी इच्छा के वे कहीं आते जाते नहीं हैं। चाहे हम लाख पुकारते रहें, लेकिन भगवान तो तभी आएंगे जब उनकी इच्छा होगी।
0: तो लीना जी, ये मैं जहाँ तक समझती हूँ, अगर भक्ति की पराकाष्ठा हो जाए, हमारे देश में भी ऐसे भक्त हुए हैं जिनको साक्षात्कार हुआ है, और ये भक्त ध्रुव, प्रहलाद और भी बड़े भक्त हुए हैं, जो तुलसीदास हो गए, तो इस तरह से जो हमारे भक्त हुए हैं, वो पूर्णतया जब समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के चरणों में, सब कुछ समर्पण, पूरा समर्पण कर देते हैं, बस एक तू ही तू, तू ही तू, वहाँ मैं की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तब ईश्वर को अपने भक्त को साक्षात्कार देना ही पड़ता है
2: जी।
0: तो उसके लिए तो पूर्ण समर्पण चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको, आप चाहते हैं कि दर्शन हो जाएगा प्रभु का, जरूर होगा, उसके लिए लेकिन आपको पूर्ण समर्पण करना होगा। वही मुश्किल है, संसार और समाज में रहते हुए पूर्ण समर्पण करना ही बहुत मुश्किल है।
1: हाँ, हम कुछ ना कुछ बचा ही लेते हैं।
0: हाँ,
1: और बचा लेते हैं तो यहीं पर से परमात्मा अलोप हो जाता है,
0: अलोप, क्योंकि संदेह जी, विकल्प, संकल्प, ये सब जो है हमारे दिमाग में, मन में सब चलते रहते हैं
1: जी,
0: वो निर्मल नहीं हो पाता। और जब तक निर्मल नहीं होगा, तब तक तो स्थिरता आएगी ही नहीं। स्थिरता लाने के लिए अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो लीना जी फिर शिव भक्ति, उनका नाम ही उच्चारण करना
1: जी जी, भक्ति आवश्यक है। भक्ति में कुछ भी हो सकता है, भक्ति में कोई भी असंभव घटना संभव हो सकती है। जैसे प्रहलाद के में असंभव घटना संभव हुई, मीरा ने विषपान किया फिर भी वह जीवित रही, तो ये असंभव घटनाएं थी। तो सारी असंभव घटनाएं संभव हो सकती हैं अगर भक्ति जबरदस्त हो, मतलब कि भगवान के सिवा और कुछ भक्त को याद ही नहीं रहे, जैसे ध्रुव है, हाँ, और बहुत सारे भक्त हैं जिनके विषय में हम कह सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, कहते हैं तारकाक्ष ने जब उनको कहा कि हम जानते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो अब इसी तरह से आप हमारी बुद्धि को हर जन्म में लगाए रहें।

0: देगा। तो हे व्यास जी, और भी जो बालक वृद्ध दानव वहाँ थे, वे भी शिव जी की आज्ञा से जलकर राख हो गए। वहाँ जो स्त्री पुरुष वाहन आदि थे, वे सब भी उस अग्नि से ऐसे जले जैसे कल्प के अंत में संसार जल जाता है। कुछ उत्तम स्त्रियाँ पतियों के गले में बाहें डाली हुई थीं, कुछ सोई हुई थीं, कुछ पति के सहवास से थकी थीं, कोई अजले जग गए थे, किंतु वे भी मोह से मूर्छित हो गए। उस घोर त्रिपुट दाहक अग्नि से कोई छोटी वस्तु भी ऐसी नहीं थी, भले ही वह स्थावर हो या जंगम हो, वे सब जल गईं। केवल अविनाशी विश्वकर्मा में दैत्य उससे बचा। वह दैत्यों का वह देवताओं का विरोधी नहीं था, इसलिए शिव जी के तेज से उसकी रक्षा हो गई। मैं दानव था ना, जो विश्वकर्मा की तरह।
1: अच्छा।
0: तो वो जो है केवल वही बचा, क्योंकि शिव जी से उसका विरोध नहीं था, तो वो बच गया। शिव जी की शरण में आए हुए भक्त की वे विपत्ति में भी रक्षा करते हैं। दैत्य हो या अन्य प्राणी हो, इनका कहीं भी भले बुरे में साथ हो जाता है तो दंड बुरे को ही मिलता है। इसलिए सज्जनों को यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, जिससे भक्ति भाव बढ़े। भक्ति भाव तो सब कुछ संभव है। निंदा करने से विनाश होता है, अतः ऐसा कर्म ना करें। फिर कभी त्रिपुर वास संयोग नहीं होना चाहिए। यदि भाग्यवश ऐसा हो जाए तो अति उत्तम है। जो दैत्य बंधु बांधवों के साथ उस समय भी शिव जी की पूजा करते रहे, वे शिव पूजा के प्रभाव से शिव जी के गणाधीश हो गए। शिव जी ने सब पर कृपा की, और परमात्मा की मुख्यतः कृपा ही होती है। परमात्मा ने कृपा कर दी तो समझिए जीवन सार्थक हो गया। कहते हैं कि अगर उनका एक अंश, उनके चरणों की धूलि का एक अंश भी हमें मिल गया, तो वही हमारे जन्म को कृतार्थ कर देता है। हम कृत कृत्य हो जाते हैं अगर हम परमात्मा से मिल लेते हैं, या परमात्मा के स्मरण में आंखों में आंसू आ जाए, तो समझिए कि आपने बहुत कुछ पा लिया।
1: तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग लीना जी आपने हमारे श्रोताओं को सुनाया। और अब मैं ये आपसे कहूँगी कि चलते चलते भगवान शिव के बारे में चार पंक्तियाँ अवश्य सुनाइए, ताकि वो हमारे जो श्रोतागण हैं वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि लीना जी चार पंक्तियाँ सुनाकर हमें शिव में ही बना देंगी।
0: कहते हैं सारा संसार तेरी खुशबू है, सारा संसार तेरी खुशबू है, हम उस खुशबू की आरजू हैं, हम उस खुशबू की आरजू हैं, जगत की कृत्रिम खुशबू में खो न जाऊं, बस इतनी सी आपसे गुप्तगू है। जगत की कृत्रिम खुशबू में खो न जाऊं, बस इतनी सी गुप्तगू है।
1: ये तो आपने सच्चे भक्त की इच्छा बता दी है, तो हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए, हर एक भक्त को यही प्रयत्न करना चाहिए कि वह संसार में इतना ना रम जाए कि वो ईश्वर को ही भूल जाए। यही इसमें दोस्तों प्रार्थना की गई है। तो लीना जी, हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मंजू जी।
1: दोस्तों, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब ये एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, हम इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते। अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे, मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गण हम तुम पे दिल्ली सार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

0: रेडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
1: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान।
1: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
2: खुद के मन में क्या है
1: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी

वेलकम बैक रेडियो मैनोविनेट्स नाउ 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूं आपके पास. और बातें हमारी चल रही हैं तो अभी फिलहाल सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, वो है दिल धड़कने दो. और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, तो हेल्थ और फिटनेस की होंगी बहुत सारी बातें, आपको बस इसी तरह से जुड़े रहना है और ढेर सारे मैसेज करते रहने हैं. जी हाँ, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं और प्रोग्राम की देखिए जो अच्छा आपको लगता है ये भी मुझे बता रहे हैं. तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद. और इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको बताती हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारा सेगमेंट है दिल धड़कने दो. और दिल धड़कने दो में अभी फिलहाल बात हो रही है इस गर्मी के मौसम की. जी हाँ, देखिए गर्मी का ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ कई सारी बीमारियाँ लेकर के आता है. ऐसे में अपने आप को, खुद को ठीक रखना ज़रूरी है. अब देखिए इन दिनों क्या होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी कम रहती है और पेट की गड़बड़ी आम हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं पूरे सीज़न बिना डॉक्टर के आप इसे बिता दें पूरा सीज़न और आपकी इम्यूनिटी भी दमदार बनी रहे, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा. हर सुबह खाली पेट आपको जो है कुछ फ्रूट्स का या कुछ फल का से सेवन जो है वो करना है. आप देखिए क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपकी सेहत बनी रहती है, इम्यूनिटी बनी रहती है, और इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और आपको बता दूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो लोकल फ्रूट है, आपको आसानी से सीजनल फ्रूट आपको मिल जाएंगे. और ऐसा भी नहीं कि आप बाद में कहें कि साक्षी ये तो फ्रूट है ही नहीं, ये तो इतने महंगे हैं. महंगे भी नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसीलिए आप तक ये सारी जानकारी लेकर के आती हूँ. चलिए बताऊँगी इसके बारे में कौन से ये फ्रूट्स हैं, लेकिन फिलहाल ले दी हुई छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मारे ब्रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल सेगमेंट दिल धड़कने दो में हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें। जी हाँ, सेगमेंट दिल धड़कने दो जो कि आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें हम करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बातें, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बातें। जी हाँ, अब बात मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे सीजनल फूड्स की, जिससे आप खाली पेट लेते हैं तो आप जो है भाई इस गर्मी के मौसम में आपकी सेहत बनी रहेगी। तो अगर आप सुबह सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं पपीता, तो भाई सुबह की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी होगी। समझ लीजिए कि आपका पाचन जो तंत्र है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और इस गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, देखिए पपीते में पाया जाने वाला जो पेपेन एंजाइम होता है, ये ना सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि अगर आपको एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई भी, अगर देखिए आपको रिलेटेड कोई ब्लोटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सब में राहत दिलाता है। अब बस इसे खाना कैसे है, आपको सुबह एक कटोरी ताज़ा पपीता जो है खाली पेट खा लेना है और बस देखिए कमाल का जादू जो है ये फिर होने लगेगा। इसी के साथ साथ अगर आप गर्मियों में ये जो गर्मियों का राजा फल है ये खाते हैं, तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ मैं बात आम की नहीं कर रही हूँ, राजा फल इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि फलों का राजा तो वैसे आम है, नो डाउट आम है, लेकिन भाई जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको मिलता है वो है वाटरमेलन। जी हाँ, यानी कि तरबूज, जिसमें करीबन कुछ 92% तक पानी मिलता है हमारी बॉडी को, और जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में लू से बचाता है, इसके खतरे से हमें बचाता है। लेकिन अगर आप रोज तरबूज खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो टेम्परेचर है, वो बैलेंस में बिल्कुल रहेगा। और इसे बस क्या करना है, सुबह खाली पेट एक कटोरी आपको तरबूज जो है वो खाना है। लेकिन याद रखें, खाली पेट दूध या पानी आप तुरंत बिल्कुल भी ना लें जब आप तरबूज खाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि पानी की तो देखिए जरूरत भी नहीं होती, तो दूध भी मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, बस तरबूज खाना है और बस हो गया। अब इसमें आपको 92% तक पानी जो है ये मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ बात करें अब देखिए फलों के राजा की, जो मैं कह रही थी, और वो है आम। आम जो है इसे फलों का राजा तो कहा ही जाता है, जो गर्मियों में इसका स्वाद जो है देखिए हर एक को पसंद आता है, हर कोई आम खाना पसंद करता है और ये कई सारे गुणों से भरपूर भी है। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको भी चाहिए ना एनर्जी, आम खाना शुरू कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, पका हुआ आम जो है वो लेना है। बस आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे सीमित मात्रा में खाना है, क्योंकि ये शुगर जो है इसमें थोड़ी हाई होती है, इसलिए आपको कम ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए आम में थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो आपकी बॉडी पे जो है देखिए आपको हो सकता है कि कई लोगों को ये समस्या रहती है कि अगर आम ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको जो है थोड़े दाने हो जाते हैं या फिर उनको जो है पेट खराब होने की समस्या रहती है। तो बहुत ज़्यादा मत खाइए, कम इसकी जो क्वांटिटी है ना उसमें खाइए, तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं पहुँचेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। चलिए कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी जो कि खाली पेट आपको ले लेने चाहिए। कौन से हैं फिलहाल बताती हूँ कुछ ही देर में, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए। ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. फिलहाल चल रहा है हमारा सेगमेंट दिल धड़कने दो. जी हाँ, दिल धड़कने दो मैं आपसे बातें करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ फ्रूट्स के बारे में आपको बता रही हूँ. ये जो लोकल सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं ना, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और गर्मी में तो ज़रूरी भी है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो मज़बूत बनी रहे. क्योंकि तो ये बहुत सारी बीमारियाँ ना अपने चपेट में ले लेती है, और अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये जो बीमारी है आपको अपने पेट में बिल्कुल भी ना ले, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट अगर आप कुछ फ्रूट्स लेते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, जैसे कि पपीता, तरबूज. साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आम की, तो ये भी अच्छा है. लेकिन अब बात आती है दूसरे फ्रूट की. जो हमारा जो है अगला फ्रूट है वो है मेलन. जी हाँ, खरबूजा. खरबूजा भी तरबूज की तरह ही शरीर को ठंडक रखता है, ठंडे में रखता है आपके शरीर को. साथ ही पानी की कमी से बचाने में भी काफ़ी मदद करता है. इसमें पोटाशियम है, फाइबर है, विटामिन सी है, और इसमें जो है आपकी बॉडी को देखिए जो एनर्जी देने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी ना सिर्फ बॉडी के लिए हेल्पफुल है बल्कि आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाते हैं. कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं. अब इसे खाना कैसे? सुबह नाश्ते से पहले आप एक कटोरी खरबूजा जरूर खाएं. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सारे फ्रूट्स को एक साथ ना खाएं. एक दिन आपने जो है खरबूजा खाया, एक दिन तरबूज खाया, एक दिन आम खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, एक दिन आपने जो है पपीता खाया, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं. अब अगले फ्रूट की बात आती है और वो है हम सभी का फेवरेट सेब. जी हाँ, देखिए सेब जो है इसको अक्सर सर्दियों का फल माना जाता है, लेकिन गर्मियों में भी इसका असर जो है वो शानदार है. इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में होने वाली थकान और कमजोरी से बचाता है. और वैसे भी कहते हैं ना, an apple a day keeps doctor away. इसीलिए अगर आपको डॉक्टर से रहना है दूर, अपनी रखनी है इम्यूनिटी मजबूत, तो खाइए ढेर सारा सेब, ढेर सारा एप्पल, ताकि आपकी सेहत बनी रहे. सुबह खाली पेट आप एक ताज़ा सेब ज़रूर खाइए, छिलके समय खाइए ताकि फाइबर मिले. जो बहुत सारे लोग हैं जो छिलका पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए छिलके के साथ खाने के लिए, तो उससे फाइबर आपको मिलेगा. नहीं तो मर्जी वैसे आपकी है, खा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के साथ साथ कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि फलों को आपको खाली पेट खाने से देखिए उनके पोषक तत्व जो है वो जल्दी और बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्जॉर्व होते हैं. तो इसी के साथ आपको पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट खाना है. इसी के साथ साथ एक ही फल रोज आपको खाना है. आपको जो है बारी बारी हर दिन आप जो है अपना फल जो है वो बदलते रहिए, सारे मिक्स मत कीजिए, एक एक करके खाइए. फलों को आप काट कर देर तक बिल्कुल भी ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है. ताज़े फल ही डाइट में आप शामिल कीजिए, जो आप हाथ के हाथ उसको काट के खाएं. फल खाने से के तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, कम से कम 30 मिनट के गैप के बाद ही आपको पीना है पानी, इससे पहले आपको पानी नहीं पीना है. चलिए, ये तो रही हमारी हेल्थ और फिटनेस की बहुत सारी बातें, और इसी के साथ देखिए आप होंगे और भी बहुत सारी बातें, अपने प्रोग्राम तो लेकर आ ही जाती हूँ, लेकिन अब करते हैं आगे बातें. स्ट्रेच प्लीज हमारा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में मैं करती हूँ आपके साथ मेडिटेशन, योगा की बातें. जी हाँ, अब देखिए हमने अपनी सेहत का ख्याल तो रख लिया, हमने ये तो पता कर लिया ना कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी जो है अच्छी है, बनी हुई है, और आप अच्छे से अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करें. तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों का ख्याल रखना और योगा करना, मेडिटेशन करना. उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या कौन कौन से ऐसे योगा आसन है जो आपके लिए अच्छे हैं, बताऊँगी कुछ ही देर में. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी। अब देखिए, बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जो है स्ट्रेच प्लीज। चलिए, इस सेगमेंट में बातें हमारी चलती हैं आपको योगा के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, योगा जो है ये एक शब्द नहीं है, एक जिंदगी का तरीका है। ये सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट या स्ट्रेच करना इसमें नहीं होता है, ये अपने मन को, अपनी सांसों को और अपनी सोल को एक रिदम में लाना होता है। जब हम योगा करते हैं, हम सिर्फ हेल्दी नहीं बनते हैं, बल्कि हम खुद को और ज़्यादा अपने करीब लाते हैं, स्ट्रेस से दूर जाते हैं और सुकून के पास चले जाते हैं। योगा का मतलब है जुड़ना, जी हाँ, अपने आप से, अपनी एनर्जी से और इस पूरे यूनिवर्स से, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या फिर अनुलोम विलोम। हर पोस्चर के पीछे एक पर्पस होता है, फिट बॉडी, काम माइंड और पीसफुल सोल। तो बस रोज आप कुछ मिनट अपने निकालिए, अपने जिंदगी के, आप कुछ पूरे दिन के एक आपको कुछ मिनट निकालने हैं और आपका जो है, देखिए ये ध्यान जो है आपको केंद्रित करना है और उसके बाद आपको शुरू करना है अपना योग, क्योंकि योग से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बस आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और आप देखेंगे, देखिए आपकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेगी, एक बैलेंस जो है आ जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे बन जाएगी। तो चलिए, योग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, योगा इम्पॉर्टेंट है, पोस्चर कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, योगा आसन कितने ज़रूरी है, कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ ज़रूर करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों. बहुत सारी बातों के साथ मैं आ जाती हूँ यहाँ पर आपके पास. और प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में टाइम चल रहा है हमारे खूबसूरत से सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज का, जिसमें बात करती हूँ योगा के बारे में. जी हाँ, देखिए योगा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा जो है एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. अब बात करते हैं हम एक ऐसे योगिक प्रैक्टिस की जिसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड हेल्थ मैप पर अपने आप को प्लेस किया है. एक ऐसी योगिक ये प्रैक्टिस है. जी हाँ, ये देखिए ऐसा ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें. इससे जो है आपकी एनर्जी जो है बरकरार रहती है. और आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन की. सूर्य नमस्कार एक पूरा बॉडी वर्कआउट है, बिना किसी मशीन के इसे किया जाता है. जी हाँ, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती. 12 स्टेप्स में ये जो योगिक प्रैक्टिस है यानी कि सूर्य नमस्कार जो है ये डिवाइडेड है, और साथ ही ये आसन जो है ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है बल्कि आपके माइंड ब्रेन साथ ही आपके ब्रेथ को और सोल को भी एक बैलेंस में लाता है. जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब किस तरह से इसे किया जाता है, यानी कि इसके कौन कौन से जो है. देखिए इसमें अलग अलग, क्योंकि ये डिवाइडेड है 12 अलग अलग पोजेज में ये डिवाइडेड है. तो अब बात करते हैं, क्योंकि स्टेप्स जो है इसके 12 स्टेप है. पहला स्टेप है प्राणायाम यानी कि प्रेयर पोज. सीधे खड़े हो जाएं आप पहले और दोनों हाथों को जोड़ लें. अपने दोनों हाथ जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने होने चाहिए. ये आता है पहला स्टेप जो है प्राणायामासन. और इसके बाद आता है अगला यानी कि स्टेप जो है वो है हस्ताउत्सानासन, यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथ जो है ऊपर आपको उठाने हैं और पीछे थोड़ा सा आपको बेंड करना है. आपकी जो कमर है वो हल्की सी बेंड होगी. अब आपको अपने हाथों को रेज करना है और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है. ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप. तीसरा स्टेप आता है देखिए आपका जो है पादहस्तासन. अब इसमें होता है हैंड टू फुट पोज यानी कि सांस आपको छोड़नी है, आगे झुकना है और हाथ पैरों के पास लेके जानी है. इससे आपकी बॉडी जो है एक अच्छे पॉस्चर मेंटेन करती है. और धीरे धीरे, मैं ये मानती हूँ कि एकदम से आप जो है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जिनकी कमर में दर्द रहता है या जिनको कोई भी ऐसी दिक्कत है कमर से जुड़ी हुई, या फिर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में अभी दिक्कत आ रही, तो शुरुआत में ये दिक्कत रहती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे करने लगेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे. अब इसके बाद आता है अगला स्टेप जो कि है चौथा स्टेप, और वो है अश्वसंचालनासन. जी हाँ, इसको करने के लिए आपको अपने राइट लेग आपको पीछे लेके जा

करना है, लेफ्ट लेग आपको फोल्ड करना है और चेस्ट जो है आपको ऊपर रखनी है। और ये है हमारा चौथा पोज। और पांचवा पोज आ जाता है प्लैंक पोज, यानी कि डंडा आसन। दोनों पैर पीछे आपको ले जाने हैं, सीधा बॉडी प्लैंक जो है ये बन जाए, इस तरीके से आपको ये पोज करना है। जिसके बाद सीधा सीधा आते हैं हम अगले हमारे स्टेप पे, जो है आपका अष्टांग नमस्कार। जी हाँ, इसमें क्या करना है आपको, चेस्ट, चिन और दोनों घुटने जमीन पर आपके 8 पॉइंट टच करते हैं। ये है हमारा अगला आसन। इसके बाद आ जाता है कोबरा पोज, यानी कि भुजंग आसन। इसके बारे में चलिए आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना। और साथ ही अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में, योगासन की। और आपको बता रही हूँ 12 स्टेप जो कि आते हैं सूर्य नमस्कार में। बात कर रहे हैं 7वें स्टेप की, जो है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। सांस लेते हुए आपको चेस्ट ऊपर उठानी है और पहले आपको लेट जाना है, उसके बाद जमीन पे, उसके बाद आपको जो है आपको चेस्ट ऊपर लेके जानी है और हाथ के सपोर्ट से आपको इस तरह से करना है। तो कोबरा पोज जो है ये मेंटेन होता है। इसके बाद आता है माउंटेन पोज, यानी कि आपका जो है वो आता है पर्वतासन, यानी कि हिप्स ऊपर हील नीचे, इन्वर्टेड वी शेप आपको इससे बनानी होती है। जिसके बाद अश्वसंचालासन एक बार फिर से हम करते हैं 9वें स्टेप में। लेग आपको लेफ्ट लेग, पहले जो है आपने देखा होगा कि हमने राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग की बारी, आगे लेके जाना है और उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो पीछे होगा, लेफ्ट आगे होगा। और सेम जैसे कि हमने 4th स्टेप में किया था कि आपको ये फोल्ड करना है, चेस्ट ऊपर की तरफ आपको रखनी है। और ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो अश्वसंचालासन है इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से आ जाता है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आसन, और वो है पादहस्तासन। दोनों पैर साथ आपको लेके आने हैं और उसके बाद झुक जाना है। ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपकी फुल बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 11वें स्टेप में हम आते हैं हत्सा उत्सनासन पे, और सांस लेते हुए आपको फिर से दोबारा से खड़े होना है और हाथ को ऊपर लेके जाने हैं। जिसके बाद आपके जो 1st स्टेप है वो एक बार फिर से आता है, यानी कि जो प्राणायाम आसन है वो फिर से आता है, फिर से आपको हाथ जोड़ने हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहेंगे और साथ ही ग्रेटफुल भाव के साथ आपको जो है ये जो पूरा सूर्य नमस्कार है इसे ख़त्म करना है। ये सिर्फ एक, देखिए एक पूरा जो स्टेप से बनता है ना, ये पूरा ये 12 स्टेप के साथ एक सूर्य नमस्कार बनता है। और इसी में अगर आप सिर्फ ये एक आसन कर लेते हैं ना, मानो जैसे आपने पूरे योगासन जो है आपने कर लिए हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ तो ये बॉडी का एक कम्प्लीट वर्कआउट है। लेग्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब जो है इंगेज होता है। इससे आपकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, पोस्चर और साथ ही कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। सांस के फ्लो के साथ मूवमेंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लंग्स के लिए और हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और जिनको बॉडी टोन करनी है ना अपनी, यानी कि टोनिंग आपको करनी है, आपकी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माइंड को ये शांति और क्लैरिटी देता है, स्ट्रेस से दूर करता है और एनर्जी देता है भरपूर मात्रा में। आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाता है और इम्यूनिटी देता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका दिन पॉजिटिव रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब टाइम जो है ये हो चला है अगले सेगमेंट का। कौन सा है ये अगला सेगमेंट बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कमाल के गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज के सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ हर दिन, यानी कि डेली आपके साथ 2 घंटे यहाँ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं क्योंकि अब हमारे अगले सेगमेंट का टाइम है। सेगमेंट का

ही एक विजन है जिससे हमारा देश एक फिट, एक्टिव और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, ये लॉन्च हुआ था ईयर 2018 में। इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, स्पोर्ट्स भी एक प्रॉमिसिंग करियर बन चुका है, पर कई टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, कोचिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। जी हाँ, खेलो इंडिया का मेन गोल है ग्रास रूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना और स्पोर्ट उनको जो है खेलने के लिए सपोर्ट करना। अब होता यह है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर एक यंग एथलीट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना टैलेंट दिखा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे भी किए जाते हैं, तो एनुअल खेलो इंडिया गेम्स स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल गेम्स इनको कहा गया है। इनका ये गेम्स होते हैं जहां देश भर के टैलेंटेड प्लेयर्स कम्पीट करने आते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सिलेक्टेड एथलीट्स को कुछ 5 लाख रुपए पर ईयर तक दिए जाते हैं एज अ स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि 8 साल तक उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट्स के लिए भी दिया जाता है। जिन बच्चों में टैलेंट है वो देखिए, टैलेंट जो है कभी छुपता नहीं है, और सरकार इसीलिए ये मूवमेंट को लेके आई है ताकि जो बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बात करें देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छोटी सिटीज और टाउन में मॉडर्न स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं और ज्यादा। इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस टैलेंटेड जो स्काउटिंग है और साथ ही परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स से एथलीट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ मेडल जीतने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसमें हर बच्चा स्पोर्ट्स को सीरियसली जरूर लेता है। तो अगर आप में भी है ये बात तो आप भी जुड़ जाइए इस मूवमेंट के साथ। चलिए फिलहाल आज हमने जाना है कि ये जो खेलो इंडिया मूवमेंट है ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और इसे किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और क्यों देना चाहिए और क्यों जरूरी है इसके साथ जुड़ना, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, हम बात करें हमारे सेगमेंट पावर प्ले विद आर जे साक्षी के। इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब जी हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्कूल लेवल के बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के, कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन ना रहे बल्कि देश के लिए वो देखिए आगे बढ़ते रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो इस गैप को पूरा करने के लिए, कि उनको सही कोचिंग मिले, सही इक्विपमेंट मिले, सही जगह खेलने के लिए, ताकि वो जो है अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सके और ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीख सके। इसीलिए खेलो जो है मूवमेंट जो है वो लेकर आई। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये 29 अगस्त 2019 यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसे लॉन्च किया गया और ये इनिशिएट किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज के देखिए जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, इसमें फिटनेस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है और इसी थॉट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फिट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट देखिए, इस मूवमेंट के लिए पीएम मोदी ने खुद कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया का मकसद है हर भारतीय को हेल्थ और वेलनेस के प्रति अवेयर बनाना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग या कोई रिटायर अगर हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि खेल कूद वाली बात है तो सिर्फ बच्चों को ही करना चाहिए, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जो आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को फिटनेस जो है ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए। और ये नेसेसिटी हमारी, कोई ये जो है लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत जो है अब बन चुकी है। अब बात करें इस मूवमेंट के गोल की, तो देखिए फिजिकल फिटनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रोज़ाना एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी डेली हैबिट्स को इंकरेज करना, मेंटल वेलनेस के प्रति थोड़ा सा और सजग होना यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्दी रूटीन प्रमोट किए जाते हैं इसी मूवमेंट के अंदर। इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और मिनिस्ट्रीज सभी को फिट इंडिया सर्टिफाइड जो है बनाया जा रहा है, जहां रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज कंपलसरी कर दी गई हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप और फिटनेस स्कोर ट्रैकर जैसे टूल्स भी जो है वो लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाए रखते हैं। आज हर स्कूल में फिटनेस वीक्स और हर ऑफिस में वेलनेस ब्रेक और साथ ही हर मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक क्लब शुरू हो गए हैं। फिट इंडिया अब एक मूवमेंट से ज्यादा एक लाइफस्टाइल जो है ये बन चुका है। जब हर गली में फुटबॉल घूमेगा, जब हर बच्चा योगा करेगा, जब हर स्कूल में एक खिलाड़ी पैदा होगा, तभी तो इंडिया ट्रूली बनेगा फिट भी और हिट भी। चलिए, इसी के साथ ये तो बात रही हमारे आज के सेगमेंट में। देखिए स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं और ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इस मूवमेंट के बारे में पता होना स्पोर्ट्स के बारे में। और क्योंकि देखिए यही जो स्पोर्ट्स है ना, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल ये दोनों ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खेल कूद करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपने फोकस उस पर भी रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो यही एक करियर ऑप्शन है, बल्कि अब करियर ऑप्शन आपका स्पोर्ट्स में भी है। और इसीलिए सरकार जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स लेकर के आ रही है आपके पास, ताकि आप फिट भी रहे और हिट भी। चलिए इसी के साथ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आगे और भी होंगी बहुत सारी बातें, एक बहुत ही खास सेगमेंट जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ और सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। तो चलिए जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स रखिए तैयार, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सवाल, कुछ सवालों के जवाब आप देंगे और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक है इसमें, यानी कि कैसे सवाल होने वाले हैं और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। बात करेंगे इस पर, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं और अभी बात करें हमारे अगले सेगमेंट की, जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का। जी हाँ, बात कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद की। और इस सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और आपको दे रही है कुछ जवाब। और जी हाँ, जिसके सवालों के जवाब सही रहे और पूरे महीने आप कंसिस्टेंट होकर जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, तो देखिए मैं आपको बुलाने वाली हूँ रेडियो मानव रचना और आपको मौका मिलेगा यहाँ रह के मेरे साथ लाइव बातचीत करने का और सभी आरजे से मिलने का भी। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आज का क्या है पहला सवाल ये आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भाई रेडी होने का भी वक्त देना होगा, बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि साक्षी पहले बता दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब शुरू होने वाला है हमारे सेगमेंट का पहला सवाल आने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और देखिए, अब मैं आपके साथ रहती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोज़ाना, और होती हैं हमारी बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं ना अब ये सेगमेंट्स लेकर आती हूँ आपके लिए।

जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं दिल धड़कने दो, ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। और उसके बाद आता है स्ट्रेच प्लीज सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। और फिर आ जाता है पावर प्ले विद आरजे साक्षी जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा आखिरी जो कि है कौन बनेगा सेहतमंद, और इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज आपसे, सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ मैं और जवाब आपको देने होते हैं फटाफट, और जो देगा सही जवाब हर महीने कंसिस्टेंट होके और बिल्कुल सही जवाब देगा उसको मिलेगा मौका यहाँ मेरे साथ लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का और साथ ही सभी आरजे से मिलने का भी। इसी के साथ साथ फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, पहला सवाल आपसे पूछती हूँ और बड़ा ही वैसे तो आसान सा सवाल है लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा आप और इसका जवाब जो है वो दीजिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे भी देंगे। पहेली है बड़ी आसान सी और पहेली है रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। चलिए ये है आपकी पहेली और इसका देना है आपको जवाब, और जल्दी से झटपट से दीजिए जवाब क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार मुझे है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं बड़ी आसान सी आज मैंने पहेली पूछी है, आपको फटाफट से जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। इसी के साथ एक बार फिर से पहेली मैं दोहरा देती हूँ, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देंगे आप और उसके बाद आपको बताने वाली हूं क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में करते हैं हम बहुत सारी बातें. फिलहाल बात करें हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में. एक बहुत ही खास पहेली मैंने आपसे पूछी है, बड़ी आसान सी पहेली, मतलब इस पहेली में ना जवाब है. अच्छा मैं आपको बता दूँ कि एक बार पहेली मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद आप देखिए जल्दी जल्दी जो जवाब आया ना, जिसका सबसे पहले जवाब आया वो भी आपको जरूर बताऊंगी. पहेली है, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं. तो देखिए इसका जो जवाब है ना इसी पहेली के अंदर है. वही देखिए प्यास जो है ये बहुत ज्यादा हमें लगती है गर्मी के इस मौसम में, और आपको भी ये पहेली सुन के तो लगी गई होगी. जी हाँ, बॉडी का यानी कि हमारे शरीर का 70% पानी जो है ना यही हमारी बॉडी में होता है. जवाब है पानी जो कि है इसका सही जवाब. और जिस जिसने मुझे जवाब दिए हैं, देखिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझे फटाफट से जवाब भेजते हैं. अब देखिए किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है. किसी ने लिख के दिया है कि हमारी बॉडी में 70% कौन होता है, तो किसी ने लिख के दिया है कि पानी होता है. तो भाई जिस जिसने पानी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है. और साथ ही साथ जो सबसे पहला जवाब जिसने मुझे दिया है वो और कोई नहीं हमारी लिसनर है. जी हाँ, जिनका नाम है मोनिका जी. मोनिका जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बहुत तेजी से आपने दिया है जवाब. देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको अपनी उंगलियां जो है ये चलानी होगी ताकि आप फटाफट से मेरा सवालों का जो है मेरे जवाब आप दे सके, पहेली का जवाब दे सके. तो चलिए कौन बनेगा सेहतमंद में जो हमने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दिया हमारी लिसनर मोनिका जी ने. चलिए एक और आपसे पहेली पूछने वाली हूँ और आपको बता दूँ, देखिए पानी की हम बात करें, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए. और आपको बता दूँ हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. और ऐसे में अगर आप सेहतमंद रहेंगे ना तो देखिए आप ही को फ़ायदा है इससे, और पानी पीते रहना है. और ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप ना सिर्फ लिक्विड डाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पानी पीते रहे, सिर्फ पानी ही पानी आपको पीना है. नारियल पानी भी पी सकते हैं आप, जूस कोई पी सकते हैं. लिक्विड डाइट इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, लेकिन जो पानी काम करता है ना वो और कोई नहीं करता. ऐसा होता है ना कि हमें जब प्यास लगती है तो हमारी जो प्यास है सिर्फ और सिर्फ पानी ही बुझा सकते हैं. आप कितना भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, आप कोई भी जूस ले लीजिए, लेकिन जो पानी से हमें सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. पानी की ज़रूरत सभी को होती है, पानी ज़रूरी भी है. चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर रहती हूँ आपके पास 9 बजे तक रोजाना, यानी कि अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ मैं 7 से 9 बजे तक। बहुत सारी हो रही है हमारी बातें। सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ पहेलियों के जवाब। और देखिए आप सही सही जवाब तो दे रहे हैं। अब अगली पहेली का वक्त हो गया है और यहाँ पर अगली हमारी पहेली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से मेरा नाता, बताओ क्या हूँ मैं कहलाता। ये है ये पहेली और फटाफट से आपको इसका जवाब जो है वो देना है। और आपको बता दूं, मैं एक बार फिर से पहेली दोहरा देती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि साक्षी ने पहेली तो बताई लेकिन क्या बताई, हमें याद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि एकदम से हम भूल जाते हैं ना, कभी एकदम से हम याद करते हैं अरे क्या था, फिर एकदम से भूल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूं आपके लिए। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। अब आपको इस पहेली का देना है जवाब। मैं कर रही हूँ आपके जवाबों का इंतजार, फटाफट से दीजिए जवाब और अभी फिलहाल कहीं मत जाइए। और नंबर एक बार बता देती हूँ आपको फिर से, 8010781078। इस नंबर पे आपको देने हैं जवाब, जो सबसे पहले सटीक जवाब देते हैं देखते कौन है वो लोग। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनेव रेस्ट्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ. और आपको बता दूँ, आपके लिए कमाल के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी लेकर के आती हूँ और उसमें हम करते हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक पहेली जो है मैंने आपसे पूछी है, इसका जवाब जिसने सही दिया, सटीक दिया और रोजाना जो जवाब देगा एक महीने तक रेगुलर रहकर कंसिस्टेंट रहकर, उसको मौका मिलेगा हमारे रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आने का और लाइव बातचीत करने का और हमारे सभी आरजे से भी मिलने का. तो चलिए आप दीजिए पहेली का जवाब. एक बार फिर से पहेली जो है मैं दोहरा देती हूँ. सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता. जी हाँ, इसका जवाब आपको देना था और इसका सबसे पहले जो जवाब दिया है हमारे लिसनर बबलू जी ने जवाब दिया है. जी हाँ, बहुत सारे जवाब यहाँ पर मेरे पास आए हैं लेकिन जो सबसे पहले सटीक सही जवाब आया है वो आया है हमारे लिसनर बबलू जी का, जिन्होंने लिखा है कि ये जो है इसका नाम है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज. बिल्कुल सही जवाब है आपका. ठीक है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी है एक्सरसाइज करना. ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए. ये इनफैक्ट आपकी एक अच्छी हैबिट है. अगर ये इनफैक्ट एक अच्छी हैबिट है अगर आप इसे रोज़ाना करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है ये बदल जाती है. चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनेवरेश 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनो रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, रोजाना सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ बातें आपसे करती हूँ बहुत सारी। अच्छा, अभी ना मैंने आपको पहली पूछी और कई सारे जवाब भी आपके आए हैं और आपको इस तरह से पार्टिसिपेट करना, देखिए यही इम्पॉर्टेंट है कि हम जहाँ भी हम कुछ कर रहे हैं ना, मतलब एक पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए और साथ ही इससे हमें खुद भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत सारी हमने बातें करी हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में हमने बहुत सारी जानकारी जो है मैंने आपको दी है और आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाते हैं आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि अब आने वाली है RJ दीक्षा जो करेंगी आपसे बहुत सारी बातें। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: This

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में, या फिर कहें कुछ ऐसी सुविधाओं के बारे में जो हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन जिंदगी भी ऐसी कि इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ यानी आपकी सेहत। कोई भी इंसान अच्छी सेहत के बिना अपनी जिंदगी को अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन सेहत को आप सही से एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप इसका ख्याल रखें या फिर कोई डॉक्टर्स या मेडिकल सपोर्ट आपको अच्छे से मिल रहा हो। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि जो मेडिकल सपोर्ट आप चाहते हैं वो कई बार आपके बजट से बाहर निकल जाता है। जी हाँ, आज हम ऐसी ही सुविधा या फिर एक ऐसी ही संस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए मेडिकल सुविधाएं लेकर आया है, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पर फीस चार्ज की जाती है वो इतनी कम है कि आप अपनी सेहत का ख्याल खुद के लिए तो रख ही सकते हैं, बाकी लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बिना ज्यादा खर्च के अपनी हेल्थ को एकदम परफेक्ट रखें। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन जो औरों के लिए जीते हैं वो ही जिंदगी को खुल के जी पाते हैं और दुनिया के साथ अच्छे से रह पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जिन्होंने कोविड की परिस्थिति के बाद एक ऐसे हॉस्पिटल की शुरुआत करी जो आज ना केवल मिडिल क्लास बल्कि कुछ ऐसे लोगों तक हेल्थ की सुविधाएं पहुंचा रहा है जो बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले पाते।

0: या फिर अगर ले पाते हैं तो शायद उनका बजट इतना नहीं होता। गंभीर समस्या जब होती है तो सालों साल डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, बड़ी सर्जरीज नहीं करा पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते। पर भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जिन्होंने कोविड के तुरंत बाद एक ऐसे अस्पताल की शुरुआत करी जो आज लाखों लोगों की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आ रहा है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। हम बात करें हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र की, और आज इस हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ की बहुत सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के चेयरमैन राजकुमार अग्रवाल जी, जो कि एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत सारी सोशल गतिविधियों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे, ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर हेल्थ रिलेटेड कैंप्स और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ये भारत विकास परिषद से भी बहुत सारे वर्षों से जुड़े हुए हैं। राजकुमार अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना।
1: धन्यवाद आपका।
0: तो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के बारे में बात करें, इससे पहले मैं चाहूंगी आप भारत विकास परिषद के बारे में बताएं, क्योंकि कल्चर को जोड़ने का एक बहुत बड़ा योगदान भारत विकास परिषद को जाता है। हम जब स्टूडेंट्स होते थे तब भी हम भारत विकास के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में जाते थे, परफॉर्मेंसेस होती थी, देश के बारे में जानकारी मिलती थी यहाँ पर जाकर। सो फिर ये मेडिकल फील्ड में इस तरीके से सपोर्ट करा है, तो थोड़ा संस्था के बारे में हम बताइए, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल के बारे में आपसे जानेंगे।
1: आपने बहुत अच्छी बात पूछी। सबसे पहले भारत विकास परिषद के बारे में मैं आपको बताऊं, भारत विकास परिषद 1963 से दिल्ली में शुरू हुआ, अब हम आज 2026 में हैं। तो भारत विकास परिषद में लगभग 63 साल से ये संस्था पूरे देश में काम कर रही है। भारत विकास परिषद के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो डॉक्टर सूरज प्रकाश जी थे। तो डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के नाम पे ये डॉक्टर जो फरीदाबाद में जो हमने हॉस्पिटल खोला है, जिसका नाम डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र रखा है। भारत विकास परिषद में दो मेन पिलर्स हैं जिसमें हम काम करते हैं पूरे देश में, एक सेवा और एक संस्कार। तो ये जो हॉस्पिटल जो पूरे देश में चल रहे हैं वो सेवा के माध्यम से चल रहे हैं, और एक संस्कार, जैसे कि आपने बताया कि आपके स्कूल टाइम में कहीं ना कहीं आप भारत विकास परिषद के स्कूल के कार्यक्रम में या इवेंट में आप गए होंगे, तो संस्कार के पूरे कार्यक्रम हमारे पूरे देश में और पूरे वर्ष चलते रहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण जो कड़ी है, सेवा और संस्कार, जिसकी आज समाज को ज़रूरत है, इस दोनों कामों को लेकर भारत विकास परिषद पिछले 63 वर्ष से काम कर रहा है।
0: जी, 63 वर्षों से देश की संस्कृति को जोड़ने का काम और सेहत को भी बेहतर रखने का काम। सो बहुत सारी बातें चल रही हैं राजकुमार अग्रवाल जी से, जो कि चेयरमैन हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र फरीदाबाद के। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और साथ ही अगर ये बातचीत आपको अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा हमारी ऐप के माध्यम से। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको राजकुमार अग्रवाल जी के साथ ये सारी वार्तालाप मिल जाएगी, जिसको आप कभी भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में दीक्षा आपके साथ बातचीत चल रही है आज एक ऐसे अस्पताल के बारे में जहां आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो बेसिक टेस्ट हो या फिर फिजियोथेरेपी हो, न्यूरोपैथी हो या फिर किसी भी तरीके की सर्जरी हो या फिर कीमोथेरेपी, और यहाँ पर आपको और भी बहुत अहम सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन सबसे खास बात है ये सारी सुविधाएं बहुत ही अफोर्डेबल हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं। तो आइए जानते हैं इस अस्पताल के बारे में जो कि है डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र, और जान रहे हैं आज हम इसके बारे में श्री राजकुमार अग्रवाल जी से जो कि प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं। ये हम सब जानते हैं राजकुमार जी के आज के समय में बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हर एक घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दवाइयों का एक सिलसिला चलता रहता है। बड़े बुजुर्ग बच्चों से लेकर हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ख़ास तौर पर से बढ़ता हुआ पोल्यूशन और कोविड के बाद की परिस्थिति बहुत ज़्यादा जो है वो चिंताजनक है। और दिल्ली NCR में तो आप मतलब अगर आंकड़े देखना चाहें तो AQI से ही पता चल जाएगा कितने लोग बीमार होते हैं। यहाँ पर मैं आपसे सर जानना चाहूँगी डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र की शुरुआत किस तरीके से हुई।
1: ये हम सभी जानते हैं कि दो क्षेत्र ऐसा है पूरे देश में मुझे लगता है कि जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसमें हम सबको बहुत काम करने की आवश्यकता है, जो कि आम आदमी के अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनकी पॉकेट से बाहर की बात हो गई है। तो भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता जो पिछले 30 वर्षों से फरीदाबाद में काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा मन बनाया कि हमें सेवा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो क्यों ना हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो आम लोगों की रीच में हो। रीच का मतलब खाली पहुँच नहीं होती, उनके जो पॉकेट को देखते हुए एक हॉस्पिटल हमें ऐसा खड़ा करना चाहिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हम लोगों की सेवा कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का काम शुरू हुआ। 2018 में हमने जमीन लेकर 2020 में इसको बनाना शुरू किया। जब कोरोना का पीक टाइम था तब इस पूरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, और 2022 में इसको हमने छोटे से मतलब सेटअप से, मैं कह सकता हूँ डायलिसिस सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट था, हमने डायलिसिस से इस डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का काम शुरू किया। अब हम 2026 में आ गए हैं, अब ये हॉस्पिटल फुल फ्लेज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। यहाँ लगभग सभी तरह की सुविधाएँ इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है
0: जी।
1: तो ये अब हॉस्पिटल मैं हमेशा कहता हूँ ये अफोर्डेबल हॉस्पिटल है, आम लोगों के लिए बना हुआ है। हम उन लोगों तक पहुँचना चाहते हैं जो समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है
0: जी,
1: उसके लिए हॉस्पिटल है
0: जी, बिल्कुल। और हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं ना, तो राजकुमार जी सबसे पहले जब हम किसी एक मिडिल क्लास इंसान से बात करते हैं, लोअर मिडिल क्लास इंसान से बात करते हैं, एक मजदूर से बात करते हैं, तो अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमेशा छुपा जाते हैं। छुपाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो कई बार फीस बचाने के चक्कर में जो झोला छाप जो सड़कों के किनारे टेंट लगाकर बैठे होते हैं वहाँ चले जाते हैं, और वो दवाइयाँ कंज्यूम कर लेते हैं जिनमें ना जाने क्या तत्व मिलाए जाते हैं, जो कभी स्टीरॉइड्स के फॉर्म में सामने आते हैं, मतलब जिन पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती, जिन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, या जिनको कोई कंट्रोल नहीं करता।
1: तो जैसा बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए पहली बात तो मैं भारत विकास परिषद का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट नहीं है
0: जी।
1: भारत विकास परिषद का पूरे देश में इस तरह के 12 हॉस्पिटल चल रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है ये काम शायद हमारे लिए नया है, नया नहीं है। और ये क्यों किया हमने, इस काम के लिए हमने क्यों, हम हॉस्पिटल में ही क्यों हम आए, क्योंकि ये पूरे देश की समस्या है। एक आम आदमी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जिसके जेब में पैसे नहीं है, जो सोच भी नहीं पाता कि किसी में हॉस्पिटल में जाके अपने परिवार को ले आके इलाज कर सकूं, हमारे जहन में हमारे ध्यान में यही रहता है कि ऐसे लोगों को हम किस तरह से अपने यहाँ लाएँ और उनका ठीक से इलाज करके भेजें। देखिए किसी के बारे में कहना ठीक नहीं है कि कौन कैसे आज की तारीख में कैसे काम कर रहा है, पर जो जिम्मेवारी हमारे पास है, जो काम हमने लिया है अपने हाथ में कि हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे करें, उसके लिए हम 100% कमिटेड है। ये हॉस्पिटल, जैसे मैंने पहले कहा, ये हॉस्पिटल 100% एक आम आदमी के लिए है, एक लेबर जो अफोर्ड नहीं कर सकता, रिक्शा वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, ये उसके लिए है। कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको यहाँ पे वही सुविधा दे सकें एक जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में मिलता है, और ना के बराबर पैसे में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये करने का प्रयास हमारा हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में कोटा में हमारा 500 बेड का हॉस्पिटल है, गुड़गांव में है हमारा, लुधियाना में है, पटना में है, हैदराबाद में है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स वी आर रनिंग इन अक्रॉस द कंट्री।
0: तो सेम नाम से ही चल रहे
1: नहीं है। देखिए, भारत विकास परिषद हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है
0: जी।
1: जैसे यहाँ पे डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है, गुड़गांव में विवेकानंद आरोग्य केंद्र है। तो पर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉमन, सेम है। भारत विकास परिषद के बैनर तले ये काम हम पूरे देश में कर रहे हैं। और भी आने वाले समय में हम लखनऊ में एक इसी तरह का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 28 स्टेट है अपने देश में, 28 के 28 स्टेट में इस तरह का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हम लेकर आए। स्पीड हम लोग काम हमारा जारी है, तो बहुत जल्दी ही एक दो सेंटर हम और स्टार्ट करने वाले हैं।
0: जी जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि एक आम इंसान के लिए देखिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सेहत का होता है। अगर सेहत ठीक रहेगी तो आप अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। सेहत एक दिन भी ख़राब होती है तो हमें सब कुछ बेकार लगता है, चाहे आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में घूम लें, कितना भी आपके पास पैसा हो, अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है तो आपको जो ज़िंदगी है वो बेमानी सी नज़र आती है। तो यहाँ पर एक आम इंसान, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम ग्राउंड लेवल पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो अपना इलाज करा सकता है, ये बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई है। बहुत सी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक। सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं होता, हेल्थ इज वेल्थ कहावत इसीलिए है। लेकिन अगर हेल्थ को ठीक रखना है तो अच्छा इलाज अच्छे तरीके से मिले, यही बेहद जरूरी है। और ये इलाज आपको मिल सकता है डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में, वो भी बहुत अफोर्डेबल फीस के साथ। इस अस्पताल के बारे में आपको जानकारी देने के लिए और आपकी हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है श्री राजकुमार अग्रवाल जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र। राजकुमार जी, अब मैं जानना चाहूंगी डिपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी दें, क्योंकि आपने बताया एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि जब फीस ही बहुत कम है तो सुविधाएं भी कम होंगी, तो ये थोड़ा सा आप हमें हमारे लिसनर्स को बताएं।
1: देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ है, जो सबसे महंगा वो सबसे अच्छा। मैं कई बार कहता हूँ ऐसा नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सुविधाएं हमारे पास है, मैं सबको ये नहीं कहता हूँ कि आके आप हमारे यहाँ इलाज कराएं। मैं कहता हूँ एक बार आके हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है वो आप देखें किस तरह। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, आज ये हॉस्पिटल में लगभग हम 700 पेशेंट का डायलिसिस हर महीने कर रहे हैं। आप सबको पता है किडनी की बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं
0: जी,
1: तो आप हम सिर्फ 975

0: रुपए में हम डायलिसिस अपने यहाँ कर रहे हैं और वो भी 700। और मुझे जिस तरह से लग रहा है, क्योंकि आयुष्मान के सारे पेशेंट को हम कैटर कर रहे हैं जो कि बड़े हॉस्पिटल करते ही नहीं है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये जो फिगर्स हैं वो डबल होने वाले हैं। तो डायलिसिस हम लोग कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हमारा है जिसमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो आपको पता है आजकल कैंसर में इतनी बीमारी बढ़ रही है, तो महिलाओं के लिए जैसे मेमोग्राफी मशीन है जो इनिशियल चेकअप करने का जो मेथड है वो है मेमोग्राफी मशीन। हमने मेमोग्राफी मशीन लगा रखा है, डेक्सा लगा रखा है, पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल बहुत कम पैसे में सारा इलाज कर रहा है। अभी हम कैंसर के लिए कीमो का अपने यहाँ पूरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आँखों में आँखों से लेकर सारी सुविधाएं हमारे पास है, सारे चेकअप हम कर रहे हैं, ऑपरेशन सर्जरी कर रहे हैं। अभी तक हम लगभग 1500 सर्जरी कर चुके हैं और उसमें भी बताना चाहूँगा कि लगभग 50% सर्जरी हमने निःशुल्क किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया, क्योंकि हमने अपने हॉस्पिटल में रिसेप्शन में ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है, कोई भी आता है अगर आंखों का ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं, वो वापस नहीं जाना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं से अपने जानने वाले से
1: मित्र
0: स्पॉन्सर करके कोशिश करते हैं 100% लोगों को वहां से आंखों का ऑपरेशन हम कर ले। हमारे पास आईसीयू की फैसिलिटी है, हम जनरल वार्ड हमारे पास है, हम डिलीवरीज के केसेस हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास हर तरह की सर्जरीज होती हैं। तो कुछ दिन पहले हमने नी रिप्लेसमेंट किया, ब्रेन की हमने सर्जरी अपने यहाँ करी है, सभी तरह का ओपीडी हमारे पास है। हार्ट से रिलेटेड हम बेसिक कर लेते हैं, इको कर लेते हैं, टीएमटी कर लेते हैं, हॉल्टर कर लेते हैं, ईसीजी कर लेते हैं, और आने वाले 4 महीने के बाद हम बाईपास भी अपने यहाँ, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सारी सुविधाएं भी हम अपने हॉस्पिटल में कर पाएंगे, काम उसका चल रहा है। तो इस तरह से डेंटल की सुविधाएं हमारे पास है, बेसिक फैसिलिटीज हमारे पास है। कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हम फिजियोथेरेपी सेंटर है, बहुत गली गली में फिजियोथेरेपी सेंटर बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर हमने लोगों की तकलीफ को देखते हुए हमने ये प्रयास किया है कि इसमें अलग से क्या किया जाए। तो न्यूरोफिजियोथेरेपी सेंटर हम लोगों ने बनाया है। ये न्यूरोफिजियोथेरेपी सेंटर उन लोगों के लिए होता है जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, जिनको लंबी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या जिनको स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है, इस तरह जो क्रिटिकल जो न्यूरो में जो केसेस आते हैं, आज उन केसेस को हम 100% अपने न्यूरोफिजियोथेरेपी सेंटर में उनका इलाज कर रहे हैं और ना के बराबर कॉस्ट में कर रहे हैं। अगर आप वही पेशेंट अगर गलती से किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाए तो मैं आई एम श्योर कि वो वहाँ पे इलाज भी नहीं करा पाएगा। तो हमने उन चीज़ों को छुआ है कि जो बाहर बहुत महंगा है और जो बाहर बहुत आज की डेट में जिसकी गिनती बहुत बढ़ रही है। तो न्यूरोफिजियो हमने अपने यहाँ शुरू कर लिया, डायलिसिस कर लिया। मैंने मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ हॉस्पिटल चलाना हमारा काम नहीं है, लोगों की सेवा करना हमारा काम है। नर सेवा, नारायण सेवा की बात को ध्यान में रखते ये सारी सुविधाएं हमने चालू करी हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास आए उसको बहुत कम पैसे में उच्च क्वालिटी का हम इलाज अपने यहाँ से करके भेजें।
1: जी जी, यानी मुझे लगता है कि जितनी भी सुविधाएं एक बड़े अस्पताल में होती हैं वो सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं। और सबसे कमाल की बात है कि डायलिसिस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिस भी व्यक्ति को किडनी, दोनों किडनी उसकी नहीं चल रही हैं, और अब किडनी ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं होता, उसमें भी आपको लाखों रुपए की जरूरत होती है, तो ऐसी परिस्थिति में डायलिसिस एक ऑप्शन बचता है। और डायलिसिस भी इतना महंगा होता है, 3,500-4,000 का हर हफ्ते कराना, कई पेशेंट्स को ज्यादा कराना होता है। तो यहाँ सिर्फ 975 रुपए में डायलिसिस हो रहा है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, तो इससे ज्यादा जो है किसी को एक जीवन दान या फिर उसके जीवन को बेहतर बनाने का जो एक प्रयास है वो आप करें, वो कोई हो नहीं सकता। दूसरा, आपने बात कही है कि कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए लोगों को आप जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, सीटी स्कैन्स हैं या मैमोग्राफी की आपने बात करी, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी, मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो पहले ही अर्ली स्टेज पे स्क्रीनिंग कर सकता है, जिसके बाद आप आगे का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करा सकते हैं। थोड़ा सा लोगों को लगता है कि कराने की क्या जरूरत है, लेकिन कई बार जब आप नहीं कराते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैमोग्राफी को लेकर सर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें बताएंगे मशीन क्या है और किस तरीके से लोगों की मदद हो सकती है। ये टेस्ट बहुत महंगा आता है मार्केट में।
0: देखिए, ये बहुत आपने ऐसे सब्जेक्ट को टच किया है जो मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कैंसर की बीमारी अब हर तीसरे घर में कोई ना कोई पेशेंट निकल रहा है, पर मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कुछ उस पर भी काम करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बहनें हैं जिनकी एज 40 साल से ऊपर एज हो गया है, वो महिलाएं जरूर आके कहीं भी कराएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कराएं, उनको साल में कम से कम दो बार मेमोग्राफी टेस्ट करा लेना चाहिए
1: जी।
0: हमने अपने यहाँ बिल्कुल डिजिटल मेमोग्राफी मशीन इंस्टॉल किया है, वो भी एक जापानीज कंपनी फ्यूजी करके उसका इंस्टॉल है। मैं जितने व्यूअर्स हैं आपके मानव रचना इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर हमारे पास मानव रचना के इस हमारे इस जो एपिसोड जो हम आज कर रहे हैं टेलीकास्ट करेंगे, कोई भी सुनकर अगर हमारे हॉस्पिटल में आता है उसको सिर्फ उसको ये बताना है कि मैंने मानव रचना आपके चैनल में मैंने मेमोग्राफी के बारे में सुना है। ऐसे हमारे रेट बहुत ही सब्सिडाइज, हम 20% डिस्काउंट उसको फर्दर दे देंगे। पर हम सबका प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा बहने वो ये मेमोग्राफी टेस्ट जरूर कराएं। ये मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, आप भी, आपको भी कहूंगा आप अपने इस चैनल के थ्रू जब भी आपको मौका लगे आप जरूर रिक्वेस्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये अच्छा है हम सबके पास फैसिलिटी क्यों ना कराएं।
1: जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सुविधा जो दी जा रही है वो बहुत अच्छी है, और रेडियो मानव रचना को सुन के अगर रेफरेंस लेकर आप जाते हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में, और मेमोग्राफी जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है, अगर कोई भी लेडी रेडियो मानव रचना का रेफरेंस लेकर जाती है कि हमने आपका प्रोग्राम सुना है और इस हॉस्पिटल में जाकर वो मेमोग्राफी करवाना चाहती हैं, तो डेफिनेटली आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। वैसे ही रेट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनसे, लेकिन फिर भी आपको और 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि एक बार अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है फिर उसको कंट्रोल करना एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, तो पहले ही डिटेक्ट कर लीजिए वो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ ऐसे टेस्ट जो आज के समय में अवेलेबल हैं वो आपको बहुत रीज़नेबल रेट्स पर मिल रहे हैं, तो उनका लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। तो दोस्तों आप बहुत सारी सुविधाओं के बारे में जान रहे हैं, आपने जाना कि किस तरीके से आयुष्मान कार्ड या फिर बाकी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ का लाभ उठाकर आप इस अस्पताल से बहुत ही अफोर्डेबल फीस के साथ अपना इलाज करा सकते हैं, या जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसका इलाज यहाँ हो और वो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाता लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं अच्छी हर किसी का हक है, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। संस्कार भारती ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा ही अस्पताल है, आइए जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: थर्ड फील लाइव मैं हूँ दीक्षा आपके साथ और आज मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं श्री राजकुमार अग्रवाल जी जो कि प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के और ये जो अस्पताल है सेक्टर 8 फरीदाबाद में स्थित है, इसे चलाता है संस्कार भारती ट्रस्ट। और इस अस्पताल की सबसे खास बात है यहाँ की सुविधाएं तो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं ही, डॉक्टर्स नर्सेस हर एक जो व्यक्ति यहाँ पर कार्यरत है वो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ की सबसे खास बात है इसकी फीस। जो लोग अपनी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज के को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको इजीली यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी के साथ सारे उपचार दिए जाते हैं। एक अच्छा, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत अस्पताल जो आपकी हेल्थ को फिट रखने का पूरा जिम्मा उठाता है, वो भी बहुत कम फीस पर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ ग्रुप के चेयरमैन श्री राजकुमार अग्रवाल जी से। राजकुमार जी, अब बात करते हैं आयुष्मान की। आयुष्मान भारत का जो एक कार्ड है, जो सुविधा भारत सरकार की ओर से दी गई है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास ये कार्ड है जिसमें 5 लाख तक की एक लिमिट होती है जिसमें आप इलाज करा सकते हैं, और इसमें हार्ट का इलाज हो, कोई सर्जरी हो, ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलती हैं। और ये इसका पर्पस भारत सरकार का ये रहा है कि कोई भी गरीब जो है वो एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकता है, वो बिल्कुल वैलिड है अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है। लेकिन दूसरी विडंबना ये होती है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो ये कहते हैं कि आयुष्मान हमें इतना कम अमाउंट देता है कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, वो उसमें कवर नहीं होती, इसलिए वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, वो उन पेशेंट्स को एडमिशन ही नहीं देते कोई ना कोई रीज़न देकर। और ये वो साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरीके की सुविधाएं हम देते हैं उस हिसाब से हमारे जो अमाउंट है वो कवर ही नहीं होता है इसमें। हम वो स्टंटिंग जो हम 75,000 की या 1 लाख की करके दे रहे हैं हार्ट पेशेंट को, सरकार हमें उसके लिए कम पैसे देती है, इस वजह से हमें जो है वो सूट नहीं करता, और वो कुछ ना कुछ बहाना बना के इन पेशेंट्स को मना कर देते हैं। लेकिन आप आयुष्मान भारत की भी सुविधा दे रहे हैं, आप इस कार्ड के जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी सुविधाएं दे रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए, आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्वास्थ्य को लेकर स्कीम है, पर्पस तो ये था कि जो गरीब लोग हैं जिनको ये आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है उनको कहीं भी दिक्कत हो तो उनको उनका इलाज किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में हो जाए,
0: जी
1: होना चाहिए। पर इसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा कि कॉस्ट उसके रेट्स कम है ज़्यादा है, ये तो है ही है, भारत सरकार भी उस पर काम कर रही है और लगे हुए हैं सारे लोग। बट भारत विकास परिषद और डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र ने पहले दिन से मन बना रखा है कि जब हम आयुष्मान पे काम करेंगे तो हम किसी को मना नहीं करेंगे
0: जी,
1: और हम 100% अपनी बात पे कायम है। हमें पता है ये थोड़ा सा पेनफुल एरिया है, आयुष्मान के पेशेंट को ट्रीट करने के बाद उसकी रिकवरी कलेक्शन पर, मैं उस सारी बातों को भूल कर मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड में जितने भी लोग हमारे पास आते हैं जो हमारे पैनल में, हम 100% उनको कैटर कर रहे हैं, विदाउट हेजिटेशन कर रहे हैं, विदाउट कोई डिस्कशन। हमारा एजेंडा ये है कि हम 100% गरीब लोग जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि समाज का अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति वो किसकी तरफ देख रहा है,
0: जी
1: वो हम सब की तरफ देख रहा है, तो उसमें हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और आयुष्मान का कार्ड हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप आइए, आपको एक अच्छी सुविधा आयुष्मान में भी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट की जो कैशलेस कार्ड हैं, ये भी बहुत जरूरी हो गया, सबके पास आजकल कैशलेस कार्ड भी होते हैं,
0: जी
1: उसकी भी सारी सुविधा हमारे पास है। और हॉस्पिटल चलाने के लिए एक क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, NABH जिसको बोलते हैं, उससे ये पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो उसका सिस्टम प्रोसेस क्या है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो वो NABH जो सर्टिफिकेशन है वो भी हमारे हॉस्पिटल में है। तो NABH आने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि हमारा हॉस्पिटल अब किसी भी तरह से, किसी भी फ्रंट में, किसी भी एंगल में हम किसी भी तरह से कम नहीं है। सुविधा की बात करें, प्रोसेस की बात करें, हर तरह से हम सक्षम है सभी तरह के पेशेंट का इलाज करने के लिए।
0: जी, यानी एक होता है NABH सर्टिफिकेशन, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है, और उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल को जो है वो सर्टिफाई किया जाता है, और ये समय समय पर होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई, पर पूरे चेक रखने के लिए प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं हॉस्पिटल्स या नहीं कर रहे हैं, इसलिए NABH जो है वो इंस्पेक्शन जरूर करता है। तो वो भी सर्टिफिकेशन डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के पास है। और साथ ही जैसा कि आयुष्मान भारत के बारे में बताया राजकुमार जी ने कि किसी के पास भी आयुष्मान भारत कार्ड है वो भी यहाँ जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, सकता है, यहाँ पर वो कार्ड एक्सेप्टेबल है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। राजकुमार जी, टीपीए की बात मैं थोड़ा सा करना चाहूँगी। इंश्योरेंस के जो पैनल जो होते हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, हर हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया पर लगा होता है कि ये एक लिस्ट है, इसी के अंडर जो जो व्यक्ति आ रहे हैं जिनके पास वो कार्ड है या जिन्होंने वो हेल्थ इंश्योरेंस लिया, वो कवर किए जाते हैं। सो आप कुछ ऐसे प्रमुख नाम बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ कहाँ पर वैलिड है, और अगर वो जाना चाहते हैं, इन हॉस्पिटल का लाभ उठाना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि कवर कर रहा है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन नहीं ढूंढ पाते या जिनको समझ नहीं आता, तो कुछ प्रमुख नाम अगर आप बता दें।
1: देखिए, दो तरह से टीपीए के कार्ड का काम होता है। एक तो जो गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी जिसको अपन बोलते हैं, तो जो जीआईसी के अंडर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं वो 100% हम उनको टेक केयर कर रहे हैं, और जितने प्राइवेट है, प्राइवेट में चाहे आप HDFC का नाम ले ले, टाटा का नाम ले ले, ऐसे बहुत सारी हैं, नाम तो मैं, क्योंकि 110 कंपनीज हैं, नाम लेना बहुत मुश्किल है। 110 कंपनी, हाँ 110 कंपनी और भी बढ़ रही हैं। तो मोरलेस हम लोग सभी कंपनी से हमारा टाई अप है टीपीए में, और सभी लोगों को हम ये सर्विसेज सुविधाएं दे रहे हैं।
0: जी, यानी इतनी लंबी लिस्ट है कि उसको हम रेडियो में नहीं बता सकते,
1: शायद बहुत टाइम लग जाए, बट धीरे धीरे हमारे पास सभी तरह के कैशलेस कंपनीज के टीपीएस आ रहे हैं, और उसका लोगों को फायदा भी बहुत हो रहा है।
0: जी जी, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि रेट्स इतने कम है, तो आपका जो कवरेज होता है वो बढ़ जाता है, अमाउंट जो कवर हो रहा है अंडर उसके वो बढ़ जाता है, तो ये टेंशन नहीं है कि आपका 3 दिन में अमाउंट जो है, जो लिमिट है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इलाज ही इतने कम दामों पर हो रहा है, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो राजकुमार जी, मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ, लोगों को यही लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो शायद इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे, जो स्टाफ है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि आप फीस ही जब 975 रुपये एक डायलिसिस के लिए ले रहे हैं, या फिर OPD आप 200 रुपये में ले रहे हैं, और दूसरी तरफ OPD 1000 रुपये की हो रही है एक बड़े अस्पताल में, तो डॉक्टर्स में तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा?
1: जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत बड़ा मिथ है, और हमारे लिए बहुत चैलेंज है, मतलब हमें लोगों को इस बारे में बताने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है कि रेट तो कम है और सुविधाएं वही है जो बड़े हॉस्पिटल से अच्छी है। देखिए, मैं एक बात मान के, मैंने जैसे मैंने कहा कि भारत विकास परिषद का काम हॉस्पिटल चलाने का नहीं है, शुद्ध रूप से 100% हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जो हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल डिजर्विंग मैं कह सकता हूँ, जो डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मैंने उनका भी सिलेक्शन का जो मैथोलॉजी है वो इतना बढ़िया है कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम रख लेते हैं। कोई भी डॉक्टर हमारे यहाँ चैरिटी में नहीं है, कोई भी डॉक्टर फुली पेड, तो आप वो नहीं कह सकते। अरे, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ना अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज, ये लोग अब हमारे पास आ रहे हैं कि आप उसको चला कैसे रहे हो,
0: वो पूछने आ रहे हैं
1: कि ये आप 200 रुपए OPD कर रहे हो और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप मेंटेन कर रहे हो। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, और मैं आने वाले समय में लोगों को ये कहूंगा कि मेडिकल महंगा नहीं है, मेडिकल अफोर्डेबल है, बट आपको देखना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको अपना विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप कहीं जाते हैं, आपको जजमेंटल होना पड़ेगा कि मैं सही जगह आया हूँ नहीं आया हूँ, तो इसलिए मैं बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हम स्लम एरिया में जा रहे हैं, हम कॉलोनीज में जा रहे हैं, हम सेक्टर्स में कम जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे ज्यादा लोग हमारी जरूरत है, हमारी जिस तरह का काम हमारा है, जिस तरह का स्वभाव हमारा है, जिस तरह की हम काम की चिंता करते हैं, वो लोग ज्यादा कहाँ है, वो कॉलोनीज में है, वो ज्यादा बस्तियों में है।

0: ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है
1: जी।
0: तो मकसद बिल्कुल साफ है। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अब डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में, क्योंकि मुझे लगता है भारत विकास परिषद जब शुरू हुआ तो दिव्यांग बंधुओं के लिए बहुत काम किया, तो उसमें भी हमने काम जोड़ लिया है। हर दूसरे और चौथे सोमवार को डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में हम दिव्यांग शिविर लगाते हैं। जो बंधु जिसको आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, कैलिपर चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, मोटराइज व्हील चेयर चाहिए, हेयरिंग एड्स चाहिए, अब आप वहां पर आकर दूसरे और चौथे सोमवार को ये सारी चीजें आपको वहां पे फ्री निःशुल्क मिलेगा। ये हमने उसका सेंटर बना लिया है
1: जी।
0: तो मैं फरीदाबाद के या जो NCR के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक परमानेंट सेटअप हो गया है, परमानेंट प्रोजेक्ट हो गया है, आप लोग आइए और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाइए।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो आसपास लोग होते हैं हमारे शहर में होते हैं, अगर हमें भी कोई मिल जाता तो हमें समझ नहीं आता कि अगर इनको एक व्हीलचेयर की जरूरत है, उनकी व्हीलचेयर पुरानी हो गई तो हम किससे दिलवाएं, कहाँ से वो व्हीलचेयर अरेंज हो सकती है, कहाँ से वो व्हीलचेयर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर कोई व्हीलचेयर दिलवा नहीं सकता, अपना बजट नहीं होता किसी का। तो अगर आप किसी की मदद भी करना चाहें तो कई बार आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते हैं। सो यहाँ पर डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी भी स्पेशली एबल्ड यानी दिव्यांगजन को देख रहे हैं जिन्हें किसी भी सहायक उपकरण की आवश्यकता है, चाहे वो क्रचेस हो, चाहे वो व्हीलचेयर हो, चाहे वो किसी और तरीके की सपोर्ट वाली चीज़ हो जो उनके चलने में, उनके दैनिक जीवन में ज़रूरत है जिसकी, सो वो यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त यानी निःशुल्क दी जाती है। और ये शिविर जो है हर दूसरे और चौथे सोमवार को लगता है, हर महीने का जो सेकेंड मंडे है और फोर्थ मंडे है यहां पर ये शिविर लगाया जाता है और सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद कर पाए तो ये जानकारी जो है वो जरूर आप लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपका आधार कार्ड है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, साथ ही जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है डिसेबिलिटी का वो आप अपने साथ लेकर जाएं और रजिस्टर कराएं, तो इस तरीके का अपना आधार कार्ड जरूर साथ में रखें। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके साथ आपको ये सुविधा मिल सकती है। जी राजकुमार जी, ये तो बात हो गई दिव्यांगजनों की मदद करने की। एक और सुविधा आप बहुत अच्छी देते हैं वो है हेल्थ कैंप्स की, क्योंकि आप उन जगहों पर जा रहे हैं, जनरली हमने देखा है RWAs के साथ मिलकर हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं सेक्टर्स में, संडे को सुबह सुबह BP या शुगर चेक की जा रही होती है, पार्क में जो सैर करने आ रहे होते हैं उन तक ये जो सुविधाएँ पहुँचाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप जा रहे हैं बस्तियों में, आप जा रहे हैं फरीदाबाद के या NCR के उन स्लम्स में जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको शायद डायबिटीज़ या BP हो चुका है, जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, जिनको सिम्टम्स ही नहीं है, और जब तक उनको सिम्टम्स समझ में आते हैं तब तक बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सह चुकी होती है और चीज़ें खराब हो गई होती हैं। सो ये हमें कैंप्स के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: देखिए ये कैंप्स तो जब से हॉस्पिटल बना है तब से हम कैंप लगा रहे हैं, बट पिछले 2-3 महीने से हम सभी कार्यकर्ताओं का ये मन था कि इस काम को बढ़ाया जाए। तो काम को बढ़ाने का मतलब ये है कि ये जो स्लम एरियाज में, कॉलोनीज में, हमने महीने में 25 दिन 5 छुट्टियां करनी पड़ती हैं, 25 कैंप्स हम लोग जाके महीने में इन एरियाओं में हम कैंप्स लगाते
1: हैं। मतलब वर्किंग डेज में भी लगाते हैं?
0: वर्किंग डे में तो लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि सारा स्टाफ होता है तो 5 छुट्टियां देनी होती हैं, तो 25 कैंप्स लगाने की हमारी कैपेसिटी है। और एक एक कैंप में 200-200 लोगों का हम टेस्ट करते हैं, BP शुगर आइस टेस्ट करते हैं, और उसमें से कुछ क्रिटिकल केस निकलते हैं उनको हम अपना हॉस्पिटल बुलाते हैं। तो इस तरह का हमने जो सेटअप किया है, और सिर्फ फिर वही कह रहा हूँ, हमारे दिमाग में क्या है कि हमें उन तक पहुँचना है जिन तक कोई सोच भी नहीं रहा। और आप देखिए कि आज हम महीने में लगभग 9,000 पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। धीरे धीरे लोगों का हम पे भरोसा बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा कि परसों हमने ब्रेन की सर्जरी करी है, तो क्रिटिकल केस भी हम कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट भी हम कर रहे हैं, तो क्रिटिकल केसेस भी हो रहे हैं, और नॉर्मल OPD भी हम कर रहे हैं। आंखों पे मैंने बताया कि कितना बड़ा काम हम लोग चैरिटी पे कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में एक दो बड़े सोशल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी वो नेक्स्ट मंथ ही इसकी अनाउंसमेंट करेंगे, पर मुझे लगता है उससे भी फरीदाबाद के लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली।
1: जी फील गुड फील लाइव, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्री राजकुमार अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बातचीत डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के बारे में, और ये सारी सुविधाएं आप जान रहे हैं रेडियो मानव रचना के माध्यम से, एक ऐसा कम्युनिटी रेडियो जो समुदाय के लिए कार्य करता है और समुदाय की जरूरतों को समझता है। और इसीलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सारी जानकारी एक ऐसे अफोर्डेबल अस्पताल की, जहाँ पर इलाज बहुत ही अफोर्डेबल दामों पर है, यानी अफोर्डेबल फीस ली जाती है जो बिल्कुल बेयर मिनिमम है, और साथ ही सुविधाएं आपको मिलेंगी एक बड़े अस्पताल जैसी। तो आइए जानते हैं बहुत कुछ श्री राजकुमार अग्रवाल जी से। एक चीज मैं आपसे और जरूर जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ में एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज आती है मदर एंड चाइल्ड केयर। जब हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो मदर्स होती हैं, जो मॉम टू बी हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि बड़े अस्पताल जो होते हैं वहाँ पर डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर सरकारी में जाना चाहते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ पे हाइजीन नहीं है या उतनी केयर नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा सवाल होता है, और इसकी वजह से कई बार केसेस जो हैं वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में बिगड़े भी हैं, और ये हर रोज अखबारों में आते हैं। तो मैं चाहूंगी आप ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और जिस तरीके की सुविधाएं आपके यहाँ दी जाती हैं खासतौर पर से मदर एंड चाइल्ड केयर की, वो भी हमें बताएं।
1: देखिए, ये सुविधा तो डिलीवरीज की हमारे यहाँ है ही है, पर इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अभी एक मिनट पहले ही कहा था, पर मुझे लग रहा था कि मैं शायद अभी इस चैनल में अभी नहीं बोलूँ, बट मुझे मैं भी रुक नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे हमने तय किया है कि जैसे 100 डिलीवरीज इस आसपास की जो बस्तियों में जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके 100 डिलीवरीज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम में, मतलब अगले महीने से। इसके लिए रोटरी एक संस्था है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। तो उसका भी आसपास की जो बहनें हैं जिनको ये सुविधा नहीं है, जिनके पास मैं कहता हूँ जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनको भी हम ये सुविधाएं देने वाले हैं। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, डिलीवरी तो चलो कहीं भी कोई भी करा लेता है, पर हाइजीनिक एक अच्छी जगह पे हो जाए, मैंने उनकी डिलीवरी बच्चों की ठीक हो जाए, उनका देखभाल ठीक हो जाए, मुझे लगता है ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और यही सेम कॉन्सेप्ट लेकर हम इस हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं। एक हॉस्पिटल चल रहा है जो चल रहा है, एक साथ में रूटीन में हम क्या क्या कर रहे हैं। अब विकलांग डिसेबल्ड लोगों के लिए सोचना, हमने सोचा अब शुरू हो गया, अब आ रहे हैं, तो अलग तरह से काम है। आंखों के लिए काम करना अलग तरह से काम है। तो सिर्फ हॉस्पिटल चलाना हमारा कोई पर्पज है ही नहीं,
0: सेवा करना
1: हमारा पर्पज है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से फरीदाबाद के लोगों ने हमें प्यार किया, जिस तरह से लोगों ने हमें विश्वास किया, जिस तरह से लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी और बड़ी हो गई है। हमें लग रहा है हमें और बेटर करना है आने वाले टाइम में। ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल अलग तरह से काम करेगा, और ये जो लोगों के दिमाग में मिथ है जो महंगा है वो सबसे अच्छा है, इस मिथ को भी हम दूर करेंगे, और ये एक मॉडल के रूप में फरीदाबाद NCR में काम करेगा।
0: जी बिल्कुल, और मैं अपने श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि मैं खुद इस हॉस्पिटल में गई हूँ, और यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, नर्सेज बहुत अच्छी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये फुली एयर कंडीशनड है। अगर आपको लग रहा होगा सुविधाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। आप गर्मी के मौसम में जाएंगे तो आप आराम से वहां OPD में बैठ सकते हैं, आप प्रॉपर इलाज करा सकते हैं, आपको बिल्कुल हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलेगा, कहीं पर गंदगी नहीं मिलेगी, कहीं पर किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत नहीं मिलेगी जिसको आपको देखकर लग रहा हो कि नहीं यहां फीस कम है तो सफाई भी कम है या सुविधाएं भी कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आयुष्मान कार्ड और बाकी इंश्योरेंस जो आप कराते हैं, चाहे वो ग्रुप इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका फैमिली इंश्योरेंस हो, चाहे वो इंश्योरेंस आपका इंडिविजुअल हो, अगर आपने कराया हुआ है तो वो सब भी यहाँ पर मान्य है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, अगर कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी जा रहा है तो वो भी इस हॉस्पिटल में जाकर सुविधा ले सकता है। भाई थोड़े से पैसे अगर आपके बच रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। सो ये भी है, और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना साफ और इतना वेल मेंटेन्ड है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक ऐसा अस्पताल है जो इतनी कम फीस में इलाज कराए। इसीलिए अपने आप को चैरिटेबल नहीं अफोर्डेबल कहते हैं। तो राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए, लेकिन मैं आपसे अब जानना चाहूंगी किस नंबर पर संपर्क करें जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं।
1: देखिए, सबसे पहले ये जो अपना डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है, सेक्टर 8 में सिचुएटेड है, प्लॉट नंबर 2, बिल्कुल साथ में सेक्टर 8 का थाना है, उसके साथ में हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। इसमें एक नंबर है, मैं 8920539843 ये नंबर है, इस नंबर पे कोई भी संपर्क कर सकता है, और कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई क्वेरी आपकी है तो इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट पे हम लोग हैं, और मतलब आप सर्च कर सकते हैं हमें, और बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड ये लोकेशन है, आप कभी भी किसी को भी कोई आवश्यकता हो आप आ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, यानी सेक्टर 8 में जब आप जाएंगे या गूगल पर डालेंगे, क्योंकि आजकल तो ज़माना गूगल का है, आप जैसे ही डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र वहां पर डालेंगे सेक्टर 8, आपको सीधा सीधा ये हॉस्पिटल के गेट पर ले जाएगा गूगल। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल शहर में एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नंबर भी बता दिया गया है, तो अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो आप 08920539843 पर कॉल कर सकते हैं, या 9220504558 पर भी कॉल कर सकते हैं। ये कुछ नंबर हैं। लैंडलाइन नंबर भी हम आपको बताना चाहेंगे, 0129 कोड है फरीदाबाद का, 2972244, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए अलग अलग महिलाओं से ना सिर्फ उनके जिंदगी की जर्नी लेकर आती हूँ, लेकिन साथ के साथ आपके लिए ढेर सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेकर आती हूँ। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक लंबे समय से आपके पास आ रहा है, लेकिन हर महिला से जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो सशक्तिकरण के लिए बाकी है। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है सोनाली चैटर्जी। सोनाली चैटर्जी पेशे से फाउंडर हैं पंचफोरन और उसके साथ साथ एक्सोटिक क्विसिन्स की।

0: मजेदार बात यह है कि प्रोफेशनली ये एक आर्किटेक्ट है और इन्होंने अपनी जिंदगी की कमान जो है वो अपने हाथों में ली। अच्छी चीज ये है कि इन्होंने वो किया जो इन्हें पसंद था, यानी पैशन को फॉलो किया। लेकिन अगर हम देखें आज के जमाने में तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं। सोनाली जी से ये जानेंगे कि ये अपने पैशन को कैसे फॉलो कर पा रही हैं और पेशे से, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ शेफ होना अपनाया है, केटरिंग की बहुत बड़ी सर्विसेज ये ऑफर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ है जो इनकी दुनिया में है जिनके बारे में शायद आपने आज तक ना सुना हो। उन सारी चीजों के बारे में आज हम इनसे करने वाले हैं बात और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
0: सोनाली जी, वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन व्हिच आई हैव बीन आस्किंग ऑल द वुमेन, और ये मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस प्रोग्राम में होता है, व्हाट आई परसीव इज कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। सो इफ आई मे आस्क यू, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट? आप एम्पावरमेंट किस चीज में देखती हैं?
1: वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी, मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ लोगों के लिए शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन एम्पावरमेंट है, पर मेरे लिए वो नहीं
0: जी।
1: मेरे लिए एक इंडिविजुअल की सोचने और चुनने की आज़ादी को मैं वुमेन एम्पावरमेंट कहूँगी।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और वाकई मैं कई बार ये चीज़ महसूस भी करती हूँ सोनाली जी, सिर्फ पैसा दे देने से आप उन्हें शक्ति नहीं देते हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप उन्हें सोचने और समझने की जो कहना चाहिए एक बेसिक राइट है वो नहीं देते हैं। सो अगर आप पैसा कमा पा रहे हैं लेकिन आपके उस पैसे पर भी आपका अधिकार नहीं है, तो बताइए आप कहाँ से एम्पावर्ड है। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो एम्पावरमेंट नहीं है, बट अगर आपके पास ये इख्तियार है, ये अधिकार है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सशक्त महिला है। अब ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप सशक्त है, और जब तक आप अपने आप से ये सवाल पूछती हैं तब तक मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ। सो इन ख्यालों में खोने से पहले इस प्यारे से गाने में खो जाइए और जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं इस खूबसूरत सी शाम को ये प्यारा सा प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं और अगर आज मैं सशक्तिकरण की बात करूँ तो मैं जरूर ये आपसे कहूंगी कि भाई सशक्तिकरण को एक बार अपने दिल में झांक कर पूछ जरूर लीजिए और देख जरूर लीजिए कि क्या आप वाकई सशक्तिकरण को प्रैक्टिस कर पा रही हैं या नहीं। और अगर आप एक पुरुष हैं तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपके घर में सशक्तिकरण है, या महिलाओं को ये अधिकार मिल रहे हैं कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाएं। बस छोटा सा सवाल पूछिए अपने आप से। और मैं आज की हमारी जो प्यारी सी गेस्ट हैं सोनाली चटर्जी मेरे साथ बैठी हैं, इनके हाथों में जादू है। आप इनके हाथों का जादू कभी चक्कर देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। सो ये हाथों का जादू चलाती भी हैं और लोगों को खिलाती भी हैं। ये फाउंडर है पंचफोरन की और एक्सोटिक क्विजीन्स की। सोनाली जी, अगर मैं आज के ज़माने की महिलाओं के चैलेंजेस की बात करूँ, अलग अलग ज़माने में अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं, सो आपको क्या लगता है अभी करंट सिनेरियो में किस प्रकार के चैलेंजेस हैं जो महिलाएं फेस कर रही हैं?
1: सबसे पहले तो है, देखिए, महिलाओं के सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको घर भी संभालना है और बाहर भी काम भी करना है
0: जी।
1: एंड जब हम लोग काम करने बाहर जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हम घर के बारे में सोच रहे हैं, और जब घर पे हैं तो तब ऐसा होता है कि कभी हम ऑफिस के या हमारे काम के बारे में सोच रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग रखना और इन दोनों चीज़ों में प्रॉपर उनको पूरा अटेंशन देना एक अच्छी खासी चुनौती है हम सभी के लिए। एंड आजकल के ज़माने में इतना फास्ट लाइफ है एंड सब कुछ कर पाना वो एक बड़ी चुनौती है। एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी कि एम्बिशियस तो सभी होते हैं, एम्बिशन को देखकर अपने बाकी जो चुनौतियाँ हैं उनको सामने रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी बड़ी है, चुनौती या एम्बिशन
0: एक्चुअली।
1: और अगर चुनौती कोई हिंड्रेंस है तो उसे आपको क्रॉस करना है, आपको उसे पार करके आपके एम्बिशन की तरफ आपको बढ़ना है।
0: एग्जैक्टली।
1: चुनौतियाँ तो हर जगह है, हर काम में है।
0: देखिए मैं ये कहती हूँ पुरुषों के लिए भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन परेशानी ये है कि महिलाओं के लिए चुनौतियाँ ज्यादा हैं, पुरुषों के लिए वो चुनौतियाँ महिलाएं कम कर देती हैं। अब मान लीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, सो कोई भी कभी भी आपने किसी पुरुष को ये सुना है कि अरे यार मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है और आज पूरे घर का काम नहीं हुआ है, आज घर में काम की जो हाउस हेल्प है या मेड है वो नहीं आई, या घर में पानी नहीं आ रहा था, मैं किस प्रकार से घर का काम भी करूंगा और आज मुझे ऑफिस आना पड़ा। बट पुरुषों के अलावा महिलाओं को ये फिक्र भी होती है। मान लीजिए वो ऑफिस आ रही है और सुबह सुबह घर पर कोई काम नहीं हुआ है तो उन्हें घर जाकर वो काम भी करना है, ये चुनौती उनके लिए ज्यादा है, पुरुषों के लिए कम है। सो कई बार अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा ये कहते हैं जेंडर में इक्वालिटी है, पर इक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि कामों का बंटवारा जो है वो इक्वल नहीं है। और यही कारण है कि आज भी महिलाएं सशक्तिकरण के लिए सिर्फ स्ट्रगल कर रही हैं, पा नहीं पाई हैं। कैसे होगा ये जरूर करेंगे इसके बारे में बात। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। सोनाली चैटर्जी से ढेर सारी बातें हो रही है। सोनाली चैटर्जी जो कि फाउंडर है पंच फोरन और एग्जॉटिक क्विजीन की, मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जॉटिक क्विजीन है, अगर आप इन्हें टेस्ट करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, ये सवाल तो मैं इनसे पूछने वाली हूँ। सोनाली जी मुझे बताइए कि हम अक्सर बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, होटल्स में खाना खाते हैं, और जब कभी भी हम वहाँ जाते हैं तो हमने एक चीज नोटिस की है कि वहाँ पर जितने भी शेफ्स होते हैं ना वो पुरुष होते हैं, और जब हम घरों में देखते हैं तो खाना महिलाएं बना रही होती हैं। तो मुझे बताइए इनइक्वालिटी किस लिए है, हमें बाहर प्रोफेशनली कमर्शियल किचन्स में इतनी महिलाएं क्यों नहीं दिखती हैं?
1: आपने बहुत सही कहा कि हम घर में महिलाएं ही खाना बनाती हैं ज्यादातर। आजकल पुरुष भी बहुत अच्छा बनाते हैं घर पे भी।
0: नहीं, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि जैसे प्रकृति ने ही हमें ये कहा हुआ है कि खाना बनाने का काम महिलाओं का है, और वो डेफिनेट मतलब जैसे कहा जाता है ना, काम बांट दिए जाते हैं।
1: तो आई वुड से आई एम वेरी ब्लेस्ड,
0: यस,
1: कि मेरे घर में सबको खाना बनाना आता है।
0: वो इसीलिए क्योंकि ये आपका इनेट टैलेंट है तो वो सबके अंदर आना जरूरी है।
1: नहीं मैम, क्योंकि मैं वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं काम पे जाती थी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा इन लोग भी संभाल लेते हैं घर, अगर मैं नहीं भी हूँ तो। मैं वापस आती हूँ घर बाहर से, कभी ये घर पे हैं तो मुझे चाय बना के पिलाते हैं, मुझे मतलब बहुत ही आई एम रियली फॉर्चुनेट। सो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर महिलाओं को मिले।
0: yes.
1: जैसे हमारे हस्बैंड्स भी जब ऑफिस से आते हैं तो हम उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, चाय बना के देते हैं जब हम रहते हैं घर yes. पे, तो सेम चीज एक महिला भी एक्सपेक्ट कर सकती है और उनको भी मिलना चाहिए।
0: वेरी नाइस।
1: एंड अब आते हैं हम किचन के बारे में बात करते हैं, तो किचन्स में यूजुअली हमारे घर में महिलाएं ही काम करती हैं या खाना बनाती हैं, बट रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में मेन ज़्यादातर पुरुष वहाँ पे काम करते हैं। रीजंस है, क्योंकि एक है कि जो होटल इंडस्ट्री की मैं काफ़ी पॉपस करती हूँ, मैं फाइव स्टार होटल्स या अदर होटल्स में भी मैं जाती रहती हूँ, तो वहाँ मैंने नोटिस किया है या मैम ने भी काम किया है। सो वहाँ पे सबसे पहली बात है कि होटल इंडस्ट्री में हमारे जो टाइमिंग्स हैं 12 आवर्स की ड्यूटी होती है
0: जी।
1: 12 आवर्स की ड्यूटी में दिन भर खड़े रहना और भारी भरकम बर्तन उठाना और ये करना, इट्स अ वेरी वेरी टीडियस जॉब
0: जी।
1: सो वेमेन इन शेफ्स प्रोफेशन बहुत कम है, आजकल काफ़ी हो गए हैं। 2018 के हिसाब से इंडिया में ओनली 5-6% वेमेन शेफ्स थे, और अभी 2025 में अराउंड 12% हो गए हैं। सो ये जो इंक्रीज है, आई एम हैप्पी टू सी दैट इंक्रीज। सो इसी कारण से है कि आजकल वेमेन सब कुछ कर पा रही हैं, सब कुछ करना चाहती हैं। हमारे पास पहले तो इंजीनियरिंग काफ़ी सारे फील्ड में लड़कियां नहीं जाती थी, आजकल सब फील्ड में जा रही yes. हैं। वी हैव फाइटर पायलट्स, वी हैव एवरीबॉडी, एवरीवेयर वी हैव वेमेन। सो ये इसमें भी आ गए हैं, बट ये है कि टफ जॉब है, तो शायद इसलिए वेमेन उतना नहीं आ रहे हैं। स्पेशली मैं देखती हूँ कि कॉन्टिनेंटल कुजीन में या बेकरी में तो वेमेन है, बट yes. जैसे होटल इंडस्ट्री में तंदूर या इंडियन सेक्शन में बहुत कम है
0: जी।
1: थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, आ जाएंगे।
0: सो भाई देखिए, एक तरफ तो हम फिजिकल लेबर की बात करें तो महिलाएं इवन एज टीचर्स आजकल अगर आप देखें तो वो कम से कम 8-8 घंटे खड़ी रहती हैं लेकिन पढ़ाती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें किचन्स की तो वहाँ पर हीट भी होती है, और साथ के साथ तंदूर की अगर मैं बात करूँ तो वो जलती हुई आग होती है। तो शायद ये कारण है कि महिलाएं आपको अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं मिल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सपना सजाया है हमने और इतने सालों से हम इस सशक्तिकरण को देखना चाहते हैं, सो आने वाले समय में बहुत अच्छा लगेगा हमें भी कि हमें भी बहुत सारी शेफ जो हैं वो महिलाएं मिलेंगी, और धीरे धीरे जो घर का खाना है वो घर के खाने वाली महिलाएं जो हैं वो शायद बाहर का खाना भी बनाएंगी, और हर तरफ हमें एक इक्वालिटी नज़र आएगी। बट यस, जहाँ पर हम फिजिकल काम की बात करते हैं या फिजिकल लेबर की बात करते हैं या वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें भी महिलाओं के लिए कई बार चैलेंजिंग हो जाती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। सुना रही हूँ एक प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा एपिसोड। और आज हम बात कर रहे हैं सोनाली चैटर्जी से। सोनाली चैटर्जी जो हैं वो दरअसल एक बहुत ही खास कहना चाहिए क्वालिटी रखती हैं अपने खाने की। सो शेफ्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चीज़ों का जो प्रेजेंटेशन है ना वो इनकी खासियत है, यानी कहना चाहिए इनकी USP है। और वो चीज़ न सिर्फ आँखों को अट्रैक्ट करती है लेकिन आपकी जीभ और आपके दिल को भी अट्रैक्ट करती है, और ये इनके खाना बनाने की खासियत है। खाना भी बनाती हैं बहुत ही टेस्टी, लेकिन जिस ढंग से वो उसे प्रेजेंट करती है ना वो तो काबिले तारीफ है। अब अगला सवाल सोनाली जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप ही की एम्पावरमेंट की जर्नी का। आप एक सशक्त महिला हैं, आपने वो किया है जो आप करना चाहती थी, और एक बड़ा डिसीजन होता है आज के ज़माने में। बट मुझे ये बताइए कि आपने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा एम्पावरिंग डिसीजन लिया था जिसे लेने के बाद आज तक आप उस पर प्राउड हैं और आपको कोई रिग्रेट नहीं हो रहा?
1: सबसे पहले तो मेरा जो प्रोफेशनल करियर है
0: जी,
1: तो प्रोफेशनल करियर में जब मैंने आर्किटेक्चर में ज़्यादातर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर ही काम किया है
0: जी।
1: तो 2019 तक मैंने उस पर काम की है
0: जी।
1: 2015 से 2015 से 2019 तक मैं दोनों प्रोफेशन चला रही थी, क्योंकि ये जो फूड जो मैं खाना बनाना या प्रेजेंटेशन जो है जिसके कारण लोग मुझे जानते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन, शायद ये मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड से के कारण भी हो सकता है। और एक चीज़ है ना, हम पहले आँखों से खाते हैं, फिर हम चखते हैं जीभ से खाते हैं, फिर हम इसको महसूस करते हैं। सो ये तीन प्रोसेस है। तो जब तक आपको अच्छा कुछ दिखेगा नहीं तो आपको वो खाने का वो मज़ा नहीं आएगा। फिर जब वो आप एक बार टेस्ट करोगे तब आप उसका महसूस करोगे, टच है, फील है, फिर आप उसको फील करोगे उसको। तो ये चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस है जस्ट खाना बनाना इज़ नॉट द मेन प्रोसेस। सो मेरे लिए ये था कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही थी, अच्छे से कर रही थी, और फ्रेंड्स को बुलाती थी और उनको अच्छे खाना खिलाती थी। तो उन्होंने एक दिन, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला, यार यू मस्ट डू समथिंग, यू नो आपका टैलेंट वेस्ट जा रहा है, ये टैलेंट को आपको कुछ करना होगा। yes. मैंने कहा इतने बड़े बड़े केटरर्स हैं, मैं कहाँ पर एग्जिस्ट करूँगी, आई एम जस्ट अ स्मॉल पर्सन। बट हाँ, आई टुक दैट डिसीजन, मैंने घर से शुरू किया। विद इन वन ईयर मे बी सिक्स मंथ्स आई गॉट काफ़ी बड़े ऑर्डर्स आने लगे
0: जी।
1: तो जब बड़े ऑर्डर्स आने लगे वो घर से पॉसिबल नहीं था।
0: yes.
1: जब मुझे कॉरपोरेट ऑर्डर्स आने लगे फॉर 50 people, 100 people, एंड स्पेशली यू नो माई ग्रेजिंग प्लैटर्स और ये सब ग्रेजिंग टेबल्स वगैरह होते थे, सो वो चीज़ जब हम करने लगे तो घर से पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कि मुझे एक बेस किचन खोलना है, कमर्शियल किचन खोलना है। हम जब लोगों से बात करने लगे सो 90% पीपल सेड बेस किचन या ऐसे किचन मत खोलिए, क्योंकि हर रोज़ खुल रहे हैं, हर रोज़ बंद हो रहे हैं
0: जी।
1: मैंने दो बार सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है खोलने की, बंद करना होगा कर देंगे।
0: yes.
1: ट्राई करने में क्या जाता है, और मुझे मालूम है कि मुझे बंद नहीं करना पड़ेगा, टच वुड। सिर्फ कोविड के टाइम पे कुछ महीने बंद है, इसके अलावा 2017 से लेके अभी तक 2026 तक किचन इज रनिंग।
0: सो भाई देखिए, यही शायद सही मायने में मैं ये कहती हूँ कि एम्पावरमेंट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपकी ज़िंदगी आपको कुछ डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करती है। महिलाएं ये सोच कर कि हाय बाद में कहीं हमें अपने ही इस डिसीजन पर पछतावा ना हो, कहीं बाद में लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं, कुछ डिसीजंस ले ही नहीं पाती हैं। और शायद वहीं हम कहीं ना कहीं अपनी सशक्तिकरण के एक बहुत अहम अधिकार को गंवा देते हैं। ज़रूरी है कि हमें इसे महसूस करना है और इस अधिकार को हमेशा प्रैक्टिस करना है। हर महिला जो सशक्त है उसने कभी ना कभी कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लिया था, और आज वो इस डिसीजन को लेकर ना सिर्फ खुश है लेकिन साथ के साथ उस डिसीजन को खूबसूरती से जी पा रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। कोई सपना है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं अटकी हुई है और लग रहा है ये डिसीजन क्या और कैसे लिया जाए, तो ले लीजिए। आई बिलीव कि आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। Feel good, feel like.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। एक ऐसी महिला से मिला रही हूं जो न सिर्फ सशक्त है लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी भी जी रही है और अपनी खुशी से अपना काम कर रही है। सोनाली जी, आज एक अहम सवाल। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाफ हार्टेड प्रोफेशंस में हैं क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन कई बार वो होती है जिसका डिसीजन हम पर या तो थ्रस्ट किया होता है क्योंकि पेरेंट्स ने लिया होता है, कभी पियर ने लिया होता है, कभी समाज ने लिया होता है, ये बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है इसे कर लीजिए, इससे आप जिंदगी भर पैसा कमाएंगे, या फिर वो डिसीजन होता है जिसको पूरा कहना चाहिए कि दुनिया वैलिडेट करती है, आप इस लाइन में चले जाइए, जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे, यू विल हैव अ साउंड इनकम। लेकिन हमारा दिल कुछ और करने का होता है क्योंकि आपका टैलेंट कुछ और है। सो जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही थी एज एन आर्किटेक्ट, आपको लग रहा होगा कि लाइफ इज गोइंग वेरी गुड, बट सडनली जब आपने ये डिसीजन लिया किचन में आग में 12 घंटे 15 घंटे और कई बार तो आपको काफी लंबा काम करना पड़ता होगा जब आपके पास कॉर्पोरेट केटरिंग आती होगी, कभी ऐसा मन डगमगाया, कभी लगा ओ माय गॉड वो डिसीजन ठीक था, कहाँ पैशन फॉलो करने चली आई, या आपको लगा कि नहीं जब अपने दिल से अपने तसल्ली का काम करा जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, पैशन और प्रोफेशन में बेसिक क्या डिफरेंस है। डिग्री हमें क्या देती है कि हमें एक रोड मैप देती है, एक रास्ता दिखाती है कि आप इस रास्ते पे जाइए, इसके बाद आपका ये स्टेप है, इसके बाद ये है, आपको अगर आपने एक डेस्टिनेशन सोच के रखा है आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे
0: जी।
1: लेकिन पैशन क्या है, पैशन आपके लिए कोई रोड मैप बना के नहीं रखा है
0: जी।
1: पैशन आपके लिए है कि हमें यहाँ पहुँचना है या हमारा ये, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन वे इन पैशन, एंड पैशन को लेकर आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है देन फॉलोइंग योर डिग्री और योर जिसमें भी आप काम कर रहे हैं।
0: यस,
1: तो फिर भी पैशन इज समथिंग जो दिल से होता है। थैंकफुली मेरा जो प्रीवियस जो मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करती थी वो भी मेरा पैशन ही था
0: जी,
1: बट वो पैशन में जब मैंने देखा कि हाँ अच्छा तो हो ही रहा है, यू काइंड ऑफ गेट बोर्ड, ओके यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, आपके पैशन ये भी है, हम ये भी करना चाहते हैं, हो सकता है मैं अब से 10 साल बाद मेरा पैशन मैं कुछ और भी करूं, मेरे और भी पैशन्स हैं।
0: वाओ,
1: सो हो सकता है कि आफ्टर 65-70 आई वांट टू डू समथिंग एल्स, और भी कुछ करना चाहिए। सो हाँ, ये पैशन को ड्राइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपके लिए रोड मैप नहीं होता है। सो बट पैशन में जैसे अभी भी कभी रात को 2 बजे भी लौटती हूँ, मैं 3 बजे भी लौटती हूँ, पार्टीज खत्म हो रही है तो रैप अप करना है, इट्स नॉट अ वेरी ग्लैमरस थिंग। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में भी लगता था अरे बहुत ग्लैमरस है, पर एंड ऑफ द डे जब हम हैंडओवर करते थे साइट तो रात भर काम करके सुबह 5 बजे लौट रहे हैं सफाई करा के सब कुछ करा के। तो सेम थिंग हमारे प्रोफेशन में भी है, केटरिंग में भी यही है कि हम लेट नाइट भी आ रहे हैं। ये जो है, ये जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है या मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैं काम से ही लेट हो रही हूँ, ये भी एक एम्पावरमेंट है कि मुझे एम्पावर्ड हूँ मैं कि मैं ये काम करके इतना लेट आ रही हूँ, दे ट्रस्ट मी एंड हैव गिवन मी। सी, बैकबोन तो वही है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: वाकई देखिए, जब कभी भी मैं पैशन की बात करती हूँ ना, सो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं ना तो आपको थकान कम महसूस है, आपको ना बड़ा सेटिस्फाइड महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं ना आप उसे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, एंड एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद हैप्पीनेस। और यही कारण है कि आप पैशन को एफर्टलेसली कर पाते हैं, एनर्जी उसमें आपकी ज्यादा होती है और आपको ना रिग्रेट्स कम होते हैं। और जहां पर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर वो आपका पैशन नहीं है, उसे फॉलो करते हैं तो होता क्या है कि आपकी एनर्जी लेवल ना कम हो जाती है और वहां आप हर रोज ये सोच रहे होते हैं ओहो मुझे ये करना है, रादर देन कि मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूँ, बस यही डिफरेंस होता है। अदरवाइज तो दुनिया है और सारी दुनिया अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस अपनाती ही है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई टैलेंट है तो चाहे उसे हॉबी के रूप में, चाहे उसे किसी भी तरीके से फॉलो जरूर करिए, आपकी जिंदगी में एंथुजियाज्म और एनर्जी एक्चुअली बनी रहेगी और तब आप जिंदगी को और खुशी से जी पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं सोनाली चैटर्जी से। सोनाली चैटर्जी जो हैं वो फाउंडर हैं पंच फोरन और एग्जॉटिक क्विज़ीन की। अब सोनाली जी, बहुत सारी बातें आपसे की, लेकिन मुझे ये बताइए, जाने से पहले आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, क्या कह के जाना चाहेंगे आप उन सभी को?
1: एम्पावरमेंट, सबसे पहली बात है कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं वेमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं खुद के लिए नहीं, मैं ये फॉलो भी करती हूँ। सो ऐसा है कि मैं एक ब्रांड की, अभी मैं ब्रांड पे काम कर रही हूँ और उनका कुछ कॉरपोरेट्स में जो हेल्दी फूड देना है, तो वैसे एक ब्रांड के साथ हूँ और कई सारे मतलब पॉइंट ऑफ सेल खुल रहे हैं ऑल ओवर दिल्ली NCR। बट हमारा मोटो ये है कि हम उसमें इट्स मोर वेमेन ओरिएंटेड ब्रांड, बिकॉज जो ओनर्स हैं वो वेमेन है, एज अ शेफ आई एम अ वुमेन, एंड हमारे जो पॉइंट ऑफ सेल पे जो लड़कियां, वहां पे हम ज्यादातर लड़कियां ही रखेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा हो हम वेमेन को ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे।
0: वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इनफैक्ट मैं हमेशा यही कहती हूँ, जैसे मैं इस कार्यक्रम की बात करती हूँ, वी यानी वी स्टैंड टुगेदर। अगर हर महिला अपने आस पास कुछ महिलाओं के हाथ पकड़ ले तो हम सशक्तिकरण को बहुत ही स्पीड से ना सिर्फ एंजॉय कर पाएंगे लेकिन उसे महसूस कर पाएंगे। और जब एक परिवार सशक्त होगा तो एक समाज सशक्त होगा, जब समाज सशक्त होगा तो एक राज्य सशक्त होगा, जब राज्य सशक्त होगा तो देश, और देश सशक्त होगा तो पूरा विश्व सशक्त होगा। और सोचिए, सपना देखिए उसका, जब पूरे विश्व में सशक्तिकरण होगा और हमें जेंडर इनइक्वालिटी की बात ही नहीं करनी होगी, महिलाओं को कोई डर नहीं होगा, महिलाएं भी उतनी ही खुशी से जीवन को जी पाएंगी जितनी खुशी से, अगर मुझे लगता है जो जितनी भी प्रायोरिटीज हैं या फिर कहना चाहिए जितनी भी चीज़ें पुरुषों को मिलती हैं, है ना। ये एक सुंदर सा सपना, लेकिन ये सपना साकार जरूर होगा। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद सोनाली जी, आज आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: मैं सभी पुरुष या महिलाओं सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि एम्पावरमेंट, जो वेमेन एम्पावरमेंट है
0: जी,
1: ये कोई मंजिल नहीं है
0: जी,
1: ये रोज की आदत होनी चाहिए।
0: यस,
1: सो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि ये हमें एक आदत पे डाल दे कि ये दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। इट्स नॉट जस्ट कि हमें आगे ये करना है, ये मंजिल नहीं है, आज से शुरू होना है, अभी से शुरू।
0: वाकई भाई, इसी बात पर मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते होगी मेरी आपसे मुलाकात। टिल देन फील गुड फील लव।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आपको पता है मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूं जो मानवता की राह पर चलते हैं, जो ऐसी राह पकड़ते हैं जिससे इस पूरे समाज का भला हो सके। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है नम्रता नारायण। नम्रता नारायण जी फाउंडर ट्रस्टी हैं रामा फाउंडेशन की, और रामा फाउंडेशन की एक बहुत ही अथक पहल है मैत्री एक परिचय। आज रामा फाउंडेशन और मैत्री एक परिचय के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि मैंने कहा आपको कि रामा फाउंडेशन और मैत्री एक परिचय ने एक अथक पहल की है और इस अथक पहल से बहुत सारी जिंदगियों को बदला जा रहा है। तो आज इसके बारे में करेंगे बात, और उसके लिए करेंगे नम्रता नारायण जी का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। नम्रता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है और मैं क्या कर रही हूँ उसको हमारे जो श्रोता हैं वो सुनेंगे, और मैंने कितनी मुश्किलों से आगे बढ़ाया है ये सुन करके शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा और मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
1: वाकई नम्रता जी, सबसे पहला सवाल, मैत्रेय या फिर रामा फाउंडेशन, इसका गठन कब हुआ और मैत्रेय एक परिचय का गठन कब हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
2: एक्चुअली रामा फाउंडेशन

0: साल के, 5-6 साल के बच्चे जो कि घर में रहते हैं, उनको देखभाल करने के लिए, उन्हें समय पे खाना देने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए कोई नहीं होता था। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कि ये जब काम करने के लिए जाएंगी तो अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ देंगी और हम लोग उनके बच्चे का केयर करेंगे और फिर उस दौरान में हम उन्हें बढ़िया अच्छे खाना, न्यूट्रिशनल फूड देंगे, उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे जिससे कि उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होगी। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था दुलार का, और वो अच्छे से काम कर सकें और जब काम करके लौटें तो अपने बच्चों को ले करके वापस अपने साथ घर चली जाएं। तो ये बहुत सक्सेसफुल मेरा प्रोजेक्ट चला था, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा इशू हुआ था। एंड उसके बाद हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट पर दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, मैत्री एक परिचय, जिसका उद्देश्य था उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ना जिनके पास स्किल तो है बट प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो मार्केट कर सके अपने प्रोडक्ट्स की।
1: तो दोस्तों जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं रामा फाउंडेशन के साथ। रामा फाउंडेशन से उनकी फाउंडर ट्रस्टी नम्रता नारायण जी हमसे ढेर सारी बातें कर रही है और हमें इस फाउंडेशन के और इसकी एक खास पहल मैत्री एक परिचय के बारे में बता रही है। अब आपसे जानना चाहूंगी नम्रता जी, मैत्री एक परिचय क्या करती है, कैसे करती है और इसके बेनिफिशियरीज कौन हैं?
1: मैत्री एक परिचय बेसिकली हमने जो बताया पहले आपको कि उन महिलाओं को हम प्रमोट करते हैं जिनके पास स्किल है हैंडीक्राफ्ट, अच्छे हैंडीक्राफ्ट बनाने के, कुछ इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बनाने के, जैसे कि अचार हो गया, पापड़ हो गए, वड़ियाँ हो गई, जो कि वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से अपने घर से शुरू कर सकती हैं और उसके बाद वो बना करके हमें देती हैं। उस प्रोडक्ट को हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाते हैं और हमने एक ब्रांड भी बनाया मैत्री, मैत्री का एक ब्रांड है हमारा। उस ब्रांड के तहत भी कई जगह वो रिटेल होता है, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटेल्स में जाते हैं और कई महिलाओं को इससे रोजगार मिल रहा है और गांव की महिलाओं के साथ साथ कुछ शहर की महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं जो कि स्मार्ट वर्क करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, अकाउंटेंसी करती हैं और जैसा जिसका स्किल है उसके हिसाब से हमने इनको प्लेटफॉर्म दे रखा है।
0: दोस्तों ये बड़ी अच्छी चीज है, इसे कहते हैं कि हम कॉम्बिनेशन में सबको एक साथ स्वावलंबी बनाएं, एक साथ इंडिपेंडेंट बनाएं। क्योंकि अगर आप देखेंगी कि बहुत सारी सी महिलाएं हैं जिनके पास हुनर है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने हुनर का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, और वहीं पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास ना सिर्फ टैलेंट है लेकिन साथ के साथ एक नेटवर्क है, उन्हें ये नहीं पता है कि भाई इस नेटवर्क का वो फायदा कैसे उठा सकती हैं। सो शायद इन दोनों को साथ लाने का काम किया है मैत्री ने, और मैत्री की सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं एक दूसरे की मित्र बन जाएं और एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बड़ी खास पहल है मैत्री की, कितनी महिलाएं और किस प्रकार से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, इसके बारे में करते हैं बात। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर मैं चल रही हूँ आज नम्रता नारायण जी के साथ, जो की फाउंडर ट्रस्टी है रामा फाउंडेशन के, और इनकी खास पहल मैत्री एक परिचय के बारे में आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नम्रता जी, अब मुझे ये बताइए कि कितनी महिलाओं को अब तक आप स्वावलंबी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना चुकी है मैत्री के जरिए, और ये जो महिलाएं हैं ये महिलाएं किस प्रकार के सामान बनाती हैं, और आप इन सामान को कैसे प्रोक्योर करते हैं और आगे लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं?
1: मैत्री में उन महिलाओं को जोड़ा गया है जो कि हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। जैसा मैंने बताया गया कि ये लोग इंडियन ट्रेडिशनल स्नैक्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, तरह तरह के पिकल्स बनाते हैं, वड़ी बनाते हैं, और कुछ आपने देखा होगा कि सत्तू एक प्रोडक्ट, बहुत प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है, वो भी महिलाएं बनाती हैं, और ये अपने घरों से बनाती हैं। और कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने एक्चुअली, कि हमारे यहाँ स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन करके है, NURLM है, जिसके तहत सरकार कुछ गांव की महिलाओं को SHG ग्रुप्स बना करके, SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, उसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और महिलाओं को एक जगह भी दिया जाता है जहां पर वो एक साथ इकट्ठा होकर के बनाते हैं प्रोडक्ट्स को। तो महिलाएं ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास बनाते हैं और फिर हम अपनी व्हीकल भेजते हैं और वहां से सारा एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जब महिलाएं कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाती हैं, हमारे लिए बना के देती हैं, तो वो क्वालिटी को हम लोग पहले बताते हैं कि आप किस तरह से किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को, इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे, फिर किस तरह से हाइजीन मेंटेन करेंगे, और जब प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो उसका वेट लिया जाता है, वेट लेकर के उसको प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, और एक महिलाओं का अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है कि इस ग्रुप ने इतने केजी का ये यूनिट्स दिया है, इतनी यूनिट्स उनके इस ग्रुप से आई है, फिर उनकी पेमेंट भी होती है। और महिलाओं को हम जगह जगह प्लेटफॉर्म भी देते हैं जहाँ पर कि हुनर हाट लगते हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगते हैं, वहाँ पे भी ये महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स के साथ जाती हैं। महिलाओं को बड़े बड़े सम्मान अवार्ड्स दिए जाते हैं। हम लोगों ने खुद ही 2 अवार्ड्स करवाए थे जिसमें कि बड़े बड़े हमारे गणमान्य आए थे, जिन्होंने इनको संबोधित किया, इनको सम्मान किया, और महिलाओं को भी मौका मिलता है कि ये भी 2 शब्द एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कह सके, अपनी बात को रख सके। और इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 2 महिलाओं को लखपति बनाया है, और मेरे ख्याल से 200 से भी ज्यादा महिलाएं हैं जो कि मैत्री के जरिए जुड़ी हैं, और उनको कई सारे फायदे हुए हैं। आज वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, कुछ महिलाएं अभी भी जुड़ करके अपने प्रोडक्ट की रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं, और अच्छा इनकम यहाँ से उनको जनरेट हो रहा है।
0: क्या बात है, सुनकर वाकई एक सपने जैसा लगता है नम्रता जी, कि महिलाएं जो कि हमेशा से ये चाहती थी, ना सिर्फ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो लेकिन घर के खर्चों में वो भी एक हिस्सेदारी कर पाए। लेकिन परेशानी ये है कि घर के रखरखाव के साथ महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी के होते हुए उन्हें परेशानी ये आती है कि बच्चों का भी ख्याल रखना है, घर का भी ख्याल रखना है, और उसके बाद कोई एक नया हुनर सीख कर नई नौकरी पर जाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑलरेडी टैलेंट है, या आपने बचपन से जिन चीजों को परिवार में बनते हुए देखा है और आपने उसे इंबाइब किया है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। अब आज के जमाने में बहुत सारी वर्किंग महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर पापड़, बड़ी, अचार, इन सारी चीजों की काफी डिमांड रहती है, और जब कमर्शियल सेटअप पर हम जाते हैं और इन चीजों को खरीदते हैं तो हमें लगता है कि वो घर वाला स्वाद नहीं आया। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैत्री की महिलाओं से जब हम ये सामान खरीदेंगे तो हमें वो घर वाला स्वाद आएगा, क्योंकि इसे वो महिलाएं बना रही हैं जो अपने घरों से और ये सारा सामान मैनेज करके वो ये सामान दे रही हैं। अब ये तो बात रही कि मैत्री में महिलाएं जो हैं वो न सिर्फ अपने हुनर के साथ आती हैं और उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ नम्रता जी, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाएं जो इच्छुक होती हैं उन्हें ये सब कुछ सिखाया भी जाता है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है?
1: बिल्कुल, मैंने बताया कि NURLM के तहत में गवर्नमेंट इन्हें ट्रेनिंग देती है, और किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाए, किस तरह से उसमें इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हो, उसकी क्वालिटी हो, उसके लिए मैं खुद ही बहुत वहाँ पर हर ट्रेनिंग सेशन में मौजूद रहती हूँ, बताती हूँ कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आप इन्हें ट्रेनिंग दें और महिलाएं वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाएं जिनकी हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम बनाते हैं, वो हमारे हो सकता है कि ट्रेडिशनल एक बहुत बड़ा जियो टैग प्रोडक्ट हो लेकिन उसकी डिमांड नहीं होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को उन महिलाओं को बनाने के लिए प्रेरित किया जाए जिसकी डिमांड की बनाई जा सकती है और जिनको बेचना आसान होता है, तो और जिनके रेट्स, देखिए सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर कि जो क्वालिटी के साथ साथ आप उसकी MRP उसके प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि हम क्वालिटी और प्राइसिंग को कैसे कंट्रोल कर सके जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा हम बायर को अट्रैक्ट कर सके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर्स होता है जिस पर भी हम लोग काम करते हैं और महिलाओं को निरंतर समझाते रहते हैं कि आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाएंगे लेकिन अगर उनकी प्राइसिंग बहुत हाई करेंगे तो उनके लिए लिमिटेड आपके पास बायर्स होंगे। तो ये उनकी रेगुलर काउंसलिंग चलती रहती है, उनको समझाया जाता है और वो कई महिलाएं इस पर फोकस होकर के काम भी कर रही हैं। लेकिन हम लोगों की है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, शायद आपके प्रोडक्ट की लुक डिफरेंट हो, आपका स्वाद डिफरेंट हो। आपने जैसे अभी बताया कि घर का स्वाद हम मिस करते हैं, तो मैत्री घर का स्वाद हमारा टैगलाइन है, तो आप समझ सकते हो कि आपको बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको घर का स्वाद है। घर के स्वाद में मम्मी, अपनी नानी, दादी के स्वाद तो आते ही आते हैं। इसमें एक घर के स्वाद का एक और सेगमेंट है कि जैसे कि हम बिहार से हैं तो हमारे बिहार के कुछ खास प्रोडक्ट हो, बंगाल हैं तो बंगाल का कुछ खास प्रोडक्ट हो, ऐसे ग्रेन्स शामिल हो जो कि स्टेट आइडेंटिफाइड ग्रेन्स हो जो हमारे यहाँ हमारे ब्रांड में मिलते हैं। जैसे आपको मिलेगा गोविंद भोग का राइस, मिलेगा गोविंद भोग राइस है जो कलकत्ता का फेमस है, कतरनी चूड़ा जो कि बिहार का फेमस है, कुछ स्पाइसेस मिलेंगे जो केरला के फेमस हैं। तो ऐसे छोटे किसानों को भी हमने जोड़ा है और गांव की महिलाओं जबकि उनके चावल लिए जाते हैं, प्रोक्योर किए जाते हैं, उनके मसाले लिए जाते हैं, प्रोक्योर किए जाते हैं, तो गांव की महिलाएं घर बैठ करके उसको सफाई करती हैं, उससे भी उनको एक उनका इनकम जनरेट होता है रेगुलर बेसिस पे। तो पूरा का पूरा एक कंपाइल्ड हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें गांव की महिलाएं, शहर की महिलाएं मिल करके काम कर रही हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मैत्री का।
0: देखिए भाई, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को वो ना सिर्फ रोजगार मिल रहा है, अपने लिए वो काम कर पा रही हैं लेकिन उन्हें आइडेंटिटी भी मिल रही है और लोग उनके काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी हम किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पूछेंगे इसके बारे में नम्रता जी से। लेकिन उससे पहले लेने वाली हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं नम्रता नारायण जी के साथ। नम्रता जी, सुनने में बहुत आसान लगता है, आप जो बता रही हैं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल केक वॉक है, यानी इतना आसान कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके अंदर हुनर है, उन्हें ट्रेनिंग मिली और उसके बाद उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता गया और आज 5-स्टार होटल से लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट्स तक और कहना चाहिए अलग अलग एरियाज तक उनका सामान पहुंच गया। पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, तो किस प्रकार के चैलेंजेस आज भी आप फेस कर रही हैं?
1: एक शब्द कहूंगी, आपने केक वॉक कहा है, मैं कहूंगी इसे फायर वॉक है।
0: वाकई
1: चैलेंजेस तो आते ही हैं, और चैलेंज जब तक नहीं आते हैं तब तक आपको किसी भी काम करने में मजा नहीं आता है। मैं मानती हूँ तो स्ट्रगल का मतलब भी आपको समझ में नहीं आएगा, और जितना ज्यादा वो कहते हैं ना स्ट्रगल कठिन होगा उतना ही आपको काम करने में मजा आएगा। तो मैं अपने स्ट्रगल को बहुत इंजॉय करती हूँ, और स्ट्रगल तो आपको हर दिन एक स्ट्रगल सिखाता है और आप सीख करके हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहूंगी कि ये फायर वॉक है, लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आप जो सोचते हैं, आपने जो प्लानिंग की, आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, तो आप फायर वॉक को केक वॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं।
0: भाई देखिए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप एक सफल जीवन जिए, और उसमें आप अकेले तो जा नहीं सकते, सफल जीवन में आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, तो जरूरी ये है कि आप जब सबका हाथ थाम कर चल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपनी प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं। एंड नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ ऐसा ही काम मैत्री का भी है। अब आप इंक्विसिटिव होंगे, आपको लग रहा होगा कि भाई ये मैत्री के प्रोडक्ट्स हमें कहां पर मिलेंगे, कहां जाकर आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसी महिला है जो सुन रही है और जिसके अंदर ये हुनर है, तो उसे लग रहा होगा कि मैं मैत्री से कैसे जुड़ सकती हूँ, पूछूंगी ये सवाल। बस जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी एक बेहतरीन सा गाना, और आप कहीं मत जाना, जुड़े रहना अपने रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं नम्रता नारायण जी के साथ। नम्रता जी जो कि फाउंडर ट्रस्टी हैं रामा फाउंडेशन की, मैत्री एक परिचय इनकी एक खास पहल जिसमें बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं, बहुत सारी महिलाएं ना सिर्फ घर से अपने हुनर को लेकर आती हैं और उसको एक सफल व्यापार में बदल रही हैं। वही नहीं, उनका जो बनाया हुआ सामान है वो वहां पहुंच रहा है जहां वो पहुंचाना चाहती थी। 5-स्टार होटल से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक आप देखेंगे कि ये मैत्री के जो प्रोडक्ट्स हैं पहुंचे हुए हैं। और अगली बार अगर आप किसी 5-स्टार होटल में जा रहे हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर अगर आप अचार के डब्बे पर मैत्री का नाम पढ़ते हैं, क्या आपको कोई और ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिस पर मैत्री का नाम हो, तो समझ जाइएगा इसे किसने बनाया है। नम्रता जी, अगला बहुत अहम सवाल, अगर मान लीजिए कि कोई आपकी इस पहल से जुड़ना चाहता है, कोई महिला है जो इसकी बेनिफिशियरी बनना चाहती है, तो वो क्या कर सकती हैं? और मान लीजिए कि हम जैसे लोग हैं जो ढेर सारे हमारे लिसनर्स फिलहाल आपको सुन रहे हैं, अगर वो मैत्री के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं?
1: देखिए मैत्री के, अभी मैं मैत्री के प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे मैं उस पर आती हूँ, लेकिन अभी आपने कहा ना कि आप जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आपको डब्बे पे मैत्री का अचार दिखता है तो आप कहोगे कि कहाँ से मिलेंगे। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का एक वाक्य है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। एक हमारे पास कॉल आती है कि मैम मैत्री से आप बोल रहे हो, मुझे आपका मिक्स पिकल अचार बहुत पसंद आया है और बताइए कहाँ से मिल सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको हमारा मिक्स पिकल अचार कहाँ मिला और आपने कहाँ उसे टेस्ट किया है। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने आपका जो अचार है, एक रेस्टोरेंट है पिंड बलूची, वहाँ हम लोग अपनी फैमिली के साथ एक ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए गए थे और वहाँ हमें अचार पसंद आया, तो हमने रेस्टोरेंट से के जो सर्विंग बॉयज थे उनसे बात करी कि यह अचार का मुझे डब्बा चाहिए। उन्होंने जब डब्बा ला करके दिया, वहाँ से उन्होंने कॉन्टैक्ट लिया और मुझे कॉल किया। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको इतना पसंद आया, तो मैत्री का जो प्रोडक्ट आप ले सकते हो, हमारी वेबसाइट है maitrighar.com, वहां से भी आप हमारे प्रोडक्ट को ले सकते हैं। दिल्ली NCR की कई रिटेल शॉप पर भी, बड़े बड़े रिटेल शॉप पे भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां से भी आप हमारे प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। जब आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे आपको प्राइस बहुत रिजनेबल ही दिखेंगे, जिसमें कि हम कोई पैकेजिंग और डिलीवरी कॉस्ट नहीं लेते हैं और कंपैरेटिवली बहुत रेट वाइज भी हमने काफी उसको मैनेज किया है, सो दैट कि वो आज की डेट में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के भी रीच में आ सके और क्वालिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्योंकि आप ये सोचे कि रेट कम है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, बिल्कुल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि एक अच्छे रेट में क्वालिटी के साथ हम आप तक प्रोडक्ट को पहुंचा सके। बस लोगों से विनती है कि जितना प्रोडक्ट खरीदेंगे, महिलाओं जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा, क्योंकि कुछ करते हो और आपने जैसे मेरा इंटरव्यू किया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है, सोशल एनकरेजमेंट है, मीडिया का सपोर्ट है। तो थैंक यू वेरी मच, और आपके जरिए मैं जो हमारे कस्टमर हैं या जो कस्टमर बन सकते हैं उनसे यही कहूंगी कि एक बार जरूर ट्राई करें, हमें फीडबैक दें, और हम निरंतर कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को हम अच्छा करें और बढ़िया करें, तो आपके फीडबैक पे जरूर काम होगा।
0: वाओ नम्रता जी, मान लीजिए आपकी इस पहल से कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे वो आप तक पहुँच सकते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा नंबर हर जगह सर्वमैत्री एक परिचय के नाम पर जब आप गूगल पे जाओगे तो मैं दिखूंगी और साथ में नंबर दिखेगा, और यूजुअली सारे नंबर्स को मैं लेती हूँ ताकि मैं डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी के साथ जुड़ूं और उसकी भावनाओं को समझते हुए। हमारे इंटरव्यू के दौरान आपने एक जिक्र और किया था कि महिलाओं के लिए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है, तो मैं ऐसी कॉल्स ले करके उन्हें समझाती हूँ कि आप उस समय काम करें जब बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जॉब पे चले गए, अपना तीन चार घंटा निकालें, उसी दौरान आप प्रोडक्ट्स को बनाएं, जिससे कि आपकी फैमिली को भी आपका समय मिलेगा और आपके प्रोडक्ट को भी आपका समय मिलेगा और आपको भी आपका समय मिलेगा और आपका भी एक दिन समय आ जाएगा।
0: वाकई सो दोस्तों, अगर आप मैत्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो कुछ भी नहीं करना है, www.maitri.com एक परिचय, EKPARICHAY जी हाँ, मैत्री एक परिचय पर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप इन्हें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो MAITRI एक परिचय बहुत ही आसान है, आप इन्हें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। न सिर्फ ये घर का स्वाद आप चख सकते हैं, लेकिन इस घर के स्वाद को आप अपने घर का हिस्सा बना सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने ढेर सारी बातें की नम्रता नारायण जी से। नम्रता जी जो कि फाउंडर ट्रस्टी हैं रामा फाउंडेशन की, और एक बड़ी खास पहल ये करे हुए हैं, और इनकी ये जो खास पहल है मैत्री एक परिचय, मुझे लगता है एक बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव से बहुत सारी महिलाओं को ढेर सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। नम्रता जी तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: आपके रेडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके रेडियो के जरिए मुझे मौका मिला कि आपने भी मुझे सुना और कई आपके जो लिसनर्स हैं वो भी सुनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हिम्मत कभी मत हारो और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। आपके इरादे पक्के होने चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका समय जरूर आएगा, अपने समय का इंतजार करें। महिलाएं कई बार इम्पेशेंट हो जाती हैं, इम्पेशेंट ना हो, परेशान होती हैं, परेशान अपने मन पर अपनी परेशानी को अपने मन में रखें और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे मैं कहूँ तो मुझे अभी सफलता नहीं मिली है, अभी मैं तो चल रही हूँ, मंजिल का कुछ पता नहीं है, फिर भी मंजिल को ढूंढ रही हूँ।
0: बहुत खूबसूरत अंदाज में नम्रता जी ने बताने की कोशिश की है कि भाई अभी फिलहाल तो ये मंजिल की तलाश में है, लेकिन इनकी मंजिल मुझे क्लियर नजर आ रही है। इतनी सारी महिलाएं, उनके इतने सारे हुनर, और उन्हें दिलाना एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो न सिर्फ अपने रोजगार को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना लें, लेकिन साथ के साथ उस रोजगार से एक बहुत ही डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। नम्रता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो दोस्तों, आज हमने नम्रता जी से ढेर सारी बातें की, लेकिन अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आरजे भावना ले रही है आपसे इजाजत, अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। टिल देन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर लें ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।

7810078 अगर कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई बात आप किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई गाना आपको सुनना है, किसी गाने को आपको डेडिकेट करना है, तो नंबर हमारा बहुत ही आसान है, एक बार फिर से बता देती हूँ, 8010781078। और मैं आ चुकी हूँ आपके पास में। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और बहुत अच्छी मैं तब और ज़्यादा हो जाती हूँ जब मैं स्टूडियो में आप लोगों के पास में आती हूँ। तो ये प्रोग्राम और ख़ास तौर पे ये वक्त मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कहीं के कीमती वक्त है, जब मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ और हम गाने इंजॉय करते हैं जो कि प्यारे प्यारे से हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं एक गाना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनी रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रांगा आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में जहाँ मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ, और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं। आज उलझती सी जा रही जिंदगी को ठहर कर थोड़ा समझेंगे और उनमें खुशियाँ कैसे लेकर के आएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन बातों में मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ जानने, इनफैक्ट सीखने को मिलता है। तो आपका सवाल, आपका जवाब, आपकी बातें हमारे लिए सभी कुछ बहुत कीमती है, इसलिए आप ज़रूर बताना हमें अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे बात करूंगी उस वक्त की, जब वो वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है और एक टाइम पर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तुलना जो है ना, कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब के सोचने समझने काम करने का तरीका बहुत अलग है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत खूबसूरत है और बहुत अनमोल है, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं और हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन इसका हमारे दिमाग पर, हमारी पर्सनालिटी पर कितना बुरा फ़र्क पड़ सकता है, वो असर पड़ सकता है, आपको मैं बताऊंगी और इससे बचने के उपाय भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए, सारी बातें आज के प्रोग्राम में होने वाली हैं और आपका सपोर्ट मैसेज के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइए। चलिए इन्जॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और देखिए, लाइफ में आज के टाइम पर खुश रहना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरे रहते हैं, है ना। कई लोगों की ये प्रॉब्लम, कई लोगों की शिकायत इनफैक्ट होती है कि प्रियंका हम ना हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, कभी हमारे घर में तो कभी ऑफिस में, कभी कोलीग में, कभी फ्रेंड्स में, कभी रिलेटिव्स में, ये सब चलता ही रहता है। सुकून कहाँ मिले ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। कई लोगों की ये बातें मुझ तक पहुंचती हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार आज कितने ज़्यादा, मतलब हम इस तरह की लाइफ जीने के आदि से हो गए हैं कि अपनी खुशियां हम भूलते ही जा रहे हैं। और एक्चुअल में खुश कैसे होना चाहिए दिल से, ये हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ज़्यादातर लोग इसी ट्रैप में ना फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप सुकून पा सकते हैं, जिससे आपको सुकून के साथ शांति मिलेगी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चलते चलते। आई नो आप थक गए हैं और इस थकावट को आप दूर करना चाहते हैं, खुशियों को इन्जॉय करना चाहते हैं और इस पल को महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब होती है जब हम अपने काम का रूटीन नहीं बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले के लोग, मालूम है, रूटीन बनाकर चलते थे। रूटीन पहले पेपर पे नहीं होता था, दिमाग में होता था कि उनको किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। और यकीन मानिए, पहले के लोग समय से पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन आज की बात करें, हम इसके नोट बना लें या फ़ोन में मैसेज कर लें या जो भी हमें ईजी वे लगता है, हम वो सारी चीज़ें कर लें। लेकिन उसके बाद भी हम एक दो दिन तो रूटीन याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैबिट में शुमार नहीं है। तो रूटीन बनाना जो है, इसकी आदत आप बनाइए। देखिए, लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप रूटीन बनाकर चलिए, इससे जीने की कोशिश कीजिए। आप बिना रूटीन के लाइफ जी रहे हैं तो आपको सब कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ में सिमटा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। किसी भी काम को फिक्स आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से जीना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को शुरू करोगे, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। तो रूटीन में काम करना बेहद ज़रूरी है। वहीं आपको एक चीज़ और बताऊँगी जो मुझे बहुत बहुत ज़रूरी लगती है कि ज़िंदगी में इस तरह का ये चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है उसके लिए बात करेंगे थोड़ी इसी देर में। एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ। और एक चीज जो मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, अब वो पता है क्या है कि देखो, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, है ना। हम हर किसी की हाँ में हाँ करके अपने आप को पीड़ा देते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए जो लोग काम करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल दूसरों की खुशियों के लिए काम कीजिए, लेकिन आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, तो आप उन खुशियों के लिए काम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं ना, वो हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, वो आपके एफर्ट्स को नहीं देखते हैं। बल्कि कई लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए होते हैं, तो इस टाइम पर ना कहना सीखिए। सिंपल लाइन में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ना कहना आना चाहिए, राइट। और बहुत सारे लोग ना कह ही नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि बार बार खुद ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करते हैं जो उनके लिए भी सही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको काम करना चाहिए, है ना। अब जैसे आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, फैमिली में हैं, जिसके भी साथ में हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, लेकिन आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर किसी की खुशियों पे इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं, तो वो आप जाने दीजिए। हमेशा आप उन लोगों को खुश कीजिए जो आपके ज़रे से एफर्ट से वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। हमेशा ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में चुने भी और उनके लिए एफर्ट दिखाएं। और जो आदमी, जो ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति जो आपके एफर्ट से खुशी नहीं है, जो आपकी खुशियों में खुशी नहीं है, और आप जितना भी उनके लिए कुछ भी कर लें बट उसको खुशी ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए और उनको ना कहना सीखिए, राइट। जो मुझे लगता है कि अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों की जिंदगी बहुत इजी हो जाने वाली है, राइट। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको एक चीज और, जो हमारे बुजुर्ग भी यही बात, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यही बात कहते हैं और बहुत सही कहते हैं, अब वो क्या है ये आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। वही हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी एक बात कहते हैं, आपने भी उनसे ज़रूर सुनी होगी। और पता है वो जो भी कहते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस वक्त हमें वो बात समझ ना आए, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो सिचुएशन को फील करते हैं, उनको उससे सामना करते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात हमारे बड़े बोल कर चले गए। तो एक यही लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगती, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, कि जो भी स्थिति आए हर स्थिति में जीना सीख लीजिए। बहुत कमाल की बात है। आप भी सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, जहाँ सुकून ही सुकून है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो देखिए, हमारी जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। यही स्थितियाँ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं इस स्थिति को एक्सेप्ट, वो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी सोच से, अपने चीज़ों से। लेकिन वो लोग जो हम हर स्थिति में हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो कई बार आपकी परीक्षा होती है, और कई बार आपके दिन बदलने से पहले जो आपके पास इस तरह के दिन आते हैं ना, ये वो वाले होते हैं जो हमें एक बड़ा लेसन सिखा करके जाते हैं। तो जो लेसन सीख लेते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं वो हमेशा परेशान रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप परेशान हो, बल्कि हाँ, आप इस चीज़ से समझें कि जो हमसे कहा जाता है कि हर स्थिति में खुश रहा जाए, वो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको दुख में भी न्यूट्रल रहना आ जाएगा और खुशियों को भी इंजॉय करना आ जाएगा, वरना यूं ही परेशान ज़िंदगी बिता देंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और साथ ही मैं तो चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहो और वो करो जो आपको पसंद है। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना अपने लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम पे, लेकिन अगर आप वक्त निकाल पा रहे हैं तो अपने लिए उस वक्त को स्पेंड कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है आप अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं सकते। देखिए, हर कोई अपने लिए वक्त निकाल ही सकता है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, लेकिन वक्त सबके पास थोड़ा या ज़्यादा होता ज़रूर है। तो आप भी इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए और आप वो करें जो आपको पसंद है। अब आप सोचिए आपको क्या पसंद है, या आप ये सोचिए कि आज से 10 साल या 15 साल पहले आपको क्या करना पसंद आता था, आपको कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगती थी जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक अहम हिस्सा होती थी, रोल प्ले करती थी आपकी ज़िंदगी में, वो आप करना शुरू कीजिए। आपका मन क्या कहता है, क्या चाहता है, वो कीजिए। यकीन मानिए आप इतने एक्साइटेड रहेंगे ना अपनी लाइफ को जीने के लिए कि आपको रात को नींद तक नहीं आएगी एक्साइटमेंट में। इतनी खुशी आपको रहेगी कि हाय अब कल का दिन है, कितना खूबसूरत होने वाला है, मैं ये भी करूँगी, ऐसे भी करूँगी, वो भी होगा लाइफ में, ये भी। तो एक तो नींद हमें तब नहीं आती जब हम थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन एक नींद हमें एक्साइटमेंट में भी नहीं आती, और वो एक्साइटमेंट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी पसंद के काम करने शुरू कर दीजिए। और एक और चीज़ आपसे बोलूँगी, ये भी हमारे बड़े कहकर गए हैं और आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि कौन क्या कहता है कहने दीजिए, जाने दीजिए। इसको अगर दिल दिमाग में बैठाएंगे तो ज़िंदगी परेशान हो जाएगी, आपको जीने में बहुत भारीपन लगेगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जैसे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं। आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस जगह पर एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। कोई समझे ठीक, नहीं समझे तो जाने दीजिए, क्योंकि आप वहाँ सच्चे थे। बट उसकी सफाइयाँ बार बार अगर किसी को देते हैं तो वहाँ पर आप झूठे महसूस होते हैं। इसलिए ये चीज़ छोड़िए और आप ही परेशान होंगे, इसलिए इस चीज़ को जाने दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जीना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं जी पाए और घुट घुट कर ज़िंदगी आपने पूरा टाइम निकाल दिया, तो आखिर में जब आप बैठे होंगे चेयर पे और तब सोच रहे होंगे ना अपने आप को, तो सिवाय दुख के तकलीफ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको उस टाइम पीरियड पे लेके जाती हूँ जब वो वाली एज आएगी जब हम सोचेंगे बैठ के। मैं हमेशा आपसे, अगर आपने सुना हो तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप सोचो कि आप चेयर पर बैठे हैं और आप अपनी ज़िंदगी का आकलन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या किया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था। और जब आप पाएंगे कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद जो मैं लेकर आया था वो तो पूरा ही नहीं हो पाया, या जो मैंने सोचा था वो तो मैं कर ही नहीं पाया, और सिवाय पछतावे के और दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ आप पहले कर सकते हैं वो कीजिए, बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए और मल्टीटास्किंग से बचें। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और खुश रहिए। चलिए अब आपको एक बेहद ही प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मूड भी हैप्पी हो जाता है, यानी कि हम अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा वो सब पूरा समा लगने लगता है, होता है ना ऐसा। और पता है एक बात जो आपने अपने बड़ों से भी सुनी होगी और आपको ये पता भी होगी कि अच्छा अगर महसूस करना है, अच्छा काम करना है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके साथ में उठना बैठना शुरू कर दीजिए। पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, इसका असर बहुत पड़ता है हमारे ऊपर। इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए जो जीवन को लेकर के हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं और कुछ करने के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा जो लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, आज के यूथ को एक मैसेज दे सकता है। जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग रहेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ में इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, तो ये आप कर दीजिए। और एक चीज़ आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप सिर्फ दो तीन चीज़ें ही लाइफ में कर रहे हैं तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाइए। ये सोचिए कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है। ये सोच के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि जाने अनजाने में ऐसे रास्ते भी आपके खुल जाएंगे जहां आपको आपको राह ही राह मिलेगी। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये सब तभी हो सकता है जब आपका हेल्दी माइंड रहेगा, खुश रहेंगे, हल्का महसूस करेंगे और ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड रहेंगे। ये तभी चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगियों से ही जुड़ी चीज़ें हैं। इसको आप फॉलो कीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए, इसको अपना रूटीन बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है और ये बदलाव डेफिनेटली अच्छे होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को ना तुलना करने की बहुत आदत होती है, वो तुलना करते हैं एक दूसरे से, और ये वाली चीज़ आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है आपको मैं बताऊंगी। वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। इसके बारे में बात होगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और काफ़ी सारी बातें हमने की खुशियों को लेके कैसे खुश रहना है ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है लेकिन एक चीज़ जिससे आज के टाइम पर काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हैं और देखिए हमें लाइफ में लोगों से जुड़ना होता है चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए बेहतर बनाने के लिए दूसरों से जुड़ना पड़ता है लेकिन पता क्या होता है हम धीरे धीरे खुद को कंपेयर करने लगते हैं जब देखते हैं कि हम मान लो किसी के साथ किसी ग्रुप में हैं जहाँ हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बट हमारे सामने वाला जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में तो हम कंपेयर करने लगते हैं और पता है यही कंपेयर करने की जो आदत है ये हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती है और अक्सर ऐसा होता है जब एक मुकाबला शुरू हो जाता है और अपने आप को ये मुकाबला कब कैसे हम कंपेयर करने लगते हैं ये वाली चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अंदर ये होती है तो ये आप नहीं कीजिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कंपेयर करना तो बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है राइट इसलिए अगर आप भी कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन की आदत है आपके अंदर इसको आज ही से छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे गला रहा है तो वो आप मत कीजिए अपनी आदत को आप समझिए आप समझ सकते हैं कि ख़ुद को दूसरे से बेवजह तुलना करना एक ऐसी आदत हो सकती है जो आपने अपने जीवन में या तो बचपन में या किसी एक टाइम पर आपने सीखी और अब वो तुलना इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आप खुद परेशान होने लगे हैं तो देखिए ऐसा होता है कई बार ऐसा हो जाता है तो आपको बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने लिए बेहतर हैं और एकदम फिट हैं और आप जो हैं वो आप ही हैं भाई आप किसी से कंपेयर खुद को कर ही नहीं सकते हैं ये वाला ना मुझे लगता है कि एटीट्यूड ना अपने अंदर आपको रखना चाहिए ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर में आपको ऐसा लगेगा बस मैं हूँ और आपको आप खुद अच्छे लगने लगेंगे तो ये आपको एटीट्यूड रखना ज़रूरी है दूसरी चीज़ खुद से आप सवाल कीजिए कि आप खुद की तुलना दूसरों से क्यों करते हैं जब आप अपनी वजह को पहचान लेंगे तो उसे संभालना आपके लिए इजी हो जाएगा शुरुआती टाइम पर आपको थोड़ा वक्त लगेगा और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एक आदत है जो शुमार हो चुकी है और अब इसको थोड़ा ठीक करने में टाइम लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते आप ये खुद से सवाल कीजिए कि मैंने अगर कंपेयर किया तो क्यों किया मे बी बचपन से आप करते आ रहे हैं लेकिन अब क्यों मैं क्यों नहीं अपने लिए अच्छा कर पा रहा या कर पा रही ये सवाल अपने लिए रखना ज़रूरी है जिस दिन आप ये रख लेंगे उस दिन मुझे लगता है कि चीज़ें इजी हो जाएंगी तो कंपेयर करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है राइट तो मैं तो यही कहूँगी कंपेयर मत कीजिए बल्कि ज़िंदगी को इन्जॉय कीजिए ऐसे ही एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करना चाहूँगी और वो क्या है किस बारे में है ये आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में चलिए एंजॉय करते हैं गाना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं और अभी मैं एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रही हूं। एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोग इससे घिरे हुए हैं, कई लोग इससे परेशान हैं और वो है अपने आप को कंपेयर करना। पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और कई बार पता है क्या होता है, हमें दूसरे लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए लेकिन देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है। मे बी हमारे करीबी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंपैरिजन लोग करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आप कितना अफेक्टेड हो रहे हो उससे, इस चीज़ के बारे में बस आपको सोचने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आप सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे की ज़िंदगी आपकी काफ़ी ईजी होने वाली है। तो ख़ुद को कंपेयर किसी भी सूरत में नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने आप को जानने की तलाश में आप बढ़ते रहिए, आगे उस चीज़ को जारी रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ में रखना, अपने अंदर रखना ये ज़रूरी है, राइट? तो ये जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन मुझे लगता है कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और पता है आज के टाइम पे ना हम हर चीज़ पा सकते हैं अगर हमने ठान लिया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें खूब सारी पढ़ाई करनी है, एक मुकाम पर आना है, अच्छी जॉब हमें लेनी है या किसी पोस्ट पर हमें आना है, अच्छी सैलरी, ऑफ कोर्स सबको चाहिए अच्छी सैलरी और अच्छी जगह पर हमें रहना है। हर कोई सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहता है और ये वाली चीज़ें अगर आप देखें, अगर हम अच्छे से डट के मेहनत करते हैं तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं। लेकिन पता है आजकल अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना, अपनी ज़िंदगी को समझना, अपनी खुशियों को समझना, इस चीज़ को पाने के लिए ना तो हम सोच पाते हैं और सोच पाते हैं तो इसको पाने के लिए हमें कई वक्त लग जाता है, कई बार पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है लेकिन हम उसको नहीं पा रहे हैं, काम उस पर कीजिए, राइट? और मुझे लगता है कि आप यकीनन अपने आप को पा पाएंगे। कोई सवाल आपका है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको हम तक पहुंचाना है, नंबर हमारा है 8010781078। होप करती हूं कि आप इन चीज़ों को अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. देखा कितना प्यारा सा गाना मैंने आपको सुनाया है. ये गाना सुन के तो कोई अगर सैड भी होगा ना तो वो भी खुशी से झूम उठेगा. मैं गाने ही ऐसे लेकर के आती हूँ, 90s के खूबसूरत गाने. और अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या अपनी फरमाइश हमसे करना चाहते हैं तो नंबर, मैं पता है आपको इस प्रोग्राम में इतनी बार नंबर बताती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मेरे से ये बोले कि आपने का नंबर नहीं बताया. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप नंबर से बिल्कुल एकदम आपको समझ ही ना आए कि करना क्या है. तो बिल्कुल आपको आते ही नंबर देती हूँ और जाते वक्त भी. बहुत ही आसान ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 8010781078. ये हमारा नंबर है. देखा कितना आसान है. तो बस इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कीजिए. तो चलिए, मेरे चलने का वक्त हो गया है. मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कवि देव के बारे में। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव रीति काल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रयदाताओं और राजाओं को समर्पित करने के उद्देश्य से रचा था। वो खास तौर से श्रृंगार रस के कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के भावपूर्ण और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं, जिनमें हंसी की चोट, सपना और दरबार को विद्यालयों के साथ साथ बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है, तो आज इनके बारे में, यानी कि रीतिबद्ध कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। इनके जीवन की बात आपके साथ साझा करूंगा और इनकी रचनाओं का जिक्र भी होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों बात हो रही है आज कवि देव के बारे में। देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि देव का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है, लेकिन साहित्यविदों और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन वो अपनी काव्य रचनाओं में देव उपनाम का प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों में पिता का नाम बिहारीलाल बताया गया है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है आज आपके साथ साझा करूंगा कवि देव के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, माना जाता है कि कवि देव ने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं के सम्मान में रचा था। मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्हें अनेक आश्रयदाताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा संतोष सहृदय आश्रयदाता यानी भोगी लाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगी लाल ने उन्हें लाखों की संपत्ति उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जबकि देव का अधिकांश जीवन राज दरबारों, नवाबों और अमीरों के आश्रय में बीता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राज दरबारों का आडंबर, दिखावा और चाटुकारिता भरा जीवन कचोटने लगा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। कवि देव की रचनाओं के बारे में भी आपसे जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कवि देव की रचनाओं के बारे में। बताया जाता है कि 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही देव ने भाव विलास जैसी प्रौण रचना का सृजन किया था। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र की पैठ स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब मैं आपको उनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बताता हूँ, जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सिरजान, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, सुख सागर, प्रेम दीपिका, सुमेल विनोद और काव्य रसायन। तो ये इनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सवैये भी लिखे थे। कवि देव के सवैयों के बारे में भी बात होगी और सवैये लिखने में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो बात भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर। पल भर

प्यार गुलाब। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कवि देव के बारे में। उनके कुछ सवैये हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और उनकी भाषा भी अपने देश भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो लिखते हैं, ता दिन ते अति व्याकुल है, तिये जा दिन ते पिए पंत सिधारे, भूख ना प्यास बिना ब्रज भूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करो रिक मोरी सवै करे हारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी बैद बिचारी बिचारी बिचारे। कवि देव अपने दूसरे सवैये में लिखते हैं, बोली उठो पपीहा कहूं, पीब सु देखिए को सुनी कै धुनी धाई, मोर पुकारी उठे चहू ओर, सुदेव घटा घिर की चहू दहाई, भूली गई ती को तन की सुधी, देखे उतै बन भूमि सुहाई, सांसन सो भरी आयो गरु, अरु आसुन सो अखियां भरी आई। तो दोस्तों, इस तरह के सवैये लिखने का अंदाज था कवि देव का। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नफरत

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, कवि देव के सवैयों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। एक उनका सवैया जो कि राधिका की बात करता है, कान्हा की बात करता है। वो अपने सवैये में लिखते हैं, राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे, त्यों असुवा बरसे बरसानी को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जाई तेही छिन देव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू ते आपू ही में उर्जे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सवैये के माध्यम से उन्होंने राधिका और कान्हा की बात को भी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इस संसार में आया है उसे वापस जाना भी है। आचार्य कविदेव ने कई दशकों तक अपने आश्रयदाताओं के लिए अनुपम काव्य रचनाओं का सृजन किया था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन 1767 के आसपास उनका देहांत हो गया। फिर भी वो अपनी लोकप्रिय काव्य रचनाओं के कारण आज भी साहित्य जगत में विख्यात हैं। अब दोस्तों वक्त मेरे जाने का हो चुका है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
2: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दियो तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
3: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
4: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर अन्नदाता।
5: देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जब आपसे मैं मिलता हूं तो किसी न किसी फसल के बारे में बात करता हूं। आज मैं एक पेड़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। उसके इस्तेमाल से त्वचा को स्वस्थ रखा जा सकता है और मधुमेह के लक्षणों को भी कम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है ताम्र पल्लव। लेकिन आप कहेंगे कि ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसका जो बड़ा मशहूर नाम है वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पेड़ की कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका रंग शुरुआत में तांबे की तरह होता है और इस पेड़ की पत्तियों की लंबाई 8 से 9 इंच होती है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस पेड़ को पूरे भारत में सबसे प्राचीन और पवित्र माना जाता है। इसके अलावा इस पेड़ में बहुत से आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए भी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पेड़ है जिसका नाम है ताम्र पल्लव। लेकिन जो नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है उस नाम को सुनते ही आप कहेंगे कि हाँ, इस पेड़ को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। रोज़ाना आए दिन हम अपने घर के आसपास जहाँ भी जाते हैं ये आराम से नज़र आ जाता है। उस पेड़ के बारे में दोस्तों आपको पूरी जानकारियाँ दूंगा और उस पेड़ से क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे भी आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का राम राम, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
1: देखिए दोस्तों, आज जिस पेड़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसका एक नाम तो मैंने आपको बताया था, ताम्र पल्लव के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन ताम्र पल्लव के नाम से शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, और आपको बताया था कि ये पेड़ हमारे भारत का सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं, और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए बता देता हूं कि इस पेड़ का नाम है अशोक। और दोस्तों, अशोक के पेड़ को आप आए दिन कहीं ना कहीं देख ही लेते होंगे, और हो सकता है आपके घर में भी हो। अशोक का पेड़ बहुत फायदेमंद होता है। अशोक का पेड़ मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक है असली अशोक, जो कि आम के पेड़ की तरह फैलता है, और दूसरा है लंबा अशोक, जो कि सामान्य रूप से सबके घरों में देखने को मिल जाता है। लंबे बढ़ने वाले अशोक के पेड़ को देवदार की प्रजाति का वृक्ष माना जाता है, और अशोक के पेड़ का वैज्ञानिक नाम सरका अशोच है। देखिए दोस्तों, इस पेड़ से जैसा मैंने आपको बताया था बहुत सारे फायदे होते हैं। अशोक के पेड़ में बहुत से आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। और अशोक के पेड़ की जो छाल होती है, वो छाल, पत्तियां और जड़ें, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और अशोक के पेड़ को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा

बढ़ाने में मददगार माना जाता है। और दोस्तों, अशोक के पेड़ को इको फ्रेंडली माना जाता है। ये 24 में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। और भी बहुत सारी बातें हैं अशोक के पेड़ के बारे में, आपसे करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
1: देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि अशोक के पेड़ से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पेड़ को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने में मददगार माना जाता है और 24 घंटे में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो त्वचा को स्वस्थ रखने में भी फायदेमंद होता है। अशोक के पेड़ में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के साथ साथ त्वचा को भी स्वस्थ रखते हैं। अशोक की छाल की अगर हम बात करें तो अशोक की छाल को पीसकर चेहरे पर लेप करने से त्वचा में निखार आता है और साथ ही चेहरे पर होने वाले कील, मुहासे और जो दाग धब्बे होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अशोक की छाल में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक रोग बहुत आम हो चुका है, यानी मधुमेह, शुगर। शुगर के लक्षणों को कम करता है ये पेड़ जिसका नाम है अशोक। दोस्तों, अशोक के पेड़ में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर खून में होने वाले शर्करा यानी शुगर की मात्रा को कम करते हैं। इससे शरीर के अंदर शुगर की बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है और शुगर की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अशोक के पत्तों का भी सेवन किया जा सकता है। इससे शुगर के रोग में राहत मिलती है और साथ ही शुगर के रोग से शरीर में आने वाली जो कमजोरी होती है या चिड़चिड़ापन भी होता है, वो भी कम किया जा सकता है अशोक के पेड़ की छाल को इस्तेमाल करने से। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो कहलाती है बवासीर। इस रोग के लिए भी फायदेमंद है अशोक का पेड़। कैसे, बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर फहीम के साथ अन्नदाता।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
1: देखिए दोस्तों, अशोक के पेड़ की बात हो रही है और उस पेड़ से क्या क्या फायदे होते हैं वो सारी बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब देखिए, एक रोग होता है जो बवासीर कहलाता है और अक्सर लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो एक ये देसी उपाय है और ये अशोक का पेड़ इसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। जिन व्यक्तियों को बवासीर जैसी बीमारियां हैं उनके लिए अशोक का पेड़ लाभकारी हो सकता है। अशोक के पेड़ की जो छाल होती है उसको धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए और उसके बाद छाल को अच्छे से पीस लेना चाहिए। रोजाना अशोक के पेड़ की छाल से बने चूर्ण का सेवन करने से बवासीर की जो बीमारी है उसमें राहत मिलती है और इसके साथ साथ अशोक के पेड़ के फूलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि फूलों का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, तो भाई देखिए, अगर आप अशोक के फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया को एकदम अच्छा बना देता है, जिससे आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर हो जाता है। एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, हड्डियों से संबंधित है। टूटी हड्डियों को भी जोड़ने में मददगार होता है अशोक का पेड़। आप हैरान हो रहे होंगे कि इतने सारे गुण हैं अशोक के पेड़ में, और ये सच है दोस्तों। अशोक के पेड़ का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। अशोक के पेड़ की छाल में टैनिन और एनाल्जेसिक नाम के गुण पाए जाते हैं जो टूटी हुई हड्डियों और जो मांस फट जाता है और गुम चोटों में भी काफी लाभदायक होती है, और इसीलिए अशोक के पेड़ का इस्तेमाल बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। देखिए दोस्तों, अशोक के पेड़ की जो छाल है उस छाल का जो लेप है वो ऑर्थोपेडिक के जरिए भी रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन सांस से संबंधित बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर लोगों में होती हैं, और सांस की बीमारियों को लेकर के बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से उसका इलाज कराते हैं। आराम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन अशोक का पेड़ कैसे लाभकारी हो सकता है सांस जैसी बीमारी में, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता। दोस्तों, बात हो रही है अशोक के पेड़ के बारे में और पीछे बात चल रही थी कि अशोक के पेड़ की जो छाल होती है वो बहुत फायदेमंद होती है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है और इसकी छाल से आपके चेहरे पे जो मुहासे होते हैं, जो दाग होते हैं, यानी कि त्वचा से संबंधित जो बीमारी होती है उसमें ये कारगर साबित होता है। इसके अलावा सांस संबंधी बीमारियों की अगर हम बात करें तो इस पेड़ यानी अशोक के पेड़ से इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अशोक के पौधे का सेवन सांस संबंधी बीमारियों में राहत पाने के लिए भी अच्छी तरह से किया जाता है। इसमें अशोक के पेड़ के जो बीज होते हैं ना, बीजों को पीसकर एक चूर्ण तैयार किया जाता है जिसका सेवन पान के पत्ते के साथ किया जाता है और इसका रोजाना सेवन करने से सांस से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनसे आपको राहत मिल जाती है और सांस लेने की जो आपकी क्रिया होती है उस सांस लेने की क्रिया को भी ये और बेहतर बना देता है। इसके अलावा दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, अशोक के पेड़ को अगर आप घर में लगाते हैं तो ये आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, वातावरण के लिए, सभी के लिए शुभ होता है। अशोक का पेड़ घर में लगाना शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि अशोक का पेड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकता है। अशोक का पेड़ देखने में तो सुंदर लगता है, साथ ही ये घर में सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है। जिन घर में वास्तु दोष होता है उन्हें घर में अशोक का पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है और आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने घर के सामने अशोक के पेड़ को लगाना पसंद करते हैं और ज्यादातर लोग अशोक के पेड़ को अपने घर के आसपास, घर के दाएं बाएं या पीछे कहीं भी लगाते हैं क्योंकि इस पेड़ से एक नहीं अनेक फायदे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई चीज आपको अगर फायदा करती है तो उससे नुकसान भी हो सकते हैं। अशोक के पेड़ से कुछ होने वाले नुकसान भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: अमर।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
2: दोस्तों, अशोक के पेड़ की बात हो रही है, बहुत सारे फायदे आपको मैंने बता दिए हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई चीज आपको फायदा देती है तो उसका दूसरा पहलू नुकसान भी हो सकता है। अशोक के पेड़ की अगर हम बात करें तो अशोक के पेड़ से मिलने वाले बहुत से फायदे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यही दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान या दुष्प्रभाव भी हैं जो स्वास्थ्य को विशेष रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अशोक के पेड़ का इस्तेमाल कुछ दिशाओं में हानिकारक माना जाता है। इन परिस्थितियों में हो सकते हैं अशोक के पेड़ के सेवन करने से नुकसान। हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें अशोक का सेवन। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें अशोक के पेड़ से मिलने वाले किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में इनका सेवन करते हैं तो आपको बहुत से नुकसान या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सीने में दर्द हो सकता है, सांस आपकी फूल सकती है, नींद आने में आपको परेशानी हो सकती है और बहुत ज़्यादा थकावट भी आपको महसूस हो सकती है। सभी परेशानियां हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को अशोक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी इसका सेवन मना किया गया है। देखिए दोस्तों, अशोक के पेड़ में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और वो अंदर शरीर में जाकर किसी प्रकार की परेशानी का भी कारण बन सकते हैं। गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो ऐसी महिलाओं को अशोक के पेड़ से बनी किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ अगर कोई और व्यक्ति जो पहले से ही किसी बीमारी से संबंधित दवाइयां ले रहा है, उसे भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर में इन्फेक्शन या एलर्जी संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद इसका सेवन कर सकती हैं, अगर आपका डॉक्टर आपको राय देता है तब। देखिए, खास तौर से मैं महिलाओं से अभी बात करना चाहता हूं, मासिक धर्म के दौरान अशोक के पेड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि मासिक धर्म के वक्त बहुत ज्यादा खून बहने पर अशोक के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलता है, लेकिन ऐसा करने से मासिक धर्म और भी बिगड़ सकता है। इसीलिए इसका उपयोग किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। अगर अशोक की छाल का काढ़ा बनाकर या फिर रोज सुबह उसके पत्तों का सेवन मासिक धर्म के दौरान किया जाता है तो इससे मासिक धर्म में अनियमितता आ सकती है। साथ ही अशोक के पत्तों का इस्तेमाल धार्मिक और मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है। अशोक के पेड़ को सबसे शुद्ध और पवित्र पेड़ माना जाता है। हिंदू धर्म में अशोक को शुभ माना जाता है और अशोक का पेड़ घर में गुरुवार और शुक्रवार को लगाना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए अशोक के पेड़ को हमेशा इन्हीं दिनों में लगाना फायदेमंद माना जाता है। वक्त जाने का हो चला है, लेकिन जाते जाते आपसे बात करना चाहता हूँ अशोक के पेड़ की कुछ और खूबियों के बारे में। देखिए साथियों, अशोक के पेड़ का उपयोग पथरी के दर्द को दूर करने के लिए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए और साथ ही बदन में होने वाले दर्द में भी सहायक होता है। अशोक के पेड़ में बहुत से ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो दिल संबंधित बीमारियों को भी कंट्रोल करते हैं। अशोक के पत्तों या फूलों का सेवन करने से शरीर में जो खून होता है उसका सर्कुलेशन और भी सुचारू रूप से चलने लगता है। साथ ही ये आपकी याददाश्त या दिमाग के लिए भी बेहतर माना जाता है। तो इतनी सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं अशोक के पेड़ के बारे में, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो चला है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहे रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना और जाते जाते सभी दोस्तों को फहीम का राम राम सलाम।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजे सागर, आज को हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे हैं इस टाइम रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। हमारा शो बहुत स्पेशल है, उसकी वजह भी है भैया, एक पूरा का पूरा एक ऐसा शो जो आपका एजुकेट करता है, जो आपको ये बताता है कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर आपको ये जानने को मिलता है कि भारत जब हम बोलते हैं आत्मनिर्भर हो रहा है तो उसके पीछे किन किन लोगों का जो है योगदान है। तो यहां पर आज एक और केस स्टडी हम आपके लेकर आए हैं, एक और नई कंपनी की बात करेंगे, एक और इंडस्ट्री, एक और कंपनी, एक और प्रोसेस, एक और बार आपको जानने को मिलेगा फाउंडर्स कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या यूएसपीज हैं, तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी ये मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है, अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला। बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर, वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैज वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइक।

पुरस्कार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान की पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशन का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहां पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसका अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील लाइफ।

0: Dim tana na dir tana na dir tana dir tana dir tana na dir tana tana dir na dim tana na dir tana tana dir na dim tana na dir tana na dir na dim tana na dir tana dir tana dir tana
1: feel good feel live. Now with this note, दोस्तों अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं. आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है. बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज कि ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में. सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं. तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस. इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं. तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं. सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड. उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या. इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस. देखिए ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसिडर करते हैं. दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है. थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन. अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है. सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा. एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता. अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग. सो या ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में. डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन. नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी. जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ. फील गुड फील

0: नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों।
1: उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रिडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं, अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीजें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाब।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।

दोस्तों, अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेस होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी के

पर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज होती है, तो तमाम चीजें पढ़ के जहां पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर आपको वहां की कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

0: वेलकम बैक। फाइनली अपने शो को आगे लेकर चलेंगे और फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी है असाया, ASAYA। असाया एक ऐसी कंपनी है जो एक ऐसे इंडस्ट्री में घुसी जिसका ऑलरेडी जो है इतना अच्छा खासा आपको वहां पर आंकड़ा देखने को मिलता है स्टार्टअप्स का। ब्यूटी टेक, आई मीन इट्स नॉट ईजी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्राउडेड मार्केट है ना इंडिया में, जहां पर मोस्टली कंपनी जो है ग्लो सेल कर रही थी, इन्फ्लुएंसर हाइप वहां पर बेच रही थी। वहां पर ये कंपनी आई और इस कंपनी ने खुद को पोजीशन ऐसे किया कि वी आर रिसर्च बैक्ड स्किन केयर फॉर इंडियन मार्केट। ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इन्होंने डील तो उसी एक इंडस्ट्री में किया जहां पर ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स थे, बट खुद को एक अलग जगह, एक अलग नाम, एक अलग पहचान देने के प्लानिंग के साथ इन्होंने एस्टेब्लिश करना खुद को शुरू किया। ऐसा एक बेंगलुरु बेस्ड D2C स्किन केयर स्टार्टअप है जिनका फोकस प्राइमरी ये होता है कि पिगमेंटेशन एंड मेलानिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्किन कंसर्न्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करें फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। कंपनी जो है ऑपरेट तो करती है ब्यूटी टेक सेगमेंट में, बट नॉट लाइक दोज क्लीशेज जैसे ग्लो बेचा जाता है या फेयरनेस को बेचा जाता है। सम रियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर स्किन केयर साइंस, डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च, इंग्रेडिएंट इनोवेशन, कंज्यूमर बिहेवियर डेटा एंड डायरेक्ट टू कस्टमर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इन्होंने अचीव किया। सो जो कंपनी है ये प्राइमरली फोकस करती है पांच चीजों के ऊपर। फर्स्ट हाइपर पिगमेंटेशन, सेकेंड अनइवन स्किन टोन, थर्ड डार्क स्पॉट्स, फोर्थ एक्ने मार्क्स एंड फिफ्थ मेलानिन रिच इंडियन स्किन कंसर्न्स। तो ये इस कंपनी को थोड़ा सा खास बनाता है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको एक ओवरव्यू मिला है। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे, बताएंगे आपको इस आय के बारे में कि और क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी आपको हमने स्टडी बताई है पूरी ऐसा है कि वो आपको समझ आई है, आप इंडस्ट्री को समझ पाए हैं, आपको गाने पसंद आ रहे हैं। लेट्स टेक इट अहेड। तो अभी तक हमने जाना है कि अनलाइक मैनी कॉस्मेटिक फर्स्ट ब्रांड्स, एसआईआई ने खुद को मार्केट ऐसे किया है कि वो रिसर्च ड्रिवन स्किन केयर कंपनी है रेदर देन अ ब्यूटी ब्रांड। इससे बहुत कुछ बदल जाता है, आपका जो टारगेट कस्टमर है वो पूरा चेंज हो जाता है। आई मीन इट चेंजेस द होल नरेशन, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप बात करते हैं यहाँ पर ग्लो की, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर ब्यूटी ब्रांड की, तो भैया फिर तो मार्केट बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, ओवर क्लटर्ड है। स्किन केयर मार्केट इज ऑलरेडी ओवरलोडेड विद जेनरिक फॉर्मुलेशंस, ठीक है, जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स से कॉपी करके यहाँ पर लाए गए हैं, कुछ ऐसी भी कंपनीज है, बट इंडियन स्किन टाइप थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर इस कंपनी ने वो एक्सेल किया। सो ऐसा है जो है वो D2C प्लस ओमनी चैनल मॉडल जो है वो फॉलो करती है। इनकी खुद की वेबसाइट है, क्विक कॉमर्स एप्लीकेशंस के ऊपर ये हैं, नायका, अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये हैं, साथ साथ इनके ऑफलाइन रिटेल चैनल्स भी हैं, जिससे क्या होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को ऑनलाइन देखेंगे, आपको फिजिकल बाजार में वो नजर नहीं आ रही, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर स्किन केयर, योर हेयर केयर, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं कुछ ट्रिकी ना हो। होता ना कि आप परफ्यूम अगर लेने जाते हैं तो आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि सामने रखा हुआ दिखेगा तो उसको एक बार स्मेल करके देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे लेना है नहीं लेना है। सो कंपनी जो है स्टार्ट हुई 2021 में, ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, आफ्टर सो मैनी एपिसोड्स ऑफ R&D, लिटरली बहुत रिसर्च यहाँ पर की गई, क्योंकि जो फाउंडर्स हैं उनको ये बात समझ में आ गई थी कि मोस्टली जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में वो या तो इम्पोर्टेड हैं, या इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा स्टार्ट किए गए ब्रांड्स हैं, या बहुत ही हैवी प्रोडक्ट्स के तौर पर उनको लॉन्च तो किया गया है बट साइंटिफिक बैकिंग वहां पर नहीं है। तो कोर इनसाइड इनके पास था कि इंडियन स्किन जो है बायोलॉजिकली थोड़ी सी अलग है, जिसमें हमें हायर मेलानिन कंटेंट जो देखने को मिलता है, क्लाइमेट एक्सपोजर थोड़ा हमें ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, यूवी इंटेंसिटी। तो यहाँ पर स्किन केयर के लिए कैसे हो सकता है कि जो वेस्ट में काम कर रहा है वो यहाँ पर काम करे, ये चीज इन्हें समझ में आ गई और यही गैप इनकी कंपनी का एक आप कह सकते हो सोल बन के सामने आया, यहां पर उसी को अपनी सबसे बड़ी USP इस कंपनी ने बनाया। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अनदर नेचुरल स्किन केयर ब्रांड, इन्होंने फोकस किया मेलानिन साइंस, इंग्रेडिएंट रिसर्च, क्लिनिकल टेस्टिंग एंड पेटेंटेड फॉर्मुलाज के ऊपर। तो इन्होंने लगभग 2.5 साल जो है प्रॉपर खर्च की अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को स्केलिंग करने में, रिसर्च करने में। दैट्स हाउ ये कंपनी जो है ग्रो कर पाई। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ, ना इज्जत

बन के हम सन्यासी काम है चलते

महाराज पधारे, चिंता चरक चिलम और चेले साथ साथ में सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं।

वेलकम बैक। फाइनली बात करते हैं भैया ऐसा आया कि फाउंडर्स की। पहला नाम आता है नीरज बियानी। नीरज बियानी आप कह सकते हैं इज द मोस्ट पब्लिकली विजिबल फाउंडर ऑफ एसआईआर, पब्लिकली जिनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। ही इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ पेपर बोट, जो इंडिया का मोस्ट आइकॉनिक बेवरेज स्टार्टअप जो है बना और सामने आया। इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है इन FMCG, ब्रांडिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिजनेसेस को स्केल करना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है इन बिल्डिंग इमोशनली रेजोनेंट इंडियन ब्रांड्स। इनकी स्ट्रेंथ है इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छे से समझते हैं, मतलब एक्सट्रीमली वेल। अब इसका जवाब है पेपर बोट भी, आपको इसका जवाब मिल सकता है पेपर बोट, क्योंकि कितना सक्सेसफुल एक कंपनी रही वो हम सबने देखा। ये एक्सपीरियंस मैटर करता है क्योंकि स्किन केयर इज नॉट जस्ट अबाउट साइंस, इट्स साइकोलॉजी, इट्स ट्रस्ट, इट्स एस्पिरेशन। इसलिए इनका जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इन्होंने ऑलरेडी ब्रांड बनाया, इंडियन साइकोलॉजी को समझा, उसके बाद जाकर के फाइनली अपनी ये कंपनी जो है इन्होंने यहां पर स्टार्ट करी। दूसरा नाम आता है इति शर्मा। इति शर्मा का भी बैकग्राउंड जो है वो रहा है प्रोडक्ट एंड रिसर्च में, ठीक है। बिजनेस के प्रोडक्ट एंड रिसर्च साइड में इनका थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हो एक्सपीरियंस रहा है, बिल्डिंग फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी विद एसआईआर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंज्यूमर इनसाइड इंटीग्रेशन, रिसर्च बैक्ड पोजिशनिंग, ये इति का काम रहा है। तो कुल मिलाकर इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है उसमें। तीसरा नाम आता है अनदर को फाउंडर, मनदीप सिंह भाटिया। मनदीप सिंह भाटिया भी जो है FMCG एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट इकोसिस्टम से आते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है प्रोडक्ट की मार्केट में स्केलिंग कैसे करनी है, ऑपरेशनल ग्रोथ कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कैसे करनी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन कैसे करना है। तो यहां पर आपको अभी तक जो हमने बात करी है तीन फाउंडर्स की, ठीक है, FMCG एक्सपर्टीज मिली, ब्रांडिंग मिली, स्किन केयर रिसर्च मिली एंड कंज्यूमर ग्रोथ स्ट्रेटजी मिली। ऐसे करके इन लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया, इंडियन माइंडसेट को समझा, इंडियन स्किन को समझा, और साथ साथ ऐसा नहीं है खाली थोती बातें करी, रिसर्च करके प्रॉपर इंडियंस की जो प्रॉब्लम है उनको फिक्स किया इस कंपनी ने। सो या दैट्स व्हाट मेक्स दिस कंपनी सो स्पेशल। आई होप यहां तक मैं जितनी आपको बातें बता पाए उतना आप समझ पाए हैं कि इसको आप समझ पाए। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको शो पसंद आ रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ाएंगे। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग इसाया? इंडियन स्किन्स को इंडियन स्किन केयर साइंस चाहिए, दैट वाज द कोर आइडिया। तो मोस्टली जो ग्लोबल स्किन केयर ब्रांड्स हैं वो अपने आप को ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपको लाइटर स्किन टोन देंगे या कोल्डर क्लाइमेट्स में आपके अच्छे वो काम आती हैं, वो चीज़ करती भी है काम। बट इंडियन कंज्यूमर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। टैनिंग मेजर प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स एंड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन, मेलानिन ट्रिगर्ड अनइवन स्किन टोन। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस जो है इस कंपनी को नजर आया और इन्होंने साइंस ड्रिवन स्किन केयर कंपनी स्टार्ट करी। तो इन्होंने खुद को अलग किया डिस्पाइट हैविंग अ मार्केट जहाँ पर ऑलरेडी इतने अच्छे खासे प्लेयर्स थे, मामा अर्थ, मिनिमलिस्ट, वाओ स्किन केयर, मैक कैफीन, डॉट एंड की एंड सो ऑन, कितने सारे प्लेयर्स थे ऑलरेडी इस मार्केट में। बट डिस्पाइट ऑल दीज प्लेयर्स इस कंपनी ने अपनी जगह बनाई एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी यही रही कि जो इसको कोर तरीके से डिफरेंशिएट कर पाई बाकी तमाम कंपनी से, रिसर्च बैक्ड स्किन केयर, इंडियन स्किन फोकस्ड फॉर्मुलेशन, मेलानिन स्पेसिफिक साइंस, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, क्लिनिकल टेस्टिंग, डर्मेटोलॉजी फर्स्ट पोजिशनिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने अपने आप को एक, आप ये भी कह सकते हैं कि अपने पैकेजिंग लेवल पर, एस्थेटिक्स लेवल पर, वहाँ पर भी इन्होंने खुद को ठीक ठाक रखा। सो कुल मिलाकर हाई ट्रस्ट इन्होंने जो है गेन किया कस्टमर्स का, स्ट्रॉन्ग रिटेंशन रहा, लॉन्ग टर्म ब्रांड डिफेंसिबिलिटी इनके पास है। दीज आर द यूएसपीज ऑफ इसाया। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप समझ पाए हैं इस कंपनी को। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

होप आपको म्यूजिकल वाइब अच्छी लगी। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ाएंगे और फाइनली यहाँ पर वक्त है अपने शो को कंक्लूड करने का। आज हमने एक ऐसी कंपनी की बात करी जो एक ऐसी इंडस्ट्री में आई जहां पर भैया क्राउड भर भर के था और हर जगह पर एस्थेटिक्स बेचे जा रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा मार्केटिंग करा करा के चीजें बेची जा रही थी, लोग जो है वो फेयर स्किन उन सब के ऊपर जो है

विश्वास कर रहे थे, बट वो चीजें काम नहीं कर पा रही थी। रीजन बीइंग टैनिंग है हमारे भैया, इंडियन क्लाइमेट अलग है, इंडियन स्किन अलग है, वो हर देश का अलग होता है, हर एक रीजन का अलग होता है। तो कैसे एक चीज जो है ग्लोबल लेवल पर काम कर सकती है, ये बात एसआईआर के फाउंडर्स को समझ में आई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करी जो इंडिया के लिए बनाई गई, इंडियन स्किन के हिसाब से अपनी रिसर्च की गई और उसके बाद ये जो है कंपनी खड़ी हुई। अब ये आपको कैसा लगा हमारा केस बताइए मुझे 8010781078 पर, बट मुझे बहुत मजा आया पर्सनली इस वाले कंपनी के बारे में बात करके, बिकॉज कुछ हटके था, कुछ अलग था, किसी ने फाइनली रियल प्रॉब्लम को एड्रेस किया। आप बताइए बाकी, आप अगर अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं। फिलहाल मैं चलता हूं यहां पर, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।
2: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आई हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यू। तो आप लोग इस टाइम सुन रहे रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। ये शो अपने आप में बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं। हर बार हम यहाँ पर एक एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं जो अपनी लाइफ की ओवरऑल जर्नी से बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं। आज के हमारे मेहमान है मिस्टर अभिषेक शर्मा। अभिषेक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। अभिषेक पहले रेडियो मानव रचना के साथ काम कर चुके हैं, नाउ ही इज डूइंग रियली गुड, आगे बढ़े अपने लाइफ में और कुछ उन्होंने एक्सप्लोर किया। पहले यहाँ पर ऑडियो इंजीनियरिंग करते थे, अब बहुत सारे डोमेन्स उन्होंने और एक्सप्लोर करे हैं। तो प्रोडक्शन की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जो उनकी डोमेन में फॉल करती हैं उनकी बात होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करेंगे अभिषेक का। अभिषेक स्वागत है आपका।
3: हेलो हेलो सागर भाई, कैसे हो?
2: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
3: मैं ठीक हूँ भाई।
2: अभिषेक थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, क्या आपका डोमेन है, प्रोफाइल क्या है, एक्सपर्टीज क्या है आपकी, ताकि हमारे लिसनर्स को पता लगे आपके बारे में।
3: सो मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 7 साल से अपने मीडिया फील्ड में काम कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्टिंग अपने, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, सो मैंने बीएससी आईटी किया था मानव रचना से, और फिर उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया था, मैं कोडिंग करता था माइक्रोसॉफ्ट में। 1 साल मैंने पूरा जॉब किया, फिर मेरे को अंदर से फील हुआ क्या मेरे को कुछ ऐसा अलग हटके करना चाहिए जो मेरा मन कह रहा है करने को। तो फिर मैंने 1 साल अपनी पढ़ाई करी दोबारा से, मैंने पीजी डिप्लोमा किया मानव रचना से पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग में। देन मैं रेडियो मानव रचना में इंटर्न लगा था, जहाँ पर मैं सारी साउंड एडिटिंग रेडियो में करता था, वीडियो एडिटिंग करता था, फोटोज वगैरह क्लिक करता था, वीडियो शूट पे जाता था, ओबीज लेता था, फिर कुछ महीनों के लिए आरजे भी बना शाम के शो का। सो ऐसे करके मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम सीखा, और फिर अच्छे से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में वहाँ से मूव किया अपना करियर। वहाँ पर मैंने Gaana.com के लिए काम किया था, गाना ऐप का मैं AI, जो गाना ऐप का जो UI था वो मैं डिजाइन करता था, वीडियोज वगैरह शूट एंड एडिट करता था। देन ऐसे करते करते फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पार्ट है रेडियो मिर्ची, उसमें मैं प्रोड्यूसर लगा। सो उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे उनका मैं सारा कंटेंट डिजाइन करता था, शूट से लेकर एडिट तक कि क्या कंटेंट होना चाहिए। आइडिएशन पे बैठता था आर्टिस्ट के साथ, मिर्ची मुर्गा काफी फेमस हुआ करता था उस टाइम पे, सो उसके आइडिएशन में मैं रहता था, और उसमें जितने वॉइस ओवर्स थे उसमें मैं हेल्प करता था। देन एडिटिंग पार्ट तो हमेशा रहा मेरा करना, शूट भी मैंने वहाँ पे सीखा। मैंने वैसे देखा जाए सागर भाई, मैंने वैसे सीखा नहीं काम, लेकिन मैं जॉब के साथ साथ ही सीखता चला गया काम। अब अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो मानव रचना में जब मैं था रेडियो में, उस टाइम पर मेरे को काफी सीखने को मिला, भले ही मैं इंटर्नशिप पे फिर जॉब से कन्वर्ट हुआ, बट मैंने काम वहीं से सीखना स्टार्ट किया। सो ऐसे करते करते मेरे को जॉब मिलती चली गई, मैं ट्राई करता चला गया और मेरा एक्सपीरियंस गेन होता गया मेरा, और मैं काम सीखता गया। उसके बाद फिर मैं भाई इंडिया टुडे आज तक में 2.5 साल काम किया, उस पर मैं प्रोड्यूसर था। उसमें क्या कहते हैं, जितने भी इनकी वेब सीरीज होती थी, स्मॉल वेब सीरीज जो इनकी OTT पे जाती थी, उसमें शूट करता था, एडिट करता था। उसमें फिर मैं डायरेक्शन में भी ऐड हो गया था, उसमें कंटेंट में डायरेक्ट करता था जो भी शूट होता था, और स्पॉन्सर्स वीडियो होती थी, वीडियो ब्रांड की वीडियोज होती थी, एंड काफी कॉन्सर्ट्स होते थे, कॉन्सर्ट्स का पूरा वीडियो प्रोडक्शन काम संभालता था। सो मेरी प्रोफाइल धीरे धीरे करके पूरी प्रोडक्शन वाली ही बन गई, जिसमें मैं प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक का सारा जो भी टास्क होता है वो मैं मैनेज करता था। पहले मैं खुद करता था, देन फिर मेरे को टीम अलॉट हुई, फिर मैं टीम के साथ करने लग गया। सो ऐसे कर करके मेरे को आगे करियर में ग्रोथ मिली, और करेंटली मैं अभी NDTV में काम करता हूँ। सो NDTV में एज अ सीनियर प्रोड्यूसर अपॉइंट हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मेरा काम बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी हैं, वेब सीरीज भी हैं, टीवी शोज भी हैं, और क्या कहते हैं जो सोशल मीडिया के कंटेंट होते हैं, रील्स वगैरह वो भी हैं। सो अब मैं सारा आइडिएशन पार्ट संभालता हूँ और सारा प्रोडक्शन संभालता हूँ विद माय टीम। तो भाई मेरा ये करियर ग्राफ रहा है पूरा, बट मानवता का मेरा बहुत बड़ा हाथ है पूरे करियर ग्रोथ में।
2: जी बहुत ही सुंदर। तो अभी तक हमने अभिषेक से बात करी है, अभिषेक ने अपने शब्दों में खुद बताया कि उन्होंने कैसे कैसे करते करते चीजें सीखी हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर हमें समझ में आती है कि आप बैठ करके घर पे

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ, और उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर जो म्यूजिकल वाइब अभी आपने सुनी वो आपको मजा आया, आपको शो पसंद आ रहा है। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, अपने शब्दों में बता चुके हैं आपको कैसे उनकी यात्रा रही, कैसे उन्होंने रेडियो से लेकर के न्यूज, फिर उसके बाद कमर्शियल रेडियो, देन उसके बाद वेब सीरीज, OTT, सोशल मीडिया, प्रोडक्शन, सब कुछ उन्होंने संभाला। आइए एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं अपने शो को, और अभिषेक से फर्दर हम डिकोड करते हुए जानना चाहेंगे यहाँ पर। अभिषेक, प्रोडक्शन के बारे में बताइए, व्हेन यू आर सेइंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन में फॉल करते हैं, थोड़ा अच्छे से हमारे लिसनर्स को पता लगे कि एग्जैक्टली जो ये वर्ड सुनते हैं हम लोग प्रोडक्शन, ये होता क्या है।
1: सो सागर भाई, मैं अगर प्रोडक्शन को डिवाइड करूं तो इसके तीन पार्ट होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं प्री प्रोडक्शन से। सो प्री प्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज, हमारे पास कोई भी चीज होती है, पहले आइडिया होता है कि आइडिया को कैसे डेवलप करना है। आइडिया के डेवलपमेंट में हम बैठते हैं, अगर आपके पास टीम है तो आप टीम के साथ बैठोगे, अगर आपको खुद का एक आइडिया है तो आप उसको पूरा एक्सटेंड करके पूरा एक ड्राफ्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम फिर उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, देन स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद हम लोग उसके स्टोरी बोर्डिंग में बैठते हैं, फिर शूट प्लान करते हैं कहाँ पर शूट होगा, कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, आउटडोर है, इनडोर है। देन उसके बाद हम एक रेफरेंसेज लेते हैं कि हमारा कंटेंट किस ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है कंटेंट उसकी तरह लगेगा, सो हम रेफरेंस वहां से ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं प्रोडक्शन की स्केड्यूलिंग के लिए कि पूरा हमने डिजाइन कर लिया प्रोडक्शन, फिर हम उसके शेड्यूलिंग में बैठते हैं कि कब कैसे और किस टाइम करना है, क्योंकि वेदर कंडीशन भी देखनी होती है, इक्विपमेंट्स भी देखने होते हैं, लॉजिस्टिक्स भी देखने होते हैं, मैन पावर भी देखना होता है, सो उसके अकॉर्डिंग हम सब उसको शेड्यूल करते हैं। देन हम बजट देखते हैं कि बजट का क्या रहेगा, बेसिक बजट क्या है, एक्सटेंड कितना हो सकता है, हमारे फाइनेंसिस कैसे हैं, कोई अलग से उसमें प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कोई क्या कहते हैं, कोई पार्टनर है, सो सारा जो मनी रिलेटेड इशू होता है वो इसके अंदर आता है। फिर हम लोकेशन के लिए जाते हैं, रेकी करते हैं कि जो भी हमारा पूरा ड्राफ्ट बनाए हम किस लोकेशन में जाके सूटेबल, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ शूट कर सकते हैं, वहाँ की परमिशन लेना, ये सब उसमें आता है। देन हम फिर करते हैं कास्टिंग, जिसमें हम लोगों के ऑडिशंस लेते हैं, हम पूरी कास्टिंग बिठाते हैं कि कितने कैरेक्टर हैं, कितने स्पॉट बॉयज होंगे, कितने DOPs होंगे, कितने एक्ट्रेस होंगे, एक्ट्रेसेस होंगे, साइड कैरेक्टर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग एक पूरी कास्टिंग होती है, और ये सारा जो पार्ट होता है सारा प्री प्रोडक्शन में आता है। और अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करूं कि हमको कैमरा कैसे चाहिए, जिसमें हम सिनेमाटोग्राफी के ऐड करते हैं मूवीज के लिए, जिसमें हम DOPs और कैमरा इक्विपमेंट्स, लाइटिंग की बात करते हैं, सो कैमरा किस टाइप के होने चाहिए, किस टाइप की उनकी लेंसेज चाहिए, फ्रेम रेट कैसा रहेगा, रेजोल्यूशन क्या रहेगा, और ISO लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग, और क्या क्या मूवमेंट रहनी है, कैसे ट्राइपॉड्स यूज होने हैं, डॉली शॉट है, ट्राइपॉड पे है, या फिर क्या कहते हैं आपका ड्रोन शॉट है, टॉप एंगल शॉट है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें होती हैं हम इक्विपमेंट्स में उसको लेते हैं कैमरे के लिए। फिर मेन पार्ट होता है जो अब तक मैंने अपने करियर में देखा है कि अगर आपका वीडियो कितना भी अच्छा हो, आपने क्या फोन शूट किया हो, अगर आपका ऑडियो खराब है या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है या फिर कुछ भी ग्लिच है, तो वो कंटेंट बेकार है आपका, लोग उसको देखना पसंद ही नहीं करेंगे, अगर उसमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा सही से, अगर ऑडियो की क्वालिटी बहुत बेकार है। सो इसलिए हम माइक्रोफोन जितने भी होते हैं हम उसको देखते हैं किस क्वालिटी का है, कितना उसमें नॉइस कैंसिलेशन है, सो वो बहुत मैटर करता है प्री प्रोडक्शन में। सो ऑडियो प्रोडक्शन आपके हमेशा टॉप नॉच रहनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी का ऊपर नीचे थोड़ा चलेगा, लेकिन ऑडियो प्रोडक्शन आपके हमेशा HD हाई क्वालिटी में ही रहनी चाहिए। और फिर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है कि वो कौन कर रहा है, उसमें क्या टैलेंट रहेगा डायरेक्शन का, जो वर्किंग कल्चर होता है सेट पे वो कैसा रहेगा, वो सब हम डिजाइन करते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में आपका ये होता है कि आपके पास सारे रॉ फुटेजेस आ गए, जितना भी आपने शूट किया A to Z कंटेंट वो आपके पास एक रॉ फुटेज में आ गया, लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ एक कॉपी बनाई और उसको सीधा प्रोडक्शन टेबल पे भेज देते हैं एडिट के लिए। तो आपको 2 से 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए आपके सारे रॉ कंटेंट की, क्योंकि बहुत पैसा लगा होता है, बहुत मेहनत होती है लोगों की, काफी सारे स्टाफ के मेंबर काम करते हैं, अगर वो इधर उधर हो जाता है कंटेंट सो आपका सारा काम खराब। तो इसलिए बेटर है कि आप उसका बैकअप लेके रखें, क्लाउड पे भी लेके रखें, और फिजिकल फॉर्म में आप किसी हार्ड ड्राइव में भी 1 से 2 कॉपी बना के रखें। फिर हम बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की, तो उसमें एडिटिंग पे जाता है आपका, जितने भी इसमें फंडामेंटल्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के वो करते हैं, एडिटिंग का एक वर्कफ्लो बनाते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट कैसा रहेगा, रफ कट कैसा रहेगा। सो एडिटिंग में जो एडिटर होता है और साथ में जो डायरेक्टर होता है वो साथ में बैठ के काम करते हैं, मोस्टली डायरेक्टर नहीं बैठते हैं, बस एडिटर को ब्रीफ देके छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर को ऑब्वियसली बैठना चाहिए, क्योंकि उसका एक विजन होता है कि आप मेरे को अपनी मूवी या मेरे को अपनी सीरीज या मेरे को अपना टीवी शो ऐसा दिखाना है ऑडियंस को. सो एक वो उसका एक पीओवी रहना चाहिए एडिटर के साथ. देन कलर करेक्शन होती है कि सारा पूरी जो मूवी है, पूरा जो हमारा कंटेंट है, उसकी जो कलर करेक्शन है वो ऐसी दिखे कि कहीं पे लो लाइट कंडीशन में हमने शूट किया, कहीं पे हाई में किया है. सो उसको एक पूरा एक मीडियम फॉर्म में ला के उसको सेटल कर देते हैं, ताकि वो देखने वालों के लिए एक्सपीरियंस अच्छा रहे और ऊपर नीचे और प्रोफेशनल भी दिखता है वो काम, अगर आपका कलर ग्रेड अच्छा होता है तो. ऑडियो मिक्सिंग ऑब्वियसली टॉप नॉच होनी चाहिए आपकी. जितना भी हमने कंटेंट शूट किया, कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि हम ऑन लोकेशन ही रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑडियो को, बट कुछ ऐसा होता है कि हमें डब करना पड़ता है, तो डबिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. सो दैट आपको वीडियो प्रोडक्शन के साथ साथ ऑडियो प्रोडक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होती है. ऑडियो प्रोडक्शन में होता है कि कहीं कहीं पर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना है, तो उसके लिए आपके साथ एक कंपोजर भी होना चाहिए, म्यूजिक प्रोड्यूसर होना चाहिए, कि आप उसको ब्रीफ दे पाए कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी टेंशन क्रिएट करनी है इस वाले सीन में, तो मेरे को टाइप का म्यूजिक देना है. सो वो साथ में एडिटर के साथ ही काम होता है. VFX की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि कहीं पे मेरे को, जैसे मेरे पीछे लाल किला दिख रहा है, अब मैं चाहता हूँ मेरे को लाल किला नहीं दिखाना है वहाँ पे, सो वो उसको रिमूव कर दिया. कोई सोचता है कि यार मेरे को लाल किला की जगह मेरे को ताजमहल दिखाना है, तो वो दिखेगा, ऐसे करके होता है. सो ये सारा जो पार्ट होता है ये आपका पोस्ट प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है. सो धीरे धीरे आप सीखोगे करते करते, जैसे मैंने सीखा.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो बहुत बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सिंपल शब्दों में अभिषेक ने हमें यहाँ पर बताया प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है. उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको बहुत मजा आ रहा होगा सुनने में, क्योंकि ये तमाम बातें आपने सुनी तो होंगी, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, लेकिन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये अभी अभी हमें अभिषेक ने बताया और उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक समझ पाए हैं. चलिए एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने शो के अंतिम पड़ाव की तरफ आएंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे यहाँ पर एज अ स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं काम. चलिए एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने शो के अंतिम पड़ाव की तरफ आएंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे यहाँ पर एज अ स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं काम कैसे मैनेज होता है सब चीजें जानेंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ. आप लोग सुन रहे हैं इस टाइम रेडियो 107.8 FM.

0: Once again, I'm hoping आपको मजा आ रहा है. अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए अभिषेक के लिए तो प्लीज 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा. शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ और यहाँ पर हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं. बहुत सारी बातें अभी तक हमने करी हैं, अभिषेक के डोमेन को समझा है, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, क्या क्या चीजें होती है सब हमने जाना है. आइए लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग कि इस फील्ड में काम कैसे मिलता है. तो अभिषेक प्लीज हमें बताइए कि इस फील्ड में काम ढूंढने के लिए क्या करना होता है. अगर किसी को जॉब करनी है तो क्या करना होगा, किसी को अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा.
1: या सबसे पहले अगर आपको जॉब भी करनी है तो आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करिए. अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज खत्म करके आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, सो आप ढूंढिए कि आपके एरिया में या फिर आपके घर के आसपास कुछ ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस हो जो ऑलरेडी सब काम करता हो और आपको इंटर्नशिप वहाँ मिल जाए. सो आप वहाँ पे आप काम भी करोगे, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपके लिंक भी बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपना काम उस प्रोडक्शन हाउस से करवा रहे हैं, फिर आप ही हैंडल कर रहे होंगे उनके काम को. सो दैट आपके लिंक बनते हैं, आप काम भी सीख रहे हो एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट ऑल्सो. सो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप यंग एज में हो तो आप इंटर्नशिप के लिए जाएं, साथ साथ आप पैसे भी कमाएंगे और काम भी सीखेंगे और लिंक भी बनेंगे आगे चल के. और अगर आप एक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, सो आप एक अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं. मान लो आपने किसी ABC कंपनी में एक साल के लिए काम किया, सो आप उसका एक पूरा कैटलॉग अपने पास रखें, जो भी आपने वहाँ पे काम किया है उसका एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसका एक पूरा कैटलॉग बनाएं. जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे जॉब सर्च के टाइम पे, वहाँ पे आप उसको शो करिए. और जरूरी नहीं है, लोग ये गलती करते हैं कि यार मेरे पास वही काम है जो मैंने कंपनी में किया है. आपके पास कैमरा है, नहीं है तो आप रेंट कर सकते हैं, दोस्त से ले लिया, फोन है, मोबाइल है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आप अपना खुद को कुछ बिना कुछ कंटेंट ऐसा शूट करिए, एडिट करिए और वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कैटलॉग में. ये नहीं कि आप सिर्फ कंपनी का ही काम दिखा रहे हो, आप अपना काम भी दिखा रहे हो. सो ये आप दिखाते हैं तो आपके पास काफी हाई चांस रहते हैं कि आप किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में लग जाते हैं. और कोई अगर अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप खुद का एक कैटलॉग डिजाइन करिए, खुद का एक आइडिया क्रिएट करें, कंटेंट शूट करिए, एडिट करिए और उसको ऐसे ट्रीट करिए कि ये आपकी फिल्म है. उसकी तरह आप उसको शूट करके आप अपने कैटलॉग में ऐड करिए और फिर आप जितने प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रांड है जिनका इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी रीच है, उनको रील्स बनानी है अपनी शूट के लिए, वो ढूंढते हैं लोगों को, आप उनको पिच करिए, उनसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए और उनकी मेल आईडी पे कनेक्ट करिए और अपना कैटलॉग सेंड करिए अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ. और अपने जो भी चार्जेस होते हैं वो मिनिमल रखिए, ना कि हायर साइड, क्योंकि आपका काम देख के दूसरा बंदा भी आएगा. भले आपने पहले प्रोजेक्ट में पैसे कम लिए हो, लेकिन पहले प्रोजेक्ट से काम आपका आगे बढ़ेगा और फिर दूसरा क्लाइंट उसको देख के अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ. तो ऐसे आप धीरे धीरे नोट बाय नोट कनेक्ट होते चले जाएंगे और आपका करियर बन जाएगा इसमें.
0: जी जी जी, बहुत उम्दा. एक और चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा सोशल मीडिया के बारे में. सोशल मीडिया का प्रोडक्शन भी एक प्रोडक्शन होता है. बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या लोगों को पता होना चाहिए अगर किसी इंसान को अपने सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैसे प्रोडक्शन प्लान करे, वो एक बार और बता दीजिए.
1: तो सोशल मीडिया पे किसी को भी अपना कंटेंट आगे पहुंचाना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका पेज लोग आपको क्या करते हुए देखना चाहते हैं और आपको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं. पहले आप ये जानिए कि आपकी ऑडियंस क्या है. जब आपको पता पड़ जाए कि यार ये मेरी ऑडियंस है, ये एज ग्रुप के लोग मेरे कॉन्टेंट ज्यादा देख रहे हैं, सो आप उसी के अराउंड अपने कॉन्टेंट को एनहांस कर दीजिए, उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, उसके उसके जो कंटेंट के अंदर है थोड़ा डेप्थ लिया है ताकि वो रिलेटेबल इतना हो जाए कि लोग या तो सेव करें उस कंटेंट को या फिर वो रीशेयर करें. रीशेयर से क्या होता है कि, और रीशेयर वही कंटेंट होता है जो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं. जैसे कि कुछ भी 90s के कुछ भी कंटेंट है, अब जो लोग 90s के टाइम से निकलते हुए आ रहे हैं सो उनको एक नॉस्टैल्जिया वाली वैल्यू फील होगी तो वो उसको शेयर करेंगे और सेव करेंगे. अगर आपका कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा, और हाई चांस ये रहते हैं कि आपका कंटेंट ज्यादा अच्छा है और आप उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उसकी शेयरेबिलिटी भी ज्यादा है, सो आप ऐसे लोगों के पास तक पहुंच जाते हैं आपके कंटेंट, जो कि क्या कहते हैं बॉलीवुड के बिग प्रोडक्शन हाउसेज हो गए. सो वहां पर आप, अगर आपका कंटेंट जाता है सो आपका वेल एंड गुड है, आप काफी ग्रो कर सकते हैं, आपको चांस मिलेगा वेब सीरीज काम करने का, मूवीज में काम करने का. बट ये सबसे लेटर पार्ट होता है. स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी आपके हाथ में कैमरा है, आप खुद भी कंटेंट खुद भी शूट करें, कुछ भी करें, शेयरेबिलिटी लाने के लिए आप ऐसा कंटेंट यूज करिए कि जिसमें लोगों को या तो कुछ सीखने को मिले या किसी को सिखाने के लिए मिले, यही कंटेंट होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा उसमें पर्सनल टच हो जिससे लोग फील करें कि यार ये बंदा जो बोल रहा है ये शायद मैं ही हूँ, ये मेरी ही कहानी है, ऐसा तो मैं ही करता हूँ, ऐसा तो वो करता है, तब जाके आप कहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप काफी अच्छा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अभिषेक ने बताया कि शेयरेबिलिटी के ऊपर आपको काम करना चाहिए कि लोग उससे रिलेट करें, रिलेटेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज का, क्योंकि अगर लोग रिलेट करेंगे तो ही उसको शेयर करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अभिषेक, आई एम डन विद माई क्वेश्चन। कोई भी ऐसी चीज है जो मैंने आप पूछ पाए और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: सागर भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉलेज लाइफ को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित ना रखें, कॉलेज लाइफ में आप काफी कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कॉलेज टाइम में आप कंटेंट बनाकर भी जॉब से पहले, कॉलेज खत्म होने से पहले आप अपना करियर बूम कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने कंटेंट की जर्नी को भी स्टार्ट जरूर करें कॉलेज में। हाँ, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटेंट की तरफ झुक गए सारा टाइम या फिर पढ़ाई की तरफ, मिड में रहना चाहिए, दोनों तरफ अच्छा करें, और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए।
0: थैंक यू सो मच अभिषेक, इट मीन्स अ लॉट टू अस कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, शुक्रिया भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी के साथ वक्त अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। अभिषेक सर ने बात करी, अभिषेक शर्मा ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें पूरा प्रोसेस बताया कैसे एग्जैक्टली काम करता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सोशल मीडिया पे कैसे काम होता है, कैसे वायरल होती हैं चीजें, कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, कैसे अपना नाम कमा सकते हो, करियर कैसे बना सकते हो, बहुत कुछ आपने जाना। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी एपिसोड को आप सुनना चाहते हैं तो हमारी आई रेडियो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, रेडियो मानवश्ना की, वहां पर आपको सागर नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाइएगा, वॉइस ऑफ यूथ फीचरिंग अभिषेक शर्मा नाम से एक फाइल होगी, आप उसको सुन सकते हैं, बार बार बार बार आप सुनेंगे, इन सवालों के जवाब आपको बार बार बार बार मिलते रहेंगे। शुक्रिया अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच। ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो के यहाँ पर साइन अप करने का, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और वक्त है कुछ ऐसी बातें करने का जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हम सब से है, क्योंकि हम सबके पास फोन है। फोन में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन में है बहुत कुछ ऐसा जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी जाने अनजाने कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे आपका फोन हैक हो गया, कुछ नहीं तो आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, सोशल मीडिया हैक हो गया, या फिर किसी ने आपके कार्ड की डिटेल्स लेकर क्लोनिंग करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, या फिर गलती से कोई OTP शेयर हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ अभी तक, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये सब साइबर फ्रॉड्स की कैटेगरी में आता है, और साइबर फ्रॉड्स या साइबर क्राइम हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जब न्यूज़पेपर उठाते हैं, तो उस अखबार में आपको बहुत सी ऐसी खबरें मिल जाती हैं जो आपको लगता है ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, हमारे अकाउंट से पैसे निकलना, या फिर हमें डिजिटली अरेस्ट करना, या फिर ब्लैकमेल करना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, पर इनके बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो अवेयरनेस नहीं होगी, और अगर अवेयरनेस नहीं हुई तो ये क्राइम रुकेंगे नहीं। हमारी सोच से भी बहुत आगे चलने वाले ये साइबर फ्रॉडस्टर्स कैसे पकड़े जाते हैं और कैसे हमें खुद को बचा कर रखना है इस साइबर फ्रॉड से। सो हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद है बहुत खास मेहमान, HPS ऑफिसर मोनिका जी, जो कि ACP साइबर और ACP NIT हैं। फरीदाबाद पुलिस से हमारे साथ आज जुड़ गई हैं, और इनसे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके के बारे में, और कैसे आखिर पुलिस इनको पकड़ती भी है। सो मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आप।
1: थैंक यू सो मच।
0: सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं और आप साइबर विभाग की देखरेख कर रही हैं फरीदाबाद में
1: जी।
0: हम जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं, इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, लोकल या नेशनल कोई भी पेज आप उठा लीजिए, कि उसको देख के लगता है कि ये कैसे होता जा रहा है। हम जितना बचने की कोशिश करते हैं, फ्रॉडस्टर उतना ज्यादा आगे सोचते हैं
1: जी।
0: तो ये साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हो रहे हैं, जो बहुत कॉमनली हो रहे हैं?
1: ओके, सो सबसे पहले मैं बता दूं कि साइबर फ्रॉड कोई भी फ्रॉड है जिसमें कोई भी आपका डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी डिजिटल डिवाइस से जो फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद साइबर फ्रॉडस्टर हैं, दे प्ले ऑन 2 फैक्टर्स मेनली, एक तो फेयर, दूसरा हमारा ग्रीड। तो जो भी क्राइम्स हमारे साथ हो रहे हैं वो इन्हीं 2 चीज़ों का फ़ायदा उठाकर होते हैं। या तो वो आपको किसी न किसी तरीके से डराएंगे कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, इस तरीके का डर आपको दिखाएंगे। या दूसरी चीज़ है कि आपको ग्रीड, कि इन्वेस्टमेंट, आप इतना पैसा डालिए आपको और ज़्यादा मिलेगा, आप ये

0: टू से कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर.
1: बिल्कुल, सतर्क रहना.
0: एग्जैक्टली, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप इनको अब दिमाग में रखें, जल्दबाजी ना करें. जो आपको कोई किसी भी तरीके से अप्रोच कराए, आदर इट्स थ्रू मेल और मैसेज और कॉल, तो एक सेकंड आप रुकिए, आप सोचिए ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, तो आप बच सकते हैं.
1: तो बहुत सी बातें चलती रहेंगी साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई. साइबर फ्रॉड अलग अलग तरीके के, चाहे वो ऑनलाइन आपके कार्ड से हो रही हो, आपकी ट्रांजैक्शन से हो रही हो, या फिर ओटीपी शेयर करने से, इससे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं. और इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हम सबकी ज़िंदगियों से डायरेक्टली जुड़े हैं. हर रोज़ लाखों केसेस आ रही हैं, और इन केसेस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. फिर भी बहुत से केसेस सॉल्व नहीं हो पाते, इसलिए हमें ही सतर्क होना होगा. एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद करेंगे और भी बातें साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मोनिका, जो कि HPS हैं और साथ ही ACP NIT हैं और साइबर क्राइम भी देख रही हैं. उनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. मैं हूं दीक्षा आपके साथ.

0: 107.8 FM है दीक्षा आपके साथ और बातें चल रही हैं साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई। साइबर फ्रॉड जो बहुत कॉमन है और इसका ताल्लुक किसी एक पर्टिकुलर तबके से नहीं है, इसका ताल्लुक हर किसी शख्स से है। ये छोटा बच्चा भी हो सकता है, ये बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं और यंगस्टर्स तो इस कैटेगरी में आते ही हैं। चाहे बात डिजिटल अरेस्ट की हो या फिर आपके सोशल मीडिया हैक होने की, हर तरीके से ये साइबर फ्रॉड्स आजकल लोगों की जिंदगियों में घुस चुके हैं, क्योंकि हाथ में रहता है फोन और फोन में रहती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसको लीक होने से बचाने के लिए हम काफी कुछ करते हैं, पर हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं ये साइबर फ्रॉडस्टर्स। आपको बहुत सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं ACP NIT फरीदाबाद पुलिस मिस मोनिका, जिनसे हम बहुत सी बातें जान रहे हैं। एक और मोनिका जी, बहुत कॉमन हो गया है आजकल फ्रॉड, वो है शादी के कार्ड।
1: जी,
0: शादी के कार्ड बहुत कॉमनली लोगों के पास आजकल आते हैं, क्योंकि जब से कोविड हुआ है ऑनलाइन चीजें ज्यादा हो गई हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या ऑनलाइन मीटिंग्स हो, तो कार्ड्स भी बहुत आते हैं, इनवाइट्स आते हैं। अब ये इनवाइट्स जो हैं, ये कैसे फोन को हैक कर रहे हैं, इस चीज को समझना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब बड़े बुजुर्गों के पास आते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि इसको देखें या ना देखें और क्यों ना देखें।
1: सो जैसे हमारे पास किसी अननोन नंबर से वो कार्ड आएगा, कार्ड का नाम भी कुछ होगा कि ए वेड्स बी सपोज कर लीजिए, और हमने उसको डाउनलोड कर लिया बिना सोचे समझे कि शादी का कार्ड है, देखते हैं किसकी शादी का कार्ड आया है। बट एक्चुअली इट्स नॉट अ इमेज और अ PDF, इट्स एन EPK फाइल जो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी एंड इट विल कॉपी ऑल द डिटेल्स ऑफ योर फोन। तो उसमें आपके अकाउंट्स के पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ जो आपने उसमें सेव किया हुआ है वो सारा डिटेल्स जो है फ्रॉडस्टर्स के पास जा सकता है, इनफैक्ट जाता ही है, एंड देन दे मिसयूज इट। उसमें आपका फोन क्लोन हो गया, तो अगर वो कोई OTP भेजेंगे तो उनको आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि क्या OTP है, दे जस्ट नो इट, क्योंकि पूरा का पूरा फोन क्लोन्ड है। हर कोई मैसेज जो आपको आ रहा है दे कैन सी इट, कोई OTP आ रहा है, कोई कॉल आ रही है, दे कैन सी इट। तो वो APK फाइल होती है, तो वो बहुत जरूरी है कि ऐसे आते ही डाउनलोड ना करें। एंड इनफैक्ट जो व्हाट्सएप की सेटिंग्स में एक ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होता है कि मीडिया को हम ऑटो डाउनलोड पे लगा देते हैं, तो वो नहीं हमें करना चाहिए।
0: मतलब डाउनलोड भी आपको क्लिक भी सोच समझ के।
1: एग्जैक्टली, एंड स्पेशली फ्रॉम अननोन नंबर्स, आपके नोन नंबर्स तो आपको भेज रहे हैं, बट वो भी हो सकते हैं कई बार फॉरवर्डेड भी कर देते हैं। मतलब आजकल फॉरवर्ड मैसेजेस का चलन है, बिना देखे किसी ने फॉरवर्ड कर दिया,
0: क्या पता उनका फोन हैक हुआ और वो आपको भेज रही हैं जो हैक करने वाले, ऐसा भी हो जाता है केसेस में। तो APK फाइल आपको बिल्कुल डाउनलोड नहीं करनी है, JPG लिखा हो या PDF लिखा हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन APK कहीं पर भी किसी भी इमेज पर लिखा हुआ है वो इमेज नहीं है, वो पूरा सॉफ्टवेयर से कॉपी किया जाता है आपका फोन, जिसके लिए आपको बहुत सतर्क होना होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक की जो हम जैसे नॉर्मल लोग करते हैं या हमारे पेरेंट्स करते हैं, क्या ऐसी मिस्टेक है जिसके थ्रू हम सबसे ज्यादा फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं?
1: एक तो जब भी कोई फ्रॉड का कोई कॉल आएगा आपको या आपके पास कोई ईमेल आएगा, बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना। आपने नहीं देखा, आप कोई भी लिंक क्लिक कर देते हो, उसमें अपनी सारी डिटेल शेयर कर देते हो। दूसरा, हम बहुत आजकल जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ भी मैसेज आया तो हम फटाफट से उसको क्लिक करके और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा हमें रुकना चाहिए उसमें। प्लस जैसे अलग अलग फ्रॉड्स हैं तो उनका अलग अलग हमारे पास हो गया। अब अपने अकाउंट्स वगैरह को सिक्योर करने के लिए हमें 2-factor ऑथेंटिकेशन हमें हमेशा रखनी चाहिए कि कोई भी अगर लॉग इन करा तो उसका एक OTP आपके फ़ोन में आएगा
0: जी,
1: तो वो हमें हमेशा अपने फ़ोन का को सिक्योर रखने में हमारी हेल्प करता है। सो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर और रादर कि टू गुड टू बी ट्रू मैसेजेस है ना, कि कुछ आपको मान लीजिए कोई जॉब के लिए कॉल कर रहे हैं कि आपको जॉब ऑफर करेंगे, तो वेरीफाई कर लीजिए कौन सी कंपनी है, क्या है, ये ऑफर ऐसे क्यों दे रहे हैं, कहाँ से इनके पास इंफॉर्मेशन गई है, बिकॉज जो कॉल कर रहे हैं दे आर टेकिंग डेटा फ्रॉम समवेयर। आपने किसी वेबसाइट पर कहीं रजिस्टर किया, आपने नंबर डाला है अपना, तो उनके पास कैसे कहीं से इन्फॉर्मेशन जा रही है, सो देयर इज डेटा लीकेज फ्रॉम सम वेबसाइट्स। वी कैन नॉट से कि कहाँ से हो रहा है, बट दे डू हैव एक्सेस कि इनको नौकरी चाहिए, तो उनको वो कॉल करेंगे एंड क्योंकि आपने रजिस्टर भी किया है तो फिर वो कहेंगे कि, और हम क्योंकि हमें तो जॉब चाहिए, हम उनकी बातों में बड़ी जल्दी आ जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि अच्छा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, आप इतने पैसे डाल दीजिए। अच्छा, आप किसी और कोई बहाना लगा देंगे कि टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, तो अब आपको जॉब चाहिए, आप उनकी बातों में आके पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं करना है, वेरीफाई करना है, कोई भी जॉब वाले आपसे पैसे मांगे तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है, उनको कोई पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि जॉब तो वो दे रहे हैं, तो
0: मेहनत का एग्जैक्टली
1: आप पहले कैसे उनको पैसा दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको सोचना है, एंड बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक, बिफोर शेयरिंग ओटीपी, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। वो आप करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि नहीं नहीं दिस माइट बी फ्रॉड। थोड़ा सा सिनिकल हो जाए लाइफ में इन सब चीजों को लेके, तो आई थिंक इट विल बी बेटर कि अगर आप खुद ही सोच लेंगे कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है तो हम बच सकते हैं।
0: बिल्कुल, यानी सोच समझ के कीजिएगा कि ये ओटीपी आपके पास कहाँ से आ रहा है, या ये जो कॉल आया है ये आपसे क्यों पैसे मांग रहे हैं, किस वजह से पैसे मांग रहे हैं, और क्या इनको पैसा देना है। ठीक है, तो 5 मिनट फोन रख के सोचिएगा, फिर उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन कीजिएगा। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम से जुड़ी हुई, तो आप इस जानकारी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने नोन के साथ। रेडियो मानव रचना की ऐप डाउनलोड करके और इस ऐप में जाइए, पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको ऑडियो पॉडकास्ट के सेक्शन में मिल जाएगी ये सारी जानकारी आरजे दीक्षा के फोल्डर में एसीपी मोनिका के साथ, और इस जानकारी को आप कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि क्या पता आपके शेयर से किसी का एक कोई भी बड़ा नुकसान होने से बच जाए। बहुत सी बातें जारी रहेंगी इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बातें चल रही हैं बहुत सारी साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कोई और नहीं बल्कि एक्सपर्ट ही शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद है फरीदाबाद पुलिस से ACP NIT फरीदाबाद मिस मोनिका, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड्स को रोका जा सकता है या फिर एक आम इंसान को कैसे सतर्क होना है, खास तौर पर से जब आप डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े अपराध की आती हो जिसके बारे में लाखों कोशिश की जा रही है लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। बहुत सारे लोगों को ऐसे कॉल्स आते हैं आजकल जो बहुत कॉमनली हो रहा है कि गैस का बिल जो है वो आपका जमा नहीं है, पूरा 7-8 रुपए बचे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए नहीं तो आपकी गैस बंद हो जाएगी। इससे हर इंसान डरता है कि घर में खाना कैसे बनेगा। और ये जो फोन कॉल्स होते हैं ये जनरली ऐसे टाइम पे आते हैं कि आगे 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, इस तरीके से लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। और मैं खुद आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नोन इस चीज में फंस चुके हैं और 5 लाख रुपए उनके जा चुके हैं। तो ये कैसे कंट्रोल करें, मतलब 7-8 रुपए अगर किसी को ट्रांसफर करने हैं तो कोई सोचता भी नहीं है एक बार।
1: देखिए इसमें क्या होता है कि उन्होंने आपको कॉल किया, आप किसी जल्दबाजी में होंगे या कुछ होगा, अच्छा 7-8 रुपए की बात है मैं कर देता हूँ। कई बार अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो आपको 7-8 रुपए भेजेंगे और वो बोलेंगे कि क्लिक कर दीजिए, सो वो मैसेज होता है कि आपने पे करना है, आपको लगता है वो पैसे भेज रहा है।
0: हाँ।
1: तो वो गड़बड़ एक तो हो जाती है, हम कई बार देखते नहीं है कि 6-7 रुपए या 6-7 हजार उसने डाल दिया है, बिकॉज वो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप इतना अमाउंट पे कर दीजिए, हमने खुद ने नहीं डाला होता कि मैंने 6 हजार रुपए देने हैं या 6 रुपए देने हैं, दे ओनली रिक्वेस्ट यू कि आप इतना पे कर दीजिए। और जल्दीबाजी में हम नहीं देखते हैं कि ये 6.00 है या 60.00 है, तो वो गड़बड़ वहाँ हमसे होती है। सो वी शुड बी केयरफुल कि क्या अमाउंट लिखा हुआ है जिसकी उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है वो। और एनीवेज कोई भी गैस कंपनी वाले या बिजली विभाग वाले कभी आपको फोन करके ये नहीं बोलते हैं कि आप बिल पे कर दीजिए। इट्स अ गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब आपने बिल पे कर दिया, आप बिल पे नहीं करेंगे तो एनीवेज वो काट ही
0: देंगे।
1: एंड ऑफ कोर्स देयर गवर्नमेंट वेबसाइट जहां पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इट जस्ट टेक्स 1 मिनट, मतलब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन, इवन योर वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप अपने अकाउंट नंबर से चेक करिए बिफोर फॉलिंग इनटू दीज स्कैम्स।
0: बिल्कुल, यानी चेक जरूर करना है, खुद सतर्क होंगे तो इन चीजों से बच पाएंगे। मैम अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो अवेयरनेस, जिसके लिए फोन पे कॉल जब आप करते हैं किसी को तो भी आपको कॉलर ट्यून सुनाई देती है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट कुछ समय पहले किसी ने सुना भी नहीं था ये वर्ड क्या है, धीरे धीरे ये केसेस बढ़े। आज की तारीख में हम पेपर उठा के देखते हैं तो खास तौर पर से बुजुर्गों को, लड़कियों को या बच्चों को इसका शिकार बनाया जाता है। अब इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग कैसे इस जाल में फंस जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज तक सेल कर दी फोन पे सामने रहते रहते, 3-3 दिन तक वो फोन का कैमरा ऑन है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ खाने का सामान लेने जाना है वो नहीं लेने जा पा रहे हैं, अपने घर तक सेल कर दिए सिर्फ उनको पैसा देने के लिए। ये इतना सब कुछ कैसे हो जाता है, क्या ये हिप्नोटाइज कर देते हैं फोन के थ्रू, क्या हो जाता है?
1: यहाँ पे आता है फैक्टर हमारा जो मैं कह रही थी कि फियर, डर। वो कॉल करेंगे आपको कि आपका सामान पकड़ा गया है, आपने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है, मतलब हमें पता है कि हमने, बट स्टिल वी फॉल इन टू देयर ट्रैप कि आपने ये सामान ऑर्डर किया था, ये कस्टम्स पे पकड़ लिया है और इसमें तो कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस हैं, कुछ इलीगल है, तो अब आपको जेल हो सकती है। तो आप जो है डिजिटली हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज पुलिस आपके घर पे आ जाएगी। तो लोग इस चीज़ से बहुत डर जाते हैं कि अरे क्या होगा कि हमें अरेस्ट कर लेंगे, क्या मिल गया, किसी और ने तो कुछ नहीं कर दिया हमारे नाम पे, ये सब डर लोगों को रहता है। और वो पूरा माहौल आपको बना के देंगे, आपको पुलिस स्टेशन दिखाएंगे, आपको कोर्ट भी दिखाएंगे, पीछे ED CBI इस तरीके के लोगोस भी लगे होते हैं, तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि ये तो कोई कोर्ट ही चल रहा है। बट वी हैव एम्फसाइज टाइम एंड अगेन हर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम यही कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज डिजिटल अरेस्ट।
0: बिल्कुल,
1: कुछ भी ऐसा डिजिटल अरेस्ट जैसा नहीं होता है। पुलिस कोई भी डिजिटल अरेस्ट किसी को नहीं करती, अगर हमें करना है अरेस्ट तो हम जाते हैं उनके घर पे, उनको अरेस्ट करते हैं, उनके घर वालों को बकायदा इन्फॉर्म किया जाता है, दैट इज द प्रोसीजर। किसी को फोन पे इसे ट्रैप कर लेना कि आप वीडियो ऑन रखिए और आप ऐसे ही रहेंगे, आप ट्रांसफर करिए पैसे, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं. एंड पुलिस सबसे पहले तो पैसे मांगेगी ही, क्योंकि आपको अरेस्ट से बचाने के लिए, इफ यू आर लाइक डूइंग समथिंग इलीगल तो पुलिस विल अरेस्ट यू. वो पैसे लेके आपने जो गलत काम किया, एग्जैक्टली, वो पैसे लेके कोई गलत काम को आपको छुपा थोड़ी देंगे. तो वो एक सबसे बड़ी चीज है कि लोग डर के मारे जो है उनको पैसे देते रहते हैं. बट इसमें जैसे लास्ट आई हर्ड, एक किसी बैंक से कोई बुजुर्ग पैसे निकालने गए थे, वो ही वॉज डिजिटली अरेस्टेड. एंड द बैंक मैनेजर, शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उन्होंने पूछा कि आप इतना बड़ा ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं, आर यू लाइक इन सम काइंड ऑफ फेयर और एनीथिंग, एंड शी सेव्ड हिम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक टू आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड यू नो आर पेरेंट्स ऑल्सो, कि आप ऐसा कुछ ना करें कि कुछ डिजिटल अरेस्ट होके बैठ जाएं. कुछ भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने से पहले हम उनसे बात करें. एक कम्युनिकेशन चैनल जो है पेरेंट्स बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में हमेशा ओपन होना चाहिए. अदरवाइज अब हमारे पास क्या है कि इट्स पार्ट ऑफ यर लाइक एवरी वन इज बिजी इन दर लाइफ. ये फोन करने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो अब पेरेंट्स घर पे डिजिटल अरेस्टेड हैं, बच्चों से बात नहीं हो पा रही है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन.
2: ऑफ कोर्स ये तो मतलब ये लैक ऑफ अवेयरनेस ही है.
1: exactly.
2: क्योंकि आपको नहीं पता कि ऐसा कैसे हो जाता है. और जैसा आपने कहा, वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप अच्छे अच्छे लोग जो है वो उसमें फंस जाते हैं. एक थोड़े टाइम पहले एक यूट्यूबर का भी हमने इंटरव्यू देखा था, वो काफ़ी पॉपुलर हैं, और उन्होंने कहा था कि मुझे 2 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा और मैं नहीं समझ पाया कि क्या हो गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको उस माहौल में फंसा देते हैं कि आपको लगता है आपने सच में कुछ गलत किया है.
1: exactly.
2: और ऐसे कॉल्स बहुत सारे लोगों के पास आते हैं कि आपका सामान जो है वो यहाँ जा रहा था आपके नाम पे, एक कुरियर है और वो कुरियर के लिए आपको पैसे देने हैं, और उसमें इस तरीके की चीज़ें. ख़ासतौर पर से अभी जो हाल ही में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और फरीदाबाद जो बहुत सुर्खियों में रहा है, उसके बाद बहुत लोगों को डराया जा रहा है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो है वो मिला है, ये ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुई है, और ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है कुछ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज से. तो इस तरीके से लोगों को डराया जाता है. तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में फंसाने वाली चीज है, ये बहुत लेटेस्ट है, अभी कुछ 15-20 दिन पहले से शुरू हुई है, इसको कैसे रोकें, इसमें लोग क्या रोल प्ले करें?
1: देखिए, अगेन अवेयरनेस. अगर आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस ऑर्डर नहीं किया है, आप यू आर क्लीन, आपने कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं किया है, आपने कुछ किसी को हेल्प नहीं किया है इन डूइंग दैट इलीगल एक्टिविटी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड इन फैक्ट इफ यू रिसीव एनी कॉल और एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज रीच टू पुलिस. 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, cybercrime.gov पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं. एंड फिर भी कोई डाउट है, जस्ट गो टू योर लोकल पुलिस स्टेशन. अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्या ये सच है कि झूठ है, यू कैन ऑलवेज गो टू योर लोकल पुलिस स्टेशन. दे विल गाइड यू कि ये फ्रॉड है, एंड आप उसके बाद में भी रिलैक्स्ड फील करें कि नहीं, ये गलत ही था.
2: बिल्कुल, यानी अपना दिमाग ना लगाएं इस चीज में, और ना ही उनकी बातों पे बिलीव करें.
1: एग्जैक्टली.
2: सो क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा शब्द होता है ना, जिसको सुन के एक आम इंसान थोड़ा सा डगमगा जाता है. उसे एक्चुअली में सबसे ज्यादा घबराहट होती है कि मुझे इसमें फंसा दिया तो मैं कैसे बाहर आऊंगा.
1: इट लीड्स टू मेंटल ट्रॉमा टू पीपल ऑल्सो. मतलब विक्टिम्स हैं, उनके लिए भी दिस इज लाइक एकदम, वो मेंटली बेचारे बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं, आके मेहनत की कमाई होती है लोगों की जो वो दे देते हैं डर में आके साइबर फ्रॉड्स उसको.
2: तो बातों का सिलसिला जारी है दोस्तों, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. ये बातचीत आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करके, और साथ ही हमें मैसेज भेज के 8010781078 पर.

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई, और ये मुद्दा इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि साइबर फ्रॉड हर किसी की जिंदगी से जुड़ चुका है। आप फोन का इस्तेमाल करते हैं, यही काफी है आपके लिए साइबर फ्रॉडस्टर का शिकार होने के लिए, और इस फोन में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। कई लोग बैंक या फिर पैसों की लेन देन फोन से नहीं करते, लेकिन फिर भी फ्रॉड उनके साथ हो जाता है क्योंकि उनके पास आते हैं केवाईसी से जुड़े फोन, कभी आती है ओटीपी की डिमांड, तो कभी उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, या फिर कभी वीडियो कॉल के जरिए उन्हें डिजिटली अरेस्ट करने की बात भी सामने आई है। और यहाँ पर कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों रुपए तक लोगों के दांव पर लग चुके हैं। आइए जानते हैं बहुत सी ऐसी बातें। हमारी आज की खास मेहमान फरीदाबाद पुलिस विभाग से ACP NIT फरीदाबाद, जिन पर साइबर सेल की भी जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं मोनिका जी से बहुत सी बातें। मोनिका जी, एक और सबसे जरूरी चीज मैं जानना चाहूंगी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की हैकिंग होना, फेसबुक हैक होना। फेसबुक आजकल लोग थोड़ा सा कम देखते हैं, यंगस्टर ज्यादा इंस्टाग्राम पे रहते हैं और व्हाट्सएप पे हर कोई रहता है। इनको हैक करके भी लोगों को गलत गलत मैसेजेस भेजे जाते हैं, यंगस्टर्स को ब्लैकमेल किया जाता है। अब ये हैकिंग कैसे रोकी जा सकती है, हम कैसे रोकें? हमारा व्हाट्सएप है 24 घंटे इंटरनेट ऑन है, वाईफाई पे घर में चलता है, ऑफिस में वाईफाई है, हमें समझ भी नहीं आता कहाँ कौन सा स्टेप हो गया जिससे हमारा पूरा फ़ोन या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम हैक हो गया।
1: व्हाट्सएप के लिए तो ऐसा है कि जैसे आप नंबर से लॉगिन करते हैं तो नंबर का OTP हमेशा आपके पास आता है
0: जी।
1: अगर वो OTP आपने बाय चांस किसी को गलती से बता दिया, सो ही कैन ऑपरेट व्हाट्सएप। वेब भी है, वो वेब पे चलाता रहेगा, फोन पे आपका व्हाट्सएप चल नहीं रहा है, वो उसका मिसयूज कर सकता है। सिमिलर विद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आपने कहीं पे पासवर्ड शेयर किया होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो है सिक्योरिटी में गड़बड़ रही है जिसके कारण वो हैक हो रहे हैं। तो इसीलिए टू स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है कि हर बार लॉगिन हो तो आपके पास OTP आए, सो दैट यू कैन ट्रैक कि कौन गड़बड़ तो नहीं करा, और अगर ऐसा है तो तभी के तभी आप मेल डाल के यू कैन ब्लॉक योर अकाउंट।
0: बहुत सारे यंगस्टर्स को, खासतौर पर से मैं यहाँ पर लड़कियों की, लेडीज की बात करना चाहूंगी, जिनकी पिक्चर्स को गलत तरीके से AI की मदद से या बिना AI की हेल्प से भी अगर वो कभी किसी के साथ शेयर कर देती हैं अपने पिक्चर, सो उनके थ्रू बहुत ब्लैकमेल किया जाता है या बहुत ज्यादा उनको जो है कुछ ना कुछ गलत उनके साथ किया जाता है, और ये बहुत कॉमन है। ये सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी ऐसा होता है। सो इसके अगेंस्ट स्टेप उठाने का क्या तरीका है? लड़कियां क्योंकि अक्सर डरती हैं, घबराती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, यू बीइंग ए वुमन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए लड़कियों को।
1: देखिए, सबसे पहले तो वी कैन प्रिवेंट दिस। अगर आप एक पब्लिक फिगर नहीं है, इफ़ यू आर नॉट ए कॉन्टेंट क्रिएटर, आई वुड सजेस्ट यू कीप योर अकाउंट प्राइवेट एंड डोंट एक्सेप्ट मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर्स और या स्ट्रेंजर्स से नहीं एक्सेप्ट करें। बट स्टिल, चलिए कोई बात नहीं, आपने कर लिया, नाउ समबडी हैज़ मॉफ्ड योर पिक्चर्स और मिस यूज दैट पिक्चर, यू कैन ऑलवेज डायल 1930 और रजिस्टर योर कंप्लेंट अनॉनिमसली ऑल्सो, इनकेस आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। cybercrime.gov पे आप जाएं, कंप्लेंट रजिस्टर करिए एंड वी विल गेट इट डिलीटेड फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स इफ
0: ओके। यानी आप पूरा सपोर्ट करेंगे उसमें और अपना जो उस लेडी का नाम है वो भी सामने नहीं आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार लेडीज बड़ा डरती हैं कि नहीं
0: फैमिली में
1: पता चलेगा, बेइज्जती होगी, दे फील वेरी ट्रॉमाटाइज्ड। सो वी आर देयर टू हेल्प यू, आप प्लीज एक जस्ट एक कंप्लेंट उस पे डालनी है एंड विल गेट इट डन।
0: बिल्कुल, यानी आपकी कोई भी पिक्चर अगर इस तरीके से कोई आपको ब्लैकमेल करता है, आपकी पिक्चर का मिसयूज करता है, तो आपको सीधा कंप्लेन करनी है अपने पास के पुलिस स्टेशन में, या फिर आपको पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो कंप्लेन रजिस्टर करनी है, और आपकी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो वहाँ से हटा दी जाएंगी। इस चीज़ के लिए आपको किसी को भी कुछ नहीं कहना है, आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। मोनिका जी, अब बात करते हैं गेमिंग के थ्रू होने वाले फ्रॉड्स की। घर में 4-5 फोन्स होते हैं, अब बच्चों को आप अलग से फोन नहीं भी देते हैं तो भी छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स का फोन उठा लेते हैं, और पेरेंट्स भी कहते हैं चलो थोड़ी देर वीडियो ही देख रहा है, देखने देते हैं। अब बच्चा उसमें गेम्स खेल रहा है, एक बहुत पॉपुलर गेम है रोब्लॉक्स
1: जी,
0: और ये गेम जो है कि बच्चों को कह रहे हैं कि उसमें कोई भी स्ट्रेंजर बच्चों से बात करता है और पहले कॉन्फिडेंस जीतता है और उसके बाद उनसे क्राइम करवाता है।
1: Exactly.
0: तो ये कैसे होता है, हम कैसे इसको, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं चीजों से कि आप उनसे छीन नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है?
1: मैं इस बारे में एक केस आपको बताना चाहूंगी कि वी रिसीव्ड अ कंप्लेंट, एक बंदे के साथ फ्रॉड हो गया एंड ही सेड कि मैंने तो कोई ऐप डाउनलोड नहीं करी, नाइदर आई गिव एनी OTP नॉर एनी पासवर्ड, तो अब अकाउंट से पैसे गए कैसे। सो लाइक इन्वेस्टिगेशन वॉज डन एंड देन इट वॉज फाउंड कि उनके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल हुई थी कभी. नाउ इट्स बिन डिलीटेड. तो अब आप देखोगे फ़ोन में तो कोई अननोन ऐप नहीं है, बट वो पहले हुई थी. अब वो बच्चे ने करी थी बिकॉज वाइल प्लेइंग दैट गेम किसी ने बोला कि ये ऐप डाउनलोड कर लो एंड यू विल रीच अनदर लेवल और यू विल गेट सम स्पेशल लाइक इक्विपमेंट जो भी पॉइंट्स कुछ किसी भी चीज़ का लालच दे के बच्चे ने ऐप डाउनलोड कर दी. पूरा फोन कॉपी हो गया एंड देन ही आस्क्ड द किड टू डिलीट इट आल्सो ताकि कोई ट्रेस ही ना रहे कि ऐप है अभी फोन में. तो पेरेंट्स को पता ही नहीं कि कोई ऐप इंस्टॉल होके डिलीट भी हो गई है.
0: मतलब ये 5-7 मिनट में सारा कुछ
1: सब हो गया. अब ऐप डाउनलोड होते ही तो सब चला ही गया था. नाउ द फ्रॉडस्टर कैन डू एनीथिंग विद योर फोन. मतलब सब डिटेल्स उनके पास चली गई हैं. पेरेंट्स का रोल ये है कि अपने बच्चों को भी इस बारे में अवेयर करें और वो क्या गेम खेल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें. बच्चे कई बार पैसे भी ट्रांसफर कर देते हैं पेरेंट्स के अकाउंट से. कि टू रीच अनदर लेवल और टू मतलब बाय एनीथिंग इन द गेम. तो उसके लिए हमें बच्चों से बात करने की बहुत ज़रूरत है. बहुत एक कम्युनिकेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स इज अ मस्ट कि ऐसे कोई पैसे ट्रांसफर नहीं करने, इट्स अ फ्रॉड. और जितना दूर रख सके बच्चों को फोन से वो तो बेस्ट है.
0: जी बिल्कुल जी. बातों का सिलसिला जारी रहेगा. AI डीप फेक या फिर डेटिंग एप्स हनी ट्रैप, ये सारी चीजें भी इसी कैटेगरी में आती है जिसको कहा जाता है साइबर फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम. बहुत सी बातें इससे जुड़ी हुई कर रही हैं और आगे भी करते रहेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रही हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

0: आपके हाथ में एक फोन, फोन में बहुत सी इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन अगर कहीं लीक हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, तो फिर आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानेंगे? जिम्मेदार कुछ चीजों के लिए हम होते हैं, और कई बार हमारी लापरवाही, क्योंकि ये एक्चुअली में हमारी प्रॉपर्टी है। फोन को संभाल के रखना, इसके डेटा को संभाल के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते और फंस जाते हैं फ्रॉडस्टर्स के जाल में। वो फ्रॉडस्टर्स जो बड़े बड़े कॉल सेंटर्स बना के बैठे हुए हैं, वो फ्रॉडस्टर्स जिन्होंने खाली देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को परेशान कर रखा है, एक डर का माहौल बना रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं फरीदाबाद पुलिस की ओर से ACP NIT और साइबर क्राइम देख रही मिस मोनिका, जिनसे हम बहुत सी बातें और भी जान रहे हैं। सो आइए और भी डिटेल में जानते हैं कि साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम और क्या क्या बिगाड़ सकता है, या फिर कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर ये बहुत कॉमन है। अब बात करते हैं डेटिंग ऐप्स की। हनी ट्रैप्स, डेटिंग ऐप्स बहुत कॉमन, और आज का नहीं है, ये बहुत पुरानी चीजें चल रही हैं, बस अब डिजिटली होने लग गई हैं। सो अब जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, एक अच्छा मैच देख रहे हैं, जो शादी नहीं भी चाहते, एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आपको मिल जाएंगी जिसमें लोग रजिस्टर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और बाद में फंस भी जाते हैं। ये कैसे फंसते हैं और कहाँ पर कौन सा ऐसा रेड फ्लैग है जिसको दिमाग में रखना चाहिए?
1: इसमें देखिए, एक तो पहले जिस सेक्सटॉर्शन जो क्राइम होता था, उसका आपको कोई अननोन नंबर से कोई कॉल आएगा, आपने उठा लिया एंड द गर्ल विल लाइक बी इन अ वेरी इनअप्रोप्रिएट पोजिशन और सिचुएशन, तो वो आपका वीडियो शूट कर लेगी। नाउ शी विल ब्लैकमेल यू कि मैं आपके घर वालों को ये वीडियो भेज दूंगी, फोटोग्राफ्स भेज दूंगी, एंड बीइंग फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली बंदा पैसे भी दे देता है कि घर में बेइज्जती होगी, और ये तो एक तो यहाँ पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि सबको पता है कि इट्स अ सेक्सटॉर्शन कॉल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो उसके लिए आप कंप्लेन करें। दूसरा, डेटिंग एप्स पे जैसे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, आपकी आपने बात करना शुरू करी, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, नाउ द अदर पर्सन हैज आस्क्ड फॉर योर प्राइवेट पिक्चर्स। सो कभी भी किसी को भी प्राइवेट पिक्चर्स शेयर नहीं करनी। आई वुड सजेस्ट नॉट इवन कीप इट इन योर फोन कि आपने क्लिक करके रख ली, वो भी नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन द फोन कैन बी क्लोन्ड, और फिर वो फोटो की एक्सेस भी चली गई, नाउ इट्स बीन सर्कुलेटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स, तो वो क्लिक करके भी हमें जो है नहीं रखनी चाहिए। और अगर फिर भी आप फंस जाते हैं ऐसे किसी चीज में, तो ब्लैकमेल तो बिल्कुल भी किसी से नहीं होना है, कोई किसी को पैसे नहीं देने हैं, जस्ट रीच आउट टू पुलिस एंड वी विल रजिस्टर FIR एंड वी विल फाइंड द कल्प्रिट।
0: और खास तौर पर से यहाँ पर भी नाम जो है वो नहीं बताया जाएगा किसी
1: को आइडेंटिटी। बिल्कुल बिल्कुल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस में कभी भी हम जो है विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते, नॉट इवन इन अदर केसेस आल्सो अपार्ट फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड्स।
0: जी, यानी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, इसलिए डरिएगा मत कोई आपको ब्लैकमेल करे, तो ब्लैकमेल मत होइए, सीधा आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहां पर जाकर आप बात कीजिए। AI और डीप फेक, ये एक ऐसा टॉपिक है मुझे लगता है आने वाले टाइम में सिर्फ यही बातें होंगी, आज भी यही हो रही हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो, वीडियोस ऐसे बना दी जाती हैं कि आप अपनी आंखों से डिफरेंस नहीं पता कर सकते हैं, अगर कोई आम इंसान बहुत टेक्निकली साउंड ना हो। कैसे पता लगाएं कि ये वीडियोस बन रही हैं आपके नाम पे, आपकी शक्ल को यूज़ करके इतना सब कुछ किया जा रहा है और फिर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा कैसे हो जाता है इतनी आसानी से?
1: देखिए, आपकी खुद की वीडियो है तो आप पता कर ही सकते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी और की मॉफ्ट वीडियो या आपके किसी जान पहचान वाले की आपके पास ऐसी आई है एंड वो कुछ आपसे करने के लिए कह रहे हैं, तो जस्ट टॉक टू दी पर्सन, उनसे बात कर लीजिए। बट अगर फिर भी कुछ ऐसी इमेज है कि जो आप नहीं वेरीफाई कर पा रहे हैं, तब भी एक सेकेंड रुकिए, सोचिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए, वाटर मार्क्स कभी कभी उसमें होते हैं
0: हाँ।
1: तो उससे पता चल जाएगा कि ये AI जनरेटेड है या रियल है, और उसके अलावा फिर इंटरनेट पे कुछ टूल्स हैं जिस पे डाल के हम पता कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स एन इवॉल्विंग थिंग एंड अगर थोड़ा सा आप टाइम रुक के उसको वेरीफाई करेंगे तो वी कैन डू इट।
0: बिल्कुल, और बहुत सारी अफवाहें जो है वो इन चीज़ों के थ्रू उड़ाई जाती हैं, AI की वीडियोस के थ्रू, बहुत सारे किसी एक अच्छी पर्सनालिटी के जो फेस है, डॉक्टर्स को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर्स की एडवाइस या पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कुछ, लेकिन वो AI जनरेटेड वीडियो होती है जिसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा होता है और लोगों को समझ नहीं आता। मैं स्पेशली बड़े बुजुर्गों का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ बिकॉज वो व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं वीडियोज़, गुड मॉर्निंग ग्रुप्स जो बने होते हैं फैमिली के उनमें बहुत जल्दी शेयर होती हैं ऐसी ऐसी वीडियोस, तो वो कैसे पहचाने कि ये गलत है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं अरे ये वीडियो आई हुई है, ये देखो ये हो रहा है, लेकिन बाद में हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ आता है ये रियल वीडियो नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, बच्चे और बूढ़े हमारे वल्नरेबल एक सेक्शन है सोसाइटी का, जो कि थोड़ा उनको भी समझ में नहीं आता है कि वीडियो क्या है. व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हम आजकल इतना ज़्यादा चला रहे हैं कि डीप फेक जो न्यूज़ है वो भी ट्रैवल करती है, इमेजेस भी ट्रैवल करती हैं, और किसी का भी वीडियो कुछ भी लगा रहे हैं. तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार हम उसको फैक्ट चेक कर लें. वी कैन ऑलवेज लाइक सर्च ऑन द इंटरनेट कि क्या इन्होंने ऐसा बोला है, तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी कि ओ ये दिस वॉज द रियल वीडियो, जिसको डीप फेक करके उन्होंने ऑडियो चेंज कर दिया है या कुछ वीडियो में कुछ टैम्परिंग कर दी है. तो वो थोड़ा सा अगर रिसर्च आप करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट कि रियल वीडियो ये थी या मॉफ्ड वीडियो ये है.
0: यानी रियल वाली जो है वो भी दिखानी पड़ेगी ढूंढ के.
1: एग्जैक्टली.
0: तब जाके रियल चीजें जो है समझ आएंगी. तो बहुत सारी बातें आपने मोनिका जी बताई हैं, लेकिन मैं बस चलते चलते आपको यही आपसे जानना चाहूँगी, कुछ ऐसी टिप्स, 5 टिप्स अगर आप बता सकें हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि कैसे खुद को इस साइबर फ्रॉड से बचाना है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स हमसे भी 10 गुना आगे चलते हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: और हमसे भी ज़्यादा तेज सोचते हैं.
1: सबसे पहले तो कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक ना

0: करें आइदर फ्रॉम एनी अननोन ईमेल और एनी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल पे, वो नहीं करना है। दूसरा, ओटीपी शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। तीसरा, डरना नहीं है फॉर एनी केस ऑफ डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और साइबर बुलिंग, कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ पुलिस के पास जाएं। उसके अलावा सिक्योर योर अकाउंट्स, आपके सारे बैंक अकाउंट्स भी टू स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, कि सब कभी भी लॉगिन हो तो एक ओटीपी आपके पास ज़रूर आए। पासवर्ड्स कभी भी ब्राउज़र पे शेयर ना करें, जैसे हम कई बार लॉगिन करते हैं ऊपर पॉपअप में आता है कि डू यू वांट टू शेयर द पासवर्ड फॉर दिस वेबसाइट, सो वो ना करें, नेवर करें उसको। आप यू कैन ऑलवेज रिमेंबर योर पासवर्ड्स, एंड पासवर्ड्स भी थोड़े यूनिक रखें, यानी कि बर्थ डेट रख दी या कुछ नाम ईजी वाले ना रखें, बिकॉज दोज आर ईजियर टू हैक। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान में रखें इन आर डे टू डे लाइफ, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को साइबर क्राइम से।
1: जी, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है वो आपके हाथ में सिमटी हुई है, लेकिन आपको इसके साथ अपने दिमाग को भी यूज़ करना है, अपनी समझ को यूज़ करना है और अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा कर रखना है। यही एक सोल्यूशन है। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो चाहे नॉर्मली आपको ब्लैकमेल करे आपके पिक्चर्स या आपकी वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज़ डरिए मत, सीधा पुलिस स्टेशन जाइए या साइबर पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही सबसे सेफ रास्ता है खुद को बचाने का। सो मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत सरल तरीके से आपने बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद है आपको देखकर, आपको सुनकर हमारी जो ऑडियंसेस हैं, हमारे लिसनर्स जो हैं, वो अपने आप को इस साइबर फ्रॉड के जाल से बचा के रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम है जिसमें कि मैं आपको एक लंबे समय से ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चलते हैं, जो समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों के लिए मानवता के लिए काम कर रहे हैं और साथ के साथ इस बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज इस कार्यक्रम में

0: के लिए जरूरी है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है। आज हम इनकी पूरी कहानी जानने वाले हैं और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। सुचेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भावना जी।
0: सुचेता जी, बायो एंजाइम्स, आप मेंबर है बायो एंजाइम्स एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी की और साथ के साथ आपकी खुद की एक ब्रांड भी है, केयर बायो एंजाइम। मुझे बताइए, बायो एंजाइम्स होता क्या है?
1: जी, बायोएंजाइम बहुत एक साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये रसोई से निकलने वाले हमारे जो छिलके होते हैं उनको गुड़ और पानी के साथ एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है और किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के माध्यम से ये एक लिक्विड बनता है, तरल पदार्थ बनता है जो 3 महीने रखने के बाद हमें मिलता है। और ये बहुत उपयोगी होता है क्योंकि ये हमारे घरों की सफाई के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत काम आता है। और इसका जो इन्वेंशन किया गया है वो डॉक्टर रोशुकॉन ने किया था, वो मलेशिया की एक वैज्ञानिक है और 40 सालों से इस पर वो कार्य कर रही हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम उनको मिले। और जब बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी ने यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया तो लोगों को जो शुरुआती एक्सपीरियंस थे वो बहुत ही अच्छे आए, तो इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो इसको बनाने की एक बहुत साधारण विधि है कि एक डिब्बा प्लास्टिक का नॉर्मली हम लेते हैं जो एयर टाइट होता है और उसमें हम 1 लीटर पानी में 300 ग्राम छिलके और 100 ग्राम गुड़ को मिलाकर रख देते हैं और शुरू के 20 दिन ढक्कन को थोड़ा सा ढीला करके उसमें बनने वाली गैस को निकाला जाता है और उसके बाद इसको 3 महीने के लिए किसी ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है। और 3 महीने के बाद जो लिक्विड बनता है, जो तरल पदार्थ बनता है, उसको बायोएंजाइम कहते हैं और उसको छान कर हम विभिन्न तरह के सफाई जो हम घरों में करते हैं, किचन से लेके बाथरूम तक, फर्श की, कपड़ों की, अपने शरीर की, हर सफाई में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और इसकी विभिन्न तरह के छिलकों से अलग अलग तरह के बायोएंजाइम बनते हैं और हर वस्तु, हर छिलके की अलग क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी के हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। जैसे खट्टे फलों का छिलका सफाई के लिए उपयोगी होता है तो हम उसको घरों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं।
0: और ओह माय गॉड, मतलब अगर आप सोचें दोस्तों, तो आज तक हम ये सोच रहे थे कि जो हमारा वेस्ट होता है, आई मीन ये जो चीजें हैं जो अभी सुचेता जी ने बताई हैं, दरअसल हमारे डस्टबिन में जाती हैं और डस्टबिन के बाद ये कूड़े वाले के पास और कूड़े वाले से आगे रिसाइकल हो या इसका क्या इस्तेमाल हो हमें नहीं पता, चाहे वो लैंडफिल बने या फिर वो कहीं और यूज हो जाए। लेकिन आज तक हमने बायो एंजाइम्स के बारे में तो सोचा ही नहीं था। ये वाकई अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने की जरूरत है। बट फिर वही बात कि जब हमें बहुत सारे साबुन और साफ करने वाले क्लीनिंग एजेंट्स मिल रहे हैं तो बायो एंजाइम्स क्यों? ये सवाल मैं पूछने वाली हूँ सुचेता जी से, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

पुरस्कार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं सुचेता साहू जी के साथ, जो मेंबर हैं बायो एंजाइम्स एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी भारत और साथ के साथ फाउंडर है बायो एंजाइम्स केयर की। एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हमारे पर्यावरण के लिए और साथ के साथ वेस्ट मैनेजमेंट पर ढेर सारा ये काम कर रही हैं। बहुत सारी जगह पर जाकर ना सिर्फ ये लोगों को इसकी जानकारी देती हैं, लेकिन उन्हें इसे अपने जीवन में अपनाने की शिक्षा भी देती हैं। सुचेता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दरअसल आपने लाइब्रेरी साइंस में बहुत पढ़ाई की है, मास्टर्स की है, और अच्छे खासे एक प्रॉमिसिंग करियर के बाद आपने केयर बायो एंजाइम्स की शुरुआत की, तो ये आपकी जर्नी कैसे रही और इस तरफ आप कैसे आई?
1: जी, इसको शुरू से ही अगर देखा जाए तो हम पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा जागरूकता थी और कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई जिन्होंने समय के साथ एक परिवर्तन को महसूस करने की शक्ति दी। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत साल पहले जब मैं एक बार जा रही थी अपने स्कूल से घर की ओर, तो पहले ये अंडरपास नहीं बना था मेवला का, आप सेक्टर 45 का एरिया अगर जानती होंगी, तो हम लोग रेलवे क्रॉसिंग के फाटक पे खड़े होते थे, उस ट्रेन के निकलने का इंतजार करते थे। तो वहीं पर उस फाटक के उस पार कूड़े का एक बड़ा सा ढेर लगा होता था और उसमें कई बार मैंने देखा कि गाय उस कूड़े में से छिलके और पन्नियां सब कुछ खा रही थी। और मैं क्योंकि लोग हम चलते रहते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता इन चीजों पर, क्योंकि दूसरी साइड ट्रेन के गुजरने के इंतजार में मैं बैठी होती थी और मेरी नजर उस पर से हट नहीं रही होती थी। तो एक अंदर से बहुत ही जोरों की इच्छा आती थी कि इसको कैसे चेंज किया जाए। तो उसके बाद फिर मुझे घर में खाद बनाने का विचार आया और उसके लिए मैंने पता किया और छिलकों से खाद बनाने लगी ताकि वो छिलके कूड़े में ना जाए। और धीरे धीरे फिर नौकरी में मन नहीं लगा, घर की भी कुछ समस्याएं थी, तो फिर मैंने अपना इसी तरफ ध्यान देना शुरू किया, पर्यावरण में कैसे अपना योगदान दिया जाए, पन्नियों को अलग करना शुरू किया और भी छोटे छोटे स्टेप्स थैले ले जाना जो सब लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं करने की, वो मैंने आई थिंक 2015-2014 से शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे 2021 में बायोएंजाइम के बारे में पता लगा अपनी बहन से, जो जिसने प्राकृतिक खेती के कोर्स को ज्वाइन किया था, और उन्होंने ही बताया कि बायोएंजाइम का कितना उपयोग होता है। और जब हम अपने घरों में तरह तरह के केमिकल्स से सफाई करते हैं और उसका जो वेस्ट वाटर हमारी नालियों से जाता है तो बहुत ही गंदगी फैलाता है और हमारी नदियों को प्रदूषित करता है, और उसमें जो झाग डाले जाते हैं और भी कई ऐसे खतरनाक केमिकल्स डाले जाते हैं जो सफाई तो बहुत अच्छी करते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन अंततः वो हमारे शरीर और पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। और ये बायोएंजाइम का जब हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे नाली के माध्यम से जब हम जाता है तो ये पानी को साफ करता है। तो ये जो छोटी सी बात थी उसने मेरे अंदर बहुत ही असर किया, तो मैंने भी उससे सीख के बायोएंजाइम बनाना घर पे प्रारंभ कर दिया और उसको अपने घर में उपयोग करना शुरू किया, पोछे में और भी छोटे छोटे कार्यों में एक तरह से एक्सपेरिमेंट की तरह कार्य शुरू हो गया था। तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिखाई देने लगे, जैसे घर में जो चींटियां आती थी छोटी छोटी और भी कीड़े, वो आने कम हो गए और सफाई में हमें डिटर्जेंट वगैरह का इस्तेमाल कम लगने लगा। तब उन्होंने मेरी बहन ने बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी की सदस्यता ली हुई थी और उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर आप इससे बहुत सारे उत्पाद बनाए और बेचे जा सकते हैं और इसके लिए एकेडमी हमको मार्गदर्शन करेगी। तब मैंने भी सोचा कि मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी थोड़ी कम हो रही है तो मैं भी कुछ अच्छे इस कार्य में जुड़ूं, तो मैंने भी सदस्यता ले ली और उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गई। उसके सदस्य बायोएंजाइम बनाते थे, इस्तेमाल करते थे और उसके उपयोग को शेयर करते थे, अलग अलग तरीके से अपने अनुभवों को साझा करते थे जो मुझे बहुत ही उत्साहित करता था कि मैं भी करूं। तो मैं एक तरह से जब भी मुझे समय मिलता था, कोई ना कोई घर किचन से निकलने वाला जो भी छिलका होता था उसको मिक्स करके गुड़ और पानी के साथ एक छोटे से डब्बे में बना के रख लेती थी। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बे इकट्ठे हो गए जिसमें बायोएंजाइम बन रहा था। इसके बाद थोड़ा सा मैंने उसको आगे उसको बेचने के हिसाब से बनाने की सोची, और उसके उसमें मुझे एक हितकारी फाउंडेशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी अजीत जी है, उन्होंने भी काफी मार्गदर्शन दिया। और 80 पहला जब मैंने अपना बैच शुरू किया, 80 लीटर का ड्रम लेके आई और उसमें खट्टे फलों के छिलके जूस वाले से लेके गुड़ और पानी मिला के बनाना शुरू किया। अब ये 3 महीने का जो प्रोसेस था वो जैसे लग रहा था बहुत लंबा हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना उत्साहित थी इसको इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, कि ये बनने से पहले ही मुझसे रहा नहीं गया। और मेरी एक पारिवारिक मित्र हैं प्रीति भटनागर जी, किड्स रिपब्लिक स्कूल है एक बच्चों का, उसमें प्रिंसिपल हूँ, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इसकी वर्कशॉप करने दीजिए। तो टीचर्स के लिए उन्होंने मेरे लिए अप्रैल में 2023 में वर्कशॉप अरेंज की, और इस वर्कशॉप में जब मैंने टीचर्स को बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने काफी तारीफ की, तो उसने मुझे काफी मोटिवेट किया कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं। लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं नई बॉटल्स नहीं खरीदूंगी जहां तक हो सकेगा, पुरानी ही जो उपयोग की हुई बोतलें जो घरों में आती हैं उसका ही इस्तेमाल करूंगी। तो इतनी बोतलें तो मेरे पास नहीं थी, तो इससे पहले मैं प्रीति भटनागर जी के माध्यम से प्लास्टिक का कचरा अलग करके इको सवेरा एनजीओ को देती थी। तो वो जो कचरा था प्लास्टिक का, उससे मुझे आइडिया आया कि लोग अपने घरों से बोतलें भी निकालते होंगे। तो मैंने इको सवेरा की फाउंडर पूजा जी से संपर्क किया, तो वो सुन के मेरा जो पर्पस था वो बहुत खुश हुई। तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ जुड़ जाओ, और आप हम वो भी बायोएंजाइम के बारे में जानती थी, तो उन्होंने कहा आप हम हमारी तरफ से हमारे प्लेटफॉर्म से बायोएंजाइम की कैंपेनिंग करें। तो इनका इकोमेनिया फेस्ट होता है, तो उस फेस्ट में मैंने पहली बार अपना स्टॉल लगाया, और वहीं से केयर बायोएंजाइम की शुरुआत हुई एक प्रोफेशनल मंच पे। और उसके बाद से मैं बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी और इको सवेरा की तरफ से फरीदाबाद में अनेक स्कूलों, कॉलेजों, सोसाइटीज और कंपनीज में इसकी वर्कशॉप करी, बनाना सिखाया, इसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं उसको भी कई बार इंडिविजुअल इसको बताया, और वो लोग अपने घरों में उन्होंने भी बनाना शुरू किया। इस तरह से इसको हम बेच भी रहे हैं, बनाना भी सिखा रहे हैं, और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि हमारे घरों में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो कम से कम किए जाएं, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इसमें रीठा और नारियल से बने हुए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है, ये आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, तो ये प्रकृति के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदेह नहीं होता।
0: बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शुरुआत थी, लेकिन ये शुरुआत इंटरेस्टिंग थी लेकिन सफर अब बहुत ही सुनहरा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो वक्त है एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं सुचेता साहू जी के साथ, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, वो कॉन्शियस डिसीजंस ले रही हैं जो आइडियली आज के ज़माने में लोग नहीं लेते हैं। भाई देखिए, ये बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल कर रही हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं अब इनसे ये जानना चाहूँगी सुचेता जी कि दरअसल जब आपने एक सस्टेनेबल लिविंग को अडॉप्ट किया, सो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए, और दरअसल अगर देखा जाए तो आपको इसके एडवांटेजेस क्या नज़र आते हैं?
1: जी, दोनों ही तरह से एक चैलेंजेस थे। पहली बात तो लोगों को जो केमिकल बेस्ड क्लीनर्स के इस्तेमाल की आदत पड़ गई है, वो उसकी तुलना में ये प्राकृतिक उत्पादों को अडॉप्ट करना मुश्किल हो रहा था।
0: वाकई,
1: और क्योंकि अब आप प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो इसका कार्य थोड़ा सा धीरे चलता है
0: जी।
1: और हमारे इस समय समाज का जो गति है वो बहुत तेज है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसमें फिर अच्छे झागों का उपयोग किया और खुशबू की आदत थी सबको, तो हमारी जो घर में हेल्प थी, हाउस हेल्प थी, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसको इस्तेमाल करना। तो सतत प्रयासों से, लोगों से सीख के इसका जो गुणवत्ता थी और बढ़ाई, हमने बायोएंजाइम में जो अच्छे रसायन थे, जो झाग थे, उनको डाला, तो हमारा जो ये प्रोडक्ट था वो इम्प्रूव करने लगा और लोगों ने इसको सराहना शुरू किया। और पौधों के लिए भी जब हमने मैंने उसको लोगों को देना शुरू किया तो पौधों में भी परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा, उसमें लगने वाले कीड़ों में भी कमी आई और जो फल आते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया। तो जो जिन्होंने मुझसे लिया उन्होंने काफी सराहा। तो इस तरह से एक जो है गति ये कार्य पकड़ने लग गया और लोगों ने इसको अपनाना धीरे धीरे ही सही शुरू किया।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं ये समझ सकती हूँ कि इनिशियल चैलेंजेस जो हैं वो सबसे पहले होता है कि लोग अपने लाइफस्टाइल को बदल ही नहीं पाते हैं, तो लाइफस्टाइल में चेंज, माइंडसेट में चेंज, ये लाना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में देखिए, आज अगर आप जो नॉर्मल हमारे क्लीनिंग एजेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं जिसमें खुशबू है, जिसमें स्टेन रिमूवर्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो अरोमा हमारे क्लीनिंग एजेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं जिसमें खुशबू है, जिसमें स्टेन रिमूवर्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो अरोमा है, जो खुशबुएं आती हैं, वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और ईजी अवेलेबिलिटी हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसे क्यों बदलें। लेकिन अगर हम इसे लॉन्ग टर्म सोचें, पर्यावरण के बारे में सोचें, तो ऑफ कोर्स हमें समझ में आएगा कि ये आने वाले समय में इस इकोसिस्टम के कारण वापस हमें ही मिल रहे हैं। जितने भी डिटर्जेंट्स, जितने भी केमिकल्स, फॉर दैट मैटर अगर हम अपने घरों में, अपने बाथरूम्स में और हमारे कपड़ों के धुलने के लिए या फिर हमारे घर की सफाई के लिए जितना भी पानी इस्तेमाल हो रहा है, ये ड्रेन के थ्रू वापस कहीं ना कहीं या तो मिट्टी में या हमारे अंडरग्राउंड वाटर में मिल रहा है या फिर हमारी नदियों में जा रहा है। और इमेजिन करिए कि जितना भी केमिकल हमने अपने घरों को साफ करने के लिए लगाया है वो सारा का सारा हमारे पानी में लग गया। अब उसी पानी का इस्तेमाल अगर खुदा ना खासा सिंचाई के लिए कर दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं उसी की सब्जियां खा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आजकल की सब्जियों में वो टेस्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हमें केमिकल केमिकल जैसा महसूस होता है। सो ये जो शुरुआत है ना, ये हमने की है और इस प्रैक्टिस को हमें ही खत्म करना होगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं सुचेता साहू जी के साथ। सुचेता जी आप ना बहुत ही सस्टेनेबल लिविंग करती हैं, जहां अगर आपको प्रोडक्ट्स बेचना भी है तो नई बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, जितने भी हमारे छिलके हैं उनका इस्तेमाल करके बायो एंजाइम्स बनाती हैं, उसी से हमारे अपने घरों की सफाई करती हैं, बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। वन की हमारे पर्यावरण को तो बचा रहा है, लेकिन इस पूरी सस्टेनेबल लिविंग को जीने में आप मुझे बताइए कि ये जो चेंजेस हैं इसमें आपको बेनिफिट्स क्या नजर आ रहे हैं, और क्या इन बेनिफिट्स को लोग अपना सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे?
1: जी, बेनिफिट्स तो बहुत मिल रहे हैं और बदलाव भी कोई खास नहीं करना पड़ता है, बस कुछ आदतें हमें बदलनी होती हैं, बस उसके ही माध्यम से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कचरा अलग करने की आदत जब हम डाल लेते हैं तो कचरा कचरा नहीं रह जाता है, वो एक वैल्यू एडिशन हो जाता है जो आगे काम आ जाता है। जिस तरह से हमने गीला कचरा अलग किया तो उससे खाद बनानी शुरू की, बायोएंजाइम बनाना शुरू किया, उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और आदतें जब बदलती हैं तो हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को महसूस करते हैं, और जब ये संबंध इस्टेब्लिश हो जाता है तो हम, मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बीमार कम पड़ती हूँ, और जब घर की बन रही खाद को उपयोग करती हूँ या घर में तैयार हो रहे बायोएंजाइम से सफाई करती हूँ जो कि प्रकृति का एक वरदान है, तो उससे उसके उपयोग से परिवार के स्वास्थ्य पर भी मैं देख रही हूँ कि अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, पैसे की भी बचत हो रही है, नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, सिखाने को मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात मुझ पर मानसिक रूप से इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, और अपनी कार्य क्षमता में मुझे बहुत परिवर्तन, जो कि मैं पॉजिटिव परिवर्तन कहूंगी, दिखाई देना शुरू हुआ।
0: तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये बातें सुन रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि न सिर्फ आपके छोटे से बदलाव से आप अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहला चेंज कि आप अपनी हेल्थ को ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, आपके अंदर आने वाली जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है ना वो काफी हद तक कम हो जाती है। उसी के साथ साथ आप न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, आपका परिवार स्वस्थ रहता है, आपकी इनकम में बचत होती है, मतलब जितना भी पैसा आप एक्सपेंडिचर आपका होता है घर में, बहुत सारी चीजें बहुत महंगी मिलती हैं, और कई बार तो आप ये देखते हैं कि इतना सारा खर्च होने वाला जो पैसा है अगर वो बचता है तो ये आप ही के परिवार के लिए अच्छा है। लेकिन इन ऑल अगर हम इसे अपने पर्यावरण के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए या इस पूरी सृष्टि के लिए देखें, सो हम इस सृष्टि को वापस दे पा रहे हैं वो जो उसे चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आज के ज़माने में चाहे क्लाइमेटिक चेंज की मैं बात करूँ या फिर ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात करूँ या फिर हमारे पूरे के पूरे एक्सप्लॉइटेड इस पर्यावरण की मैं बात करूं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें नेगेटिविटी देखते हैं, और ऐसी सारी प्रैक्टिसेस से हम कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ, ना इज्जत की चिंता ना

बाबा बन के हम सन्यासी काम है चलते रहना, मौका है वीर बना लो हाथ में मलते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल लिया हो गले का कहना, मार के मंत्र ना कर देव कर तू कहना।

पधारे, चिंता चरक चिदम और चेले साथ साथ में सारे।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं उन लोगों के साथ जो कुछ अलग करते हैं, ना सिर्फ समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारी सृष्टि के लिए कुछ अलग ह्यूमैनिटेरियन कर रहे हैं, और कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं सुचेता साहू जी। देखिए भाई, एक बड़ी सी इंडस्ट्री लगाकर आप सामान को बेचें और फिर उस सामान में प्रॉफिट पाने के लिए आप बहुत सारे एडल्ट्रेशन करें, ये तो बहुत आम सी बात है और जो आपने सुनी भी होगी, लेकिन पर्यावरण के लिए, परिवार के लिए और लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें बनाएं, ये आपने कम सुना होगा और ये आप सुन सकते हैं सुचेता जी से। सुचेता जी, बहुत सारी बातें की बायो एंजाइम्स के बारे में पता लगा, आई एम श्योर अब लोग जाकर गूगल करने वाले हैं, इसके बारे में और पता करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लेकिन आपने अपना कीमती समय निकाला, हमसे ढेर सारी बातें की, जाते जाते बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, क्या खास संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जिंदगी में इसे कैसे इम्बाइब कर सकते हैं, इसमें अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं?
1: बिल्कुल आसान है इसको अपनाना, बस थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता होती है। और आप जैसे हम कचरा अलग करते हैं तो जो छिलका निकल रहा है उसको आप किस तरह से यूज करना है, उसी हिसाब से आप थोड़े थोड़ा बैचेस में बायोएंजाइम बनाइए, ज्यादा नहीं बनाइए, मैक्सिमम आप सिट्रस फ्रूट्स का बना लीजिए और बाकी कुछ फ्लावर्स का बना लीजिए और कुछ सब्जियों का बना लीजिए, उतना ही काफी है हमारे रेगुलर क्लीनिंग और घर के इस्तेमाल के लिए। अगर आप थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, स्किन केयर में जाना चाहते हैं, तो रीखा शिकाकाई या फिर कड़ी पत्ता, गुड़हल, इस तरह के एलोवेरा, इस तरह की चीजों के भी बायोएंजाइम बना के उनका अपने स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे जो हमारे प्रकृति को संरक्षित होती है, हमारा शरीर, हमारी स्किन भी इम्प्रूव होती है और यूज एंड थ्रो की जो आदत है हमारी वो भी कम होती है। प्लास्टिक जो बॉटल्स हम इतनी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, शैम्पू के लिए अलग, बॉडी वॉश के लिए अलग, क्लीनिंग के लिए इतनी सारी बॉटल्स, उन सबका उपयोग कम हो जाते हैं और इस तरह से आपके अंदर बदलाव आने लगते हैं। तो एक सबके लिए यही संदेश है कि जो हम कर रहे हैं उसकी उपयोगिता को समझें और उसको प्रकृति के हिसाब से कार्य करें, इससे हमारे जो सोच है वो बदलती है, जो हम धर्म जाति देश की भावना है, मेरा मेरा की भावना है, उससे अलग हटके हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो वो एक शक्ति जो है उससे सीधे हम जुड़ जाते हैं। और मन में जो हमारे परेशानियां चल रही होती हैं, शांति नहीं होती, वो भी चेंज आ जाता है, काफी परिवर्तन मुझे महसूस हुआ। और एक जो हम बायोएंजाइम बना रहे हैं या कचरा अलग कर रहे हैं या कम ऐसी चीजें ले रहे हैं जो नुकसानदेह है प्रकृति के लिए या हमारे शरीर के लिए, तो अपने आप ही एक परिवर्तन हमारे अंदर और हमारे आसपास दिखाई देने लगता है। तो सबको ये करना चाहिए और महसूस करना चाहिए, ये सबसे बड़ी इसकी फायदा ये है कि आप खुद महसूस कर सकते हैं परिवर्तन को। तो जब आप ट्राई करेंगे, जो मैंने लोगों को बताया और उन्होंने जब अपनाया और जो मुझे फीडबैक दिए कि हाँ इससे बहुत फायदा हुआ हमें, वही सुन के एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और लोग अपना रहे हैं और धीरे धीरे अपना रहे हैं, लेकिन ये जो अपना रहे हैं वो बड़ी खुशी से उसको यूज कर रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है इस समय के हिसाब से।
0: वाकई सो भाई, देखो ना सिर्फ बायो एंजाइम्स को अपनाना चाहिए, लेकिन साथ के साथ मैं तो ये कहूंगी कि हर वो चीज जो प्राकृतिक है, पहले के जमाने में अगर आप देखें तो हमारी लॉन्गिविटी ज्यादा थी, हम स्वस्थ ज्यादा रहते थे, लाइफस्टाइल डिजीजेस हमें कभी नहीं होती थी और साथ के साथ हम एक बहुत ही खुश और हैप्पी सोसाइटी होते थे। आज के जमाने में हम थोड़े से डिस्टर्ब है, न सिर्फ फिजिकल लेकिन मेंटल हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है। सो इन सब का कारण ये है कि हम प्रकृति से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। चलिए वापस आते हैं प्रकृति के पास और कोशिश करते हैं कि जिस प्रकृति से हम सब कुछ ले रहे हैं, अपने जीवन के लिए जो अनमोल सांसें हैं वो ले रहे हैं, उस प्रकृति को हम कुछ दे पाए, इस पर्यावरण को और भी हेल्दी बना पाए। तहे दिल से धन्यवाद सुचेता जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतर
1: आगे बढ़ रहे हैं, उनसे कुछ हम सीखें, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारी प्रकृति का जो हमसे बैर हो गया है वो दूर होगा और हम समरसता में आ जाएंगे, ऐसी भावना है।
0: तो दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए मैं वादा जरूर करती हूँ, सो मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: क्या
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की अपनी जुल्फ़ों।

0: रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए अलग अलग महिलाओं से ना सिर्फ उनके जिंदगी की जर्नी लेकर आती हूँ, लेकिन साथ के साथ आपके लिए ढेर सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेकर आती हूँ। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक लंबे समय से आपके पास आ रहा है, लेकिन हर महिला से जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो सशक्तिकरण के लिए बाकी है। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है सोनाली चैटर्जी। सोनाली चैटर्जी पेशे से फाउंडर हैं पंचफोरन और उसके साथ साथ एक्सोटिक क्विसीन्स की, लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रोफेशनली ये एक आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी की कमान जो है वो अपने हाथों में ली। अच्छी चीज ये है कि इन्होंने वो किया जो इन्हें पसंद था, यानी पैशन को फॉलो किया। लेकिन अगर हम देखें आज के जमाने में तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं। सोनाली जी से ये जानेंगे कि ये अपने पैशन को कैसे फॉलो कर पा रही हैं और पेशे से, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ शेफ होना अपनाया है, केटरिंग की बहुत बड़ी सर्विसेज ये ऑफर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ है जो इनकी दुनिया में है जिनके बारे में शायद आपने आज तक ना सुना हो। उन सारी चीजों के बारे में आज हम इनसे करने वाले हैं बात और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। सोनाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
1: सोनाली जी, वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन विच आई बीन आस्किंग ऑल दी वुमेन, और ये मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस प्रोग्राम में होता है, व्हाट आई परसीव इज कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है ना वो हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है, इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। सो इफ आई मे आस्क यू, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट, आप एम्पावरमेंट किस चीज में देखती हैं?
2: वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी, मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ लोगों के लिए शायद फिनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन एम्पावरमेंट है, पर मेरे लिए वो नहीं
1: जी।
2: मेरे लिए एक इंडिविजुअल की सोचने और चुनने की आज़ादी को मैं वुमेन एम्पावरमेंट कहूँगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और वाकई मैं कई बार ये चीज़ महसूस भी करती हूँ सोनाली जी, सिर्फ पैसा दे देने से आप उन्हें शक्ति नहीं देते हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप उन्हें सोचने और समझने की जो कहना चाहिए एक बेसिक राइट है वो नहीं देते हैं। So, अगर आप पैसा कमा पा रहे हैं लेकिन आपके उस पैसे पर भी आपका अधिकार नहीं है तो बताइए आप कहाँ से एम्पावर्ड है। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो एम्पावरमेंट नहीं है, बट अगर आपके पास ये इख्तियार है, ये अधिकार है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सशक्त महिला है। अब ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप सशक्त है, और जब तक आप अपने आप से ये सवाल पूछती हैं तब तक मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ। सो इन ख्यालों में खोने से पहले इस प्यारे से गाने में खो जाइए और जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं इस खूबसूरत सी शाम को ये प्यारा सा प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं और अगर आज मैं सशक्तिकरण की बात करूँ तो मैं जरूर ये आपसे कहूंगी कि भाई सशक्तिकरण को एक बार अपने दिल में झांक कर पूछ जरूर लीजिए और देख जरूर लीजिए कि क्या आप वाकई सशक्तिकरण को प्रैक्टिस कर पा रही हैं या नहीं। और अगर आप एक पुरुष हैं तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपके घर में सशक्तिकरण है, क्या महिलाओं को ये अधिकार मिल रहे हैं कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाएं। बस छोटा सा सवाल पूछिए अपने आप से। और मैं आज की हमारी जो प्यारी सी गेस्ट हैं सोनाली चटर्जी मेरे साथ बैठी हैं, इनके हाथों में जादू है। आप इनके हाथों का जादू कभी चक्कर देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। सो ये हाथों का जादू चलाती भी हैं और लोगों को खिलाती भी हैं। ये फाउंडर है पंचफोरन की और एक्सोटिक क्विजीन्स की। सोनाली जी, अगर मैं आज के ज़माने की महिलाओं के चैलेंजेस की बात करूँ, अलग अलग ज़माने में अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं, सो आपको क्या लगता है अभी करंट सिनेरियो में किस प्रकार के चैलेंजेस हैं जो महिलाएं फेस कर रही हैं?
1: सबसे पहले तो है देखिए, महिलाओं के सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको घर भी संभालना है और बाहर भी काम भी करना है
0: जी।
1: एंड जब हम लोग काम करने बाहर जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हम घर के बारे में सोच रहे हैं, और जब घर पे हैं तो तब ऐसा होता है कि कभी हम ऑफिस के या हमारे काम के बारे में सोच रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग रखना और इन दोनों चीज़ों में प्रॉपर उनको पूरा अटेंशन देना एक अच्छी खासी चुनौती है हम सभी के लिए। एंड आजकल के ज़माने में इतना फास्ट लाइफ है एंड सब कुछ कर पाना वो एक बड़ी चुनौती है। एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी कि एम्बिशियस तो सभी होते हैं, एम्बिशन को देखकर अपने बाकी जो चुनौतियाँ हैं उनको सामने रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी बड़ी है, चुनौती या एम्बिशन
0: एक्चुअली।
1: और अगर चुनौती कोई हिंड्रेंस है तो उसे आपको क्रॉस करना है, आपको उसे पार करके आपके एम्बिशन की तरफ आपको बढ़ना है।
0: एग्जैक्टली।
1: चुनौतियाँ तो हर जगह है, हर काम में है।
0: देखिए मैं ये कहती हूँ पुरुषों के लिए भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन परेशानी ये है कि महिलाओं के लिए चुनौतियाँ ज्यादा हैं, पुरुषों के लिए वो चुनौतियाँ महिलाएं कम कर देती हैं। अब मान लीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, सो कोई भी कभी भी आपने किसी पुरुष को ये सुना है कि अरे यार मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है और आज पूरे घर का काम नहीं हुआ है, आज घर में काम की जो हाउस हेल्प है या मेड है वो नहीं आई, या घर में पानी नहीं आ रहा था, मैं किस प्रकार से घर का काम भी करूंगा और आज मुझे ऑफिस आना पड़ा। बट पुरुषों के अलावा महिलाओं को ये फिक्र भी होती है। मान लीजिए वो ऑफिस आ रही है और सुबह सुबह घर पर कोई काम नहीं हुआ है तो उन्हें घर जाकर वो काम भी करना है, ये चुनौती उनके लिए ज्यादा है, पुरुषों के लिए कम है। तो कई बार अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा ये कहते हैं जेंडर में इक्वालिटी है, पर इक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि कामों का बंटवारा जो है वो इक्वल नहीं है। और यही कारण है कि आज भी महिलाएं सशक्तिकरण के लिए सिर्फ स्ट्रगल कर रही हैं, पा नहीं पाई हैं। कैसे होगा ये जरूर करेंगे इसके बारे में बात। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मनोरंजन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। सोनाली चैटर्जी से ढेर सारी बातें हो रही है। सोनाली चैटर्जी जो कि फाउंडर है पंच फोरन और एग्जॉटिक क्विजीन की, मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जॉटिक क्विजीन है, अगर आप इन्हें टेस्ट करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, ये सवाल तो मैं इनसे पूछने वाली हूँ। सोनाली जी, मुझे बताइए कि हम अक्सर बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, होटल्स में खाना खाते हैं, और जब कभी भी हम वहाँ जाते हैं तो हमने एक चीज नोटिस की है कि वहाँ पर जितने भी शेफ्स होते हैं ना, वो पुरुष होते हैं, और जब हम घरों में देखते हैं तो खाना महिलाएं बना रही होती हैं। तो मुझे बताइए इनइक्वालिटी किस लिए है, हमें बाहर प्रोफेशनली कमर्शियल किचन्स में इतनी महिलाएं क्यों नहीं दिखती हैं?
1: आपने बहुत सही कहा कि हम घर में महिलाएं ही खाना बनाती है ज्यादातर। आजकल पुरुष भी बहुत अच्छा बनाते हैं घर पे भी।
0: नहीं, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि जैसे प्रकृति ने ही हमें ये कहा हुआ है कि खाना बनाने का काम महिलाओं का है, और वो डेफिनेट मतलब जैसे क्या जाता है ना, काम बांट दिए जाते हैं।
1: आई वुड से आई एम वेरी ब्लेस्ड,
0: यस,
1: कि मेरे घर में सबको खाना बनाना आता है।
0: वो इसीलिए क्योंकि ये आपका इनेट टैलेंट है, तो वो सबके अंदर आना जरूरी है।
1: नहीं, मैं क्योंकि मैं वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं काम पे जाती थी, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा इन लोग भी संभाल लेते हैं घर, अगर मैं नहीं भी हूँ तो। मैं वापस आती हूँ घर बाहर से, कभी ये घर पे हैं तो मुझे चाय बना के पिलाते हैं, मुझे मतलब बहुत ही आई एम रियली फॉर्चुनेट।
0: वाओ,
1: सो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर महिलाओं को मिले।
0: yes.
1: जैसे हमारे हस्बैंड्स भी जब ऑफिस से आते हैं तो हम उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, चाय बना के देते हैं जब हम रहते हैं घर। yes. पे तो सेम चीज एक महिला भी एक्सपेक्ट कर सकती है और उनको भी मिलना चाहिए।
0: वेरी नाइस।
1: एंड अब आते हैं हम किचन के बारे में बात करते हैं, तो किचन्स में यूजुअली हमारे घर में महिलाएं ही काम करती हैं या खाना बनाती हैं, बट रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में मेन ज़्यादातर पुरुष वहाँ पे काम करते हैं। रीजंस है, क्योंकि एक है कि जो होटल इंडस्ट्री की मैं काफ़ी पॉपस करती हूँ, मैं 5-star होटल से अदर होटल्स में भी मैं जाती रहती हूँ, तो वहाँ मैंने नोटिस किया है कि हमने भी काम किया है। सो वहाँ पे सबसे पहली बात है कि होटल इंडस्ट्री में हमारे जो टाइमिंग्स हैं, 12 आवर्स की ड्यूटी होती है
0: जी।
1: 12 आवर्स की ड्यूटी में दिन भर खड़े रहना और भारी भरकम बर्तन उठाना और ये करना, इट्स अ वेरी वेरी टीडियस जॉब
0: जी।
1: सो वेमेन इन शेफ्स प्रोफेशन बहुत कम है, आजकल काफ़ी हो गए हैं। 2018 के हिसाब से इंडिया में ओनली 5-6% वेमेन शेफ्स थे, और अभी 2025 में अराउंड 12% हो गए हैं। सो ये जो इंक्रीज है, आई एम हैप्पी टू सी दैट इंक्रीज। सो इसी कारण से है कि आजकल वेमेन सब कुछ कर पा रही हैं, सब कुछ करना चाहती हैं। हमारे पास पहले तो इंजीनियरिंग काफ़ी सारे फील्ड में लड़कियां नहीं जाती थी, आजकल सब फील्ड में जा रही हैं। वी हैव फाइटर पायलट्स, वी हैव एवरीबॉडी, एवरीवेयर वी हैव वेमेन। सो ये इसमें भी आ गए हैं, बट ये है कि टफ जॉब है, तो शायद इसलिए वेमेन उतना नहीं आ रहे हैं। स्पेशली मैं देखती हूँ कि कॉन्टिनेंटल कुजीन में या बेकरी में तो वेमेन है, बट जैसे होटल इंडस्ट्री में तंदूर या इंडियन सेक्शन में बहुत कम है
0: जी।
1: थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, आ जाएंगे।
0: सो भाई देखिए, एक तरफ तो हम फिजिकल लेबर की बात करें तो महिलाएं इवन एज टीचर्स आजकल अगर आप देखें तो वो कम से कम 8-8 घंटे खड़ी रहती हैं लेकिन पढ़ाती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें किचन्स की तो वहाँ पर हीट भी होती है, और साथ के साथ तंदूर की अगर मैं बात करूँ तो वो जलती हुई आग होती है। तो शायद ये कारण है कि महिलाएं आपको अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं मिल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सपना सजाया है हमने, और इतने सालों से हम इस सशक्तिकरण को देखना चाहते हैं, सो आने वाले समय में बहुत अच्छा लगेगा हमें भी कि हमें भी बहुत सारी शेफ जो हैं वो महिलाएं मिलेंगी, और धीरे धीरे जो घर का खाना है वो घर के खाने वाली महिलाएं जो हैं वो शायद बाहर का खाना भी बनाएंगी, और हर तरफ हमें एक इक्वालिटी नज़र आएगी। बट यस, जहाँ पर हम फिजिकल काम की बात करते हैं या फिजिकल लेबर की बात करते हैं या वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें भी महिलाओं के लिए कई बार चैलेंजिंग हो जाती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। सुना रही हूँ एक प्यारा सा गाना, और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील नाइस।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा एपिसोड। और आज हम बात कर रहे हैं सोनाली चैटर्जी से। सोनाली चैटर्जी जो हैं वो दरअसल एक बहुत ही खास कहना चाहिए क्वालिटी रखती हैं अपने खाने की। सो शेफ्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चीज़ों का जो प्रेजेंटेशन है ना वो इनकी खासियत है, यानी कहना चाहिए इनकी यूएसपी है। और वो चीज़ न सिर्फ आँखों को अट्रैक्ट करती है लेकिन आपकी जीभ और आपके दिल को भी अट्रैक्ट करती है। और ये इनके खाना बनाने की खासियत है। खाना भी बनाती हैं बहुत ही टेस्टी, लेकिन जिस ढंग से वो उसे प्रेजेंट करती है ना वो तो काबिले तारीफ है। अब अगला सवाल सोनाली जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप ही की एम्पावरमेंट की जर्नी का। आप एक सशक्त महिला हैं, आपने वो किया है जो आप करना चाहती थी और एक बड़ा डिसीजन होता है आज के ज़माने में। बट मुझे ये बताइए कि आपने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा एम्पावरिंग डिसीजन लिया था जिसे लेने के बाद आज तक आप उस पर प्राउड हैं और आपको कोई रिग्रेट नहीं हो रहा?
1: सबसे पहले तो मेरा जो प्रोफेशनल करियर है
0: जी,
1: तो प्रोफेशनल करियर में जब मैंने आर्किटेक्चर में ज़्यादातर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर ही काम किया है
0: जी।
1: सो 2019 तक मैंने उस पर काम की है
0: जी।
1: 2015 से 2015 से 2019 तक मैं दोनों प्रोफेशन चला रही थी, क्योंकि ये जो फूड जो मैं खाना बनाना या प्रेजेंटेशन जो है जिसके कारण लोग मुझे जानते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन, शायद ये मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड से के कारण भी हो सकता है। और एक चीज़ है ना, हम पहले आँखों से खाते हैं, फिर हम चखते हैं जीभ से खाते हैं, फिर हम इसको महसूस करते हैं। सो ये तीन प्रोसेस है। तो जब तक आपको अच्छा कुछ दिखेगा नहीं तो आपको वो खाने का वो मज़ा नहीं आएगा। फिर जब वो आप एक बार टेस्ट करोगे तब आप उसका महसूस करोगे, टच है, फील है, फिर आप उसको फील करोगे उसको। तो ये चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस है जस्ट खाना बनाना इज़ नॉट द मेन प्रोसेस। सो मेरे लिए ये था कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही थी, अच्छे से कर रही थी और फ्रेंड्स को बुलाती थी और उनको अच्छे खाना खिलाती थी। तो उन्होंने एक दिन, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला, यार यू मस्ट डू समथिंग, यू नो आपका टैलेंट वेस्ट जा रहा है, ये टैलेंट को आपको कुछ करना होगा।
0: yes.
1: मैंने कहा इतने बड़े बड़े केटरर्स हैं, मैं कहाँ पर एग्जिस्ट करूँगी, आई एम जस्ट अ स्मॉल पर्सन। बट हाँ, आई टुक दैट डिसीजन, मैंने घर से शुरू किया। विद इन वन ईयर मे बी सिक्स मंथ्स आई गॉट काफ़ी बड़े ऑर्डर्स आने लगे
0: जी।
1: तो जब बड़े ऑर्डर्स आने लगे वो घर से पॉसिबल नहीं था।
0: yes.
1: जब मुझे कॉरपोरेट ऑर्डर्स आने लगे फॉर 50 पीपल, 100 पीपल एंड स्पेशली यू नो माय ग्रेजिंग प्लैटर्स और ये सब ग्रेजिंग टेबल्स वगैरह होते थे। सो वो चीज़ जब हम करने लगे तो घर से पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कि मुझे एक बेस किचन खोलना है, कमर्शियल किचन खोलना है। हम जब लोगों से बात करने लगे सो 90% पीपल सेड बेस किचन या ऐसे किचन मत खोलिए, क्योंकि हर रोज़ खुल रहे हैं, हर रोज़ बंद हो रहे हैं
0: जी।
1: मैंने दो बार सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है खोलने की, बंद करना होगा कर देंगे।
0: yes.
1: ट्राई करने में क्या जाता है, और मुझे मालूम है कि मुझे बंद नहीं करना पड़ेगा, टच वुड। सिर्फ कोविड के टाइम पे कुछ महीने बंद है, इसके अलावा 2017 से लेके अभी तक 2026 तक किचन इज रनिंग।
0: सो भाई देखिए, यही शायद सही मायने में मैं ये कहती हूँ कि एम्पावरमेंट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके ज़िंदगी आपको कुछ डिसीशंस लेने के लिए मजबूर करती हैं। महिलाएं ये सोच कर कि हाय बाद में कहीं हमें अपने ही इस डिसीशन पर पछतावा ना हो, कहीं बाद में लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं, कुछ डिसीशंस ले ही नहीं पाती हैं। और शायद वहीं हम कहीं ना कहीं अपनी सशक्तिकरण के एक बहुत अहम अधिकार को गंवा देते हैं। ज़रूरी है कि हमें इसे महसूस करना है और इस अधिकार को हमेशा प्रैक्टिस करना है। हर महिला जो सशक्त है उसने कभी ना कभी कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लिया था, और आज वो इस डिसीजन को लेकर ना सिर्फ खुश है लेकिन साथ के साथ उस डिसीजन को खूबसूरती से जी पा रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। कोई सपना है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं अटकी हुई है और लग रहा है ये डिसीजन क्या और कैसे लिया जाए, तो ले लीजिए। आई बिलीव कि आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगी। Feel good, feel light.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। एक ऐसी महिला से मिला रही हूं जो ना सिर्फ सशक्त है लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी भी जी रही है और अपनी खुशी से अपना काम कर रही है। सोनाली जी, आज एक अहम सवाल। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाफ हार्टेड प्रोफेशंस में हैं क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन कई बार वो होती है जिसका डिसीजन हम पर या तो थ्रस्ट किया होता है क्योंकि पेरेंट्स ने लिया होता है, कभी पियर ने लिया होता है, कभी समाज ने लिया होता है, ये बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है इसे कर लीजिए, इससे आप जिंदगी भर पैसा कमाएंगे। या फिर वो डिसीजन होता है जिसको पूरा कहना चाहिए कि दुनिया वैलिडेट करती है, आप इस लाइन में चले जाइए, जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे, यू विल हैव अ साउंड इनकम। लेकिन हमारा दिल कुछ और करने को होता है क्योंकि आपका टैलेंट कुछ और है। सो जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही थी एज एन आर्किटेक्ट, आपको लग रहा होगा कि लाइफ इज गोइंग वेरी गुड, बट सडनली जब आपने ये डिसीजन लिया किचन में आग में 12 घंटे 15 घंटे और कई बार तो आपको काफी लंबा काम करना पड़ता होगा जब आपके पास कॉर्पोरेट केटरिंग आती होगी, कभी ऐसा मन डगमगाया, कभी लगा ओ माय गॉड वो डिसीजन ठीक था, कहाँ पैशन फॉलो करने चली आई, या आपको लगा कि नहीं जब अपने दिल से अपने तसल्ली का काम करा जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, पैशन और प्रोफेशन में बेसिक क्या डिफरेंस है। डिग्री हमें क्या देती है कि हमें एक रोड मैप देती है, एक रास्ता दिखाती है कि आप इस रास्ते पे जाइए, इसके बाद आपका ये स्टेप है, इसके बाद ये है, आपको अगर आपने एक डेस्टिनेशन सोच के रखा है आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे
0: जी।
1: लेकिन पैशन क्या है, पैशन आपके लिए कोई रोड मैप बना के नहीं रखा है
0: जी।
1: पैशन आपके लिए है कि हमें यहाँ पहुँचना है या हमारा ये, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन वे इन पैशन, एंड पैशन को लेकर आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है देन फॉलोइंग योर डिग्री और योर जिसमें भी आप काम कर रहे हैं।
0: यस,
1: तो फिर भी पैशन इज समथिंग जो दिल से होता है। थैंकफुली मेरा जो प्रीवियस जो मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करती थी वो भी मेरा पैशन ही था
0: जी,
1: बट वो पैशन में जब मैंने देखा कि हाँ अच्छा तो हो ही रहा है, यू काइंड ऑफ गेट बोर्ड, ओके यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, आपके पैशन ये भी है, हम ये भी करना चाहते हैं, हो सकता है मैं अब से 10 साल बाद मेरा पैशन मैं कुछ और भी करूं, मेरे और भी पैशन्स हैं।
0: वाओ,
1: सो हो सकता है कि आफ्टर 65-70 आई वांट टू डू समथिंग एल्स, और भी कुछ करना चाहिए। सो हाँ, ये पैशन को ड्राइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपके लिए रोड मैप नहीं होता है।
0: यस,
1: सो बट पैशन में जैसे अभी भी कभी रात को 2 बजे भी लौटती हूँ मैं, 3 बजे भी लौटती हूँ, पार्टीज खत्म हो रही है, रैप अप करना है, इट्स नॉट अ वेरी ग्लैमरस थिंग। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में भी लगता था अरे बहुत ग्लैमरस है, पर एंड ऑफ द डे जब हम हैंड ओवर करते थे साइट तो रात भर काम करके सुबह 5 बजे लौट रहे हैं सफाई करा के सब कुछ करा के। तो सेम थिंग हमारे प्रोफेशन में भी है, केटरिंग में भी यही है कि हम लेट नाइट भी आ रहे हैं। ये जो है, ये जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है या मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैं काम से ही लेट हो रही हूँ, ये भी एक एम्पावरमेंट है कि मुझे एम्पावर्ड हूँ मैं कि मैं ये काम करके इतना लेट आ रही हूँ, दे ट्रस्ट मी एंड हैव गिवन मी। सी, बैकबोन तो वही है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: वाकई देखिए, जब कभी भी मैं पैशन की बात करती हूँ ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं ना तो आपको थकान कम महसूस है, आपको ना बड़ा सेटिस्फाइड महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं ना आप उसे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, एंड एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद हैप्पीनेस। और यही कारण है कि आप पैशन को एफर्टलेसली कर पाते हैं, एनर्जी उसमें आपकी ज्यादा होती है और आपको ना रिग्रेट्स कम होते हैं। और जहां पर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर वो आपका पैशन नहीं है, उसे फॉलो करते हैं तो होता क्या है कि आपकी एनर्जी लेवल ना कम हो जाती है और वहां आप हर रोज ये सोच रहे होते हैं ओहो मुझे ये करना है, रादर देन कि मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूँ, बस यही डिफरेंस होता है। अदरवाइज तो दुनिया है और सारी दुनिया अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस अपनाती ही है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई टैलेंट है तो चाहे उसे हॉबी के रूप में, चाहे उसे किसी भी तरीके से फॉलो जरूर करिए, आपकी जिंदगी में एंथुजियाज्म और एनर्जी एक्चुअली बनी रहेगी और तब आप जिंदगी को और खुशी से जी पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं सोनाली चैटर्जी से। सोनाली चैटर्जी जो है वो फाउंडर है पंच फोरन और एग्जॉटिक क्विजीन की। अब सोनाली जी, बहुत सारी बातें आपसे की, लेकिन मुझे ये बताइए, जाने से पहले आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, क्या कह के जाना चाहेंगे आप उन सभी को?
1: एम्पावरमेंट, सबसे पहली बात है कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं वेमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं खुद के लिए नहीं, मैं ये फॉलो भी करती हूँ। सो ऐसा है कि मैं एक ब्रांड की, अभी मैं ब्रांड पे काम कर रही हूँ और उनका कुछ कॉरपोरेट्स में जो हेल्दी फूड देना है, तो वैसे एक ब्रांड के साथ हूँ और कई सारे मतलब पॉइंट ऑफ सेल खुल रहे हैं ऑल ओवर दिल्ली NCR। बट हमारा मोटो ये है कि हम उसमें इट्स मोर वेमेन ओरिएंटेड ब्रांड, बिकॉज जो ओनर्स हैं वो वेमेन हैं, एज अ शेफ आई एम अ वुमेन, एंड हमारे जो पॉइंट ऑफ सेल पे जो लड़कियां, वहां पे हम ज्यादातर लड़कियां ही रखेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा हो हम वेमेन को ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे।
0: वाओ,

0: बड़ी अच्छी बात है। और इनफैक्ट मैं हमेशा यही कहती हूँ, जैसे मैं इस कार्यक्रम की बात करती हूँ, वी यानी वी स्टैंड टुगेदर, अगर हर महिला अपने आसपास कुछ महिलाओं के हाथ पकड़ ले तो हम सशक्तिकरण को बहुत ही स्पीड से ना सिर्फ एंजॉय कर पाएंगे लेकिन उसे महसूस कर पाएंगे। और जब एक परिवार सशक्त होगा तो एक समाज सशक्त होगा, जब समाज सशक्त होगा तो एक राज्य सशक्त होगा, जब राज्य सशक्त होगा तो देश, और देश सशक्त होगा तो पूरा विश्व सशक्त होगा। और सोचिए, सपना देखिए उसका, जब पूरे विश्व में सशक्तिकरण होगा, हमें जेंडर इनइक्वालिटी की बात ही नहीं करनी होगी, महिलाओं को कोई डर नहीं होगा, महिलाएं भी उतनी ही खुशी से जीवन को जी पाएंगी जितनी खुशी से, अगर मुझे लगता है जो जितनी भी प्रायोरिटीज हैं या फिर कहना चाहिए जितनी भी चीजें पुरुषों को मिलती हैं, है ना। ये एक सुंदर सा सपना, लेकिन ये सपना साकार जरूर होगा। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद सोनाली जी, आज आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: मैं सभी पुरुष या महिलाओं सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि एम्पावरमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है
0: जी,
1: ये कोई मंजिल नहीं है
0: जी,
1: ये रोज की आदत होनी चाहिए।
0: यस,
1: सो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि ये हमें एक आदत पे डाल दे कि ये दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स नॉट जस्ट कि हमें आगे ये करना है, ये मंजिल नहीं है, आज से शुरू होना है, अभी से शुरू।
0: वाकई भाई, इसी बात पर मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते होगी मेरी आपसे मुलाकात। टिल देन, फील गुड, फील लव।

0: पर हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हटके
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और क्या

खास तौर पे ये वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी का बहुत ही कहीं के कीमती वक्त है जब मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ और हम गाने इंजॉय करते हैं जो कि प्यारे प्यारे से हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं एक गाना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनी रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रांगा आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में जहाँ मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ, और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं। आज उलझती सी जा रही जिंदगी को ठहर कर थोड़ा समझेंगे और उनमें खुशियाँ कैसे लेकर के आएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन बातों में मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ जानने, इनफैक्ट सीखने को मिलता है। तो आपका सवाल, आपका जवाब, आपकी बातें हमारे लिए सभी कुछ बहुत कीमती है, इसलिए आप ज़रूर बताना हमें अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे बात करूंगी उस वक्त की, जब वो वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है और एक टाइम पर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तुलना जो है ना, कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब के सोचने समझने काम करने का तरीका बहुत अलग है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत खूबसूरत है और बहुत अनमोल है, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं और हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन इसका हमारे दिमाग पर, हमारी पर्सनालिटी पर कितना बुरा फर्क पड़ सकता है, वो असर पड़ सकता है, आपको मैं बताऊंगी और इससे बचने के उपाय भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए, सारी बातें आज के प्रोग्राम में होने वाली हैं और आपका सपोर्ट मैसेज के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइए। चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और देखिए लाइफ में आज के टाइम पर खुश रहना बेहद ज़रूरी हो गया है क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरे रहते हैं, है ना। कई लोगों की ये प्रॉब्लम, कई लोगों की शिकायत इनफैक्ट होती है कि प्रियंका हम ना हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, कभी हमारे घर में तो कभी ऑफिस में, कभी कोलीग में, कभी फ्रेंड्स में, कभी रिलेटिव्स में, ये सब चलता ही रहता है। सुकून कहाँ मिले ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। कई लोगों की ये बातें मुझ तक पहुंचती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार आज कितने ज़्यादा मतलब हम इस तरह की लाइफ जीने के आदि से हो गए हैं कि अपनी खुशियां हम भूलते ही जा रहे हैं। और एक्चुअल में खुश कैसे होना चाहिए दिल से ये हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ज़्यादातर लोग इसी ट्रैप में ना फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप सुकून पा सकते हैं, जिससे आपको सुकून के साथ शांति मिलेगी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चलते चलते। आई नो आप थक गए हैं और इस थकावट को आप दूर करना चाहते हैं, खुशियों को इन्जॉय करना चाहते हैं और इस पल को महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब होती है जब हम अपने काम का रूटीन नहीं बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले के लोग मालूम है रूटीन बनाकर चलते थे। रूटीन पहले पेपर पे नहीं होता था, दिमाग में होता था कि उनको किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। और यकीन मानिए पहले के लोग समय से पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन आज की बात करें, हम इसके नोट बना लें या फ़ोन में मैसेज कर लें या जो भी हमें ईजी वे लगता है हम वो सारी चीज़ें कर लें, लेकिन उसके बाद भी हम एक दो दिन तो रूटीन याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैबिट में शुमार नहीं है। तो रूटीन बनाना जो है इसकी आदत आप बनाइए। देखिए लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप रूटीन बनाकर चलिए, इससे जीने की कोशिश कीजिए। आप बिना रूटीन के लाइफ जी रहे हैं तो आपको सब कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ में सिमटा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। किसी भी काम को फिक्स आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से जीना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को शुरू करोगे, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। तो रूटीन में काम करना बेहद ज़रूरी है। वहीं आपको एक चीज़ और बताऊँगी जो मुझे बहुत बहुत ज़रूरी लगती है कि ज़िंदगी में इस तरह का ये चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है उसके लिए बात करेंगे थोड़ी सी देर में। इन्जॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और एक चीज जो मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, अब वो पता है क्या है कि देखो हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, है ना। हम हर किसी की हाँ में हाँ करके अपने आप को पीड़ा देते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए जो लोग काम करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल दूसरों की खुशियों के लिए काम कीजिए, लेकिन आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, तो आप उन खुशियों के लिए काम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं ना, वो हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, वो आपके एफर्ट्स को नहीं देखते हैं, बल्कि कई लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए होते हैं। तो इस टाइम पर ना कहना सीखिए। सिंपल लाइन में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ना कहना आना चाहिए, राइट। और बहुत सारे लोग ना कह ही नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि बार बार खुद ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करते हैं जो उनके लिए भी सही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको काम करना चाहिए, है ना। अब जैसे आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, फैमिली में हैं, जिसके भी साथ में हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, लेकिन आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर किसी की खुशियों पे इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो वो आप जाने दीजिए। हमेशा आप उन लोगों को खुश कीजिए जो आपके ज़रे से एफर्ट से वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। हमेशा ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में चुने भी और उनके लिए एफर्ट दिखाएं। और जो आदमी, जो ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति जो आपके एफर्ट से खुशी नहीं है, जो आपकी खुशियों में खुशी नहीं है, और आप जितना भी उनके लिए कुछ भी कर लें बट उसको खुशी ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए और उनको ना कहना सीखिए, राइट। जो मुझे लगता है कि अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों की जिंदगी बहुत इजी हो जाने वाली है, राइट। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको एक चीज और, जो हमारे बुजुर्ग भी यही बात, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यही बात कहते हैं और बहुत सही कहते हैं, अब वो क्या है ये आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। वहीं हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी एक बात कहते हैं, आपने भी उनसे ज़रूर सुनी होगी। और पता है वो जो भी कहते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस वक्त हमें वो बात समझ ना आए, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो सिचुएशन को फील करते हैं, उनको उससे सामना करते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात हमारे बड़े बोल कर चले गए। तो एक यही लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी स्थिति आए हर स्थिति में जीना सीख लीजिए। बहुत कमाल की बात है, आप भी सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, जहाँ सुकून ही सुकून है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो देखिए, हमारी जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, यही स्थितियाँ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं इस स्थिति को एक्सेप्ट, वो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी सोच से, अपने चीज़ों से। लेकिन वो लोग जो हम हर स्थिति में हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो कई बार आपकी परीक्षा होती है, और कई बार आपके दिन बदलने से पहले जो आपके पास इस तरह के दिन आते हैं ना, ये वो वाले होते हैं जो हमें एक बड़ा लेसन सिखा करके जाते हैं। तो जो लेसन सीख लेते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं वो हमेशा परेशान रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप परेशान हो, बल्कि हाँ, आप इस चीज़ से समझें कि जो हमसे कहा जाता है कि हर स्थिति में खुश रहा जाए, वो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको दुख में भी न्यूट्रल रहना आ जाएगा और खुशियों को भी इंजॉय करना आ जाएगा, वरना यूं ही परेशान ज़िंदगी बिता देंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका, आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और साथ ही मैं तो चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहो और वो करो जो आपको पसंद है। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना अपने लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम पे, लेकिन अगर आप वक्त निकाल पा रहे हैं तो अपने लिए उस वक्त को स्पेंड कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है आप अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं सकते। देखिए, हर कोई अपने लिए वक्त निकाल ही सकता है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, लेकिन वक्त सबके पास थोड़ा या ज़्यादा होता ज़रूर है। तो आप भी इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए और आप वो करें जो आपको पसंद है। अब आप सोचिए आपको क्या पसंद है, या आप ये सोचिए कि आज से 10 साल या 15 साल पहले आपको क्या करना पसंद आता था, आपको कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगती थी जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक अहम हिस्सा होती थी, रोल प्ले करती थी आपकी ज़िंदगी में, वो आप करना शुरू कीजिए। आपका मन क्या कहता है, क्या चाहता है वो कीजिए। यकीन मानिए आप इतने एक्साइटेड रहेंगे ना अपनी लाइफ को जीने के लिए कि आपको रात को नींद तक नहीं आएगी एक्साइटमेंट में। इतनी खुशी आपको रहेगी कि हाय अब कल का दिन है, कितना खूबसूरत होने वाला है, मैं ये भी करूँगी, ऐसे भी करूँगी, वो भी होगा लाइफ में, ये भी। तो एक तो नींद हमें तब नहीं आती जब हम थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन एक नींद हमें एक्साइटमेंट में भी नहीं आती, और वो एक्साइटमेंट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी पसंद के काम करने शुरू कर दीजिए। और एक और चीज़ आपसे बोलूँगी, ये भी हमारे बड़े कहकर गए हैं और आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि कौन क्या कहता है कहने दीजिए, जाने दीजिए। इसको अगर दिल दिमाग में बैठाएंगे तो ज़िंदगी परेशान हो जाएगी, आपको जीने में बहुत भारीपन लगेगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जैसे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं। आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस जगह पर एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। कोई समझे ठीक, नहीं समझे तो जाने दीजिए, क्योंकि आप वहाँ सच्चे थे। बट उसकी सफाइयाँ बार बार अगर किसी को देते हैं तो वहाँ पर आप झूठे महसूस होते हैं। इसलिए ये चीज़ छोड़िए और आप ही परेशान होंगे। इसलिए इस चीज़ को जाने दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जीना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं जी पाए और घुट घुट कर ज़िंदगी आपने पूरा टाइम निकाल दिया, तो आखिर में जब आप बैठे होंगे चेयर पे और तब सोच रहे होंगे ना अपने आप को, तो सिवाय दुख के तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा मैं आपको उस टाइम पीरियड पे लेके जाती हूँ जब वो वाली एज आएगी जब हम सोचेंगे बैठ के। मैं हमेशा आपसे, अगर आपने सुना हो तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप सोचो कि आप चेयर पर बैठे हैं और आप अपनी ज़िंदगी का आकलन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या किया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था। और जब आप पाएंगे कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद जो मैं लेकर आया था वो तो पूरा ही नहीं हो पाया, या जो मैंने सोचा था वो तो मैं कर ही नहीं पाया, और सिवाय पछतावे के और दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ आप पहले कर सकते हैं वो कीजिए, बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए और मल्टीटास्किंग से बचें। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और खुश रहिए। चलिए अब आपको एक बेहद ही प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मूड भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है, यानी कि हम अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा वो सब पूरा समा लगने लगता है. होता है ना ऐसा? और पता है एक बात जो आपने अपने बड़ों से भी सुनी होगी और आपको ये पता भी होगी कि अच्छा अगर महसूस करना है, अच्छा काम करना है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके साथ में उठना बैठना शुरू कर दीजिए. पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता है. आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, इसका असर बहुत पड़ता है हमारे ऊपर. इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए जो जीवन को लेकर के हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं और कुछ करने के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा जो लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, आज के यूथ को एक मैसेज दे सकता है. जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए. और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है. ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग रहेगा. पॉजिटिव लोगों के साथ में इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, तो ये आप कर दीजिए. और एक चीज़ आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप सिर्फ दो तीन चीज़ें ही लाइफ में करें तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाइए. ये सोचिए कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है. ये सोच के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि जाने अनजाने में ऐसे रास्ते भी आपके खुल जाएंगे जहां आपको आपको राह ही राह मिलेगी. तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये सब तभी हो सकता है जब आपका हेल्दी माइंड रहेगा, खुश रहेंगे, हल्का महसूस करेंगे और ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड रहेंगे. ये तभी चीज़ें पॉसिबल है. इसलिए मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगियों से ही जुड़ी चीज़ें हैं. इसको आप फॉलो कीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए, इसको अपना रूटीन बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है और ये बदलाव डेफिनेटली अच्छे होंगे. अच्छा, बहुत से लोगों को ना तुलना करने की बहुत आदत होती है. वो तुलना करते हैं एक दूसरे से और ये वाली चीज़ आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है आपको मैं बताऊंगी. वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए. इसके बारे में बात होगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और काफ़ी सारी बातें हमने की खुशियों को लेके, कैसे खुश रहना है, ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है. लेकिन एक चीज़ जिससे आज के टाइम पर काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हैं, और देखिए हमें लाइफ में लोगों से जुड़ना होता है, चीज़ें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बेहतर बनाने के लिए दूसरों से जुड़ना पड़ता है. लेकिन पता क्या होता है, हम धीरे धीरे खुद को कंपेयर करने लगते हैं. जब देखते हैं कि हम मान लो किसी के साथ किसी ग्रुप में हैं जहाँ हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारे सामने वाला जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो हम कंपेयर करने लगते हैं. और पता है यही कंपेयर करने की जो आदत है ये हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती है. और अक्सर ऐसा होता है जब एक मुकाबला शुरू हो जाता है और अपने आप को ये मुकाबला कब कैसे हम कंपेयर करने लगते हैं, ये वाली चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अंदर ये होती है. तो ये आप नहीं कीजिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. कंपेयर करना तो बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, राइट. इसलिए अगर आप भी कंपेयर करते हैं, वो कंपैरिजन की आदत है आपके अंदर, इसको आज ही से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे गला रहा है. तो वो आप मत कीजिए. अपनी आदत को आप समझिए. आप समझ सकते हैं कि खुद को दूसरे से बेवजह तुलना करना एक ऐसी आदत हो सकती है जो आपने अपने जीवन में या तो बचपन में या किसी एक टाइम पर आपने सीखी, और अब वो तुलना इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आप खुद परेशान होने लगे हैं. तो देखिए ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है. तो आपको बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप जो हैं, जैसे हैं, आप अपने लिए बेहतर हैं और एकदम फिट हैं, और आप जो हैं वो आप ही हैं भाई. आप किसी से

कंपेयर खुद को कर ही नहीं सकते हैं। ये वाला ना मुझे लगता है कि एटीट्यूड ना अपने अंदर आपको रखना चाहिए। ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर में, आपको ऐसा लगेगा बस मैं ही मैं हूँ और आपको आप खुद अच्छे लगने लगेंगे। तो ये आपको एटीट्यूड रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, खुद से आप सवाल कीजिए कि आप खुद की तुलना दूसरों से क्यों करते हैं। जब आप अपनी वजह को पहचान लेंगे तो उसे संभालना आपके लिए इजी हो जाएगा। शुरुआती टाइम पर आपको थोड़ा वक्त लगेगा और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एक आदत है जो शुमार हो चुकी है और अब इसको थोड़ा ठीक करने में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ये खुद से सवाल कीजिए कि मैंने अगर कंपेयर किया तो क्यों किया। मे बी बचपन से आप करते आ रहे हैं, लेकिन अब क्यों, मैं क्यों नहीं अपने लिए अच्छा कर पा रहा या कर पा रही। ये सवाल अपने लिए रखना ज़रूरी है। जिस दिन आप ये रख लेंगे उस दिन मुझे लगता है कि चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो कंपेयर करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, राइट? तो मैं तो यही कहूँगी, कंपेयर मत कीजिए बल्कि ज़िंदगी को इंजॉय कीजिए। ऐसे ही एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करना चाहूँगी और वो क्या है, किस बारे में है, ये आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में। चलिए एंजॉय करते हैं गाना। रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं और अभी मैं एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रही हूं. एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोग इससे घिरे हुए हैं, कई लोग इससे परेशान हैं और वो है अपने आप को कंपेयर करना. पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है. और कई बार पता है क्या होता है, हमें दूसरे लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए लेकिन देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है. मे बी हमारे करीबी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंपेरिजन लोग करते हैं. लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आप कितना अफेक्टेड हो रहे हो उससे, इस चीज़ के बारे में बस आपको सोचने के लिए कह रही हूँ. क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आप सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे की ज़िंदगी आपकी काफ़ी ईजी होने वाली है. तो ख़ुद को कंपेयर किसी भी सूरत में नहीं करना है. हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने आप को जानने की तलाश में आप बढ़ते रहिए आगे, उस चीज़ को जारी रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ में रखना, अपने अंदर रखना ये ज़रूरी है, राइट? तो ये जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन मुझे लगता है कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा. और पता है आज के टाइम पर हम हर चीज़ पा सकते हैं अगर हमने ठान लिया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है. हमें खूब सारी पढ़ाई करनी है, एक मुकाम पर आना है, अच्छी जॉब हमें लेनी है या किसी पोस्ट पर हमें आना है, अच्छी सैलरी, ऑफ कोर्स सबको चाहिए अच्छी सैलरी, और अच्छी जगह पर हमें रहना है. हर कोई सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहता है. और ये वाली चीज़ें अगर आप देखें, अगर हम अच्छे से डट के मेहनत करते हैं तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं. लेकिन पता है आजकल अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना, अपनी ज़िंदगी को समझना, अपनी खुशियों को समझना, इस चीज़ को पाने के लिए ना तो हम सोच पाते हैं, और सोच पाते हैं तो इसको पाने के लिए हमें कई वक्त लग जाता है, कई बार पूरी ज़िंदगी लग जाती है. तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है लेकिन हम उसको नहीं पा रहे हैं, काम उस पर कीजिए, राइट? और मुझे लगता है कि आप यकीनन अपने आप को पा पाएंगे. कोई सवाल आपका है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको हम तक पहुंचाना है, नंबर हमारा है 8010781078. होप करती हूं कि आप इन चीज़ों को अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए. मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। देखा कितना प्यारा सा गाना मैंने आपको सुनाया है। ये गाना सुन के तो कोई अगर सैड भी होगा ना तो वो भी खुशी से झूम उठेगा। मैं गाने ही ऐसे लेकर के आती हूँ, 90s के खूबसूरत गाने, और अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या अपनी फरमाइश हमसे करना चाहते हैं तो नंबर, मैं पता है आपको इस प्रोग्राम में इतनी बार नंबर बताती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मेरे से ये बोले कि अपना का नंबर नहीं बताया। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप नंबर से बिल्कुल एकदम आपको समझ ही ना है कि करना क्या है, तो बिल्कुल आपको आते ही नंबर देती हूँ और जाते वक्त भी। बहुत ही आसान ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 8010781078। ये हमारा नंबर है, देखा कितना आसान है। तो बस इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कीजिए। तो चलिए, मेरे चलने का वक्त हो गया है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। देखिए दोस्तों, कोई भी कलाकार हो, हर कलाकार की जिंदगी में संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद उसको वो कामयाबी मिलती है जिसका उसको इंतजार होता है, जिसका सपना उसकी आंखें देखती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि जिसने गरीबी और गुमनामी में बिता दिया

अपना पूरा करियर। लेकिन फिर एक फिल्म ने रातों रात बना दिया स्टार। आखिरी सांसों के बीच मिला फिल्म फेयर अवार्ड। अब ये कौन है कि जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बताऊंगा उनका नाम भी बताऊंगा, उनकी जिंदगी से जुड़े सारे किस्सों को आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1989 की। 1989 का वो साल और एक दिग्गज शायर और सॉन्ग राइटर बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। फिल्म साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म के पूरे 10 गानों ने धूम मचा दी थी। मेरे रंग में रंगने वाली, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आजा शाम होने आई कबूतर जा जा जा, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, यानी कि ये सभी गाने मुंबई से लेकर गांव अंचलों तक गूंजने लगे थे। लेकिन इन गानों में अपनी कलम से जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसका नाम है असद भोपाली। असद भोपाली की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बात आज मैं आपसे करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर। ये

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है असद भोपाली के बारे में, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने लिखे, लेकिन उनका जो जीवन था बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जिनको सुनने के बाद हम ताज्जुब करते हैं, क्या वाकई में ये गीत असद भोपाली ने लिखे थे? अभी जिस फिल्म के बारे में आपसे बात कर रहा था, फिल्म मैंने प्यार किया, जिसमें सलमान खान थे, भाग्यश्री थी और इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। इसी फिल्म का एक गाना था कबूतर जा जा जा, इस गाने को भी असद भोपाली ने ही लिखा था। लेकिन दोस्तों, इस तरह के गीत लिखने वाले के जिसके सभी लोग दीवाने थे, लेकिन अपनी कलम से इतना जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था गरीबी और गुमनामी में 40 साल बिताने के बाद जिंदगी को अलविदा कहने की आस में ये कलाकार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन अफसोस, गुर्बत में 40 साल काटने के बाद ये कलम का सिपाही अवार्ड लेने स्टेज पर नहीं जा सका। तो आज इसी गीतकार की जिंदगी की पूरी कहानी आपके साथ मैं साझा करूंगा। इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी एक गाने में कर दी थी। असद भोपाली की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तों। पूरी जिंदगी झोंकने के बाद अंतिम समय में उन्हें उसका फल मिला। बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: नौ बरस लंबी थी ना।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, 100 से भी ज्यादा फिल्मों में 400 से ज्यादा गीत लिखने वाला ये कलम का जादूगर अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी जीते जी करके चला गया। हम बात कर रहे हैं सलमान खान को सुपरस्टार बनाने वाले गीतकार असद भोपाली की। असद भोपाली ने अपनी जिंदगी पर एक गीत लिखा था, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। दोस्तों, इन गानों में दिल की कसक झोंकने वाले असद भोपाली हिंदी सिनेमा के ऐसे फनकार रहे जिन्हें जीते जी कभी भी मेहनताना नहीं मिला। 10 जुलाई 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खान के घर असद की किलकारी गूंजी थी और पुराने भोपाल की तहजीब में पले बड़े असद भोपाली बचपन से ही जहीन दिमाग के इंसान रहे हैं, काफी समझदार थे। स्कूल के दिनों में भाषाओं की जो तालीम है वो खूब मन से ली और पर्शियन, अरबिक, उर्दू और अंग्रेजी पर मास्टरी हासिल कर ली। लेकिन बचपन के बाद आती है जवानी, जवानी के दिनों की भी बात होगी, असद भोपाली की जिंदगी की बात होगी, असद भोपाली के लिखे गीतों का जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है आज असद भोपाली के बारे में, जिन्होंने हमारे भारतीय सिनेमा में एक से खूबसूरत गीत दिए हैं और उन गीतों को आज भी याद कर लो तो वो गीत नए नए से लगते हैं। जवानी के दिनों की कुछ बातें आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। अपनी जवानी के दिनों तक असद मिर्ज़ा गालिब के फैन हो गए थे आज के हमारे शायर यानी कि असद भोपाली। खूब शेरो शायरी और साहित्य में डूबे रहने वाले असद भोपाली ने खुद भी शायरी का पेशा अपनाया। असद भोपाली 21 साल की उम्र से ही मुशायरों में शिरकत करने लगे थे और बहुत सारे मुशायरों में लोग उनको खुद बुलाया करते थे और अपने शेरों सुखन से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। जब असद भोपाली अपनी शायरियां पढ़ते थे तो लोगों की तालियों की जो गड़गड़ाहट थी ना, उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचाती थी। इन्हीं तालियों के बीच असद की जवानी बीतने लगी और फिल्मी दुनिया में काम करने का ख्वाब भी पनपने लगा। असद जब 28 साल के हुए तो किस्मत ने उन्हें पुकार लगाई। तारीख थी 5 मई और साल था 1949 का। भोपाल में कोई बड़ा मुशायरा हो रहा था और इसमें 28 साल के असद भी शिरकत कर रहे थे। अब जब इस मुशायरे में असद भोपाली ने अपनी शेरो शायरी को लोगों तक पहुंचाया तो उसका असर लोगों पर क्या हुआ, जरूर बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी असद भोपाली के बारे में कि भोपाल में एक कोई बड़ा मुशायरा होने वाला था। वहां पर 28 साल के असद भोपाली भी पहुंचे थे। असद भी स्टेज पर आए और अपनी शायरी सुनाई। ऑडियंस में बैठे फजली ब्रदर्स और निर्देशक हसनैन को उनकी शायरी बेहद पसंद आई और उन्होंने असद भोपाली को अपनी फिल्म यानी कि दुनिया के लिए 500 रुपए देकर साइन भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसी फिल्म के गाने पहले आरजू लखनवी लिख रहे थे, लेकिन आरजू बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे और असद को मुंबई की माया नगरी का बुलावा आ गया। इसी सिलसिले में असद मुंबई पहुंच गए और दुनिया फिल्म के गानों से अपने करियर की शुरुआत कर दी। इस फिल्म के दो गानों के जरिए, रोना है तो चुपके चुपके रो और दूसरा गाना था अरमान लूटे दिल टूट गया, असद ने अपने हुनर का प्रमाण दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी का हुनर उसके खुद के छुपाने से नहीं छुप सकता। ऐसा ही असद भोपाली के साथ हुआ। साल थी 1951। 1951 में बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म यानी अफसाना के लिए किसी गाने लिखने वाले गीतकार को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात असद भोपाली से हो गई। उन्होंने असद भोपाली को इस फिल्म के गानों की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि आप ही मेरी फिल्म अफसाना के गाने लिखेंगे। और उनके इस ऑफर को असद भोपाली ने कबूल भी कर लिया। आगे क्या हुआ आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी असद भोपाली के बारे में कि एक बार उनकी मुलाकात बीआर चोपड़ा से हो गई, जो अपनी फिल्म बना रहे थे अफसाना, और इस फिल्म के गाने लिखने की जिम्मेदारी असद भोपाली को दे दी और असद भोपाली ने इस ऑफर को मंजूर भी कर लिया। दोस्तों, असद ने अपने हुनर के पिटारे से 6 गीत निकाले और फिल्म को हिट करा दिया। इस फिल्म के सभी गानों ने धूम मचा दी। यहीं से असद भोपाली की कलम की कला चारों तरफ गूंजने लगी। हालांकि असद के करियर का ग्राफ तो बढ़ने लगा, लेकिन तत्कालीन दिग्गज गीतकारों जैसे मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, राजेंद्र कृष्ण, कुमार बाराबंकी और प्रेम धवन की छाव में असद भोपाली का जो हुनर था ना, वो दबा रह गया। करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में 400 से ज्यादा गानों को अपनी कलम से निकाल दिया। असद भोपाली करीब 40 साल तक फिल्मों में गाने लिखते रहे, लेकिन कभी भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। मुंबई के छोटे से घरों में असद भोपाली का जीवन बीत गया और फिल्म में उनके लिखे नगमे लोगों को दूर दराज तक ठंडक पहुंचाते रहे। असद भोपाली ने खुद ये माना कि जिंदगी ने उनके साथ न्याय किया, लेकिन ऊपर वाला किसी भी मेहनत का फल निराशा में नहीं देता। असद भोपाली साल 1989 आते आते काफी बीमार रहने लगे थे और लकवे से ग्रसित हो गए थे, लेकिन इससे पहले असद भोपाली ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए 10 गाने लिखे थे और उन गानों को पूरे भारत में लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैंने प्यार किया के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गीतकार असद भोपाली के बारे में। असद भोपाली ने बेहतरीन बेहतरीन गाने लिखे, बीआर चोपड़ा जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया और इसके अलावा और भी लोगों के साथ काम किया असद भोपाली ने, और उनके गीत फिल्मों को हिट करा दिया करते थे। उदाहरण के तौर पर फिल्म मैंने प्यार किया को ले लीजिए। ये फिल्म असद की जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। जब इन गानों को तैयार किया गया और सलमान खान के करियर की दूसरी फिल्म में डाला गया तो कमाल हो गया। ये फिल्म तो सुपर हिट हो गई, लेकिन ये फिल्म यानी मैंने प्यार किया सलमान खान को रातों रात स्टार बना गई। फिल्म के सभी गाने लोगों के दिलों में बस गए, लेकिन इतने सालों के बाद भी इन गानों को उतना ही प्यार मिलता है और असद भोपाली को भी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि असद भोपाली को लकवा हो चुका था और वो अवार्ड लेने नहीं जा पाए थे। वाकई में दोस्तों, असद को कभी भी वो मुकाम नहीं मिला, वो शोहरत और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और ये बात असद को खाए जाती थी। इसीलिए असद ने साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म एक नारी दो रूप में अपने दिल की कसक एक गाने में निकाल दी। गाने के बोल थे, दिल

इसी गाने में असद भोपाली कहते हैं कि साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। साल 1990 में संगीत का ये सितारा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन असद भोपाली की ये गीत इतने सालों के बाद भी उनकी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि फनकार चले जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं बहुत सारी यादों का सिलसिला। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: पर नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी वादे करते हैं। कभी आपके लिए हम लेकर के आते हैं जेंडर इक्वालिटी पे बात लेकर के आते हैं, तो इस बार हम बात लेकर के आए हैं, जो टॉपिक इस बार का है वो है कल्चर और हमारा ट्रेडिशन। देखिए भारत देश की अगर बात करें तो अलग अलग यहाँ पर कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग जो है वो रहते हैं, और बहुत सारे देखिए कल्चर को अलग अलग लोग जो है फॉलो करते हैं। हर सीमा रेखा के बाद एक अलग अंदाज होता है, खान पान चेंज होता है, और खाने का रंग और रूप और जो टेक्सचर है, और कपड़ों का रंग रूप हो गया, घरों का रंग रूप हो गया, सब अलग अलग बदल जाता है। आज हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ खड़ी बोली तो बोली जाती है लेकिन माँ की रोटियाँ बड़ी बड़ी नरम नरम है और बड़ी स्वादिष्ट है। लेकिन इस जो प्रांत है, ये जो राज्य है, इसका रंग रूप की अगर बात की जाए तो बड़ा अनोखा है, रंगीला है। बहुत मेहनती लोग भी रहते हैं, किसान हैं, तो वहीं खिलाड़ी भी इसी मिट्टी से निकले हुए हैं। मैं आज बात कर रही हूँ हरियाणा की। जी हाँ, आज है हरियाणा दिवस और 1 नवंबर को ये दिवस जो है मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1966 ये वो दिन था जब हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई, पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना। आज हम इसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं, हरियाणा दिवस की बात कर रहे हैं, आज इसके इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में, खान पान, लोगों के बारे में, कहानियों के बारे में, ज़मीनों के बारे में बात करेंगे बहुत सारी। और इस प्रोग्राम में ना आज हमारे साथ एक और खास गेस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। आप इनकी आवाज़ को पहचानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत प्यार भी इन्हें करते हैं,

0: जो खिलाड़ी इस मिट्टी से जन्मे हैं उसका भी एहसास कराती है, महसूस कराती है। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और चाहती हूँ कि उसके जवाब आप दें। वैसे तो इस तरफ आप होते हैं, हमेशा माइक के शोर औरते होते हैं और हमेशा से आप सवाल पूछते हैं, लेकिन आज आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा एक बहुत छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो हरियाणा नहीं होता है, वो होता हरियाणा ही है, अणा ही होता है वो
0: जी।
1: बट क्योंकि वो इतना खड़ी बोली है कि लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते, तो इसलिए वो हरियाणा बोल देते हैं। जैसे पुणे बोलते हैं, पुणे नहीं होता है, पुणे होता है, वो वहां का एक वर्ड है। सो लाइक दिस इट्स हरियाणा। यस प्लीज।
0: बिल्कुल। तो सागर, मेरा पहला सवाल आपसे, आज हरियाणा दिवस है और इस दिन को, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसके मायने क्या है आपके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछा आपने साक्षी। मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि आज का वो दिन था 1966 को, जब पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य जन्मा था, जो कि है मारा हरियाणा। ठीक है, अब ये मेरे लिए बहुत खास इसलिए है क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, वो कल्चरल चीजें जो हैं वो हमारे अंदर हैं, बचपन से हमने देखी हैं, तो मेरे लिए हरियाणा एक तरीके से आप कह सकते हैं इश्क है। ठीक है, हमारा पहनना, खाना, बोली जो है, अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो हमारे लिसनर समझ नहीं पाएंगे, बट दो तरह की हरियाणवी बोली जाती है। एक तो ब्रिज टच होती है जो पलवल फरीदाबाद बल्लभगढ़ में बोली जाती है, कहाँ जा रहे हो रे, कहाँ को अरे तू, अच्छो का नाम लाला तेरो। ठीक है, एक ये होती है जो हरियाणा फरीदाबाद पलवल एरिया में होती है, एक होती है रोहतक की तरफ सोनीपत तरफ, अरे कितका है तू, के नाम है तेरा। ठीक है, वो ज्यादा खड़ी हो जाती है, लोगों को लगता है कि वो बहुत रूड है, बट वो रूड नहीं है, वो हमारा एक्सेंट है, वो लहजा वैसा है, वो बोलते बहुत भले ही कितनी पोलाइट में बात करें, चाय पीवेगी। ठीक है, अब ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, आई एम ऑफरिंग यू अ टी, लेकिन आपको सुनाई ऐसा दे रहा है कि अरे भाई के मारेगा वारेगा क्या। ठीक है, क्योंकि वो है, वो एक्सेंट ही वैसा, डायलेक्ट ही वैसा है हमारा। तो नो डाउट हरियाणवी मेरे लिए तो भाई देखिए बहुत खूबसूरत एक चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के जो मेरे लास्ट डेज हों वो भी मैं हरियाणा में ही व्यतीत करूँ, बिल्कुल अपने ट्रेडिशन के बीच में।
0: बिल्कुल। तो ऐसा होता है ना कि जब हम अलग राज्य से आते हैं, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बिहार से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो केरला से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गोवा से आ रहे हैं, और आके दिल्ली में या मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जॉब करते हैं, दिल्ली NCR में आते हैं जॉब करते हैं। अच्छा ये होता है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जब लास्ट डेज होंगे, जैसे कि आपने कहा, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर अंत के अगर वो कुछ खास दिन हो तो वो अपनी मिट्टी में ही गुजरने चाहिए। मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, और वो ये कि जब हरियाणा की बात आती है, वो शब्द जब भी आप सुनते हैं, चाहे हम मूवीज में देखते हैं या हम कहीं कहीं सुनते हैं, आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, जब आप ये शब्द सुनते हैं, जब आप अपने राज्य के बारे में सुनते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है या दिल में सबसे पहले क्या आता है वो बताएं।
1: दूध, दही, पहलवान, अखाड़े, कुश्ती, पुलिस, फौज, किसान, स्वांग, रागणी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूवीज में, खासतौर पर बॉलीवुड में, जिस तरीके का हरियाणा दिखाया गया है, मुझे लगता है कि वो उसका शायद 1% भी नहीं है। अगर आप हरियाणा सही मायने में देखने चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर मेले होते हैं, जैसे देव उठनी ग्यास होती है एक हमारे यहाँ पर, उसके मेले लगते हैं। ठीक है, और ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं साक्षी, जब गांव में मेले लगते हैं, स्वांग होते हैं, होली होती है हमारे यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से फेमिलियर हैं, पेटीकोट होता है एक, एक ओढ़ना होता है और एक कमीज होती है।
0: करेक्ट,
1: औरतें पहनती हैं वो कमीज के नीचे पेटीकोट होता है और ओढ़ना पहन के, और वो नाचती है, और जैसे वो घूमर घूमर गाने में दिखाया है ऐसा एक वो बनता है, वो फॉर्मेशन होता है। और मर्दों का जो होता है वो कुर्ते पजामे या कुर्ते धोती होते हैं, नगाड़े बजते हैं और डांस होता है स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में, मतलब आप लोग जैसे अमूमन पंजाब में उसको अखाड़ा बोला जाता है, अभी तो कॉन्सर्ट का एक कल्चर आ गया है, पहले अलग शब्द हुआ करते थे, हमारी गैदरिंग की अलग चीजें हुआ करती थी, उस टाइम पर हरियाणा में रागनियां हुआ करती थी, सोशल इश्यूज को जो आवाज दिया करती थी। जैसे एक मुझे रागनी याद आ रही है, अरे पैसा धर्म नहीं होता, ईमान कहां से लाएगा, दवा मिलेगी पैसे से तू, प्राण कहां से लाएगा, इस तरीके से बहुत ऐसी मतलब सोशल चीजें हुई हैं जिनको आवाज दी गई। और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 40-50-60 साल पुरानी बात है, हरियाणवी कल्चर का ओरिजिन ऐसे हुआ है, तो वो तमाम चीजें जो हैं आती हैं जहन में, वो मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि मैं मेरी मसल मेमोरी ही हरियाणा में मेरी जब से होश संभाला

0: है वो उसी तरफ है, तो वो बहुत सारी चीजें मुझे याद आती हैं। जी
1: देखिए, जब आप सागर को जब आप सामने से देखेंगे, बाय फेस देखेंगे, कोई ये नहीं कह सकता है कि इतना देसी आदमी है या इतना देसी है, क्योंकि पहनावा रंग रूप बहुत बदल जाता है जब हम शहर में आते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने पहनावे को चेंज करते हैं, लेकिन भाई दिल से मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल देसी है। और ये जो बोली है, ये जरूर आपको लगे कि ये रूड हो सकती है, लेकिन भाई कभी कभार ना बड़ी प्यारी भी लगती है। कई सारे ऐसे मैं जैसे आपने कहा कि 1% भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जैसे कुछ भी दिखाया जाता है तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, कोई भी अगर हरियाणवी लैंग्वेज में आके कुछ भी कहता है तो बड़ा प्यारा लगता है कि अच्छा, हम मतलब अक्सर दिल से निकलता है कि ये बोली अगर सीख जाए तो मज़ा आ जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप अपने बच्चों को, जो भी अभी मुझे सुन रहा है, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, तो आजकल के बच्चे हैं लैंग्वेजेस सीखते हैं, लेकिन कल्चरल जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अपनी जो घर की धरोहर, अपनी जो लैंग्वेज है, आप उन्हें ज़रूर सिखाइए। आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो गाँव की लैंग्वेज है ये नहीं सीखेंगे, गाँव के हम रीति रिवाज नहीं सीखेंगे, लेकिन ये दिल से कभी नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि दिल से तो देसी है, वही दिल से जो है वो आगे भी बढ़ता है। और लाइफ में अचीव करने के लिए ना आपको दिल से देसी होना जरूरी है, क्योंकि आपको हर एक एक्सपीरियंस उससे मिलता है। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। आज मेरे साथ है आरजे सागर, तो बात कहीं यहीं पर होंगी, और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। ये खास प्रोग्राम लेकर के आ जाते हैं और इस बार का टॉपिक है कल्चर ट्रेडिशन। और आज एक बहुत ही खास दिन है, आज है हरियाणा दिवस। आज इस दिन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के ही एक कलाकार। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजे सागर। आप आरजे सागर की आवाज को सुनते हैं हर रोज रेडियो मानव रचना पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी आरजे सागर एक फिटनेस कोच भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान है, देसी कलाकार है। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सागर, अब आपसे अगला सवाल मैं पूछती हूँ। आपने अभी रागनी की बात करी थी, आपने घूमर की बात करी, सांग की बात करी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए कि ये सांग क्या है, क्योंकि अब मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली से आती हूँ, बट आई एम अ बंगाली, तो बंगाल का कल्चर मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इनके बारे में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज के बारे में इतना नहीं पता है, रागनी क्या है या घूमर अच्छे से आप बताएं और सांग क्या है, क्योंकि आज भी लोगों के दिलों में, जो पुराने लोग हैं के दिलों में तो जगह ये बनाए हुए हैं, जो नए लोग हैं उनको समझाएं और उनको ये याद दिलाएं, उनके दिल में ये जगह बनाएं कि ये जो है ये भी आर्ट फॉर्म्स हैं और इसके लिए भी हमारे दिल में जगह होनी चाहिए और हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए क्योंकि ये हमारे राज्य से है।
2: जी जी जी, सांग का अगर आप सही मायने में देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन होता है स्वांग, पर क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हर चीज को हम ट्वीट करते हैं। स्वांग का अगर आप लिटरल एक मीनिंग जानना चाहते हैं तो वो होता है इमिटेशन। तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती आपको यही नजर आएगी, चाहे आप बंगाल से हैं, आप पंजाब चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह पर हमने अपने अपने कल्चरल साइड को एम्फेसिस करते हुए, अपनी वैल्यूज को दिखाते हुए, कोर प्रिंसिपल्स को दिखाते हुए अपनी फॉर्मेशन करी थी इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स। तो स्वांग उसी का नाम है। आप कह सकते हैं मिमिक्री भी उसमें होती है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, डांस भी होता है, थिएटर भी होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एन इवेंट। बंगाल में भी होता होगा, भारत के हर राज्य में आपको नजर आएगा। तो हरियाणा में उस थिएटर को, उस मिमिक्री को, उस एक्सप्रेशन का मैं बोलूंगा, उस एक्सप्रेशन को स्वांग नाम दिया गया है। रागनी इज स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एक तरह से कॉन्सर्ट हुआ करता था जो बहुत लोकल लेवल पर हुआ करता था, लेकिन रागनी का जो पॉइंट था वो ये था कि गैदरिंग हो, बुजुर्ग बैठे और जो सोशल इश्यूज हैं उनको आवाज दी जाए गाने के फॉर्म में। क्योंकि अगर आपने कभी गौर किया हो तो अगर मैं नॉर्मली एक बात बोलूंगा वो आपके जहन में शायद ना रुके, लेकिन अगर मैं वही बात गाना गा के बोलूंगा और गाना आपको अच्छा लगेगा तो वो बात आपके जहन में रुक जाएगी, चाहे वो धुन के माध्यम से रुके या उन शब्दों के माध्यम से रुके। जैसे एक और रागनी मुझे यहाँ पर याद आ रही है, बदल गया जमाना लोगों यार ना रहा इन, माँ के जाए भाइया मैं भी प्यार ना रहा। सो बेसिकली द पॉइंट वाज कि आपस में भाई अगर लड़ रहे हैं, माँ के जाए भाइया में मतलब एक माँ से जो जन्मे हैं भाई उनमें अब प्यार नहीं रहा, वो आपस में फूट पड़ चुकी है, लालच बीच में आ चुका है, फिर आगे उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, खोलते हैं। रागनी का ये फॉर्म हुआ करता था, स्वांग ये हुआ करता था, इट्स लाइक गैदरिंग। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा साक्षी, वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना, हम एक साथ नहीं जन्मे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि ठप ठप हम ऊपर से गिरे हैं, हम इवॉल्व होकर के यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप इस पूरे फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं कि हरियाणा में स्वांग क्यों है, पंजाब में अखाड़ा क्यों है, या बंगाल में थिएटर क्यों है, या महाराष्ट्र में भी ऐसी चीजें होंगी, वो क्यों है, तो आपको इवोल्यूशन पूरा पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कई हजारों सालों तक ट्राइबल कल्चर से निकल के आए हैं, हम ट्राइब्स में रहा करते थे, तो हम सोशल क्रिएटर्स हैं, हमें एक साथ रहना है। हम लोगों ने दोस्तों से मिलना, परिवार से मिलना, सोशलाइज करना बंद कर दिया है, जो कई हजारों सालों से हमारे खून में, हमारे जेनेटिक्स में रहा है। अब बीते कुछ 10-15 सालों से ये चेंज हो गया है, तो उस टाइम पर भी इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन करते हुए कि आपकी मानसिक हालत अच्छी रहे, अच्छी बातें आप सुने, अच्छी संगत में आप रहे और चार लोग अपनी बातें शेयर कर सके ताकि कुछ नया बन सके, प्लस कोई अपने अंदर में घुट ना रहा हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम आर्ट फॉर्म्स बनाई गई थी, गाना, थिएटर, मिमिक्री, या ठहाके लगाते थे, हंसी मजाक किया करते थे, वो सब चीजें, तो उसी का रिजल्ट है स्वांग रागड़ी या और जो भी दंगल हुआ करते हैं हरियाणा में, कबड्डी भी हुआ करती है, कुश्ती भी हुआ करती है और बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट यही है कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे और आप ट्राइब के साथ जुड़े रहे वहां पर।
1: तो देखिए बदलाव तो काफी सारे हैं और अब मैं यहाँ पर, अब हरियाणा की हम बात करें, इतना सब कुछ है। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए भी हरियाणा जो है वो जाना जाता है, चाहे हम नीरज चोपड़ा की बात करें या फिर हम साक्षी मलिक की बात करें, कई सारे जो भाई शूटर हम अभी बात करें, मनु भाकड़ की बात करें,
2: तो गीता बबीता दंगल बनी है,
1: दंगल बनी
2: बजरंग पुनिया है, बहुत सारे लोग,
1: बहुत सारे लोग हैं। तो कितने लोग जो है इस मिट्टी ने जने हैं और कितने सारे जो है वो अब भी बन रहे हैं प्लेयर्स लाखों की तादाद में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जैसे अब बात करें एक मॉडर्न साइड की भी हम बात करें, गुरुग्राम तो एक मॉडर्न सिटी है। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एक अलग हो गया राज्य है, लेकिन अगर मॉडर्न टच की भी बात की जाए तो वो गुरुग्राम आ जाता है। या फरीदाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक लग्जरी भी दिखने को मिलती है। तो आपके नजरिए में ये जो परिवर्तन है, ये क्या बदलाव लेकर के आया है और लोगों की सोच पर भी इसका कैसा असर रहा है?
2: देखिए, मैं, मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, एक ऐसा सच है जो होता ही होता है, ठीक है। अच्छे के लिए हुआ है, रोजगार मिले हैं लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरियाणा में, जैसे गुरुग्राम हरियाणा का एक हिस्सा है, ठीक है, और एक मेजर जगह है, अब गुड़गांव में अगर कोई इंसान हरियाणवी बोलता है तो एक तरीके से उसको जज कर लिया जाता है, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसी भूमि में जन्मा है, उसी की जमीन पर वो सारी चीजें बनी है, तो वो वहीं का एक बाशिंदा है, ठीक है, वो अपनी भाषा बोल रहा है क्योंकि वो तो कई सदियों से वहां पर रहा है। लेकिन ये एक चीज है कि वो कल्चरल साइड वहां पर नजर कम आती है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी भी हरियाणा के किसी भी गांव में आंख बंद करके घुस जाइए, सुबह 3 बजे से लेकर के 5 या 6 बजे तक, किसी भी गांव में, मैं कह रहा हूं यहां पर बैठकर, आपको हर गांव में उसके एंट्रेंस पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपको दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे, और ये पागल बच्चे होते हैं, जुनूनियत होती है, ठीक है, ये या तो मिलिट्री में जाना चाहते हैं या ये पुलिस में जाना चाहते हैं या एथलीट बनना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई उन्हें सूझता ही नहीं है। और इसका एक रीजन है साक्षी, एक तो कुरुक्षेत्र से श्रीमद् भागवत गीता निकली है,
1: बिल्कुल,
2: ठीक है, श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में दिए थे, ठीक है, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय, तो ये भूमि है, प्राउड की भूमि है, ये क्षत्रियों का एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरीली 4 जो है जातियों को अजगर बोला जाता है, उनको अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ठीक है, ये क्षत्रिय हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, इसलिए आज भी आपको यहाँ पर वो नजर आएगा कि आज भी यहाँ के लोग वो वाली चीज रखते हैं, मतलब आपको लगेगा अकड़ू है, बट एक हरियाणवी ऐसा, मैं कहूंगा खून में एक चीज है मोस्टली जो आपको नजर आएगा कि वो प्राइड के लिए लड़ते हैं, जब भी देश की बात आएगी वो आगे आपको खड़ा मिलेगा, चाहे वो एथलेटिक्स की बात है, फौज की बात है, पुलिस की बात है, और ये मैडनेस जरूरी भी है अपने देश को लेकर के। तो हाँ, ये बात सही है कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम कल्चर को भी अगर मैं 2 मिनट के लिए साइड कर दूं, मदर नेचर का बहुत नुकसान हुआ है साक्षी, हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में डिफॉरेस्टेशन बहुत भर भर के किया है। उसका प्रमाण ये हो रहा है कि आज ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहे हैं, कितने सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है ऑलरेडी। आज आप देखेंगे तो कितने सारे जानवर है, बंदर आपको नजर आते हैं, डॉग्स आपको नजर आते हैं, ये आपको नजर आते हैं तो आपको दिक्कत तो होती है, लेकिन रूट कॉज तक कोई जाना नहीं चाहता, कोई सोचना नहीं चाहता है कि इनका घर उजड़ा कैसे, क्या हुआ इनके साथ, पहले कहां रहा करते थे। तो वो एक मदर नेचर ने जो चीजें प्रिजर्व की हुई थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दुख देती है थोड़ा सा मुझे, कि अगर आप एक फ्लैट बना रहे हो, 4 अगर आप पेड़ काट रहे हो, तो आप 10 पेड़ और कहीं लगाइए, ताकि बैलेंस बना रहे, ये एक चीज है।
1: देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, आरजे सागर मेरे साथ है, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी सवाल हैं, और कल्चर के बारे में, राज्य के बारे में, हरियाणा के बारे में, और भी कुछ बहुत सारी बातें जानेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं आपकी बात आरएमआर के साथ। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आरजे सागर, जो कि एक बहुत ही खास एक्सपर्ट बनकर आज हमारे शो में आए हैं, क्योंकि हरियाणा से हैं। और जब हरियाणा की दिवस की बात हो और कोई हरियाणवी हमारे साथ, कोई देसी कलाकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सागर, आपसे हमारी बातें चल रही है, मैं अब अगला सवाल जानना चाहूँगी यहाँ पर। अब जैसे कि आपने अभी कई सारी चीज़ों पे बात करी है, आपने अरावली की भी बात करी है कि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है या बंदर हो गए, हम देखते हैं, हम इरिटेट ज़रूर हो जाते हैं लेकिन रूट कॉज नहीं हम जाना चाहते हैं वहाँ तक। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब बड़कल झील की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में बड़कल झील भी एक टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है। पानी जो है इसमें दोबारा से जो है उसको रिजुविनेट किया गया है अच्छे से, और मार्केट्स भी लगाई जा रही है, और एक बहुत बड़ा सरकार का भी प्रोजेक्ट है जो हो रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, आने वाले टाइम में हरियाणा की शान बनने वाला है।
1: जी अगेन मैं इवोल्यूशन पे जाना चाहूंगा कि हम लोग इवॉल्व होकर के यहाँ तक आए हैं। तो इतनी सदियों तक हम लोग रहे हैं जंगलों में, हम लोग रहे हैं नेचर की क्लोज, ठीक है। नेचर के बिना मुमकिन नहीं है यहाँ पर जीवन, ठीक है। और ये बात आप सभी लोग खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव हो, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्रेन फॉग हो गया है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, सिर्फ एक चीज करिएगा, कहीं पहाड़ों में चले जाइएगा, जंगलों में चले जाइएगा, किसी बीच किनारे जाकर बैठ जाइएगा, कहीं भी फॉर्म ऑफ नेचर ढूंढिएगा और वहां एक दिन या दो दिन व्यतीत करिएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप हील्ड महसूस करेंगे। वो हीलिंग बेसिकली होती है, रीजन बीइंग कि हम लोग उसी एक मदर नेचर से निकल कर के आए हैं, इवॉल्व होकर के आए हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरत एक स्टेप है। मतलब मैं तो अगर आप रेडियो मानव रचना का टैक्सी नंबर 107.8 सुनते हैं शाम को 5 से 8, तो मैं तो कितने यहाँ पर सालों से यही बात कह रहा हूँ, इसकी गुहार लगा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से बोलता हूँ कि भैया नेचर को बचाइए, आपके आसपास होनी बहुत जरूरी है। और ये भगवान अगर आप मानते हैं तो आपको इन तत्वों को समझना होगा, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये मिला करके जो है, इनके बिना जीवन मुमकिन नहीं है। और इनमें से कोई एक भी तत्व अगर हट जाएगा इस पृथ्वी पर से, तो जीवन खतरे में आ जाएगा, वो संतुलन खराब हो जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है कि अगर एक झील बनाई जाएगी तो अल्टीमेटली वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, मोर ओवर लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा वहां पर आने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रोजगार बहुत जनरेट होगा, काफी लोगों को नए साधन मिलेंगे। और ये खाली फरीदाबाद में नहीं हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा है, यूपी से भी ऐसे मैंने अपडेट्स देखे हैं जहाँ पर 100 से ज्यादा कुंड खोदे गए हैं जिनका, जहाँ पर तालाब बनाए जाएंगे और वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट अगर अभी हो रहा है तो लकीली, मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर दिस।
0: दुरुस्त है लेकिन जरूर हो,
1: बिल्कुल।
0: मैं सागर आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। अब हरियाणा की बात हुई है और देखिए, आप फीमेल्स की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं आप जानना चाहती हूँ, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए या फिर आप औरतों की बात की जाए, एथलेटिक्स जैसे कि उसमें विनेश फोगाट हो गई या फिर साक्षी मलिक हो गई, उन्होंने सोसाइटी में बदलाव लेकर के वो आई, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि एक ऐसे राइजिंग स्टार, क्योंकि ये एक ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने देश में नाम रोशन किया है, तो जहाँ पर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गाँव में, कस्बों में ये भी सुनाई देता है कि लड़कियाँ चूल्हा चौका करें, घर से बाहर ना निकलें, तो वहीं ऐसी लड़कियाँ भी हरियाणा से बाहर निकली हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो क्या बदलाव कल्चर में भी क्या लेकर के आएगी, क्योंकि हरियाणा के कल्चर में एक ये भी छोटी सी बात ज़रूर आती है कि चूल्हा चौका है लेकिन ज्यादा घर से बाहर नहीं, लेकिन अब ये सोच जो है वो बदल रही है, तो इसमें आप कितना बिलीव करते हैं?
1: जी फिर एक बार मैं इवोल्यूशन की तरफ चलना चाहूंगा। हम लोग हंटर गैदर्स हुआ करते थे, तो हुआ ये करता था इवोल्यूशन के टाइम में, क्योंकि प्रथाएं सारी वहां से बनी है सारी।
0: जी।
1: तो जब भी आपको किसी भी सवाल का जवाब ना मिले, मैं सबको सलाह दूंगा, प्लीज एक किताब है सेपियंस, पढ़िएगा। इवोल्यूशन को जितना आप पढ़ेंगे आपको आज की सारी दिक्कतों के समाधान वहां पर मिल जाएंगे। हम लोग क्या किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, एक जमाना था, उस टाइम पर हमने नहीं सीखा था खाने को उगाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, फार्मिंग नहीं हुआ करती थी, तो हंटिंग किया करते थे। औरतों का काम था बच्चों की देखभाल करना, जो हम खाना लेकर के आ रहे हैं उसको पकाना, खाने योग्य बनाना और उसको सबको सर्व करना। मर्दों का काम हुआ करता था बाहर जंगल में निकलना, ठीक है, जंगली जानवरों से अपने परिवार को बचाना, खाने का जुगाड़ करना, ठीक है, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जुगाड़ करना। और इसको आप इस तरीके से मत देखिए कि जेंडर बेसिस पर किया गया, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई थी। कट टू द पॉइंट, आज हम आते हैं, ये प्रथाएं उसके बाद यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होके आई, बट अब क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो ये प्रथाएं धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अभी बीते दिनों हरियाणा के एक गांव का मैं सुन रहा था किस्सा कि कोई महिला वहां पर सरपंच जो है वो चुनी गई, तो वो महिला ने क्या किया, सबसे पहली चीज वहां पर जो की गई वो की गई घूंघट हटाने की। तो पूरे गांव ने एक साथ घूंघट हटाया वहां पर, विच इज अ गुड थिंग। मतलब स्लो प्रोसेस है बट आ रहा है धीरे धीरे चेंज। पहले हुआ करता था यकीनन कि चूल्हा चौखा करना है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों को पालो और खाना बना करके दो। लेकिन हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट की जहां तक बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर आप अलग से एम्फेसिस कर रहे हो कि हमें वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक सच ये भी है कि आप एट द सेम टाइम ये मान रहे हो कहीं ना कहीं कि वुमेन जो है वो कमजोर है, लड़कियां कमजोर हैं। मेरी ऐसी बिल्कुल धारणा नहीं है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, जिसको जो काम आता है अपनी स्किल के आधार पर उसको वो काम दे देना चाहिए। यही असली वुमेन एम्पावरमेंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा आपकी, अगर वहां पर कोई लॉजिकल बहस हो रही है या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, तो वहां पर भी उस फीमेल को उतना ही मौका दिया जाए जितना एक मेल को दिया जा रहा है। दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट। बाकी ये जो लड़कियां कर रही हैं, हमारी छोरियां हरियाणा से उठ के जो नाम कर रही हैं, विच इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, इससे और बहुत सारी लड़कियों को जो है इंस्पिरेशन मिलती है। मोर ओवर पेरेंट्स भी जो है वो इंस्पायर होकर के अपनी बेटियों को बोलते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, ये चेंज हो रहा है।
0: बिल्कुल। तो सागर, कुछ टाइम पहले ही मेरे पास एक लिसनर का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि हम पहले स्कूल जो है वो बीच में छोड़ दिया था। तो मैंने उनसे रीजन पूछा, उन्होंने कहा कि बस अब एज हो गई है और मम्मी ने कहा है कि अब थोड़ा खाने वाने बनाने पे ध्यान दो, क्योंकि अब आगे अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि अब आगे जो है आपको शादी करनी है और आपको अपना घर संभालना है। अच्छा, कुछ टाइम बाद मैं ऐसे ही अपना बातें कर रही थी रेडियो पे और कई सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, हेल्थ के बारे में बताती हूँ, और ऐसे ही मैं कुछ बातें कर रही थी, तो कुछ टाइम बाद उस लड़की का फिर से मेरे पास कॉल आया। उन्होंने, लिसनर ने मुझसे कहा कि मैम थैंक यू। तो मैंने उनसे पूछा थैंक यू किस लिए, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सलाह देते हैं या कुछ कहते हैं तो हमारे पेरेंट्स उसे सुनते हैं, और आज फिर से मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि किसी को इंस्पायर करना है, चाहे बहुत ही छोटी सी, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती, लेकिन हाँ कुछ बातें अगर आप तक पहुँचती हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए भी और सभी के लिए। इसी के साथ साथ सागर, जैसे कि आपने अभी कल्चर के बारे में भी कहा कि घूंघट की प्रथा हो गई या चूल्हा चौका हो गया, ज़रूर मेरा मानना ये भी है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मुझे ये भी लगता है कि ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो कुछ प्रथाएं ऐसी होती है ना कि जो महिलाओं पे जचती भी है, लेकिन इसमें अब जो कदम से कदम जो है महिलाएं भी मिला रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर हम अभी लखपति दीदी की भी बात करें तो चाहे उनका पहनावा है, लेकिन पूरे देश में उन्होंने जो है अपना नाम बनाया, और साथ ही उन महिलाओं को भी लेकर के चल रही हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं, उन्हें भी काम करा रही हैं, और वो लड्डू या बहुत सारी ऐसी मिलत से चीज़ें बनाना और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे जो महिलाएं हैं हरियाणा की, वे आगे बढ़ रही हैं और इसी तरह से बढ़ती रहें और ऐसे ही पूरी दुनिया को इंस्पायर करती रहें, ना सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे देश को। चलिए सागर, एक छोटा सा ब्रेक, इजाज़त हो आपकी तो मैं लेना चाहूँगी, और आगे कुछ और बस कुछ सवाल और हैं जो मैं जरूर जानना चाहूंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रश्ना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। आज मेरे साथ है आरजे सागर। बहुत सारी सागर आपसे बातें हमारी चल रही है। आज हरियाणा दिवस है और इस मौके पर हरियाणा के बारे में हम बात करें, यहाँ के कल्चर के बारे में, फोक म्यूजिक, डांस। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने दो रागिणी जरूर हमें बताई है। अच्छा, जब रागनी की या गीतों की बात होती है या कोई भी एक आर्ट फोक कल्चर की बात होती है, सबसे नज़दीकी अगर गीतों में से अगर मैं बात करूं, आपके दिल के कौन सा जो गीत है वो नज़दीक है, जो आप सभी को बस चंद दो लाइनें सुनाना चाहेंगे यहाँ पर?
1: हरियाणवी गीत
0: जी।
1: दिलराज कौर एक हुआ करती थी सिंगर
0: जी।
1: उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाए थे, मैं अपने बचपन में सुनता था, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि मेरे पिताजी उस टाइम पर सुना करते थे उनको, और बचपन से वो आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। तो एक गाना है, हालांकि फीमेल पर्सपेक्टिव से वो गाना गाया गया है, लेकिन आर्ट फॉर्म का कोई जेंडर नहीं होता, तो कोई भी उसको गा सकता है। जैसे मेरा चुंदड़ मंगा दे रे ओ नंदी के बीरा तन्नैन्यू तन्नैन्यू तन्नैन्यू ढूंगे पैराकूं ओ नंदी के वीरा। बेसिकली वो अपने पति को एड्रेस कर रही है, नंदी के वीरा मतलब मेरे ननद के भाई, ठीक है? तो वो इस तरीके से है। एक और है,

0: मस्ती के साथ गाते तुम गानों
1: बिल्कुल
0: हाँ।
1: तो ये मस्ती है वाइब जो है ये अभी स्टूडियो में भी बिल्कुल बरकरार है। सागर कुछ और भी सवाल है, मतलब काफी अच्छा तो लग रहा है आप हमारे साथ है, लेकिन जाने का भी टाइम हो रहा है, तो कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ से अब फ्यूचर की ओर देखें, अगर आप हरियाणा को अब देखें तो आने वाले सालों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हरियाणा और कैसे डेवलप होना चाहिए, या कल्चरली तौर पर फोक आर्ट म्यूजिक के तौर पर और किस तरह से आप क्या एंगल किस एंगल से देखते हैं हरियाणा को?
0: मुझे ऐसा लगता है जो होना चाहिए मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि कोर वैल्यूज को रखते हुए मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एथलीट्स हैं, कुछ बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं तो उनको स्टेडियम्स मिलने चाहिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए ताकि देश के लिए और ज़्यादा मेडल्स हम लोग लेकर के आ पाएं। इसके अलावा स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मोर ओवर एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा आज भी इंडिया का हिस्सा है, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन जो हमारी है भारत की वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग। उसमें बहुत बदलाव होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि साक्षी ये बहुत दुखद बात है कि एक किसान इन्वेस्ट करता है, मतलब स्टार्टअप के तौर पर देखिए कि अगर कोई आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वही बंद फैक्ट्री में है, बिकेगा, आप उसको मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, आप उसको अंदर बंद करके रखेंगे तब। लेकिन एक किसान की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, वो अपनी लिटरली सारी मेहनत से जो है बीज लेकर के आता है, पूरी मिट्टी खोदता है, बीज बोता है, फसल उगती है, और उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चौड़े में पड़ी हुई है, ओपन में। अब धूप अगर ज्यादा हो जाएगी बर्बाद हो सकती है, बारिश ज्यादा हो जाएगी बर्बाद हो सकती है, ठीक है, हो सकता है फसल ना होगे, हो सकता है कीड़ा लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना स्टेक पर है, आप सोचिए कि रातों रात सब खत्म हो जाता है एक बाढ़ से या सूखा पड़ जाने से, और उसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एक रात में फसल उगा सकते हैं, वापस से उसको 6 महीने 7 महीने का वो जो लूप है उसको रिपीट करना पड़ेगा, वही मेहनत उसको करनी पड़ेगी। तो ये मेरा एक पेन पॉइंट रहता है हरियाणा के लिए भी, क्योंकि वो मेरा स्टेट है, मैं यहां जन्मा हूं, लेकिन ये हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे देश की बात करूंगा जहां भी फार्मिंग होती है, हर जगह पर इतनी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि फार्मर्स प्रिडिक्ट कर पाए वेदर कैसा होने वाला है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, और क्या फसलें मैं उगा सकता हूँ, कितने टेन्योर में वो उग सकती है। मुझे लगता है कि ये अपलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरओवर मैं ये भी चाहूंगा कि जब मेरे बच्चे हों मैं उनको सब सिखाऊंगा, हिंदी सिखाऊंगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, जो भी होगा दुनिया में सब सिखाऊंगा, एट द सेम टाइम हरियाणवी सिखाऊंगा, स्वांग बताऊंगा, रागड़ी सुनाऊंगा, ताकि ये जो कल्चर है ये कैरी फॉरवर्ड हो सके, ये यहाँ पर गायब ना हो।
1: बिल्कुल। तो सागर आपके साथ आज बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हरियाणा दिवस को और ज़्यादा एक महत्व अगर जो मिला है, और साथ ही आपने हर एक चीज़ के बारे में बड़ा खुल के बताया है, चाहे वो रागनी की बात की जाए, गीतों की बात की जाए, यहाँ के कल्चर की एवोल्यूशन पीरियड से लेके अभी तक की सारी जानकारी आपने दी है, मैं तभी दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो आखिरी एक लाइन हरियाणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: दूध दही का खाना यो है हमारा हरियाणा, ये है जी, यही है हमारा, है ही ये प्रोसेस, ऑर्गेनिक है, इसीलिए आपको हट्टे कट्टे यहाँ पर लोग नजर आते हैं, क्योंकि खाना बहुत ऑर्गेनिक है और वो बचपन से डाला जाता है, मतलब पिज्जा नहीं खाते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे घर में टमाटर और मिर्च की चटनी बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है चूल्हे के ऊपर, और उसमें जो मक्खन होता है वो निकाल के ताज़ा रखा जाता है और उसके ऊपर वो चटनी रख के खाई जाती है। अरे साहब कभी आइए, अंगे खाइए दूध के साथ, आपको हम दिखाते हैं कि मज़ा क्या होता है, आप भूल जाएंगे तमाम चीज़ केक का स्वाद, आप भूल जाएंगे तमाम पिज्जा, और आपको मिलेंगे जो फायदे। तो ये है जी हमारा हरियाणा।
1: बिल्कुल, यही है हमारा हरियाणा, और इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो चलिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM। वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सागर। आज कौन लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, आप लोग इस टाइम जुड़े हुए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ शो बहुत स्पेशल है, बहुत अमेजिंग है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि स्टडीज की, कंपनीज की बात होती है, इंडस्ट्री की बात होती है, अलग अलग कंपनीज फाउंडर्स स्टोरीज जर्नीज USPs ओवरव्यूज, इन तमाम चीजों के साथ हम आपको सिखाते हैं एग्जैक्टली स्टार्टअप्स काम कैसे कर रहे हैं इंडिया में। और इसीलिए हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। लेकिन ये आत्मनिर्भर जो भारत बना है इसमें भारत के ही लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज फिर से मैं आया हूं लेकर के एक और केस स्टडी, एक और शो करेंगे, एक और इंडस्ट्री के बारे में बात हम बात करेंगे, एक और स्टार्टअप की। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे लेकर चलेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक, आई होप आपको गाने पसंद आए। नाउ दिस नोट, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। दोस्तों, आज के शो में जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री को समझते हैं। सो दिस कंपनी डील्स इन फैशन टेक। फैशन टेक फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनी हुई एक इंडस्ट्री है, एक बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ सेक्टर। और इंडिया में हमें जो

मिलता है फैशन और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड। उसने लिटरली मतलब इस इंडस्ट्री को एक नई शेप दी है, एक नई उड़ान दी है, एक नई ग्रोथ दी है, जहां पर आपको बहुत सारे इनोवेटिव डिजाइन देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, इवन कस्टमर एक्सपीरियंस, सब कुछ काफी एनहेंस हुआ है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, ब्लॉकचेन, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो टेक ये जो है जब से इस फैशन इंडस्ट्री में आया है तब से इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो आज हम इस मार्केट को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आज की कंपनी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फैशन टेक मार्केट इंडिया में क्या है। देखिए, आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेसेस देखने को मिलती हैं, तो ये सब कुछ हो पाता है इस एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद से, जहां पर डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक, सप्लाई चेन से लेकर मैनेजमेंट तक, रिटेल से लेकर कस्टमर एंगेजमेंट तक, सब कुछ शामिल होता है। स्मार्ट टेक्सटाइल्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट क्लोथिंग, जिसमें हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। अब फैशन के साथ हमारी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर किया जा रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। AR/VR सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हो कौन सा कपड़ा आपके ऊपर सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, जो आपके ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाता है। AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स, जो आपके हिसाब के स्टाइल आपको दिखाते हैं, आपके हिसाब से आपको फैशन जो है वो रेकमेंड करते हैं, और जैसी भी आपकी डिमांड होती है उस तरीके से आपके लिए कुछ क्रिएट करके देते हैं। देन इसके बाद सस्टेनेबल फैशन इनोवेशंस, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है, जिसमें हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस को। सो दिस इज फैशन टेक इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये मैंने आपको मेजर मेजर पिलर्स बताए कि किन किन वर्टिकल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम ये समझेंगे कि फैशन टेक मार्केट इवॉल्व कैसे हो रही है इंडिया में। बट इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

उम्मीद है कि आपको गाने पसंद आए। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और दोस्तों, आज की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब कुछ आपको समझाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक शब्द बना है फैशन टेक, जिसकी वजह से हमारी फैशन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत रैपिडली इवॉल्व हुई है और अभी भी होती जा रही है। और देखिए, फैशन बहुत पहले से है, लिटरली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है हमारे बीच में हमेशा से। तो अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, फैशन चेंज होगा, लेकिन फैशन इस टर्म को हम सीधा लेकर जाएंगे बैक इन 100 years ago, 200 years ago, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक इसको लेकर जाइए, क्योंकि उस टाइम पर भी जब कपड़े नहीं थे हमारे पास, टेक्सटाइल नहीं हुआ करता था, लोग बनाया करते थे, अपने हिसाब से कपड़े बनाते थे, अपने हिसाब से ज्वेलरी बनाते थे। सो फैशन वॉज स्टिल देयर। अब यहां पर समझेंगे कि इंडिया में फैशन टेक कैसे इवॉल्व हुई है। सबसे पहला पॉइंट आता है शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पैंडेमिक के बाद से बहुत कुछ बदला है, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता गया है और लोग भी ऑनलाइन प्रेफर करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। क्योंकि फैशन के साथ एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं टेक, दैट मींस टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है पैंडेमिक के बाद, जो लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है ऑनलाइन की तरफ, जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ी है टेक्नोलॉजी में, लोग अब इन्वेस्ट करने लगे हैं। वर्चुअल ट्राई ऑन्स, AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड चैटबॉट बेस्ड कस्टमर सर्विस, ये सब चीजें अब कंपनीज ऑफर करने लगी हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही है। राइज इन D2C ब्रांड्स। देखिए, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं फैशन के जो आपको D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, सीधा कस्टमर तक जो उस सामान को डिलीवर करते हैं आपको दिखाते हैं, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, नो मिडलमैन रिक्वायर्ड। सिंपली वहां पर जिसने लिस्ट किया हुआ है प्रोडक्ट को, उसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपके घर पे। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। नाउ दिस इज द न्यू फैशन, मानिए इस बात को। लोग अब पूछने लगे हैं, भैया इको फ्रेंडली है क्या आपका जो कपड़ा है, क्या आप उसमें क्या किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आप जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं आपने इस फैब्रिक को, इस टेक्सटाइल को, या जिस तरीके से आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं आप मदर नेचर को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। या सिमिलर टू कार्स, जैसे कार्स में सेफ्टी पूछी जाने लगी है, वो एक नया फैशन बन चुका है। सो हाँ, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। एंड देन इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो सबसे क्रूशियल है, दैट इज पर्सनलाइज्ड कस्टमर एंगेजमेंट। देखिए, आपको पर्सनलाइज करके दिखाया जाएगा कपड़ा। मानकर चलिए आपने व्हाइट टी शर्ट देखी जो आपको थोड़ी रेट्रो वाइब देगी, तो आपको रेट्रो वाइब की ही जीन्स दिखाई जाएगी, वैसे ही शूज दिखाई जाएंगे, और जो एल्गोरिदम है वो आपके टेस्ट को समझेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको वैसे ही वो इंगेज करके रखेगा, क्योंकि वैसे से ही ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे। दैट्स हाउ ये जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्व होती जा रही है, और हमेशा से होती आई है, आगे भी होती रहेगी। बट ये आप समझ सकते हैं कि मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। उम्मीद कर रहा हूं जितना अभी तक आपको समझाया गया है उतना आप समझ पाए हैं फैशन टेक को। आगे बात करेंगे फैशन टेक मार्केट के हाइलाइट्स के बारे में, बट फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, पेश है यहां पर ये गाने आपके लिए, फील गुड फील लाइफ।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मेरा नाम सागर शोकनाम, आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्रम 107.8 FM। तो आज की जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी केस स्टडी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। आइए थोड़े सा इसके हाईलाइट समझते हैं। पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये लिटरली मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला है कि हर एक कंपनी जो है इन टूल्स का सहारा ले रही है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ी है, नए नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं फैशन टेक मार्केट जो इंडिया में डील करती है उसका वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML। देन उसके बाद है AR VR फॉर वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस। मानकर चलिए आपको कोई कपड़ा ऑर्डर करना है, कोई गूगल्स आपको ऑर्डर करनी है, वॉच आपको ऑर्डर करनी है, आप उसको पहले अपने घर पर चेक कर सकते हैं। आपके पास AR VR का ऑप्शन है अच्छा खासा। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं इसमें जो लिटरली मतलब चीजों को टॉप नॉच रखना चाहते हैं और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी समझते हैं। वहां पर आप घर से चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर वो कलर सूट करेगा, और वो कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट्स दे पाए। उसके बाद थर्ड मेजर हाईलाइट है 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल फैशन। ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपको मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का 3D प्रिंटिंग, जहां पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज, कस्टमाइज्ड अपेरल्स जो है वो बनवा सकते हैं। आप कमांड देंगे, आपको लगेगा यू आर द ओनर जिसने ये सब कुछ सेलेक्ट किया है। और एक नया बिजनेस भी स्टार्ट हुआ है इसमें, POD प्रिंट ऑन डिमांड। वह लिटरली लोग इन टूल्स की हेल्प से एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं। सो या दिस इज वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स इन फैशन टेक मार्केट इन इंडिया, 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मेजर हाईलाइट है, दैट इज स्मार्ट वेयरेबल्स एंड टेक्सटाइल्स। देखिए मेजर हाईलाइट है, लेकिन आप सब लोग फेमिलियर हैं इस एक टर्म से, स्मार्ट वेयरेबल्स से, कि किस तरीके से हम जो है स्मार्ट बैंड्स पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, स्मार्ट क्लोथिंग आ गई है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेजर भी करती है और साथ साथ हमें काफी ट्रेंडिंग लुक भी देती है। सो या वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ बदला है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है ये सस्टेनेबिलिटी, एंड ये चीज अगेन हर एक सेगमेंट में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की वजह से लिटरली मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है, लोग अब जागरूक हो गए हैं। चाहे आप बात करें Tier 1 की, चाहे आप बात करें Tier 2 की, चाहे आप बात करें Tier 3 की, किसी भी पर्टिकुलर आप क्राइटेरिया को यहाँ पर पिक करें, आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जाने लगी है। क्योंकि सिटीजन्स को अभी समझ आ गया है कि मदर नेचर को बचाना है हमें, और ये सब कुछ हमें करना होगा बाय जस्ट सिंपली शिफ्टिंग आवर चॉइसेस। तो इसलिए शायद कंपनीज भी अभी से एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स है फैशन टेक मार्केट के इंडिया में। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स की, कि कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंडस्ट्री ग्रो हो पा रही है, मतलब टूल्स की बात करेंगे। पर फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का, क्योंकि अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील गुड।

जैन फकीरों में, जैन परंपरा में इस तरह के विचार चलते हैं। हर शिष्य अपने ढंग से धन्यवाद देता है जब ज्ञान को उपलब्ध होता है। कभी कभी तो बड़ी अजीब घटनाएं घट जाती। एक युवक बोकोजू अपने गुरु के पास वर्षों रहा ध्यान की समाधि की तलाश, और जब भी वो कुछ खबर लेके जाता कि बड़ा अनुभव हुआ कि गुरु उसपे चांटा रसीद कर देता। ये पहले तो बहुत चौंकता था, फिर समझने लगा, औरों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा जो पहले से ऐसे गुरु के चांटे खाते रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी कृपा है, वो मारते ही तब जब उसकी कृपा होती, किसी पे नहीं तो वो मारते ही नहीं, फिजूल पे तो वो खर्चे ही क्यों करे, एक चांटा भी क्यों खर्च करे, तुम पे उसकी बड़ी कृपा है। और वो मारता है इसलिए कि तुम जो भी ले जाते हो वो अभी सच नहीं है, काल्पनिक है। कभी वो पहुंच जाता कि बड़े प्रकाश का अनुभव हुआ गुरुदेव और एक चांटा, कि कुंडलनी जग गई गुरुदेव और एक चांटा, कि चक्र खुलने लगे और वो चांटा, वो जो भी अनुभव ले जाता और चांटा खाता, तब तो उसे भी समझ में आने लगा कि बात तो सब ये सब तो काल्पनिक जाल ही है। जहां तक किसी चीज का अनुभव हो रहा है वहां तक अनुभव हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी अनुभव हो रहा है वो तुमसे अलग है। कुंडलनी जगी तो तुम तो देखने वाले हो, तुम तो कुंडलनी नहीं हो। वो जो देख रहा है भीतर की कुंडलनी जग रही, वो तो कुंडलनी नहीं हो सकता ना, कुंडलनी तो विषय हो गई। जिसने देखा कि भीतर तीसरी आंख खुलने लगी, वो तो तीसरी आंख से भी उतना ही दूर हो गया जितनी इन दो आंखों से दूर है, वो तीसरी आंख भी अलग हो गई। जिसने देखा कि भीतर कमल खिलने लगा, वो देखने वाला तो कमल नहीं हो सकता ना, वो देखने वाला तो पार और पार और पार। उसका तो पता तब चलता है जब न कमल खुलते न प्रकाश होता, न कुंडलनी जगती, न चक्र घूमते, कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा छा जाता है, अनुभव में कुछ आता ही नहीं, सिर्फ वही बच जाता है साक्षी, उस शून्य का साक्षी रह जाता है। ऐसा कहते हैं 20 साल तक बोकुजू ने चांटे खाए, और आखिरी बार जब वो आया तो पता है कैसे उसने धन्यवाद दिया, आके एक चांटा अपने गुरु को जड़ दिया। गुरु खूब हंसा, कहते हैं गुरु लोटा, प्रसन्नता में लौटा, उसने कहा तो हो गया आज तो, धन्यवाद कैसा होगा कहना मुश्किल है। ये ठीक धन्यवाद था, 20 साल चांटे खाने के बाद आज कुछ कहने को था भी नहीं। जैन परंपरा अनूठी है, फकीरों की सारी परंपराएं अनूठी। मैं एक जैन फकीर के संस्मरण पढ़ रहा था। वो फकीर अमेरिका गया हुआ था और वहां एक हिंदू सन्यासी से निमंत्रण मिला कि मुझे मिलने आओ। पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हिंदू सन्यासी और कोई नहीं, बाबा मुक्तानंद होने चाहिए। नाम उसने नहीं लिखा है लेकिन हुलिया और ढंग जो वर्णन किया है वो मुक्तानंद का, और ये भी लिखा कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते। मुक्तानंद ने बुलाया होगा, निमंत्रण दिया फकीर को आने को। फकीर आया तो मुक्तानंद बैठे एक ऊंचे सिंहासन पर और उसके नीचे एक आसनी बिछा दी फकीर के लिए। मुझे लगा कि मुक्तानंद ही होने चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने यही किया, मुझे भी बहुत निमंत्रण दे देकर बुलाया। और जब मैं गया तो वो एक आसन पर बैठे और एक आसनी नीचे रख दी उन्होंने बैठने के लिए। फकीर बैठ गया, मुक्तानंद ने कुछ मिठाई फकीर को भेंट की, तो फकीर के साथ एक शिष्य आया था, उसने कहा कि नहीं वो मिठाई नहीं लेंगे, उन्हें डायबिटीज है। तो मुक्तानंद ने कहा कि डायबिटीज तो 3 मील सुबह पैदल चलो, आसन व्यायाम करो तो ठीक हो जाएगी। अब ये बिल्कुल अंधेपन का सबूत है क्योंकि आदमी जो सामने बैठा है वो परम दशा में, उसको ये बताना कि 3 मील पैदल चलो, आसन व्यायाम करो, योगासन सीख लो, मूढ़ता का लक्षण। वो फकीर हंसा, उसने कहा डायबिटीज बड़ी प्यारी है, भगवान की देन, ये सब अनुवाद किया जा रहा है, एक मुक्तानंद की शिष्या अनुवाद कर रही है। मुक्तानंद हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और वो जो फकीर अंग्रेजी में बोल रहा है वो हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। तब मुक्तानंद ने कहा कोई जिज्ञासा, अभी तो उसको बुलाया खुद, अब उससे पूछते हैं जिज्ञासा, कुछ पूछो, कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो हल कर दे। तो उस फकीर ने जैन ढंग से कहा कि ईश्वर है या नहीं, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, और अगर कहा नहीं है तो
तो भी एक तमाचा मारूंगा। बोलो। वो जो अनुवाद कर रही थी महिला वो तो बहुत घबरा गई कि ये कोई बातचीत, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, अगर कहा नहीं है तो भी एक तमाचा मारूंगा, बोलो। तो वो महिला तो थोड़ी घबराई कि इसका अनुवाद करना कि नहीं, और उसने भी चौंक के देखा कि ये बात क्या है। उस फकीर ने कहा अनुवाद कर नहीं तो तू नाहक पिटेगी। तो घबरा के उसने अनुवाद कर दिया। जब ये अनुवाद मुक्तानंद ने सुना तो वो तो बहुत घबरा गया कि ये कौन सी तत्व चर्चा है। तो उन्होंने कहा आप कोई दार्शनिक नहीं मालूम होते, ये कौन सी तत्व चर्चा है, मगर ये तत्व चर्चा है। जिन फकीर ये कह रहा है कि हां कहो तो गलत, ना कहो तो गलत, क्योंकि हां कहो तो द्वैत आ गया, ना कहो तो द्वैत आ गया, दोनों हालत में चांटा मारूंगा, अगर हां कहा तो चांटा मारूंगा, ना कहा तो चांटा मारूंगा। वो ये कह रहा है कि दोनों हालत में तुमने गलती की, क्योंकि परमात्मा के संबंध ना तो हां कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है, चुप्पी ही मौन ही एकमात्र सही उत्तर है। लेकिन इससे तो बात बिगड़ गई, ये चांटा मारने की बात तो कुछ जची नहीं। तो जिन फकीर ने लिखा अपनी डायरी में कि बाबा ने जल्दी से घड़ी देखी और कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है, बस सत्संग समाप्त हो गया। हर परंपरा के अपने ढंग होते, लेकिन परंपरागत ढंग सीख लेने से कुछ सार नहीं है। तिब्बत में जब ज्ञान हो जाए तो एक ढंग होता है गुरु को धन्यवाद देने का, लेकिन अगर ढंग सीख रखा परंपरा से तो ढंग ही झूठा है, ये काम थोड़ी आएगा। तो तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे धन्यवाद दोगे, तुम तो इसकी ही फिक्र करो। धन्यवाद की क्या फिक्र है, ना भी दिया तो चलेगा। पूछा है स्वामी स्वरूप सरस्वती ने, और मैं तुमसे कह देता हूं धन्यवाद दिया तो एक चांटा मारूंगा और नहीं दिया तो भी मारूंगा। धन्यवाद की तो फिक्र छोड़ो, परमात्मा को पा लेने का सवाल है। उसको पा लिया तो धन्यवाद हो गया, तुम आओगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम बैठोगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम ना आए तो भी धन्यवाद आ जाएगा। तुमने कहा कि नहीं कहा फिर अर्थहीन है, तुम्हारा होना कह देगा। जब गुरु देखता है कि किसी शिष्य को हो गया तो क्या तुम सोचते हो तुम बताओगे तब उसे पता चलेगा, तो गुरु ही नहीं है। तुम्हारे बताने से पता चला तो फिर क्या खाक गुरु। सच तो यह है कि जब तुम्हें होगा तुम्हारे होने के पहले, तुम्हें पता चलने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि हो रहा। रिंझाई के संबंध में ऐसी कहानी है कि जब उसे ज्ञान हुआ तो रात के 2 बजे थे, बैठा था ध्यान में, अचानक सब द्वार दरवाजे खुल गए। कर रहा था मेहनत कोई 12 वर्षों से, जब द्वार दरवाजे खुल गए 2 बजे रात, तो उसके मन में ख्याल आया कि जाऊं और अपने गुरु के चरणों में सिर रखूं, लेकिन 2 बजे रात उनको जगाना नींद तो ठीक नहीं। जब उसने ऐसा सोचा तो हैरान हुआ कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजा खोला तो गुरु सामने खड़े। गुरु ने कहा तो अरे ना समझ, तू क्या सोचता था कि तुझे ज्ञान होगा और हम सोए होंगे, इतनी बड़ी घटना घट रही हो, जब तेरे साथ साथ जोड़ दिया तो सब तरह जुड़ गए, तुझे इतनी बड़ी घटना घट रही हो और हम सो सकते, और क्या तू सोचता है तुझे पहले पता चलेगा फिर हमें पता चलेगा। तुम चकित होगे जान के कि पश्चिम में बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, माँ और बेटों के बीच में कोई एक अज्ञात सूत्र रहता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो जुड़ा रहता है, बच्चे की नाभि माँ के पेट से भौतिक रूप से जुड़ी रहती है, डॉक्टर उसे काटता है, लेकिन एक और कोई स्वर्ण सूत्र है जो जुड़ा ही रहता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। इस पर बहुत प्रयोग चले, विशेषकर सोवियत रूस में बहुत प्रयोग हुए हैं और बड़ी हैरानी के परिणाम आए। वो प्रयोग ये है कि अगर बेटे और माँ में बहुत लगाव हो तो तुम 1000 मील दूर ले जाके बेटे को सताओ, माँ को अनुभव होने लगता है कि बेटा सताया जा रहा, उसे कुछ तकलीफ शुरू हो जाए, वो बेचैन होने लगती। फिर आदमी तो बहुत विकृत हो गया है, इसलिए पशुओं पर प्रयोग किए गए। एक बिल्ली को ऊपर छोड़ दिया गया घाट पर और उसके छोटे बच्चे को एक पनडुब्बी में समुद्र की गहरी सतह में ले जाया गया मील भर नीचे, और ये जो ऊपर बिल्ली छोड़ी गई है इस पर सब यंत्र लगा के रखा गया है कि इसके मन की दशा का पता चलता रहे, कभी ये परेशान होती बेचैन होती छोटी सी भी बेचैनी। और जैसे ही उस बच्चे को नीचे सताया गया, उसकी गर्दन मरोड़ी गई कि
कि वो एकदम परेशान होने लगी। एक मील का फासला, पानी की अतल गहराई में बच्चा, जैसे उसकी गर्दन छोड़ी गई वो फिर ठीक हो गई, फिर गर्दन दबाई गई वो फिर परेशान हो गई। फिर तो इसको बहुत प्रयोग किए गए और ये अनुभव में आया कि जहां प्रेम है वहां एक स्वर्ण सूत्र जोड़े रखता है। तो ये तो माँ और बेटे की बात है, तुम गुरु और शिष्य की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि ये प्रेम तो कुछ भी नहीं है उस प्रेम के मुकाबले। ये तो शरीर का ही प्रेम है। गुरु और शिष्य के बीच तो एक आत्मिक नाता है, आत्मा का एक संबंध है। जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा तुम सोचते हो, तुम्हें पहले पता चलेगा तो तुमने गलत ही सोचा। तुम्हारे गुरु को तुमसे पहले पता चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें धन्यवाद देने का गुरु मौका न दे, तुम्हें तुम्हारे धन्यवाद देने के पहले धन्यवाद दे दे। इस चिंता में पड़ो मत, असली चिंता दूसरी ही है कि कैसे उसे पालो। धन्यवाद गैर धन्यवाद तो शिष्टाचार उपचार की बातें। पांचवा प्रश्न, कभी आप कहते हैं अकेलापन स्वभाव है, कभी आप कहते हैं स्वतंत्रता स्वभाव है, कभी आप कहते हैं प्रेम स्वभाव है, कभी आप कहते हैं आनंद स्वभाव है, कृपा करके समझाएं। मैं जो भी कहता हूं वह एक ही है, बहुत ढंग से कहता हूं। समझो, जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है तो मैं कह रहा हूं ये मार्ग ध्यान का, अकेलापन यानी ध्यान, अकेले रह गए, असंबंधित, असंग, कोई दूसरे की धारणा ना रखी, पर को भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए क्योंकि वो भी पर, वो भी दूसरा, अकेले रह गए, बिल्कुल एकांत में रह गए। जैन बौद्ध इस तरह चलते, अकेले रह गए, इसलिए उनके मोक्ष का नाम कैवल्य, बिल्कुल अकेले रह गए, केवल चेतना मात्र बची। अकेलापन स्वभाव है, जो अकेला हो गया तो दूसरी बात उसमें से निकलेगी, स्वतंत्रता स्वभाव है। जब तुम अकेले रह गए तो तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुम्हें कोई परतंत्रता ना रही क्योंकि कोई पर ही ना रहा, दूसरे पर निर्भरता ना रही, तुम मुक्त हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारा अपना स्वच्छंद तुम्हें उपलब्ध हो गया, तुम अपना गीत गुनगुनाने लगे, अब तुम उधार गीत नहीं गाते, अब तुम दूसरे की छाया की तरह नहीं डोलते, अब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, अब तुम अपने भीतर से, अपने केंद्र से अपने जीवन का रस बहाने लगे, तो स्वतंत्र हुए। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं प्रेम स्वभाव है, जो स्वतंत्र हो गया और अकेला हो गया वही प्रेम देने में सफल हो पाता है, क्योंकि उसी के पास प्रेम देने को होता है। तुम तो प्रेम दोगे कैसे, तुम तो मांग रहे हो, दोगे कैसे, तुम तो चाहते हो कोई तुम्हें दे दे, तुम्हारे पास ही होता तो तुम मांगते क्यों, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तो मांगते हो। हम वही तो मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो स्वतंत्र हो गया, एकांत में डूब गया, अपनी मस्ती में खो गया, उसके पास प्रेम होगा, वो प्रेम बांटेगा, लेकिन उसका प्रेम तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं होगा, वो देगा बेशर्त, वो किसी को भी देगा, वो ये भी नहीं कहेगा किसको दूं किसको ना दूं, उसकी कोई सीमा ना होगी, वो बांटेगा, वो उलीचेगा, जैसे एकांत में खिला हुआ फूल अपनी सुगंध को हवाओं में बिखेर देता, किसी को मिल जाए ठीक न मिले ठीक, किसी के प्रयोजन से नहीं बिखेरता, सुगंध में किसी का पता नहीं लिखा होता कि फलाने के घर जाना, कि मेरी प्रेसी वहां रहती है सुगंध वहां जाना, कि मेरा प्रिय वहां रहता है वहां जाना, बिखेर देता जिसको मिल जाए, फूल खिल गया अब उसको क्या प्रयोजन। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया उसका प्रेम खिल जाता है, उसका फूल खिल जाता है, और जिसका फूल खिल जाता है चौथी बात आनंद स्वभाव है, जिसका फूल खिल गया वो आनंदित है, बिना भीतर के फूल के खिले कब कोई आनंदित हुआ है। तो जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, स्वतंत्रता स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, तो मैं एक मार्ग की बात कर रहा हूं, वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। उसमें अकेलापन पहले आता, फिर स्वतंत्रता आती, फिर प्रेम आता, फिर आनंद आता। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में प्रेम पहले आता, प्रेम स्वभाव है, परमात्मा के प्रति इतने अनन्य प्रेम से भर जाना है कि तुम्हारा मैं भाव समाप्त हो जाए, तुम्हारा मैं समर्पित हो जाए। और जिसके जीवन में प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया, ऐसी प्रार्थना आ गई कि अपने अहंकार को उसने सब भांति समर्पित कर दिया, उसके जीवन में अनिवार्य रूपेण आनंद आ जाएगा,
जो रहा ही नहीं, मैं ही ना बचा, वहां दुख कहां। अहंकार दुख है, अहंकार दुख की तरह सालता है, सूल है, जहर है। जहां अहंकार गिर गया भक्त का, वहीं आनंद आ गया। और जहां आनंद आ जाता है वहां दूसरे की कोई जरूरत नहीं रही। दूसरे की जरूरत तो दुख में रहती। तुम जब दुखी होते तब तुम दूसरे को तलाशते हो, कोई मिल जाए तो दुख बटा ले। दूसरे की जरूरत ही दुख में पड़ती है। जब तुम आनंदित हो तब क्या दूसरे की जरूरत है। तो जो व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध हुआ, आनंद को उपलब्ध हुआ, वो अकेलेपन को उपलब्ध हो जाता है। उसको कोई जरूरत नहीं दूसरे की। और जो अकेला है वही स्वतंत्र है, वही स्वच्छंद है। तो ये दूसरा सूत्र भक्ति का प्रेम स्वभाव है। प्रेम से पैदा होता आनंद, आनंद स्वभाव है, आनंद से पैदा होता एकाकीपन, अकेलापन, एकांत। तो अकेलापन स्वभाव है, और अकेलापन यानी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। किसी भी मार्ग से चलो, दो ही मार्ग है। या तो शुद्ध रूप से अकेले बचो तो तुम पहुंच जाओगे, या अपने को बिल्कुल गमा दो, खो दो, तो तुम पहुंच जाओगे। या तो मिट जाओ तो पहुंच जाओगे, शून्य हो जाओ तो पहुंच जाओगे, या पूर्ण हो जाओ तो पहुंच जाओगे। जैन और बौद्ध चलते हैं ध्यान से, अकेले हो गए, मैं को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, परिपूर्णता पर लाते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई चलते हैं प्रेम से, अपने को समर्पित करते हैं। समर्पण में अहंकार धीरे धीरे खो जाता है, रेखा भी नहीं बचती। जिस दिन अहंकार खो जाता है उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। छठवां प्रश्न, लाओसु जब अपना देश छोड़कर जा रहे थे तब देश के राजा ने उन्हें कहलाया कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी चुंगी चुकाए बिना आप नहीं जा सकते। उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा है कि जब तक आप संबोधि का दान औरों को नहीं देते तब तक आप भी मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह संदेह रहित बात है प्रभु, पूछा है बोधि धर्म ने। संदेह तो थोड़ा रहा होगा, नहीं तो पूछते नहीं। संदेह रहित बात में पूछना क्या, थोड़ा संदेह होगा। उसी संदेह के कारण ये भी कहा है कि संदेह रहित बात है, नहीं तो ये भी ना कहते। बात प्यारी है, बात महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लाओसु को रोका था देश के राजा ने क्योंकि वो बिना एक पंक्ति लिखे अपने अनुभव की भागा जा रहा था, हिमालय में जा रहा था। उसने चुन रखा था कि जाके हिमालय में ही कब्र बने, इससे सुंदर जगह मरने को और हो भी क्या सकती। तो चीन छोड़ के जा रहा था, दक्षिण की तरफ भाग रहा था। उसको राजा ने रुकवा लिया। राजा भी बड़ा समझदार रहा होगा, इतने समझदार राजा मुश्किल से होते। राजा और समझदार, जरा ये बात सांस सांस घटती नहीं। समझदार राजा होगा, उसने खबर भेजी, पुलिस के आदमी दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए, और उसको ठीक सीमा पर रुकवा लिया, चुंगी चौकी पर, जहां से बाहर जाने के लिए आखिरी दरवाजा था। और रुकवा तो उसने कहा कि जब तक तुम लिख न जाओगे जो तुमने जाना, उसने जिंदगी भर लिखा नहीं, और जब भी लोगों ने पूछा टाल दिया, और जब भी बहुत लोगों ने कहा तो इतने ही कहा कि सत्य कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजा ने कहा तुम छोड़ के ही जा रहे हो देश, तो अब बिना कहे ना जा सकोगे, लिख दो जो भी जाना है फिर जा सकते हो, अगर नहीं लिखा तो बाहर ना निकलने दूंगा। उसे जाना तो जरूर था, मजबूरी में वो चुंगी चौकी पर ही 3 दिन रुका, और उसने अपनी अद्भुत किताब ताओ ते किंग लिखी। 3 दिन में लिखी थी, छोटे से सूत्र, जल्दी से उसने लिख लिखा के दे दिया। पहला ही सूत्र उसने लिखा कि सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखकर आगे कहता हूं। तो उसने पहले ही साफ कर दिया मामला, उसने चुंगी चुका दी, मजबूरी थी इसलिए चुकानी पड़ी, वो भाग गया, फिर निकल गया। तुम कहते हो कि जैसा लाओसु को उस देश के राजा ने चुंगी चुकाए बिना नहीं जाने दिया, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा। यहाँ जरा बात उल्टी, परमात्मा ने मुझे रोक के नहीं रखा है, परमात्मा को मैं रोक के रखा हूँ कि जरा दरवाजा भी मत खोलना। जहाँ तक चुकाने का सवाल है, मैंने मूलधन भी चुका दिया है, ब्याज भी, चक्रवृत्ति ब्याज भी चुका दिया है, जितना लिया था उससे बहुत ज्यादा चुका दिया है, इसलिए परमात्मा मुझे रोके ये तो सवाल ही नहीं। मैं ही रोक के बैठा हूँ कि जरा और थोड़ा बांट दू। मेरे जाने की नाव तो आके किनारे लगी खड़ी, मैं ही समझा बुझा के रोक रहा हूँ माझी को, गिजरा और ये थोड़े लोग और आ गए हैं, इनको थोड़ा और समझा। आखिरी प्रश्न,
भगवान आपने चमचे और चमचा

सकते हो। इससे ज्यादा ठीक मौजूद शब्द इस बात को कहने के लिए दूसरा नहीं है, इसलिए शब्द सार्थक है। और तुम सोचते हो नया है तो तुम गलती करते हो। आदमी जितना पुराना है उतना ही पुराना है। कभी कुछ और कहा होगा, कभी कुछ और कहा होगा, लेकिन चमचा गिरी पुराना शास्त्र वेद से भी ज्यादा पुराना। अगर तुम वेद में भी खोजोगे तो तुम्हें चमचागिरी मिलेगी। इंद्र की प्रशंसा चल रही, स्तुति चल रही, वो भी भय के कारण, घबराहट के कारण, लोभ के कारण कि करोगे प्रशंसा तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। स्तुति चल रही है, स्तुति पुराना शब्द है, अब उसने अर्थ खो दिया। जब शब्द कोई प्रचलित होता है, लोक व्यवहार में होता, तब उसमें प्राण होते। अब चमचागिरी शब्द के लिए बस दूसरी एक शब्द है जो उसके करीब आता, हालांकि उतने करीब नहीं आता है, वह है मक्खन बाजी। लगा रहे हैं मक्खन। तो पहली तो बात यह कि मेरे लिए साधारण असाधारण कुछ भी नहीं है। शब्दों में क्या साधारण असाधारण, या तो सभी शब्द साधारण है, क्योंकि उसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता। सत्य तो किसी शब्द में नहीं आता, इसलिए सभी शब्द साधारण है, या फिर सभी शब्द असाधारण है, क्योंकि जो भी कहा जा सकता है वो सभी शब्दों में कहा जा सकता है। जो शब्द भी बोलते हैं, जिन शब्दों में भी वाणी है, वो सभी असाधारण है। मगर वर्गीकरण नहीं करूंगा। अच्छे और बुरे ऐसे शब्द नहीं है। अच्छे और बुरे तुम्हारी धारणा में तुम्हें तकलीफ हुई होगी, ये मैं मानता हूं। तुम्हें लगा होगा कि जिस व्यक्ति को तुम भगवान कहो उसने चमचे जैसे शब्द का उपयोग कर लिया, तो तुम अपने भगवान की धारणा को थोड़ा बदलो। तुम्हारे भगवान की धारणा रक्तहीन है, मुर्दा है। तुम अपने भगवान की धारणा में थोड़ा रक्त डालो, थोड़ा जीवन डालो। तुम्हारे भगवान की धारणा शाब्दिक है, कोरी है, प्रज्वलित नहीं है, उसे प्रज्वलित करो। बुझी बुझी आग नहीं है उसमें, तो तुम घबरा जाते हो। जरा सी एक छोटा सा शब्द और तुम घबरा गए, और फिर तुम्हारे भीतर एक गहरी आकांक्षा छिपी रहती है कि अगर मौका मिल जाए तो तुम मुझसे बदला ले लो। बदला इस बात का कि मैं तुम्हें रोज सलाह देता हूं। तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम मुझे सलाह देने का मौका नहीं चूकते। कोई मौका मिल जाए जिसमें तुम्हें मेरी भूल चूक मिल जाए तो तुम जल्दी से बताना चाहो। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि शिष्य को भी शिष्य होने में बड़ी अड़चन रहती है। बनता है शिष्य मजबूरी में, बनना तो गुरु चाहता है। सुना है एक सूफी फकीर के पास एक आदमी आया, और उस आदमी ने कहा कि परमात्मा को पाना है तो सूफी फकीर ने कहा शिष्य बनना पड़ेगा। तो उसने कहा शिष्य बनने में क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या करना होगा? तो फकीर ने कहा कि 3 साल तक तो पूछने ही मत, झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना, गायें चराना, घोड़ों की देखभाल करना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, इस तरह के काम। फिर 3 साल के बाद जो ठीक होगा हम बताएंगे। उसने कहा तो मामला जरा लंबा दिखाई पड़ता, 3 साल यही करना है तो, और गुरु का क्या कर्तव्य? शिष्य का तो ये कर्तव्य, गुरु का क्या कर्तव्य? तो गुरु ने कहा गुरु का कर्तव्य बैठे रहना मस्ती से, लोगों से कहना ये करो, वो करो, ऐसा करो, इसको वहां भेजो, इसको वहां भेजो। तो उसने कहा फिर ऐसा करे, मुझे गुरु ही बना दे, ये काम ज्यादा रुचता है। तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं कि तुम्हारे मन में भी गुरु बनने का भाव तो छिपा बैठा है। और कभी कभी मैं ऐसी बातें कहता हूं, मैं जानना चाहता हूं किस किस के भीतर गुरु भाव छिपा बैठा। मन को दुख हुआ, मन को दुख होने का कारण यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो मन को दुख हो जाता। तुम जैसी अपेक्षा रखते हो। और एक बात तुम खूब समझ लो कि मैं तुम्हारी कोई अपेक्षा कभी पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मैं तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने में उत्सुक ही नहीं हूं। तुम्हें पूरा कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता, और तुम्हें पूरा कर सकता हूं इसीलिए कि तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने लगूं तो तुम अधूरे रह जाओगे। अब तुम चुन लो, तुम्हारी अपेक्षाएं तो मुझे तोड़नी होंगी, जगह जगह से तोड़नी होंगी। तुम्हारी धारणाएं तो सब तरफ से उखाड़ देनी होंगी। तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे उस जगह ले आना है जब तुम्हारे भीतर कोई धारणा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निर्धारणा। उस घड़ी में क्रांति घटेगी, दिया जलेगा। लेकिन तुम छोटी मोटी बातों पर हिसाब लगा के बैठे हो। मैंने सुना एक साधु आटा मांगने घर के सामने रुका।

0: मंदिर गई थी, घर में बहू थी। उसने कहा महाराज आगे जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत मालूम होती थी साधु, फिर कुछ और बोला नहीं, और ज्यादा फजीहत कराना ठीक भी ना थी। वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौट रहा था तो मंदिर से लौटती हुई सास रास्ते में मिली। सास ने पूछा क्यों बाबा मेरे घर गए थे क्या? साधु के हाँ कहने पर उसने पूछा तो फिर बहू ने क्या कहा? सास ने कहा कि बहू ने कहा कि बाबा महाराज आगे जाओ, कहीं और जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत है। सास एकदम गुस्से में आ गई। उसने कहा वह कौन होती है मना करने वाली? मेरे रहते वो है कौन मना करने वाली? घर का मालिक कौन है? तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा कि जब बुला के ले जा रही तो कुछ देगी भी। दोनों जब घर पहुंच गए तो सास ने गुस्से में बहू से पूछा, बहू तुमने महाराज को आटा देने से मना किया था, मेरे रहते तू कौन है मना करने वाली? माफी मांग साधु महाराज से। बहू ने माफी मांगी। साधु तो बड़ा खुश हुआ। और जब बहू माफी मांग चुकी तो सास ने कहा महाराज जाओ, अब मैं कहती हूँ कहीं आगे जाओ। औपचारिकता पूरी कर दी, अब मैं कहती हूँ कहीं और आगे जाओ। बहू कौन है कहने वाली? औपचारिकता तो उलझे हो तुम अगर मेरे पास तो तुम्हारी दशा दयनीय। औपचारिकताएं छोड़ो, यहाँ कोई शिष्टाचारों के नियम पूरे नहीं किए जा रहे, यहाँ किसी क्रांति की तैयारी हो रही है। बड़ा झंझावात है, उसमें बहुत कुछ उखड़ जाना है, तुम्हारे सब नियम धर्म उखड़ जाने। फिर अगर देखने की क्षमता हो तो हर चीज में कुछ अर्थ दिखाई पड़ेगा, और देखने की क्षमता ना हो तो बड़े बड़े शब्दों में भी कुछ नहीं। तुम्हारे विचार के लिए ये बटरिंग व्रत कथा तुमसे कहता हूं। मंगलम इमीजिएट वासे मंगलम बटरिंग गिरता है, मंगलम चमचाए चम्पी, मंगलम फल प्राप्ता है, अथ चमचाए उबाचा। जीह के श्रव नहीं मात्र से कटहि कलेश विकार, तेहि बटरिंग व्रत की कथा सुनहु क्लर्क नर नारी। हंसा भूखे मर रहे कौओं के हैं ठाट, हरिश्चंद्र की हो गई आज खड़ी फिर खाट। एक पंक्ति में दे रहा बटरिंग व्रत का सार, मक्खन मालिश के बिना है ये व्रत बेकार। जो भी तेरा है ऑफिसर उसके पांव पकड़ ले प्यारे, उसकी पत्नी के चरणों को उनके सांस जकड़ ले प्यारे। आते हुए सलाम मार दे, जाते हुए सलाम मार दे, बिछा पलंग पर चद्दर दरिया, पहुंचा सब्जी की टोकरिया, त्योहारों पर भेज मिठाई, उपहारों की कर सप्लाई। कुछ ही दिन ऐसा करने से तुझे तरक्की मिल जाएगी, तेरी किस्मत की ये खिड़की खुलते खुलते खुल जाएगी। बटरिंग की महिमा अनंत मौसो लिखी न जाए, सुख भोगई इही लोक नर अंत बास पद पाए। बटरिंग व्रत की कथा को विरचित कभी बेचैन, पढ़ें सुनें जे क्लर्क जन, चैन करें दिन रैन। इति श्री क्लर्को खंडे बटरिंग व्रत कथायाम अंतिमो अध्याय श्री हरे नमः।
1: एक बार भगवान कपिलवस्तु गए, उनके शिष्यों में एक स्थिर अनुरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी। उसके परिवार के सभी लोग स्थिर अनुरुद्ध को मिलने आए लेकिन रोहिणी नहीं आई। अनुरुद्ध चिंतित हुए, उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया। वह आई भी तो मुंह ढक कर आई। स्थिर अनुरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए, उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं, अब आई भी है तो मुंह ढक कर आई है, इसका कारण क्या है? रोहिणी ने कहा मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है, सारे चेहरे पर फफोले हो गए, मैं छवि रोग से पीड़ित हूं, इसलिए पहले आई नहीं लज्जावश। आपने बुलाया तो आई हूँ, लेकिन मुंह ढक कर आई हूँ। ये मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। स्थिर अनिरुद्ध ने उससे कहा, छोड़ इसकी फिक्र, भगवान का आगमन हुआ है, उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं, उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है, तो उस भवन को बनाने में लग जा। रोहिणी के पास इतने रुपए थे भी नहीं, लेकिन उसने अपने सारे जवाहरात, अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई। भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को, और आश्चर्य की घटना घटी कि निवास बनवाते बनवाते ही 99% रोग अनायास ठीक हो गया। लेकिन वह अभी भी भगवान के दर्शन को नहीं आई थी। तब भगवान ने उसे बुलवाया और पूछा, क्यों नहीं आई? उसने कहा, बनते मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था, उसी से लज्जित होकर नहीं आई। अब स्थिर अनुरुद्ध की दवा से 99% तो ठीक हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। ये कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं? इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूं, क्षमा करें। भगवान ने पुनः पूछा, जानती हो ये किस कारण हुआ? नहीं बनते, वह बोली। भगवान ने कहा, रोहिणी, तेरे क्रोध के कारण, यह अत्यंत क्रोध का फल है, और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है। और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है। तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था। भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल गई अपने को, तेरा अहम भाव विस्मृत हो गया, तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की, बचने की जगह ना रही। इसलिए देख, रोग अपने आप दूर हो चला है। लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो, लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है, इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तूने की, लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की है, मूर्छा ने की है, भाई ने कहा है इसलिए की है, तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है, इसलिए 1% बच रहा है। जाग, जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर, और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूल के भुला दिया है उसे जान के ही त्याग दे। और कहते हैं इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया। तब भगवान ने ये गाथाएं कही। आज की पहली 4 गाथाएं रोहिणी को कही गई थी। पहले तो इस कहानी को ठीक से समझ लें, ये अपूर्व है, इसमें पड़ा हुआ मनोविज्ञान गहरा है। मनस्विद जो अब खोज पा रहे हैं वे सारे सूत्र इसमें मौजूद हैं। पहली बात, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। 90% बीमारियों के आधार में मन है, इसलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती हैं, ठीक नहीं होती। एक बीमारी हुई, इलाज कर लिया, दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया, दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी, क्योंकि मन तो वही है, मन तो बदला नहीं, मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं। समझो ये रोहिणी किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होती, ये तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई। ये किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता, इसकी चमड़ी का इलाज करता। चमड़ी में रोग था नहीं, चमड़ी में केवल परिणाम था, रोग मन में था, मन का रोग चमड़ी पे फफोले होकर निकल रहा था, तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फफोले ठीक कर देता। ये भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता, इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता, तो ये रोग कहीं और से प्रकट होता। हाथों में छाजन हो जाती कि पैरों में लकवा लग जाता, कि आंखें अंधी हो जाती कि कान बहरे हो जाते, ये रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता। रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता। असल में जिसको हम रोग कहते हैं वो रोग नहीं है, रोग का लक्षण। साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है, महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुतः छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुमने भी देखा होगा, एक दफे बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं दिखता। किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है, कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरा घर कर लेती है। ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की, तुम एक से निपटे कि दूसरी बीमारी पकड़ती है। जब तक ठीक थे ठीक थे। इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती, कहावतें कहती हैं बीमारी अकेली नहीं आती, संग साथ में और बीमारियां लाती। दुख अकेला नहीं आता, साथ में भीड़ लाता है। इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है। इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं। समझो कि वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे, पूरे खिलते नहीं, पूरे खुलते नहीं, हरियाली खो गई है। तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो, गुलाब जल का छिड़काव करो, तो भी कुछ बहुत होगा नहीं। जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मनुष्य यानी जो मन में रुपा है, मन में गड़ा है। उर्दू का शब्द है आदमी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है। उसमें जो अर्थ भी है वो छिछला है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी, जो मिट्टी से बना है उसको कहते आदमी, क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूंक दी, इसलिए उसका नाम आदम। फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी। आदमी मिट्टी से बना है, मतलब आदमी देह है। हमारी पकड़ इससे गहरी, हम कहते मनुष्य। अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतर है, वो भी महत्वपूर्ण है। हम कहते मनुष्य, हम कहते मिट्टी नहीं है आदमी। आदमी है मन, आदमी है विचार, आदमी है उसका मनोविज्ञान। जैसे ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है, वो असली बात नहीं। असली बात तो भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म रूप है। मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गड़ी। लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही है। आधुनिक खोजें ये बात स्वीकार करने लगी कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं है, ना तो शरीर पर शुरू होता है ना शरीर पर समाप्त होता है। शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है। फिर हम ये भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता, हम कहते मन में गड़ा है तो मन से भी पार। इसलिए आदमी है तो आत्मा। अब इन तीन शब्दों को ठीक से लेना, आत्मा मन देह। मन दोनों के बीच में, मन को तुम शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो। मन के जोड़ का सारा खेल है। आत्मा भी तुम्हारे भीतर है, शरीर भी तुम्हारे पास है, बीच में डोलता हुआ मन है। इसलिए मन सदा डोलता है, डमाडोल रहता है, मध्य में लहरें लेता रहता है। अगर तुम्हारा मन शरीर की छाया होकर चलने लगे तो तुम संसारी, अगर तुम्हारा मन आत्मा की छाया होकर चलने लगे तुम सन्यासी। कुछ और फर्क नहीं है। मन अगर अपने से नीचे की बात मानने लगे तो संसारी, मन अगर अपने ऊपर देखने लगे तो सन्यासी। सन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता है। मन तटस्थ है, मन की अपनी कोई धारणा नहीं है। मन ये नहीं कहता ऐसा करो, तुम पर निर्भर है। तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो शरीर की गुलामी करता रहेगा। मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम है, उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं। तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो, वो आत्मा की सेवा में लग जाएगा। तुम उसे लोभ में लगा दो वो लोभ बन जाएगा, तुम उसे करुणा में लगा दो वो करुणा बन जाएगा। सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगाते हैं। और ख्याल रखना, जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर ले जाती, सीढ़ियां तो वही है। ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हों, एक जगह हों, और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो। ऐसा समझो कि किसी मकान की सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो, एक आदमी ऊपर से नीचे उतर रहा है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो, 30 सीढ़ियां हैं, 15वीं सीढ़ी पर तुम दोनों का मिलना हो गया, तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, कोई नीचे की तरफ आ रहा है, 15वीं सीढ़ी पर तुम खड़े हो, दोनों एक ही जगह खड़े हो, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हो, क्योंकि एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगोगे, कोई तो फर्क नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ी तो 15वीं होगी, स्थान तो वही होगा, लेकिन फिर भी गहरे में फर्क, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, दिशा में फर्क, उन्मुखता भिन्न भिन्न है। जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार, और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है, रामोन्मुख हो जाता है, तो सन्यास। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे, एक ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ मालूम पड़े, फिर भी अगर उनकी दिशाएं अलग हैं, उनकी आंखें अगर अलग दिशाओं में देख रही, तो वे भिन्न हैं, मौलिक रूप से भिन्न हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक हम मन को स्वस्थ न कर लें, तब तक शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती। इसलिए पश्चिम में एक नए तरह की चिकित्सा पैदा हो रही, साइकोसोमेटिक। शरीर और मन दोनों का इलाज साथ साथ होना चाहिए, और शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का इलाज। बीमारी अगर मन में हो और शरीर पर केवल उसकी छाया पड़ती हो, तो तुम छाया को पोंछते रहो, मिटाते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। मन से हट जाए तो शरीर तत्क्षण स्वस्थ हो जाएगा। तो इस कहानी का पहला तो यही अद्भुत अर्थ कि यह जो रोहिणी है, यह अत्यंत अहंकारी रही होगी। अहंकार स्त्री को होता है तो रूप का होता है, आदमी को अहंकार होता है तो नाम का होता है। दो ही अहंकार है, नाम रूप। इसलिए माया के सारे संसार का हमने एक ही अर्थ किया है, नाम रूप। रूप का अर्थ होता है देह, नाम का अर्थ होता है सूक्ष्म मन। मनुष्य का अगर वो पुरुष है तो बहुत लगाव होता है नाम से, प्रतिष्ठा, पद, पदवी, यश, धन, ज्ञान, त्याग, कहीं नाम। स्त्री का आग्रह होता है रूप पर, सौंदर्य। मुल्ला नसुद्दीन मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई एक ब्यूटी पार्लर, एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई। मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहां खड़े तो रहता है, नौकरी क्या मिली, बाहर खड़ा रहता। उसने कहा यही मेरी नौकरी। मैंने कहा तेरा काम क्या? उसने कहा काम भी बड़ा सरल है, ऐसे बड़ा सूक्ष्म। फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है, मैं जब देखता हूँ वहीं तू खड़ा है बाहर। तो उसने कहा काम मेरा ये है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती हैं, जब वो भीतर जाती हैं, तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना, नजर भी नहीं डालना, देखना ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा। और जब वो सज धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलती हैं तो सीटी बजाना, ये मेरा काम है, ये मेरी नौकरी। इससे दुकान खूब चल रही, क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं, और अब बाल वाल संवार के बाहर आ रही तो सीटी बजा रहा वही आदमी, तो जरूर सुंदर होकर लौटी। स्त्री का सारा आकर्षण रूप में, इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की। इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं करती जिनसे नाम मिले, कि कोई बड़ी किताब लिखनी, कि मूर्ति बनानी, कि पेंटिंग बनानी, कि महाकाव्य लिखना, कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए, कुछ लेना देना नहीं। स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से। रोहिणी सुंदर स्त्री रही होगी, स्त्री थी, सौंदर्य पर उसकी पकड़ रही होगी। और ये जो अहंकार हो, जैसा भी हो अहंकार, चाहे रूप का चाहे नाम का, जहां अहंकार है वहां क्रोध है, क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है अहंकार को लगी चोट। तुम सोचते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो, किसी ने कह दिया कि क्या तुमने रखा ज्ञान, ज्ञान चोट लग गई। तुम सोचते हो कि तुम बड़े सज्जन हो और किसी ने कह दिया कि काहे के सज्जन, चोर बेईमान। तुम सोचते हो साधु हो, किसी ने कह दिया असाधु। तुमने सोचा कि सुंदर हो और किसी ने कह दिया असुंदर, तो चोट लग गई। तुम्हारी मान्यता को चोट लग जाए तो क्रोध पैदा होता है। तुम्हारी मान्यता को जो साथ दे दे उस पर बड़ा लगाव आता है। यही तो प्रशंसा से तुम इतने प्रशंसित होते हो। कोई कह दे कि हाँ तुम जैसा सुंदर और कौन, तुम बाग बाग हो जाते, तुम्हारी सब पखड़ियां खिल जाती, तुम खुश हो जाते। किसी ने तुम्हारे अहंकार को फुसलाया, राजी कर लिया। कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कह दो कि तुम सुंदर हो तो वो भी इनकार नहीं करेगी। वस्तुतः वो कहेगी कि तुम ही पहली दफा पारखी मिले, अब तक तो कोई पहचान ही ना पाया। मैं तो जानती ही थी, लेकिन पारखी चाहिए ना, हीरे तो पारखी होते तो पहचानते। तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी से कह दो कि तुम बुद्धिमान हो, बड़े बुद्धिमान हो, तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो, मैं तो बुद्धू हूं, वो भी नहीं कहेगा। पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित्त आदमी और कहां है, वो भी अंगीकार करता है। अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते हैं, और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं, यद्यपि वो है तो शत्रु, क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम बुरी तरह गिरोगे, जहां से ऐसे गिरोगे कि फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हें ऐसी जगह उठा रहा है जहां से गिरना सुनिश्चित है। अहंकार पर कोई भी फिर होकर रह नहीं सकता, वो जगह बारीक है, तुम्हें संभाल ना पाएगी, वहां से तुम गिरोगे। और आज जितने अहंकार से तुम्हारी तृप्ति हुई, कल और तुम मांगोगे और ज्यादा और ज्यादा। आखिर कब तक ये होगा? एक घड़ी आएगी कि तुम अपने ही अतिशय से गिरोगे, बुरी चोट खाओगे। जो जितने ऊपर अहंकार की चोटी पे चढ़ेगा उतनी ही बड़ी खाई में गिरने का खतरा मोल ले रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गिरती आने वाली है। और तुम चकित होगे कि जिन्होंने प्रशंसा की थी वही निंदा में मुखर हो जाते, वो बदला लेंगे। जब प्रशंसा की थी तब भी बेमन से की थी, तब भी करनी पड़ी थी, कोई प्रयोजन थी, कोई प्रयोजन था इसलिए की थी, तुमसे कुछ लाभ था, तुमसे कुछ निकालना था इसलिए की थी, बदला तो लेंगे। कोई भी प्रशंसा प्रशंसा की तरह थोड़ी करता है, उसका कोई प्रयोजन, उसे तुम्हारा शोषण करना है, उसका काम निपट जाएगा तो वही बदला लेगा। जिसने तुम्हें आकर खूब आह्लादित किया था वही तुम्हें गालियां देगा, तब दिल को और भी चोट लगेगी। अपने ही पराये हो गए ऐसा लगेगा, मित्र शत्रु हो गए ऐसा लगेगा। और कहावतें कहती दुनिया की कि जिसके साथ नेकी करो वही बदी करता है। नेकी इत्यादि तुमने की भी नहीं है, उसने तुम्हारी प्रशंसा की थी, तुमने कुछ उस प्रशंसा के कारण कर दिया था, वो नेकी नहीं थी, वो सिर्फ सौदा था। और उस आदमी को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ी थी, तुम्हारे सामने झुकना पड़ा था, इसलिए वो तुम्हें कभी क्षमा तो कर नहीं सकेगा, वो इसका बदला तो लेगा। जब भी अवसर आ जाएगा, ठीक समय होगा, वो बदला लेगा। तो रोहिणी को रूप का दंभ था, रूप के दंभ के कारण बहुत चोटें लगी होंगी, क्रोधित होती थी। अगर तुम्हें चोटें लगती हो तो एक बात ख्याल में ले लेना, चोट लगने का लक्षण अर्थ यही कि तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव बहुत गहरा है, जरा सी बात भी अखर जाती है। अगर तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा है और अपमान से बचने का भाव है तो तुम अहंकार का पोषण कर रहे हो। फिर इन क्रोध और अहंकार के बीच में उसे छवि रोग हो गया, चेहरा विकृत हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चमड़ी की रोग तो 99% मानसिक होते, सभी रोग 90% मानसिक होते, लेकिन चमड़ी के रोग तो 99% मानसिक होते, क्योंकि चमड़ी बड़ी संवेदनशील है और चमड़ी हमारी सबसे बड़ी इंद्री है। कान छोटा सा है, कान पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक ठीक लगाना पड़े तो ही चोट होगी। आंख छोटी सी है, आंख पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक लगना चाहिए। जीभ भी छोटी सी है लेकिन चमड़ी तुम्हारे पूरे शरीर को घेरे हुए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी इंद्री है। स्पर्श की इंद्री सबसे बड़ी इंद्री है, इस पर चोट बड़ी आसानी से लग सकती है, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मन की चोटें आंख पर भी लगती हैं, कान पर भी लगती हैं, जीभ पर भी लगती हैं, लेकिन वो तो उनकी मात्रा बहुत छोटी छोटी है। लेकिन शरीर की चमड़ी का फैलाव बहुत है, उस फैलाव के कारण चमड़ी पर सर्वाधिक मन की चोटें पड़ती हैं। और चमड़ी का कोई भी रोग किसी इलाज से ठीक नहीं होता, लेकिन मानसिक इलाज से ठीक होता है। चमड़ी इस अर्थ में भी विचारणीय है कि तुम्हारी और जो इंद्रियां हैं वो चमड़ी के ही विशिष्ट रूप है। कान है क्या? चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। और आंख है क्या? आंख भी चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। चमड़ी ने ही अपने एक हिस्से को देखने में कुशल बना लिया है, वो आंख हो गई। और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को स्वाद लेने में कुशल बना लिया है, वो तुम्हारी जीभ हो गई। और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है, नाक हो गई तुम्हारी सुगंध के लिए विशेषज्ञ। ये एक्सपर्ट है, ये चमड़ी की विशेषताएं, लेकिन है सब चमड़ी के ही खेल। बच्चा जब पहली दफे पैदा होता है, माँ के पेट में बढ़ता है, तो पहले तो चमड़ी आती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आंख उभरती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता, फिर चमड़ी में ही जनेन्द्रिय उभरती, फिर चमड़ी में ही जीभ नाक सब उभरते जाते, लेकिन सबसे पहले तो चमड़ी होती। तो चमड़ी बहुत मूल है और इसलिए स्पर्श बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो तत्क्षण स्पर्श करना चाहते हैं, हाथ में हाथ लेना चाहते हैं, गले से गले लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते हैं, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध की है और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते हैं। ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है तो भी तुम पाओगे हर आदमी अपने में सिकुड़ा खड़ा है, दूसरे को छूना नहीं चाहता। और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है अगर उसे तुम छू लो तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो। क्यों? छू लेने का अर्थ हुआ कि तुमने उसकी सीमा रेखा में प्रवेश कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए। ट्रेस पास हुआ, तुम दूसरे के घर में बिना आज्ञा मांगे घुस गए। जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसको छू ले तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो कि माफ करना, भूल हो गई, जान के नहीं किया है। और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम ट्रेन में खड़े हो और तुमसे सट के खड़ा हो जाए और क्षमा भी न मांगे और ऐसा भाव दिखलाए कि बड़ा प्रेम में तुमसे खड़ा है तो तुम अत्यंत नाराज हो जाते हो, तुम अत्यंत क्रोधित हो जाते हो, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छू पाते, वो अपने कुछ सिकोड़े खड़े होते हैं। कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे, अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी है, हम नहीं छू रहे। और हम एक सीमा बांध के रखते हैं। तुमने देखा कभी किसी के साथ तुम बात खड़े होकर बात कर रहे हो तो सदा तुम जांचोगे कि एक सीमा तक तुम उस आदमी को बर्दाश्त करते हो, अगर वो उससे ज्यादा करीब आ जाए तो तुम पीछे हट जाते। एक सीमा होगी, समझो कि 12 इंच, तो 12 इंच तक वो आदमी अगर तुम्हारे करीब आ जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं पैदा होती, कोई बेचैनी पैदा नहीं होती। 12 इंच के भीतर आना शुरू हो जाए, तुम्हारा बेटा हो तो ठीक, तुम्हारी पत्नी हो तो ठीक, तुम्हारा पति हो तो ठीक, लेकिन जिससे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं, वो अगर 12 इंच या 10 इंच के भीतर आने लगे तुम तत्क्षण पीछे हट जाओगे। वहां तुम्हारी एक अज्ञात सीमा है, चमड़ी का एक अज्ञात क्षेत्र है जहां तक उसकी तरंगें फैलती है। उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते, अशिष्ट मालूम होती है ये बात।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पॉन्स आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
1: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, इसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हूँ और फिर यूज़ करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट लाइन व्हिच सेज दिस ज्ञान वर्क्स, दैट्स द डे व्हेन आई से ओके नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, दिस इज एंड दिस इज गॉड। Even that, let's say the belief to the truth, वो जो journey है, because it starts with the belief कि ये ज्ञान जो है वो direct परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए truth कब बन जाता, when I see the transformation in myself, then I say कि you know जो देने वाला है वो जो doctor है, he is right because I'm getting cured,
0: right.
1: So it's a very big thing for any individual.
0: और शिवानी ऐसा बहुत से लोग मुझे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कहते जा रहे हैं कि मेरे में परिवर्तन देख रहे हो, लेकिन मैं शो पर हूँ
1: तो आपके अंदर सब परिवर्तन देख रहे हैं। I must tell you कि wherever I have gone and whoever I have met, everyone talks about you and everyone says कनुप्रिया को हम देखते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, एंड वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड यू मस्ट नो कि यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर बिकॉज दे सीइंग यू एंड दे से कि बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, एंड दे ऑल्सो फील देर इज अ चेंज इन द वे यू आर प्रेजेंटिंग द होल ज्ञान, सो दे से कि बिकॉज दे आर सीइंग यू एज द एग्जाम्पल ऑन विच द ज्ञान हैज वर्क्ड। सी इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस दिस कैन वर्क।
0: वेरी ट्रू, एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आए हुए, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। आप ही की तरह के गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
2: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, यू नो ये रिलीजियस टॉक नहीं है, कुछ और है। तो फर्स्ट एपिसोड देखा तो यू नो इट वॉज अ गुड थिंग, यू नो समथिंग डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये कहाँ क्या बोल के आ रहा है इन लोग, एंड देन आई फील के दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ, जो हमारी जिंदगी है हम उसे कैसे अलग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या यू नो इफ शी इज लुकिंग सो काम मैं ऐसे बन सकती हूँ, बिकॉज यू नो हमारे जिंदगी में इतनी उथल पुथल होती है ना, सो आई फील के ऑलराइट, देन आई थॉट के ओके ये एक ही बार होगा, तो कभी और यू नो अनदर डे और टू टाइम वापस सर्व करने के टाइम पे वही उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज अ डेली शो, यू नो दिस इज नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई. आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज डिफरेंट. ये जो कह रहे हैं ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग रोज जो आपके प्रोग्राम आते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ conquer your anger.
0: I know. That's the biggest thing.
2: Because that is such a immediate reaction. जब कुछ गड़बड़ होता है तो first reaction is anger, stress. क्या you know whether we have some sort of control over that situation. And every time a situation came जहाँ हम volatile हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या you know agitate हो जाते हैं, तो तब क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं, यू नो. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज़ सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर ज़रूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है, यू नो लाइक ओके एक बात को जब हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी यू नो थोड़ा वक्त देते हैं. ओके इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम, यू नो कि गर्मी ठंडी में सब काफ़ी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में सबके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इट्स रियली अ चैलेंज बट इट्स वेरी नाइस क्योंकि यू नो जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. आई डोंट नो आई फील इट दैट यू नो जब हम आराम से बात करते तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा.
0: We've been talking about it.
2: जब वो हमारे से गुस्से से बात कर फिर उस खुद को लगता है कि शी इज नॉट स्क्रीमिंग तो कोई जरूरत नहीं. और हमारे आदत है एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा करिए you know क्या हो रहा है, yeah, her reaction not spontaneous anymore. लेकिन I think they'll get used to it, I'm sure. At least I feel good.
0: No, but it's so beautiful, Samina, for you coming over and sharing this, which is actually so real. लेकिन पहला कदम आपने उठाया, that was so important. So, Shivani,
1: I think it would be nice if you share how did you actually get the gyan to work. You know, because I'll tell you, a lot of us watching the program, but then one is कि हमने program देखा, सुना, like you, बहुत सारे भाई बहने regular भी देख रहे हैं, but somewhere that little gap is there between program को देखना, सुनना, परमात्मा से जो ज्ञान मिल रहा है, समझना भी, लेकिन to take it back to my life tomorrow. So what is it that probably inspired you to do it, and what did you do to do that? You know, to get it to work, because otherwise. गुस्सा नहीं करना तो अभी पहली बार थोड़ी सुना आपने. आई एम श्योर इफ यू आर अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन तो आपको बचपन से राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू एवरीवन मस्ट हैव बीन टेलिंग यू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो व्हाट इज इट दैट गॉट यू टू वर्क ऑन इट नाउ एंड यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ.
2: फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इज बिकॉज आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज. इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क ठीक है, आई विल बी बैक टू माय नॉर्मल सेल्फ. A lot of people are watching this program, they agree with it, but they don't make an effort to bring it into their lives. You know, isme effort chahiye. You have
0: what to. Was that effort?
2: The effort was that the time when I started, I wanted this so much in my life, is there were many things, factors going wrong in my life and I had no control over it. Mujhe laga ki jaise I'm holding, jaise ret pakdi hui haath mein sab phisalta ja raha hai. मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, यू नो दैट आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू थिंग्स.
0: चीजें सिचुएशंस हैं, वो
2: सिचुएशंस हैं.
1: हां दैट्स व्हाट आई थिंक इन दिस होल सीरीज दैट वी बीन डूइंग, इट्स अ न्यू सीरीज, वी बीन टॉकिंग कि जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो जो फर्स्ट फीलिंग आती है दैट इज पावरलेसनेस, कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल एंड सिचुएशंस एंड दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल एनी मोर. तो सडनली यू फील कि मेरी पूरी जीवन ही मेरे हाथ से निकल, माई हस्बैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, माई चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप नाउ, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल, एंड सबसे बड़ी बात, I am not in my own control. So you just feel, then what is in my control? You know, nothing seems to be in my control. And usse ek bahut feeling of kahin demotivation, you know. Life is not enjoyable anymore when you feel ki nothing is in your control. So that's true. That's the time when it's really needed. So that when I come back into control, everything comes back into yes. control.
2: I think that was the key thing, that if I felt, I, like Sister Shivani said many times, don't try to change everybody around you. Try and change yourself. I said, okay, let me work reverse direction abhi. Ki agar mere mein thoda, you know, if I can change a little bit and mere mein badlaav aa jayega, to shayad wo thoda reflect hoga jo mere aas paas hai. Ye waise bhi mere control mein nahi hai, to main let it flow. I don't want to try very hard to change something that's going against me. If I let it go, let me see what happens. And when I did that, when I let go of all possibility to control things, I felt, and I just talked to God and I said, now you help me from here. Maine aapka haath pakda hai, aap mera haath pakdo. And jab maine wo kiya, to I felt that he actually held on to me and he said, okay, I'll show you the first step. Chalna tumhe hi hai, lekin steps main sikhaunga. And once I did that, I felt, now I know my path. And what happens is religion, baki sare, I'm a Muslim and it gets complicated. Jo religious cheeze hai, wo complicated. Mujhe kuch bilkul plain and simple, jo mere samajh mein aaye, aisa mujhe chahiye tha. Jisse meri zindagi, you know, hum jo bhi programs dekh rahe, everybody wants in their nuclear family to be happy. Koi ye sochta nahi hai ki mujhe dukhi hona hai. I don't think anybody thinks that. Everybody wants just to be happy.
0: Very true. Har koi apne efforts jo hai wo khush rehne ke liye kar raha hai.
2: Yes. So I just wanted to be happy. I wanted my family to be happy, contented. And I feel I'm already on that journey. I feel ke jo bhi mere haath se phisla ja raha tha, phisal gaya tha, jo chala gaya tha, wo dheere kaise, I don't know, main samjha nahi pa rahi hu, lekin wo wapas lot kya. It's a tide. It went and it's returning.
1: But what all do you feel? You want to share? What do you feel had gone on that's come back?
2: A lot of things. A lot of that particular phase jab maine ye experiment kiya tha, business mein bhi my husband's ko losses the, family mein bhi problems chal rahe the, and you know, things like that. And we were both depressed. We both were feeling that, you know, we are good people. Hume sab lagta hai, hum sab logo ko aise lagta hai ki we are good people.
1: हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है?
2: हमारे, you know, why should it happen? मैंने, हम लोग ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है, ना किसी को चीट किया है, ना कुछ भी. तो हमारे साथ ये ये ये इतनी पनिशमेंट्स हमें क्यों मिल रही है? लेकिन नाउ आई रियलाइज दैट दीज वर लेसन्स एंड दिस वॉज, जैसे परमात्मा हमें, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी कहो, अल्लाह करो, जो भी, you know, he was actually kind of tuning us, training us for better times to come. And as you start the journey, and now I am a long way into the journey, I feel that there is no other way to live. You know, we are peaceful souls, we are happy souls, we don't have to be sad. You know, ye rona dhona is not our life.
0: Very true. How beautiful. This is what I
1: this
0: think.
1: Is what we've been saying
0: we've been
1: every
0: wanting
1: time.
0: People to come out and say.
1: Yeah. Pain
0: this
1: is not a part
0: real
1: of
0: thing,
1: your
0: yes.
2: No. Don't give pain to anybody, but don't accept pain also.
0: Yeah. You know, and
1: this is, you know, she's not even realized what she said, yes. But this is what Shiv Baba says. Na dukh do, lekin na dukh lo. Majority log hum kehte hain ki humne dukh nahi diya, hum kuch galat nahi kar rahe. Lekin dukh lena nahi hai. That part we didn't know. We knew this ke dukh dena nahi hai. Wo bhi kabhi kabhi galti se de hi dete the. Lekin dukh na lo. We didn't know that we had a choice there. We always thought ki agar kisi ne kuch kaha hai to dukhi to.
2: But if you're in soul consciousness, if you're conscious all the time, mujhe 24 hours lagta hai ki the divine force is with me. Wo mere saath hi hai. He is with me and therefore I will not do wrong. And I will not be wronged. वो है, he's protecting me. वो मेरे साथ ही है. अगर कुछ something goes wrong, I feel he's teaching me something now. I never see it negatively.
1: So it becomes a very personal relationship with God.
2: Yes, I mean now I have found that I have a mechanism for by which I can actually talk to Him. I am sharing my life daily basis. When I'm in meditation, that's when I'm very quiet. But uske baad I talk to Him. I tell Him. If I've done something by mistake, I've done something wrong, ya mujhse kuch, you know, wo spontaneous jo pehle ke sanskar the, wo gussa kahin kisi pe aa gaya ya kuch bhi, I will tell Him, this is what I did today, but I will make sure that I will be more careful next time. So the conscious, like soul consciousness, I am in that soul consciousness. And because I'm in soul consciousness, you cannot do wrong. That's the thing.
0: See, that's like, दृष्टि अगर हमारी ठीक रहती है या हमारा पूरा एहसास रहता है तो एक्चुअली नथिंग कैन गो रॉन्ग ऑल्सो यू नो ये भी आपके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग आपको एहसास रहता है कि कभी कुछ गलत हो भी नहीं,
2: नहीं सकता yeah.
0: बहुत सुंदर अब तो मैं आपको समीना भी कह सकती
2: हूँ
0: सो मच पार्ट ऑफ द फैमिली
2: यस आई एम दैट्स ट्रू आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली
0: अपने सभी दर्शकों के साथ हम ये भी शेयर करना चाहेंगे कि समीना जी भारत जो इस बार आई हैं वो अपने परिवार के साथ आई और माउंट आबू गए ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स वो एक्सपीरियंस कैसा रहा
2: या इट वाज आई डिडंट एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सोचा मैं एक आश्रम में जा रही हूँ पहले तो मुझे वही लगा जब मैं गई और इट इज बिग यानी इट्स ऑन अ बिग स्केल एंड इतने लोग आते हैं वहाँ पे इतने सारे भाई बहन हैं यू नो एंड इट्स ब्यूटिफुल एक्चुअली जस्ट सीइंग एवरीबडी इन द वाइट इट मेक्स यू फील वेरी यू फील लाइक एंजल्स यू नो फ्लोटिंग अराउंड द प्लेस यू फील सो ब्यूटिफुल I had a chance to do meditation for many hours that way, you know. And it was, jab sab milke meditation karte, wo energy alag hoti hai. Mujhe khud nahi laga ki main, you know, 40-45 minute baith sakti hu ek baar. You know, I'm very fidgety. To aisa laga ki main hat jaungi, log mujhe dekhenge ki kitni shift ho rahi hai yahan se wahan. Nobody is bothered over there because even the you know senior dadis jisse main mili wo kehte hai ki ye apni personal journey hai koi aapko judge nahi karne wala hai aap jis speed se jana chahte ho jao you know ek bilkul bhi ek religious feeling nahi tha sirf spiritual feeling thi that I am here and he is there and I am just connecting with him that's all I was just there for this connection
0: wonderful and you felt that connection
2: yes all the time When meditation, all the time.
0: Achha, how about your family's response? I mean, not only your immediate family, but up to ek kafi time baad aap apne parivar se milonge jab Mumbai gaye. That becomes more important. ki wo jab aap keh rahe ho ki wo kehti acting kar rahi hai ya bhi bolegi ya abhi ye shor machane wali.
2: Yeah, yeah. My mother doesn't say it, but she herself feels good, you know. And she herself now is toned down. Yani kya hota hai kabhi kabhi? हम जब शांत हो जाते सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है यू नो हम जब भड़कते तो वो ज्यादा भड़केगा हम जब चिल्लाएंगे तो उससे ज्यादा वो चिल्लाएगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड
0: और दूसरी बात ये भी आपको शांत करने के लिए भी और चिल्ला रहे होते हैं
2: राइट
0: यू नो कि आपको कहते हैं आप शांत हो जाओ आप शांत हो जाओ तो खुद भी बहुत हाइपर हो चुके
2: आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनीमोर क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है यू नो व्हाटएवर आई वांट टू से आई विल जस्ट से आई डोंट हैव टू रेज माय वॉल्यूम टू बी हर्ड व्हेन यू हैव अराइव्ड एट वेयर आई वांट टू गो आई डोंट केयर व्हाट समबडी थिंक्स ऑफ मी आई नो व्हाट आई एम नाउ मुझे क्या करना है मुझे कहाँ जाना है मुझे कहाँ पहुँचना है ये मेरी जर्नी है मुझे पता है आई डोंट नीड समबडी टू एंडोर्स इट It's not important.
0: Yes, that's a beautiful. Actually, we are spellbound. I am really happy.
1: This is high self-esteem. You see, now I'm not dependent on other people's opinion about me because now I know who I am. This is what meditation does, and this is what the gyan does. It hits first on the self-esteem. Because low self-esteem is the cause of the whole list, which comes after that, whether it's anger or pain. And low self-esteem means ego. And when we don't say finish ego. But what Baba's Gyan does is raises my self-esteem, what I feel about myself. And like you say, you know, now I don't care anymore. So it's not in the negative sense that now I don't care anymore, but it's actually that even if some people are still going to take their time, आई एम ओके, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, एंड दैट वो सिर्फ वही कह सकेगा जो अंदर से भर गया है।

0: ऑफ अस कि हमने बहुत कुछ एक दूसरे के लिए किया. इट्स नॉट दैट वी आर नॉट एडजस्टिंग, हम बहुत करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन बाहर से करते हैं, अंदर से हम अपने ही थॉट को पकड़ के बैठे हैं. तो क्या हुआ, बाहर से हमने किया, अंदर से हमें फील हो रहा है मैंने इतना किया इतना किया. तो इट्स मोर लाइक सहन किया सहन किया, एंड घर का वाइब्रेशन फिर भी कैसा बना. एंड देन वी से मैंने आपके लिए इतना किया, फिर भी खुश नहीं हुआ. You know, you still didn't have the happiness in the house that we were looking for, in spite of having adjusted so much and compromised so much. But here what happened was the focus shifted. And the focus was, what I feel in what happened in your case is, you stopped working on him and started working on yourself.
1: That's right. And I have to realize that. Thank you so much.
0: Oh, I'm sure. Sharing.